प्रकाश ज्ञान, सत्य, दिव्यता और आत्म जागरूकता का प्रतीक है। ये अज्ञानता और अंधकार को दूर करने वाली शक्ति है और अक्सर ईश्वर या चेतना के रूप में देखी जाती है, जो आंतरिक दृष्टि और दिव्य समझ से पहचानी जाती है। प्रकाश में जीना, इसका अर्थ है आनंद, जागरूकता और एक आध्यात्मिक मार्ग पर चलना। दोस्तों, आध्यात्मिक प्रकाश के विभिन्न पहलू हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे, पर उससे पहले ये प्यारा सा भजन।

आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम पर अपना भक्तिमय कार्यक्रम पहली किरण, जिसमें मैं हूं आपकी आरजे आकांक्षा। और आज हम बात कर रहे हैं प्रकाश की। चलिए आपको ले चलते हैं, कुछ धर्मों से रूबरू कराते हैं जिनमें प्रकाश का माने क्या है, ये हम आपको बताते हैं। बाइबल में लिखा है, लेट देयर बी लाइट, और प्रकाश हो गया। ईश्वर का पहला सृजन था लाइट यानी प्रकाश। ईसाई परंपरा में लाइट यानी लाइट ऑफ क्राइस्ट, वो दिव्य शक्ति है जो सच्चाई और प्रेम का प्रतीक है। क्रिसमस पर जलती हुई मोमबत्तियां इस बात का संकेत है कि अंधकार में भी ईश्वर का प्रकाश सदैव साथ रहता है। कुरान शरीफ में नूर ये शब्द बार बार आता है। अल्लाहु नुरुस्मावाती वल अर्ज, यानी अल्लाह आसमानों और जमीन का नूर है। यहाँ नूर मतलब

सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि सच्चाई, ईमानदारी और रहमत का प्रकाश है। इस्लाम सिखाता है कि जो दिल का साफ है उसके चेहरे पर खुदा का नूर झलकता है।

गौतम बुद्ध ने कहा था, अप दीपु भव, यानी स्वयं दीपक बनो। बौद्ध धर्म में प्रकाश का अर्थ है अज्ञान के अंधकार से मुक्ति। जब मनुष्य अपने भीतर का दीपक जलाता है तो करुणा, शांति और ज्ञान की रोशनी फैलती है। यहूदी धर्म में हनुक्का पर्व प्रकाश का उत्सव है, 8 दिनों तक दीप जलाने की परंपरा। इस बात की याद दिलाता है कि विश्वास का प्रकाश हमेशा भय पर जीत पाता है। जब तेल सिर्फ 1 दिन का था पर वह 8 दिन तक जलता रहा, यही तो चमत्कार है प्रकाश का। यानी जब दीपक में सिर्फ 1 दिन मात्र का तेल बचा था, फिर भी वो विश्वास, प्रेम और आस्था के बल पे पूरे 8 दिन तक जलता रहा। और तभी से ये पर्व जिसका नाम है हनुक्का यहूदी धर्म में बहुत प्रचलित है।

श्रोताओं, अब मैं आपको एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाऊंगी जिसका शीर्षक है एक दीपक की यात्रा। बहुत समय पहले एक छोटा दीपक मंदिर में रखा था। हर रात वो मंदिर को जगमग करता, पर दिन में बुझा दिया जाता। उसे लगता कि शायद उसका कोई महत्व नहीं। दिन के उजाले में उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। एक दिन आंधी आई, सब दीपक बुझ गए, पर उसी ने अपने छोटे से शिखा से पूरे मंदिर को फिर रोशन कर दिया। तब उसे एहसास हुआ, प्रकाश का काम बड़ा या छोटा नहीं होता, बस सच्चे इरादे से जलना जरूरी है। और जो सच्चे इरादे से जलता है वो अपने आसपास प्रकाश कर देता है, खुद जलकर, खुद को जलाकर, और जलने के बाद वो खुद भी कहीं ना कहीं मजबूत होता है।

बात करेंगे मध्यकाल की। मध्यकाल में प्रकाश भक्ति और प्रेम की रोशनी था। मध्यकाल भक्ति आंदोलन का युग था। आप चाहे हिंदी में चले जाएं, इतिहास उठा के देख लें या फिर अंग्रेजी लिटरेचर की बात कर लें, सभी में भक्ति आंदोलन अपने चरम पे था। कबीर, तुलसी, नानक, मीरा, रूमी आदि संतों ने कहा कि सच्चा प्रकाश हृदय में है, मंदिरों या दियों में नहीं। कबीर कहते हैं, मन के भीतर जो दीप जले वही असली ज्योति है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, सूरज एको रुति अनेक, यानी प्रकाश एक ही है पर रूप अनेक हैं। सूफी मत में नूरे इलाही, यानी ईश्वर का प्रकाश, वे आत्मा में बसते हैं जो सच्चे प्रेम और इबादत से छलकता है। यानी मध्यकाल में प्रकाश का अर्थ है भक्ति, प्रेम और आत्मा की एकता का प्रतीक, जो कहीं ना कहीं आज भी हम अपने मन में टटोलते हुए पाए जाते हैं।

अब बात करेंगे आधुनिक काल में प्रकाश की, जो हमारा आज का युग है। आज के युग में प्रकाश चेतना, मानवता और आत्म जागरूकता की ऊर्जा की बात करता है। आज का युग यानी तकनीक और ज्ञान का युग, पर सच्चा उजाला वही है जो मन और समाज को प्रकाशित करे। आधुनिक आध्यात्म कहता है, आउटर लाइट ब्रिंग्स कंफर्ट बट इनर लाइट ब्रिंग्स क्लैरिटी। यहाँ प्रकाश का अर्थ है सकारात्मक सोच, मानवता का उजाला और आत्म चेतना। महात्मा गांधी ने कहा था, यदि हम अपने भीतर की रोशनी को जलाएं, तो बाहरी अंधकार हमें कभी छू भी नहीं सकती। यानी आधुनिक काल में प्रकाश मानवता, आत्म जागरूकता और करुणा का प्रतीक है।

तो श्रोताओं, प्राचीन काल में प्रकाश ज्ञान था, मध्य काल में प्रेम बना और आधुनिक काल में वो मानवता बन गया। युग बदलते गए पर ईश्वर का उजाला कभी नहीं बदला और ये प्रकाश यूं ही निरंतर चलता रहेगा, जलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा और हम भी आगे बढ़ेंगे। फिर मिलेंगे आपसे नए एपिसोड के साथ में, पहली किरण के साथ में। अपने मन की पहली किरण को और ऊर्जावान करें, उसमें और आंच भरें और अपने मन को प्रकाशमान करें। मुझे दें इजाजत, खुदा हाफिज, जय जिनेंद्र, रब रखा, राधे राधे।

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

0: भाई जिंदगी में यूँ तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
0: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस वो भी आपके बजट में।
0: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।

0: और बीकॉम की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली पीजी कॉलेज गोंडा।
2: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

क्या बात है, माशुकाना का तो पता नहीं, लेकिन मौसम जो है वो दिलकश जरूर है। आज संडे है और मौसम की एंट्री जबरदस्त है।

रात की बारिश तो याद होगी ना? ऑफ कोर्स, अगर देखा होगा तो आपने काफी तेज बारिश हुई थी, जिसके बाद आज फाइनली उस मौसम को हम महसूस कर पा रहे हैं जिसका इंतजार काफी लंबे वक्त से था। और कहते हैं कि जो चीज़ें थोड़ा सा वक्त पे हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, चाहे वो आपके ज़रिए की गई मेहनत का रिज़ल्ट हो या फिर अपने ही वक्त पे आई हुई बारिश, यानी कि बरसात के मौसम में। जी हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत कुछ डिपेंडेंट होता है वक्त पे ही। सो चलिए, बहुत अच्छी बात है। और आज है संडे, आपको पता है, और इसी संडे में बहुत बेहतरीन जो है बात होती है कि हम इस जरिए एक दूसरे से बात करते हैं 10 से 11 गागागुंडा विद आरजे अदनान। फिलहाल मॉर्निंग वाले शो में आज आपको बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है गुड मॉर्निंग गुंडा शो में, क्योंकि आपकी मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान काफ़ी सारी चीज़ें लाए हैं जो आपसे साझा करना है, साथ ही 10 से 11 बात करना है। तो आज तो फुल टू एंजॉय करने वाले हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम के संग। सो आपसे कहना था कुछ क्या, यही कि बने रहिए अपने गुड मॉर्निंग गुंडा शो में। अब इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद आज के दिन की शुरुआत का आपका बेहतरीन थॉट आ रहा है और आपसे कुछ कहना चाहता है, सुनिए तो ज़रा।

0: हाँ जी पता है, आप ये कहेंगे कि भाई मिठी मिठी तो अर्जुन नान आपकी वॉइस पे ऐसा सूट करता है, बट कोई बात नहीं, सुबह सुबह इतनी खतरनाक तारीफ किसकी किया जाता है यार, ऐसे नहीं करते ना। इमरान वापस से आपका वेलकम करते हैं आपके मॉर्निंग वाले शो में, आपके मॉर्निंग जॉक है अर्जुन नान, आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की तड़कन। और चलिए भाई इसी के साथ में आपको ले चलते हैं आज के थॉट ऑफ द डे की तरफ और बताते हैं कि आज का थॉट ऑफ द डे क्या है जो आपके संडे को और भी ज़्यादा फन वाला डे बनाने वाला है। आज का थॉट ऑफ द डे, क्योंकि कहते हैं कि दिन की शुरुआत अगर बेहतरीन थॉट से की जाए तो क्या बात है, एक पूरी दिशा दे देता है एक दिन का थॉट, और थॉट भी कौन सा, संडे स्पेशल वाला। सो सोचिए कितना ज़्यादा स्पेशल डे है आज का, कितनी ज़्यादा स्पेशल मॉर्निंग है, और थॉट वो तो आप सुनने के बाद खुद ही मन में अध्ययन करके पता जरूर कर लीजिएगा कि आखिर आपको आज का थॉट ऑफ द डे कैसा लगा।
1: नाउ यू आर लिसनिंग गुड मॉर्निंग कोडा विद योर फेवरेट आरजे अदनान।

0: हाँ जी, तो आज का थॉट क्या कह रहा है? जाहिर है आप भी जानना चाहेंगे और हमें भी बताना है, क्योंकि इतनी हिफाजत से आपका थॉट बचा के रखा है, वो आप तक पहुंचाना है। सो आज का संडे स्पेशल थॉट क्या कहता है? लेकिन उससे पहले ऑब्वियस सी बात है भाई कि आप हैं फ्रीक्वेंसी पर, आपका स्वागत है, आप हैं रेडियो गार्डन पर, और साथ ही साथ आप हैं मौजूद रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम की एप्लीकेशन पर। आप सभी का स्वागत है, वेलकम है आपके मॉर्निंग चॉक के लाइव शो गुड मॉर्निंग गोंडा में। सो क्या कह रहा है आज का थॉट ऑफ टुडे, चलिए बताते हैं। सो संडे स्पेशल थॉट कहता है कि विचार बदलते हैं तो व्यक्तित्व बदलता है, व्यक्तित्व बदलता है तो जिंदगी की दिशा भी बदल जाती है। ये जितना सुनने में सिंपल सा है, उतना समझने में मजेदार भी है। कैसे, आइए बताते हैं। थॉट कहता है कि विचार बदलते हैं तो व्यक्तित्व बदल जाता है। कैसे होते हैं विचार? विचार वही होते हैं जो हमारे आसपास के एक्सपीरियंसेस से, अपने समाज से, लोगों को देख करके हमारे पास में बन रहे होते हैं। जैसे हमारा विचार होता है कि भाई फीमेल का काम करना होता है घर पे, मेल का बाहर कमाना होता है, यूजुअली विचार ही रहता है, ठीक है। लेकिन क्या बदलाव आया? बदलाव ये आया कि नहीं, फीमेल्स भी वर्किंग होने लगी मेल के साथ में। लेकिन क्या नहीं बदला? बदला ये नहीं कि अगर फीमेल वर्किंग हो करके भी घर पे जाके खाना वही बनाती है, जबकि मेल घर जा करके फिर आराम करते हैं, क्योंकि उनके पास ये होता है कि भाई हमने तो काम किया है, राइट। तो कहीं ना कहीं चीज़ें बदली ज़रूर हैं, लेकिन विचार क्या आज भी वही हैं? और कुछ ऐसे भी हैं विचार जिसमें देखा यह गया है कि भाई दोनों ही वर्किंग हैं और दोनों ही घर जा करके एक दूसरे का हाथ बटा रहे हैं। सो ये विचार है। अब विचार बदलता है तो व्यक्तित्व बदलता है, ऐसा कहना है थॉट ऑफ द डे का। सो कहाँ बदल रहा है व्यक्तित्व, सवाल ये आता है। जी हाँ, तो सवाल जब ये आता है कहाँ बदल रहा है, तो ऐसी फैमिली, ऐसा पर्सन, ऐसा शख्स जो इस तरह की चीज़ पे बिलीव करता है कि भाई साथ में काम करेंगे, तो फिर उस घर में बात ये नहीं होती है कि कोई जोरू का ग़ुलाम है, बल्कि बात ये होती है कि ये होती है पार्टनरशिप। दुनिया को थोड़ी ना दिखाना है पार्टनरशिप, आपके घर का मामला है। दोनों ही एक दूसरे से खुश हैं, दोनों ही मिलकर के करते हैं, और घर में एक अलग सी खुशहाली है, एक अलग सा एक दूसरे पर ट्रस्ट है, यकीन है। तो ज़रा सोचिए, जब विचार बदला तो व्यक्तित्व बदल गया, आप खुश रहने लगे, आप महसूस करने लगे बेहतर। और क्या बोलता है थॉट कि व्यक्तित्व बदलता है तो ज़िंदगी की दिशा भी बदल जाती है। तो जाहिर सी बात है, जब आप खुश हैं, आप अलग सोच पा रहे हैं, आप इंडिविजुअल सोच पा रहे हैं, आप दूसरे को समझ पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो खुशियाँ, जो सुकून आप ढूंढ रहे थे, वो आपको मिल रहा है। सो एक छोटे से एग्जाम्पल से हमने इन बातों को समझा कि कैसे विचार बनते हैं, विचार बदलने पर व्यक्तित्व कैसे बदलता है, और जब व्यक्तित्व बदल जाता है तो ज़िंदगी की दिशा किस तरह से बन जाती है। और इस तरह से हज़ारों चीज़ें हैं जिनको इसी बात पर रखा जा सकता है विचार लेकर के। अब हम अपने बारे में कोई ऐसी बात सोचें जिस पर हमारा विचार कुछ अलग हुआ करता था, तो हम कुछ वैसे ही हुआ करते थे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए बहुत छोटी सी बात है कि भाई रोज़ नहाने की क्या ज़रूरत है, ठीक है, नहीं भी नहाएंगे तो काम चल जाएगा, और वैसे भी मुंह हाथ धोने का कॉन्सेप्ट तो ऐसे लोगों के लिए आ ही गया था, हैं, शॉर्ट में। लेकिन उनको पता है जो रोज़ नहा लेते हैं, क्योंकि पता है भाई कि इससे ताजगी कितनी महसूस होती है, आपको काम में सेटिस्फैक्शन कितना मिलता है, और आप कितने अच्छे से डील कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आप जब फ्रेश होते हैं तो आपके थॉट भी उसी तरह से आते हैं, और आप अगर कोई चैलेंज है तो उसको उतनी ही सब्र के साथ, उतने ही पेशेंस के साथ आप उसको कर पाते हैं। सो ये कहना है मेरा, एंड ये देखिए, इवन मैं खुद भी इस चीज़ पे बिलीव करने वाला था कि रोज़ नहाने का क्या मतलब है, लेकिन जब इस बात का अंदाज़ा हुआ कुछ साल पहले, जब मेरा क्या कहते हैं भाई अंदर से जागा, अलाइनमेंट हुआ, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है। और आज मेरा बिलीफ अलग है, आज हम साफ सुथरे ज़्यादा दिखते हैं। सो जो व्यक्तित्व बदलता है तो आपके जीवन की दिशा भी बदल जाती है, एंड जीवन की दिशा ऑफ कोर्स बदली हुई है। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो छोटे छोटे हैं लेकिन इसी पे आते हैं कि विचार बदल रहे हैं तो आपकी पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व भी बदल रहा है, और जब पर्सनैलिटी चेंज हो रही है तो जिंदगी की जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो रही है। सो आज का थॉट तो भाई यही कहता है। फिलहाल आपको कैसा लग रहा है आज का मॉर्निंग और संडे स्पेशल थॉट, ये आप ज़रूर बयान कर सकते हैं। अगर आप भी हैं 89.6 FM की एप्लीकेशन पर तो ज़रा सा जहमत देना है अपनी उंगलियों को और आकर के बताना है कि आपका आज का ये थॉट ऑफ द डे कैसा लगा। फिलहाल एक गाना जो हम आपकी तारीफ में कब से सुनाना चाहते थे, क्योंकि हम ऐसा ही मानते हैं कि आप जो हैं वो काबिले तारीफ हैं, और इस बात का जो सबूत है वो इस गाने में मिलने वाला है जो हम इस वक्त आपको डेडिकेट कर रहे हैं।
1: ये चांद सा रोशन सुल्फों का रंग सुनहरा, नीली सी नीली आंखें,
2: कोई राज है इनमें गह

0: वैसे एक बात की कंफ्यूजन हो रही है, यहां बनाया का शब्द किससे लिया जाए, जिसने आपको क्रिएट किया उसका, या फिर कहते ना कि तुम्हें तो हमने बनाया, बड़ा मजा आया। अरे बुद्धू बनाने की बात मैं कह रहा हूँ। एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन। अ वेरी गुड मॉर्निंग गोंडा।
1: नाउ यू आर लिसनिंग गुड मॉर्निंग गोंडा विद योर फेवरेट आरजे अतन।

सो भाई तमन्ना आरजू ने कहा है आदाब, आपको भी आदाब। और प्रीति जी बहराइच से लिखती हैं, सर जी संडे वाला वेरी लवली मॉर्निंग, थैंक यू सो मच टू एवरीवन, क्योंकि आप आ चुके हैं अपने गुड मॉर्निंग गोंडा शो में मॉर्निंग चौक आरजे अदनान के साथ आज के सफर को और भी ज्यादा हसीन और यादगार बनाने के लिए। पहला काम तो कुदरत ने ऑलरेडी कर दिया है, यानी इतना बढ़िया मौसम दे करके तो मैं कहूँगा कि हाँ बहुत बेहतरीन किया। एंड इसके बाद प्रीति जी लिखती हैं कि बहुत ही शानदार और प्रेरणादायक थॉट, आपस में एक दूसरे का विचार मिलना सभी समस्याओं का हल होता है, आपसी तालमेल जीवन का सबसे बड़ा उपहार है, और सब सुख सुविधाएं कम मिले तो चलेगा लेकिन आपसी विचारों का मिलना बहुत आवश्यक है जिंदगी में। वाह क्या बात है। अच्छा ऐसा होता भी है कि जैसे आपको शायद ज़्यादा कभी कभी समझ में इसलिए आता है क्योंकि कहीं ना कहीं उन चीज़ों से आप गो थ्रू हो रहे होते हो अभी भी लाइफ में इसी भी टाइम। एंड यस ऑफ कोर्स होता है ऐसा, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है कि हम शायद उन सिचुएशंस को ज़्यादा बेहतर समझ पा रहे होते हैं जिनके जिनसे होकर हम गुजर रहे होते हैं। सो ये बहुत अच्छी बात है। और आज का थॉट तो मुझे जब इतना ज़्यादा पसंद आया तो मुझे तो ये कंफर्म था कि आपको और भी ज़्यादा पसंद आने वाला है क्योंकि आपने भी अपने विचारों को बदला है और विचार बदलने से आपकी पर्सनैलिटी बदली है, और जब आपकी पर्सनैलिटी बदली है तो फिर आपकी जिंदगी की दिशा भी जो है वो बदल ही गई है। बड़ा ही प्यारा थॉट लगा, वाह क्या बात है। मतलब मैं तारीफ करूँ क्या उसकी जिसने इस थॉट को सुना है। अच्छा ये मेरी तारीफ है, सॉरी। ओके मुझे नहीं पता था, आई एम सो सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी।

0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
3: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
2: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।

0: ए झब्बू, तुमने होमवर्क कहे नहीं किया है?
1: मास्टर जी, जैसे ही मैं पढ़ने बैठा वैसे ही लाइट चली गई।
0: अरे तो लाइट आने के बाद कर लेते हैं।
1: बाद में मैं इस डर से नहीं पढ़ने बैठा कि मेरी वजह से फिर लाइट ना चली जाए।

So, भैया इसी के साथ ही साथ आपको अपडेट्स भी तो देनी है कि शहर में क्या कुछ चल रहा है। क्यों, शहर अपना है तो जानना भी तो अपना ही पड़ेगा कि भाई आखिर सिटी अपडेट में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए भाई सिटी अपडेट आपको बताने वाले, लेकिन उससे पहले इस गाने को एंजॉय करिए, उसके बाद बताते हैं क्या चल रहा है गोंडा में।

0: सो भाई टाइम आ गया आपको अपडेट देने का कि गोंडा में क्या कुछ चल रहा है। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं सिटी अपडेट में क्या है सबसे बड़ी अपडेट।
1: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite RJ Khan.

हाँ जी, तो भाई आपको हम बताते जा रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है गोंडा में। तो सबसे पहले बड़ी अपडेट में ये है कि जिस तरह से बारिश हो रही है, सो जाहिर है हमारे गोंडा से होकर बहती है सरयू नदी, जिसमें फिलहाल 73,029 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे बढ़ गया है इसका वाटर लेवल। और कहीं ना कहीं अब जो है वो पहाड़ों पर हो रही बारिश से नदी उफनाने लगी है और ख़तरे के निशान से 1 मीटर नीचे बह रही है। सो कटान रोकने के लिए भी लगातार इंतज़ाम किए जा रहे हैं। और चूंकि नेपाल की जो पहाड़ी है वहाँ उन क्षेत्रों के तराई ज़िलों में लगातार बारिश की वजह से नदियाँ जो है वो उफान है, और अगर हम सरयू की बात करें तो ये भी उफनाने लगी है। सो नदी के अभी चूँकि ख़तरे के निशान से नीचे तो है, और बहुवन, मदार, माझा और माझा रायपुर के सामने नदी के कटान से किसानों की उपजाऊ जो कृषि भूमि है लगातार पानी में मिलती जा रही है, इससे ग्रामीणों की जो चिंता है वो काफ़ी हद तक बढ़ गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि ITI परिसर में रोजगार मेला कल लगने वाला है मंडे में। जी हाँ, विश्व युवा कौशल दिवस पर 13 जुलाई को राजकीय ITI परिसर में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। सो क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय और राजकीय ITI की तरफ से आयोजित मेले की सुबह शुरुआत 10 बजे से कल होगी। चूंकि जिला सेवा योजन अधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के मिशन निदेशक के निर्देश पर रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कई कंपनीज को इन्वाइट किया गया है और बेरोजगार जो भी अभ्यर्थी हैं वो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों के ज़रिए में किसी में भी करके वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। इसके बाद चलते हैं अगली अपडेट की तरफ, और अगली जो अपडेट है वो है इनोवेशन हब बनाने की बात। जी हाँ, जिससे भविष्य में नवाचार की बात सामने आ रही है। सो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय से मिल गई है मंजूरी। दरअसल माँ पाटेश्वरी देवी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में अब नवाचार को नई उड़ान मिलने की बात बताई जा रही है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय यानी AKTU से इसे इंजीनियरिंग कॉलेज इनोवेशन हब की स्थापना को मंजूरी मिलने के बाद अब कॉलेज परिसर में अत्याधुनिक केंद्र विकसित करने की तैयारी तेज की गई है। सो इसमें होगा क्या कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी जो आधुनिक तकनीक है, इस पर बेस्ड शोध और नवाचार को नया आयाम मिलने की बात बताई गई है। विद्यार्थी तकनीकी के विचारों से स्टार्टअप्स और जो व्यवसायिक उत्पाद है एक तक विकसित कर सकेंगे। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा से जुड़ी स्थानीय जो समस्याएं उसके समाधान के लिए AI आधारित मॉडल भी तैयार किए जाएंगे। कॉलेज के डायरेक्टर भारतेंदु नाथ मिश्र ने बताया कि कॉलेज में फिलहाल अभी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और कंप्यूटर साइंस ब्रांचेस की कुल 300 सीटों पर स्टडी हो रही है। इनोवेशन हब बनाने से इन सभी ब्रांचेस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको आधुनिक तकनीकों पर शोध और प्रयोग करने का मौका मिलेगा। सो आपको पता है कि भाई उत्तरौला रोड पर ही माँ पाटेश्वरी देवी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज गोंडा है, और इसमें कौन कौन सी व्यवस्थाएं मिलने वाली आपको बता दें। इस हब में 3D प्रिंटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और नवीनीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी जो बहुत ही ज़्यादा अल्ट्रा मॉडर्न प्रयोगशालाएं हैं वो इस्टेब्लिश की जाएंगी। यहाँ स्टूडेंट्स को तकनीकी परियोजनाओं पर काम करने, पेटेंट फाइल करने और बिजनेस के साथ रिसर्च करने और अपने स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने के लिए जो टेक्निकलिटीज़ है और जो फिनेंशियल हेल्प है वो अवेलेबल कराया जाएगा। सो आम ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए AI बेस्ड टेक्निकल खेती और डायग्नोस्टिक सिस्टम डेवलप करने की भी योजना चल रही है। इससे स्टूडेंट्स को नवाचार क्षमता के साथ रोजगार के अवसर बढ़ाने की भी बात कही जा रही है। सो फिलहाल ये है माँ पाटेश्वरी देवी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज गोंडा के बारे में कि किस तरह से हब बनाया जा रहा है। अब आपको ले चलते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट जो आ रही है वो है पौधारोपण अभियान से जुड़ी हुई। सो ITI मनकापुर परिसर में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह पौधारोपण अभियान के तहत आज जो है वो पौधा आरोपित करेंगे। इसके अलावा आज
जन आरोग्य मेला लगाया जा रहा है। सिविल लाइंस समेत जिले के 55 जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनमें जन आरोग्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा टीकाकरण, जो एटिया थोक पीएचसी में किशोरियों को एचपीवी वैक्सीन लगाई जा रही है। पौधारोपण हलधर मऊ के प्राथमिक विद्यालय हुड़ही में भी कर होने वाला है। सो इस तरह से ये आज के इवेंट है। और आईटीआई में चलाया गया है जो अभियान, उसके बारे में भी हम आपको बता दें कि भाई आईटीआई की तरफ से कल सैटरडे में अभियान चलाया गया। चूँकि नोडल प्रधानाचार्य ने बताया कि आईटीआई चलो अभियान के तहत कई सारे ट्रेड्स की जो सीटों हैं उस पर एंट्रेंस प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। सो कल सैटरडे में पहले दिन गोंडा समेत मनकापुर, करनैलगंज, तरबगंज में अभियान चला करके जागरूक किया गया है। इसके अलावा अब आपको हम बताने वाले हैं अगली अपडेट की तरफ। और अगली जो अपडेट आ रही है वो आ रही है मेडिकल कॉलेज से जुड़ी हुई। सो आपको बता दें, 3 लेयर बैग ख़त्म होने से प्लेटलेट्स बनना फ़िलहाल बंद हो चुकी है। सो मेडिकल कॉलेज में ब्लड बैंक में 3 लेयर ब्लड बैंक का स्टॉक ख़त्म होने से प्लेटलेट्स का जो निर्माण है वो ठप हो गया है। सो इसका सीधा असर कहाँ पड़ रहा है? डेंगू, कैंसर और खून से जुड़ी जो बीमारियां हैं या बाकी जो बहुत सीरियस डिजीज़ हैं इसके इलाज पर पड़ रहा है। क्योंकि प्लेटलेट्स की ज़रूरत लेकर रोज़ाना पहुंच रहे मरीज़ों को या फिर उनके परिवार वालों को मायूस फ़िलहाल लौटना पड़ रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि पीएम श्री विद्यालय के जो बच्चे हैं उनको 6,000 यात्रा भत्ता दिए जाने की बात आ रही है। सो पीएम श्री राजकीय माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये खबर है कि अब विद्यालय तक वक्त में पहुंचने वाला जो खर्चा है उनकी पढ़ाई में बाधा ना बने। सो शासन ने पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज और पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों को 6,000 रुपये परिवहन भत्ता देने की व्यवस्था लागू की है। सो जो भी अभी चालू शैक्षणिक सत्र है कक्षा 6 से 12 तक उनके विद्यार्थियों को जिनका घर विद्यालय से 5 किलोमीटर या उससे ज़्यादा की दूरी पर है उनको हर साल 6,000 रुपये यात्रा का भत्ता मिलेगा। ज़िले के दोनों पीएम श्री विद्यालयों के 500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस योजना का फ़ायदा मिलेगा। सो शासन स्तर से 15 जुलाई तक जो पात्र विद्यार्थी हैं उनका विवरण भी मांगा गया है। सो ये फ़िलहाल आपको बताया हमने। और इसके अलावा बता दें कि अब स्कूल्स में भी बच्चों की ऑनलाइन हाज़िरी लगाई जाने की बात सामने आ रही है। सो माध्यमिक शिक्षा परिषद ने विद्यालयों में अब शिक्षकों और शिक्षणेतर जो कर्मचारी हैं उनके साथ साथ स्टूडेंट्स को भी हर रोज़ ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करना ज़रूरी कर दिया गया है। सो आदेश आने के बाद ज़िले के 512 माध्यमिक विद्यालयों में इसकी तैयारियां शुरू हो गई है और ये व्यवस्था लागू होने की कवायद तेज़ हो गई है। इसके तहत सभी विद्यालयों में जो उपस्थिति है वो अटेंडेंस पोर्टल और मोबाइल ऐप पर दर्ज होने की बात बताई गई है। सो ये रहा आज की गोंडा की अपडेट की तरफ से ये सारी बातें। आई होप कि भाई आप तक भी कुछ ज़रूरी जानकारियां जो है वो पहुंच गई हैं। और आज है संडे, सो ऑफ कोर्स सिटी में काफ़ी कुछ अपडेट हो रहा है जो आप तक हमने दिया है पहुंचा। फ़िलहाल अब चलते हैं आगे की तरफ और आइए इस खूबसूरत से गाने को एंजॉय करते हैं, वापस से आते हैं और आने के बाद आपको ले चलते हैं कुछ अहम बातों से रूबरू कराने की तरफ।

0: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है एप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 35 95 84। अब बारी है आपकी। अरे सुना
1: क्या,
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ,
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है

0: कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, सीसीटीवी कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9970931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

वैसे एक सवाल बहुत देर से जो है वो मुझे खरोच रहा था। मैंने कहा कि भाई आपको बता दे और फिर आपसे पूछ ले कि इसका जवाब आपको क्या लगता है। वैसे आपको अंदाज़ा है कि सवाल हम किस चीज़ से संबंधित पूछने वाले हैं? नहीं ना, तो चलिए हम बता देते हैं कि अभी क्या है कि बारिश का मौसम है, यानी मानसून चल रहा है, और इसी मानसून में हमने बताया अभी सरयू नदी के बारे में गोंडा अपडेट्स में। अभी फ़िलहाल आपसे पूछना है, पानी की बात चल रही है तो पानी से ही जुड़ा हुआ एक सवाल।

जहन में था, मैंने कहा आपसे पूछ लें। सो दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? जी हाँ, दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? इवन इसका आंसर इतना ज़्यादा आसान है कि आप भटक भी जाएंगे, देख लीजिएगा, डेफिनेटली बता रहे हैं। चलिए, जब तक आप ये सोच करके बताइए, और उसके बाद हम आपको बताने वाले हैं एक बहुत ज़रूरी जानकारी, यानी कि व्हाट्सएप वाला रेल टिकट माना जाएगा या नहीं। सो सफ़र करने से पहले कुछ नियम जो है टिकट्स दिखाने को लेकर के आप जान लीजिए, क्योंकि आज है संडे और हो सकता हो आप कहीं निकलने जा रहे हों, तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या रेलवे के नियम कानून होते हैं, या कभी भी आप जब ट्रैवल करें तो इन बातों का ध्यान आपको रखना है। लेकिन उससे पहले बताना है कि दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। चलिए, हमें आपके जवाबों का है इंतजार, और सुनते रहिए अपना मॉर्निंग वाला शो गुड मॉर्निंग गुंडा विद योर मॉर्निंग जॉक आर जे अदनान। स्टे ट्यून्ड।

0: सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग सा था और उसका जवाब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग दिया. सवाल ये था कि भाई दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है. मैंने कहा था इतना ज्यादा आसान है कि शायद आप बताने में एक बार को गलती भी कर दें. लेकिन उससे पहले चलिए भाई कुछ और हमारे श्रोतागण आ चुके हैं 89.6 FM की चैट पर, आपके मैसेजेस को हम पढ़ लेते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा शो में. क्या लिखा है, किसने लिखा है, कहां से लिखा है, सब बताते हैं.
1: Now you're listening, Good Morning Gonda, with your favorite, RJ Khan.

सो पहले तो हम बता दें इसका जवाब जो है वो दिया है महेंद्र ने। महेंद्र क्या लिखते हैं कि सुरों की महफिल में गहरा है हर सवाल, पर इसका जवाब भी है बड़ा बेमिसाल। आरजे जी, आपके इस लाजवाब सवाल का सही जवाब है प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन। गोंडा रेडियो के सभी प्यारे श्रोताओं को आपने नमस्कार भी बोला है। मैंने कहा था ना ये गलती हो सकती है इसका जवाब देने पर। मैंने कहा दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। खैर, साइंस पे जाएंगे और ज्योग्राफी को देखेंगे तो प्रशांत यानी पैसिफिक ओशन मिलेगा। लेकिन अगर इस पर नहीं जाते तो फिर क्या जवाब होता है सोचिए। अगर प्रशांत महासागर नहीं है सबसे गहरा तो फिर कौन सा होगा? ये सवाल आया कि नहीं आया? अजी इतना ज्यादा सोचने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन इसका जवाब हम बताएंगे व्हाट्सएप वाले टिकटिंग नियम को लेकर के बताने के बाद में, राइट? तो चलिए वो भी हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ मैसेजेस आए हुए हैं आपके चैट बॉक्स पर। धर्मेंद्र मोहन जी लिखते हैं कि जो व्यक्ति स्वार्थ और लोभ में फंसकर अपनों का साथ छोड़ता है उसका कोई अपना नहीं बनता, अंत में उसे पछताना ही पड़ता है। वाह। लिखते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा सुनने वाले सभी श्रोताओं को और अदनान सर को गुड मॉर्निंग, मेरा सलाम पहुँचे जी, आपको भी गुड मॉर्निंग। एंड साथ ही साथ महेंद्र लिखते हैं एक प्यारा सा रेडियो, उस पर सुरों की बौछार और चैट बॉक्स में जुड़े मेरे प्यारे दोस्तों का प्यार, इस महफिल की रौनक ही है। आप सब यारों से, आप सभी को इस दोस्त का दिल से नमस्कार। जी हाँ, आपको भी। लवली सिंह लिखते हैं अदनान सर गुड मॉर्निंग, पहले सुबह का पहला सलाम, थैंक यू सो मच। और लवली सिंह आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे कमल नयन जी भी आ गए हैं और आपने लिखा है आरजे अदनान सर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू। आपका भी हम वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो में। तमन्ना आरजू का मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम अदनान सर। वालेकुम अस्सलाम, आपका भी तमन्ना वेलकम करते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। दिलीप साहू जी हैं मध्य प्रदेश कोठी से, डे वन से जुड़े हमारे साथ के लिसनर, और आज भी आपका मैसेज आया है। लिखते हैं आप गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू यू, और साथ ही चार कप चाय, यानी दो आपकी दो हमारी, लेकिन ज़्यादा चाय तो हम नहीं पीते हैं, चलिए दो और किसी के लिए। और हमारे अजय जी भी आ गए हैं, लिखा है गुड मॉर्निंग गोंडा, गुड मॉर्निंग टू यू। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा वेलकम करते हैं। हाँ, सो मैं बताने वाला था आपको व्हाट्सएप के वो नियम जिस पर आप टिकट दिखाते हैं, क्या व्हाट्सएप पर दिखाया गया रेल का टिकट माना जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है, उसको लेकर के एक अपडेट है, इसलिए आप तक पहुँचानी ज़रूरी थी। फिलहाल आपको बता दें कि व्हाट्सएप वाला जो रेल टिकट है अब नहीं चलेगा। जी हाँ, सो अगर रेल वाला टिकट व्हाट्सएप पे नहीं चलेगा तो फिर क्या चलेगा? सो आखिर रेलवे ने क्या नया नियम बनाया है, पहले तो हम ये बता देते हैं। भारतीय रेलवे ने अनारक्षित यानी अनरिजर्व्ड डिजिटल टिकट को लेकर के नियम जो बहुत ही क्लियर कर दिए हैं कि अब रेल वन ऐप से बुक किया गया टिकट तभी वैध माना जाएगा जब उसी मोबाइल फ़ोन में मौजूद हो जिससे टिकट बुक किया गया था। सो क्या क्या बदला है? पहला तो है रेल वन ऐप में मौजूद ओरिजिनल टिकट ही मान्य होगा, वही माना जाएगा। दूसरा है व्हाट्सएप पर भेजा गया टिकट स्वीकार नहीं होगा। तीसरा है स्क्रीनशॉट फोटो या पीडीएफ कॉपी जो कॉपी है इसकी मान्य नहीं होगी। और चौथा है कि टिकट चेकिंग के दौरान रेल वन ऐप में लाइव टिकट दिखाना ही होगा। सो ये आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि हम सब सफ़र करते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें हर बात के लिए भाई हम पहले से टिकट नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे हमको अनरिजर्व्ड टिकट चाहिए होता है। और ऐसा भी होता है कि आप जल्दी में हैं या आपको शायद टिकट काउंटर दूर है रेलवे का उस स्टेशन जहाँ से आपकी बोर्डिंग हो रही है और आपको अनरिजर्व्ड चाहिए, अर्जेंट में जाना है, तो आप विंडो तक नहीं जा सकते, तो रेल वन ऐप से आप डाउनलोड कर लेते हो, वहाँ से अपने टिकट बुक कर लेते हो। तो इसलिए रेल वन ऐप के बारे में जानना और इसके जो टिकटिंग नियम आए हुए हैं उनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सो बदलाव हमने बता दिया है कि रेल वन ऐप में मौजूद ओरिजिनल टिकट ही मान्य होगा, पहली बात। दूसरा यह है कि व्हाट्सएप पर भेजा गया टिकट नहीं माना जाएगा। तीसरा है स्क्रीनशॉट फोटो या पीडीएफ जो कॉपी है ये भी मान्य नहीं होगी। चौथा है टिकट चेकिंग के दौरान रेल वन ऐप में लाइव टिकट दिखाना अनिवार्य होगा। सो आखिर
रेलवे ने क्या नियम बनाया है ये तो हमने बता दिया। सो यात्रा के दौरान आखिर किन बातों का ध्यान रखना होगा? सो रेलवे ने जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए कुछ ज़रूरी शर्तें भी तय की है। अगर इनका आपने पालन नहीं किया तो टिकट होने के बावजूद उसे अमान्य माना जा सकता है। जैसे यात्रियों के लिए ज़रूरी नियम क्या बनाए गए हैं? सो टिकट उसी मोबाइल में होना चाहिए जिससे बुकिंग की गई हो, पहली बात। दूसरा यह कि मोबाइल के साथ वैध फोटो पहचान पत्र भी रखना ज़रूरी होगा। इसके अलावा अनारक्षित डिजिटल टिकट ट्रेन के रवाना होने से पहले ही बुक करना होगा। ट्रेन छूटने के बाद बुक किया गया टिकट मान्य नहीं होगा। टिकट चेकिंग के समय रेलवन ऐप में टिकट दिखाना अनिवार्य होगा। ये बड़े क्लियर नियम है जिसको आपको समझना पड़ेगा बहुत ही बारीकी से अगर आप भी सफ़र करते हैं। सो पहली बात तो टिकट उसी मोबाइल पर आप दिखाएंगे जिससे बुक किया गया हो। दूसरा, मोबाइल के साथ में वैध कोई फ़ोटो वाला पहचान पत्र भी आपको अपने साथ रखना होगा, जैसे कि आधार में होती है आपके आईडी। तीसरा है कि अनारक्षित डिजिटल टिकट ट्रेन के रवाना होने से पहले ही करना है, बाद में अगर करते हैं तो नहीं माना जाएगा। आपका टिकट का पैसा भी कट जाएगा, टिकट बुक भी हो जाएगा, बट नहीं माना जाएगा। ट्रेन छूटने के बाद बुक किया गया टिकट नहीं माना जाएगा। टिकट चेकिंग के वक्त रेलवन ऐप में टिकट दिखाना ज़रूरी होगा। सो रेलवे ने ऐसा नियम आखिर क्यों बनाया है? सो ये सामने तब आया जब हाल ही में एक यात्री ने टिकट चेकर को व्हाट्सएप पर भेजा गया टिकट का स्क्रीनशॉट दिखाया। रेलवे ने उसे वैध टिकट नहीं माना और जुर्माना लगाया। इसके बाद रेलवे ने साफ किया कि टिकट सिर्फ रेलवन ऐप में ही मान्य होगा, किसी दूसरे माध्यम से भेजी गई कॉपी ट्रैवल का वैध प्रमाण पत्र नहीं है। इससे फर्जी टिकट और टिकट की गलत तरीके से शेयरिंग पर रोक लगने की बात बताई गई है। सो यात्रियों ने क्यों इस पर जताई नाराजगी? सो नया नियम आने के बाद से सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इसको लेकर सवाल भी उठाए। उनका कहना है कि ये नियम व्यवहारिक नहीं है और कई यात्रियों के लिए इसको परेशानी पैदा कर सकता है। सो लोगों की इसमें चिंताएं क्या है? जो आम नागरिक सोच रहे हैं, जो कि सोशल मीडिया यूजर्स लिख रहे हैं कि परिवार का एक सदस्य सभी के टिकट बुक करता है, कई बार टिकट बुक करने वाला व्यक्ति यात्रा नहीं करता है, बुज़ुर्ग और तकनीक से दूर लोग खुद ऐप इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, ऐसे में क्या हर यात्री को टिकट बुक करने वाले का मोबाइल साथ रखना होगा? बात तो खैर वाजिब है ये भी। अब इस पर रेलवे क्या जवाब देता है या इसको लेकर के क्या कार्य योजना सोच रखा है, ये शायद आने वाले वक्त में स्पष्ट कर दिया जाए। लेकिन फिलहाल आपको हम बता दें कि सोशल मीडिया पर जो है वो क्या बोल रहे हैं लोग। सो कई लोगों ने अपनी नाराज़गी भी इस नियम को लेकर के जताई है और कुछ प्रमुख जो प्रतिक्रियाएं हैं सोशल मीडिया की वो हम आप तक पहुंचा भी देते हैं कि क्या क्या लिखा है। जैसे एक प्रतिक्रिया ये है कि मैं अपने पूरे परिवार के टिकट ऑनलाइन बुक करता हूं, अगर मैं साथ नहीं हूं तो क्या अपना मोबाइल भी उन्हें दे दूं? ये एक वाजिब जो चिंता थी वो एक लिसनर ने, एक व्यूअर ने उस पर डाली। दूसरा लिखा गया कि बुज़ुर्ग लोग रेल वन या UTS जैसे ऐप इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, उनके लिए रेलवे ने क्या व्यवस्था की है। तीसरा आया कि नियम ऐसे होने चाहिए जिन्हें हर यात्री आसानी से अपना सके, ना कि लोगों की मुश्किलें बढ़ा दे। फिलहाल क्या याद रखना आपको ज़रूरी है? अगर आप रेलवन ऐप से अनारक्षित टिकट बुक करते हैं तो यात्रा से पहले कुछ बातों का ख्याल आपको होना चाहिए, जैसा कि हमने बताया कि भाई टिकट उसी मोबाइल में रखें जिससे बुकिंग हुई है। दूसरा, टिकट का स्क्रीनशॉट या व्हाट्सएप कॉपी माना नहीं जाएगा। तीसरा है, फ़ोटो पहचान पत्र अपने साथ रखना है। और चौथा है, ट्रेन छूटने से पहले ही टिकट को बुक करना है। सो भाई अब बात आती है कि मैं आपसे पूछूं कि आपको ये रेलवे का नया नियम कैसा लगा, और अगर सही लगा तो कितना लगा, और अगर आपको भी लगता है कि इसमें अभी भी चेंजेस हो सकते हैं, कुछ बातें हैं जो सच में चिंता बढ़ा रही हैं, तो आप भी बता सकते हैं। फिलहाल मुझे लगता है कि भाई अब एक म्यूज़िकल ब्रेक तो ले ही लेना चाहिए, है ना? तो चलिए, एक म्यूज़िकल ब्रेक का वक्त हो गया है और ये म्यूज़िकल ब्रेक जो है हम लेते हैं, वापस आते हैं आज, क्योंकि 10 से 11 हम आपसे बात भी करने वाले हैं। सो बातों में बहुत सारा मज़ा आने वाला है, बहुत सारा फ़न होने वाला है। आई होप कि हम सब मिल करके एंजॉय करने वाले हैं। एंड यस, अब कितना ज़्यादा आप इसमें फ़न करने वाले हैं
कितना ज़्यादा आप मज़े लेने वाले हैं ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल आइए चलते हैं अपने अगले म्यूज़िकल ब्रेक की तरफ, आपके मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग गोंडा में आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान।

0: हाँ जी, तुम्हारा सवाल तो बहुत पुराना था जिसका जवाब मैंने कहा था आपसे, लेकिन सवाल ये था कि भाई दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है, जिस पर ऑफकोर्स हमारे महेंद्र जी ने रिस्पॉन्ड भी किया, प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन बताया। लेकिन दरअसल मेरा जो मानना है वो थोड़ा सा अलग है। मेरे हिसाब से जो दुनिया का सबसे गहरा महासागर है वो पता है क्या है? मेरे हिसाब से है इंसान का मन।
1: Now you're listening Good Morning Koda with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

सो भाई मैंने कहा था दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। बेशक ज्योग्राफिकल अगर देखेंगे तो प्रशांत महासागर, बट अकॉर्डिंग टू मी इंसान का मन यानी कि मानव मन सबसे गहरा महासागर है। कितना भी डूब जाओ कोई बात रह ही नहीं जाती है। न जाने कितने बड़े बड़े राज हम छिपा भी ले जाते हैं और दफना भी देते हैं, है ना। सो मानव मन जो है वही सबसे गहरा महासागर है जनाब। फिलहाल एक बड़ा ही प्यारा सा मैसेज आ गया आशु मिश्र जी का लखनऊ से। आज उनकी छोटी भतीजी प्राणिका का बर्थडे है। मुझे याद है अच्छे से कि प्राणिका का बर्थडे हमने लास्ट ईयर भी मनाया था। सो हैप्पी बर्थडे बच्चे प्राणिका, एक साल बाद फिर वापस से ज्ञानस्थली फैमिली आपका बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। आपको बर्थडे की बहुत बहुत मुबारकबाद, और साथ ही चाची को भी, मामी को भी, बुआ को भी, मौसी को भी, सबको थैंक्स बोलिएगा, सब मिल करके मना रहे हैं।

हाँ जी, तो भाई प्राणिका को हैप्पी वाला बर्थडे। और छोटी सी प्राणिका जो है इनका जस्ट पिछले साल आज ही के दिन यानी 12 जुलाई के ही दिन हम लोगों ने मिलकर के बर्थडे सेलिब्रेट किया था और आज वापस से बता दिया है कि भाई प्राणिका का बर्थडे है। यानी प्राणिका, आपकी बुआ ने बता दिया है कि आज आपका बर्थडे है और जाहिर है कि आज घर का माहौल जो है वो पूरे में केकमय और सजावटमय हो जाएगा, होना भी चाहिए, और बहुत सारी खुशियां आपको मिले। और आप अपनी लाइफ में भाई अभी बहुत छोटी हैं, बस खुश रहिए, खेलते रहिए, इतनी ही दुआ है क्योंकि यही काफ़ी ज़्यादा है। सो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आशुमिश जी फ्रॉम लखनऊ कि आपने बताया आज की भतीजी का बर्थडे है। इसी के साथ में मेरा सवाल चूँकि अब शुरू हो जाता है, अब वक्त हो गया है आपसे कॉल इन प्रोग्राम में 10 से 11 बात करने का। कॉल इन प्रोग्राम गायगा गुंडा विद आरजे अदनान। ऑब्वियस सी बात है, गुंडा गाएगा लेकिन सवाल का जवाब भी देगा गुंडा। सवाल ये है कि अभी तक आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई थॉट था क्या जिसके बदलने से आपकी पर्सनालिटी बदली, और जब पर्सनालिटी बदली तो उससे आपकी लाइफ की एक डायरेक्शन भी बदल गई, यानी आपकी ज़िंदगी की जो दिशा है वो भी बदल गई। अगर ऐसा कुछ भी हुआ है आपकी लाइफ में, ऐसा कोई बदलाव आया है, कोई एग्जांपल आपको याद आ रहा है जिसको आप बता सके, हाँ ये मेरा थॉट था, फिर इस थॉट को चेंज किया तो मेरे व्यक्तित्व में बदलाव आया, यानी पर्सनालिटी चेंज हुई, पर्सनालिटी चेंज हुई तो उससे लाइफ को अलग डायरेक्शन मिली, एक दिशा मिली। सो अगर ऐसा कुछ है तो आप ज़रूर बताइए, नंबर वही है 6393931649। ये है नंबर स्टूडियो का जिस पर आपको कॉल करना है और ये मैजिकल नंबर पर मिलेंगे आपके मॉर्निंग चॉक आरजे अदनान।

0: अच्छा ओके अच्छा, कई बार ऐसा होता है सृष्टि की किसी की चलाई हम देखते हैं, हमको लगता है ये बड़ी सही चलाई है, किसी की हेयर स्टाइल हम थोड़ा सा कॉपी करने की कोशिश करते हैं, और कई बार ऐसा होता है किसी के बोलने का ढंग ऐसा होता है कि आप उसकी तरह बोलने की प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है क्या?
1: हाँ हुआ है, मैंने बोलने की प्रैक्टिस की है बहुत लोगों से। मैं पहले आती थी तो मैं बिल्कुल नहीं बोलती थी, वहां पे देखा कि सब लोग कितने अच्छे से बात करते, फ्रेंडशिप सबकी रहती, चाहे वो कोई नया ही आया हो। तो मैंने सीखा वहां से कि हाँ, किसी से फ्रेंडशिप करने से कुछ ना कुछ तो फायदा होता ही होता है।
0: मतलब फ्रेंडशिप करते हैं तो आपको नए लोग मिलते हैं, तो उनके अंदर की जो नई चीजें होती हैं आपके लिए वो भी मिल जाती है।
1: वो भी मिल जाती है।
0: करेक्ट, क्या बात है, बहुत प्यारी बात आपने कही। और आपने जो जॉब वाली बात या मम्मी को जो बताया कि किस तरह से उन्होंने आपको इंस्पायर किया, और आज आपको लगता है कि हाँ आपने मम्मी की बात को माना, तो आपकी लाइफ में आज आप चेंज देख रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात लगी मुझे। वाओ, दैट्स वेरी ग्रेट।
1: सर, मैं 2 साल से अपनी लाइफ में अच्छी चेंजिंग देख रही हूँ, और मेरे पास फ्रेंड्स भी बहुत सारे हैं।
0: अरे वाह, 2-4 हमको भी दे दिए, इधर मेरे बहुत कम हो गए। सो नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है कि आपने फ्रेंडशिप बढ़ा दी है, और कहीं ना कहीं आपके लिए भी काफ़ी नई चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में। और वैसे भी लाइफ हमेशा न्यूनेस देखती है, कुछ नयापन चाहती है, चाहे जिसकी लाइफ हो, हर किसी को पसंद है
1: पहले
0: थोड़ा
1: तो
0: सा
1: मैं
0: न्यूनेस।
1: स्टूडियो आती थी, आपने देखा होगा, मैं बिल्कुल किसी से भी बात नहीं करती थी। मैं किसी से भी नहीं,
0: नहीं, हमसे तो करते थे ना आप।
1: आप करते थे, बाकी मैं किसी से भी नहीं बोलती थी, किसी लिसनर से भी नहीं। जब मैं आती, मेरा जो रहता मैं उसको बोलती, या फिर सॉन्ग रहता गाती, फिर मैं अपने घर चली आती डायरेक्ट।
0: करेक्ट,
1: किसी से भी बोलने नहीं रहता था। अब है कि जो मिल गया उससे हाय हेलो, दीदी भैया जो भी हैं, तुरंत फ्रेंडशिप हो जाती है।
0: बिल्कुल सही बात है। सो ये लाइफ में बहुत बड़ा आपके चेंज जो आपने बताया वो हमने, चूंकि मैंने खुद भी कई जगह ऑब्जर्व किया है, तो मैं इसका खुद एक साक्षी हूँ इस बात का। एंड यस, आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं कि भाई यूं ही आप बेहतर करते रहें, और आपको लाइफ में नए नए लोग मिल करके उनकी नई नई चीज़ें आप तक पहुंचती रहें, ऐसी हम
1: मतलब
0: दुआएं करते
1: सर,
0: हैं।
1: स्टेशन पे जाते अगर कोई मिल गया तो उनसे भी फ्रेंडशिप हो गई। चलिए ठीक है, मैं
0: ओके ओके, थैंक यू सो मच। सो बहुत बहुत शुक्रिया सृष्टि की, आपने हमको बताया कि आजकल आप होलसेल में फ्रेंडशिप कर रही हैं। वैसे पहली बार ये कॉन्सेप्ट आया, होलसेल फ्रेंडशिप। हाँ ऑल राइट, तो चलिए भैया चलते हैं हम अगले कॉलर की तरफ, और देखते हैं कि अगली कॉल पर कौन आ रहा है। लेकिन उससे पहले हम बता दें सवाल क्या है। सवाल ये है कि आपकी ज़िंदगी में क्या कोई ऐसा थॉट रहा है जिसको आपने बदला वो सोच, और उससे आपकी पर्सनालिटी यानी आपके व्यक्तित्व में बदलाव आया, लोगों ने उसके बारे में कहा, और आपने महसूस किया कि लाइफ की डायरेक्शन भी उसने काफ़ी चेंज किया है। हो सकता है ये कोई बहुत छोटी घटना हो सकता है ये कोई बहुत बड़ी बात हो, ऐसा कुछ भी याद आ रहा है तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। चलिए फिलहाल चलते हैं अगले कॉलर की तरफ। हाँ जी हेलो।
2: सुबह होती है तो शाम आती है तो रात होती है, रातों में भी रहता है इंतजार, एक दिन आपकी भी आती है रात में आवाज। गुड मॉर्निंग सर।
0: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और आपने हमारे बहारे गजल फ्राइडे स्पेशल की बात की है।
2: जी सर।
0: एक ही दिन आता है शो, हमको भी याद है।
2: जी सर।
0: थैंक यू। अनु कैसी हैं आप?
2: मैं बहुत अच्छी सर, आप बताइए आप कैसे?
0: बहुत बढ़िया, बहुत मस्त। सवाल सुना आपने, क्या है?
2: सर सवाल ना, मैं थोड़ा थोड़ा सुन पा रही हूँ, मैं किसी तरीके से रेडियो सुन रही हूँ, क्योंकि पिछले संडे को यही था और आज भी यही है। पता नहीं क्यों, जब ये कॉलिंग शो स्टार्ट होता है, पहले से तो थोड़ी बहुत आवाज अच्छे से आती है रेडियो से, लेकिन जब कॉलिंग शो स्टार्ट हो जाता है तो एकदम से आवाज नहीं आती, बहुत मुश्किल हो जाता है सुनने के लिए। पिछले साल तो एकदम नहीं सुन पाई थी।
0: कोई बात नहीं, तो मैं सवाल दोहरा दूं आपके लिए।
2: ठीक है।
0: ओके, सवाल अनु ये है कि क्या कभी ऐसी कोई सोच जो आपने बदली हो, और उस सोच के बदलने से आपके व्यक्तित्व में यानी आपकी पर्सनालिटी में भी बदलाव आया हो, और जब पर्सनालिटी में बदलाव आया तो उससे देखा आपने कि आपकी ज़िंदगी भी काफ़ी बदल गई है, तो कोई छोटी घटना इस तरह की, कोई बहुत बड़ी घटना हुई हो आपके साथ, वो आप हमसे साझा कर सकते हैं।
2: सर मेरे साथ ना, समझ लीजिए, बहुत बड़ी घटना हुई, क्योंकि

0: समझ लेना है या हुई थी?
1: अच्छा समझ सकते हैं।
0: अच्छा समझ सकते हैं, ओके। आप समझाइए तो हम समझ सकते हैं, ठीक है।
1: 15 साल पहले, 15 साल बाद की बात बता रही हूँ। पहले की बात थी, अब ये मत समझना उम्र की गणना मत लगाना।
0: नहीं, हम समझ नहीं पा रहे, 15 साल आप पहले की बात बता रहे हो या 15 साल के बाद जो होने वाला उसकी आप बात बताने वाले?
1: अच्छा, मैं ये साल जो है ना, मैं वो उसको सही नहीं बोल रही हूँ, ऐसे ही बोल रही हूँ। तो पहले क्या था, मैं बोलती नहीं थी, एकदम नहीं बोलती थी, और लोगों से मिलना जुलना भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं था। अपना जो भी काम है, कॉलेज जाना, कुछ भी जो भी करना करना, बाकी रेडियो सुनना, हर वक्त रेडियो के साथ लगे रहना, घर में जो भी काम है करो, और घर के अंदर से बाहर एकदम ना के बराबर निकलना। मुझे किसी से मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता था, बस रेडियो सुनती रहती थी। तो एक भैया रिलेशन के, उन्होंने एक दिन तो मतलब एकदम से परेशान ही कर दिया, बोले आज अनु नहीं निकलेगी बाहर, तो मैं आज जाऊंगा ही नहीं। और सच में सच बताऊँ ना, सोते तो रहे, मैं लगभग 3-4 घंटे में बाहर नहीं निकली, किसी ख्याल में नहीं निकली। और भैया बुलाते रहे, और बहुत बड़े भी हैं उम्र में भी, तो मैं नहीं। तो फिर भैया बोले ऐसे अनु की क्या शादी हो जाएगी, मतलब कल को, तो अनु अपने ससुराल जाएगी, तो हम लोग जाएंगे अनु से मिलने के लिए, तो बाहर नहीं निकलेगी, ये मिलेगी नहीं, और शायद ससुराल वाले पहचान ना पाए बाकी लोग, तो फिर हम लोग वहाँ क्या करने के लिए जाएंगे, कैसे जाएंगे। तो बात ही नहीं कर रही, आज अनु जब तक बात नहीं कर लेगी मैं नहीं जाऊँगा। तो फिर उस दिन से मैंने सोचा वाकई में मुझे बात करनी पड़ेगी, ज्यादा बोलना पड़ेगा, तो मैंने बोलना स्टार्ट कर दिया ज्यादा। और एक सर से तो वो बाहर निकलने के लिए बहुत मोटिवेट थी, अनु बाहर निकलो, बाहर जाते ज्यादा निकलो, बाहर की दुनिया देखो कैसी है क्या है। तो मैं बाहर निकलने लगी, तो सर इससे मेरी जिंदगी में बहुत परिवर्तन आया। मतलब मैं बोलती थी बहुत, तो बोलने
0: हाँ, बहुत ज्यादा,
1: फिर बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा,
0: अच्छा थोड़ा वाला, हाँ ठीक है।
1: बोलने से मुझे बहुत फायदे हुए,
0: बोलने से बहुत फायदे हुए,
1: हाँ बहुत फायदे हुए, और बाहर निकलने से बहुत ढेर सारे फ्रेंड हो गए।
0: फायदे मतलब जैसे क्या, लोग थोड़ा घी और शहद वगैरह घर पे आके देने लग गए क्या, कैसे क्या था, कैसा फायदा?
1: नहीं सर, शहद वगैरह तो नहीं देने लगे, लेकिन मेरे बात करने से, मैं मतलब खुद की तारीफ तो नहीं कर रही हूँ,
0: नहीं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ,
1: मैं भी ये देखती हूँ, मैं जिससे भी बात करती हूँ तो अधिकांश लोग जो मुझसे मिलने के लिए मुझसे परेशान हो जाते हैं बात करने से।
0: आपसे मिलने के लिए परेशान हो जाते हैं, आपसे मिलने के बाद परेशान हो जाते हैं, क्या बोल रहे हैं आप? अच्छा, ओ हो, देखिए मैं भी कितना पागल, मुझे लगा कह रहे हैं कि आप मुझसे मिलने के बाद वो परेशान हो जाते हैं, मैंने कहा है
1: ना,
0: अच्छा अच्छा,
1: के लिए परेशान रहते, मुलाकात करने के लिए, और सर बात मतलब मेरे बात करने के अंदाज से और ज्यादा बात करने की वजह से दिल्ली से, और वो भी रेडियो की टीम आ रही है मेरे साथ मीटिंग करने के लिए, मेरा इंटरव्यू लेने के लिए।
0: क्या बात है भाई, बहुत बहुत मुबारकबाद, बस वो किसी तरह झेल ले, खैर मैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ, लेकिन आपके लिए ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट।
1: सर पता है,
0: नहीं बताइए,
1: पहले अपॉइंटमेंट लिए हैं, क्या झेलने के लिए अपॉइंटमेंट कई महीने पहले ले लिए
0: हैं? अब वो तो टीम ही जानेगी मैंने तो जो लगता है वो मैंने बोल दिया भाई मैं तो ठहरा सीधा साधा आदमी, छोटा मोटा बच्चा हूँ।
1: आप तो बहुत सीधे हैं, बहुत ज्यादा,
0: एक ही बात बताइएगा, हाँ बताइए।
1: लेकिन सर दो बात हो जाएगी,
0: हाँ तो फिर रहने देते हैं।
1: नहीं मैं बता दी, मैं आपसे ना 2 दिन की छोटी थी रेडियो के भी, और रेडियो पे आपसे 2 दिन की छोटी थी, क्योंकि 2 दिन बाद में सुनना स्टार्ट की थी, और उम्र में आपसे 2 महीने छोटी हूँ, मतलब कि साल नहीं, आपका बर्थडे जनवरी में पड़ता है, और लास्ट जनवरी, और मेरा शुरुआत अप्रैल पड़ता है।
0: कौन से सन में, मतलब 1990 या 70-80, किधर आप किधर पढ़ते हैं?
1: 1950।
0: अच्छा 85, तब भी काफी है, ठीक है बढ़िया।
1: 85 नहीं है,
0: 85 में लोग रियल मान लेंगे, 50 में लोग समझेंगे आप मजाक कर रहे हो, इसीलिए मैंने जानबूझ के 85 बोला है।
1: आप भी 19 में ही आए हो, मैं भी 19 में ही आई हूँ इस दुनिया में, इतना ही काफी।
0: क्या बात है, वाह वाह वाह वाह वाह, बहुत प्यारी बात कह दी, मैं इमोशनल हो रहा हूँ, एंड बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से रिप्लाई किया अनु आपने, आपकी कॉल के लिए बहुत धन्यवाद, और आपकी ज़िंदगी के लिए हम बहुत सारी दुआएं देते हैं, इंटरव्यू के लिए स्पेशल आपको ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट।
1: थैंक यू सर, और सर एक बात, और मेरे यहाँ लाइट खराब थी ना,
0: क्या बात है।
1: कॉल नहीं लग रही थी तो मैं सोचती कि घर से डाउन हो जाए और मेरी बात ना हो, क्योंकि संडे को मेरी बात ही होती है ऐसा करने से, तो फिर कहीं कैसा होता है।
0: बिल्कुल नहीं, ऐसा होने वाला नहीं था, सो डोंट वरी, जरूर बात हुई है और अच्छा भी लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। हेलो,
1: ओके सर, बाय
0: बाय, टेक केयर। सो भाई ये तो थी हमारे साथ में अनु, जो कि हमको सुन रही थी गोंडा से ही। और इनसे बात करने के बाद अब चलते हैं अपने अगले कॉलर की तरफ और देखते हैं कि अगली कॉल पर हमारे साथ आखिर कौन आ रहा है, उनका कौन सा ऐसा थॉट था जिसने उनके पर्सनालिटी में चेंज लाया और पर्सनालिटी ने जिंदगी की दिशा को बदला। हाँ जी, हेलो।
2: हेलो
0: जी, क्या नाम है
2: सर? मैं अपना नाम आपको बताऊं, दर्शकों को, लिस्टरों को बताऊं, उससे पहले मैं चंद लाइनें आपको पेश करना चाहूंगा।
0: जी जी, बस एक रिक्वेस्ट है, पीछे से ये रेडियो की जो आवाज आ रही है इसको प्लीज धीरे कर दी, वो रिपीट आ रही है।
2: अच्छा, ठीक है।
0: अभी एकदम ठीक है, परफेक्ट
2: जी। मैं गांव की पगडंडी का धूल भरा एक राही हूँ, शब्द नहीं बस भाव लिखूं, मन का खुला सिपाही हूँ। मुझे लगता है आप गेस करेंगे, और हमारी आपकी कई बार बातचीत हो चुकी है, मुलाकात हो चुकी है। मेरी इस लाइनों के पूरा होने तक मुझे लगता है आप मुझे
0: पहचान गए। नहीं, पहचान गया हूँ मैं आप।
2: चलिए फिलहाल मैं गांव की पगडंडी का धूल भरा इकराही हूँ, शब्द नहीं बस भाव लिखूं, मन का खुला सिपाही हूँ। माँ की ममता, खेतों की खुशबू, जनमन का सम्मान लिखूं, लगे जो सच इस जीवन का, खुलकर वो बयान लिखूं।
0: वाओ, क्या बात।
2: ना महलों की भाषा मेरी, ना ऊंचे दरबारों की, मैं तो बोली बोलूं अपनी चौपालों और यारों की।
0: वाह क्या बात है।
2: कभी कभी व्यंग बन कर चुभ जाता, कभी गीत बन बह जाता हूँ, दर्द किसी का देखूं तो चुप रहकर भी कह जाता हूँ। शांति संगम का पथिक हूँ मैं, मन में दीप जलाता हूँ, जिंदगी धुआं सी है फिर भी आशा का गीत सुनाता हूँ। नाम भले छोटा हो मेरा, सपने मगर विशाल लिए, मैं जनता की धड़कन लिखने निकला हूँ कुछ सवाल लिए।
0: क्या बात मैं है।
2: सर एक लाइन और।
0: जी जी प्लीज प्लीज।
2: और अगर आप पहचान गए हैं तो प्लीज आप पहले पहले व्यक्त कर दें, नहीं आखिरी लाइन में मेरी मेरा नाम, मेरा परिचय जो है आखिरी लाइन में अपने आप आ जाएगा।
0: नहीं तो मैं चाहूंगा कि पहली बार आप खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो प्लीज अपने ही अंदाज में आप करिए।
2: थैंक यू सर। मैं लोक मन की पीड़ा, माँ की ममता और जीवन में जीवन के सत्य को देने वाला एक साधारण कवि हूँ जनाब, मैं तक्षक रवि हूँ।
0: जी जी, वही तो मैंने पहचान लिया था जैसे ही थोड़ी सी बात हुई, मैंने कहा इतनी बुलंद आवाज हमारे रवि तक्षक जी की ही हो सकती है।
2: क्या बात है सर, धन्यवाद।
0: नहीं बहुत बढ़िया, बहुत।
2: कैसे हैं?
0: मैं अच्छा हूँ, मैं तो डर गया, मैंने कहा ये किस आरजे ने कॉल कर दिया है किसी दूसरे अपना रेडियो स्टेशन से।
2: क्या बात है, कुछ ज्यादा ही तारीफ हो रही है।
0: नहीं मतलब इतनी बढ़िया वॉइस, इतना बढ़िया बेस, सो मैं सोचने लग गया कि ये कौन से रेडियो स्टेशन से कॉल आई है, तो अब मुझे पता चला ये गोंडा का ही रेडियो स्टेशन है और जिसके स्टेशन मास्टर
2: और अपने अपने पुराने आरजे।
0: जी पुराने आरजे और कई सारे मंचों पर बोलने वाले एंकर। बेशक। सो बहुत अच्छा लगा कि आज आप जुड़े और आपने हमसे बात भी की है और बहुत ही उम्दा परिचय आपने दिया और मुझे लगता है कि लिखते काफी लोग अच्छा है रवि जी, लेकिन जो आपके बयान करने का अंदाज है, जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन थी आपकी, वो लाजवाब लगी मुझे, मतलब जबरदस्त एकदम बढ़िया मस्त।
2: धन्यवाद सर। एक्चुअल में है क्या कि एफएम ज्ञानस्थली 9.6 एफएम बहुत कुछ देता है, बहुत कुछ सिखाता है, और एक छात्र मैं भी समझ लीजिए इस एफएम का मैं भी हूँ। तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहता है। तमाम आप जैसे शरीके आरजे आपके इस एफएम में मैं सबको सैल्यूट करता हूँ, सुनता रहता हूँ। बस ये है कुछ पाबंदियां होती हैं, बात नहीं कर पाते, मैसेज भी नहीं कर पाते कभी कभार, बीच बीच में जब मौका मिलता है तो थोड़ा समय निकाल कर आ भी जाते हैं।
0: बिल्कुल आते हैं आप, बिल्कुल। नहीं बहुत अच्छा लगा, और सवाल थोड़ा सा हम भी अगर आपसे वही करें जो हम आज कर रहे हैं, तो सवाल बस इतना सा था कि क्या कभी कोई ऐसी सोच रही है आपकी जिससे आपने उसको बदला हो सोच को, और उससे आपका व्यक्तित्व बदल गया हो, और व्यक्तित्व बदलने से आपकी जिंदगी की थोड़ा सा दिशा भी उससे बदली हो, क्या कुछ ऐसा आपके साथ भी हुआ है?
2: जी सर, मैं कहूँ तो मैं थोड़ा सा इससे हटकर हूँ।
0: ओके।
2: क्योंकि ये जीवन जो है एक नदी की धार है, जो नदी की धारा बहती रहती है, तब तमाम सारे हैं नदियां जो भी बहती हैं कभी सीधी नहीं चलती हैं, हमेशा कहीं ना कहीं से टकरा कर उनका दिशा जो है उनकी दिशा मुड़ जाती है। ठीक उसी तरह से ये जीवन भी है, हम आए दिन कुछ न कुछ जरूर सीखते हैं, कोई ना कोई ऐसी चीज होती है कि जो हम जिस लाइन पर चल रहे होते हैं, जिस धार में बह रहे होते हैं
0: जी,
2: तो कुछ ऐसी ठोकर लगती है, ऐसी चीज मिलती है कि हम दिशा थोड़ा सा जो है बदल देते हैं, लेकिन फिर अगली दिशा जब हमें मिलती है जो है हम उस तरफ बहना शुरू करते हैं, तो अगला फिर कोई ठोकर मिल जाता है।
0: बिल्कुल।
2: तो मैं कहूँ कि ऐसा कुछ जो है बहुत विशेष तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं अक्सर मैं अपने आप को पाता हूँ कि जब मैं अपने आप को सुधार कर लगता है कि मैं कहीं गलत थी, मैं किसी दूसरी दिशा में जा रहा हूँ, उस दिशा से थोड़ा सा मार्ग जब परिवर्तित होता है तो कुछ समय बाद जो है वो मार्ग फिर से जो है परिवर्तित होने लगता है। तो मेरा जो अपना निजी अनुभव है, बाकी लोग बहुत सारे ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे लोग लोगों को जो है उनके जीवन में तमाम ऐसी बातें जो है जो उनको एक दूसरी दिशा पर ले जाती हैं और वो पूरी तरह से उसी पर चलना शुरू कर देते हैं, हो सकता है ऐसा भी हो। फिलहाल मेरी जो बात रही मैंने आपको बताई।
0: नहीं बहुत अच्छा, क्योंकि ये देखिए हम भी हमेशा कहते हैं कि हर इंसान अलग अलग तरह का होता है, और अच्छी बात है कि आप जैसे हैं वैसे आप खुद को अगर बता रहे हैं तो ये हम लोगों के लिए बड़ी अच्छी बात है, तो इसके लिए मैं आपकी खुद ही तारीफ करता हूँ कि चलिए आप जैसे हैं आपने बताया, ये बहुत अच्छी बात है।
2: शुक्रिया।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, और हम चाहेंगे कि ऐसे ही आपका प्यार हमको वक्त वक्त पे मिलता रहे।
2: ठीक है सर, मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ और पूरे टीम के साथ हूँ।
0: बिल्कुल।
2: और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हमारे आपके और जो एफएम फैमिली है ज्ञानस्थली की जो है इसके साथ ये प्यार ऐसे ही बना रहे, बरसों बना रहे, लगातार अनवरत चलता रहे जो है, इसमें कहीं किसी तरह की खटास किसी तरह की दूरी ना उत्पन्न हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात।
2: और हमें भाई आरजे अरनान जी की आवाज सुनने को मिलती रहे और भी तमाम आरजे हैं उन सबको सुनने को मिलता रहे जो है
0: जी।
2: तो ये कामना है अपनी।
0: बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन अगली बार के लिए हम आपको अभी ये बोल दें कि जब अगली बार आप आएंगे तो किसी नगमे के साथ आप आइएगा, थोड़ी सी हम लाइन भी नेक्स्ट वाले में सुनेंगे आपसे।
2: बिल्कुल बिल्कुल सर, कोई बात नहीं है।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए आपका।
2: जी आपका जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आज काफी दिन बाद बात हुई है।
0: बिल्कुल, मुझे भी बहुत शुक्रिया आपका। जी थैंक यू सो मच। तो भाई हमारे साथ में गोंडा से ही सुनने वाले हमारे सभी के प्रिय रवि तक्षक जी, जो कि काफ़ी अच्छा लिखते हैं और कई सारे मंचों पर जाते भी हैं, और इवन कई ऐसी बातें आपने लिखा है सामाजिक तौर पर जिसको पढ़ने के बाद सोचने पर मजबूर हो जाए इंसान। होता है ना कि आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं और जब आप लिखते हैं तो वो सारी चीज़ें आप तक पहुंचती ज़रूर है। बहरहाल अब वक्त है एक छोटे से शॉर्ट से म्यूज़िकल ब्रेक का, तो आइए म्यूज़िकल ब्रेक लेते हैं आपके अपने गुड मॉर्निंग गोंडा शो में, और वापस से उसके बाद जब हम आएंगे तो आपसे बातचीत का सिलसिला हम जारी रखने वाले हैं आपके मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग गोंडा में, आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। फिलहाल आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन, और नेक्स्ट सॉन्ग आपको आपकी एनर्जी बढ़ाने के लिए एक डोज की तरह आ रहा है। संडे स्पेशल गुड मॉर्निंग गोंडा विद योर मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान।

0: हाँ जी, सुल्लाव मेरा हिट हिट, और ऑफ कोर्स आफ्टर दिस हिट सॉन्ग आई एम बैक। तो सवाल बहुत ही सिंपल सा है जो कि संडे स्पेशल वाला है। सवाल ये है कि क्या कोई ऐसा थॉट है जिसको बदलने से आपकी पर्सनालिटी में चेंज आया, और उस चेंज से आपने देखा कि जब आपकी पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व बदला, तो फिर आपकी ज़िंदगी की एक दिशा भी कहीं ना कहीं आपने बदली हुई महसूस की। ये सवाल बड़ा ही सिंपल सा है, लेकिन इसका जवाब ऑफकोर्स बहुत अहम है, बहुत ज़्यादा अहम है कि आप उन चीज़ों को कैसे देखते हैं, आपकी लाइफ में किस तरह चीज़ें आई और आपने देखा। सो इसी के साथ चलिए चलते हैं अगले कॉलर की तरफ और देखते हैं अगली कॉल पर आखिर कौन है मौजूद। हाँ जी, हेलो।
1: हेलो
0: जी, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम शाजिया है।
0: ओके, हाय शाजिया, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: जी, मैं गोंडा से ही बात कर रही हूँ।
0: ओके, सो अपना हालचाल पहले हमारे श्रोताओं को बता दें, क्योंकि इस वक्त आपको सब सुन रहे हैं।
1: अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी, आप बताएं आप कैसे हैं?
0: बहुत बढ़िया, हम तो बहुत स्मार्ट हैं। मतलब लोग कहते हैं पीपल से। अच्छा, आपकी नजर में नहीं, खैर कोई बात नहीं, जिसकी नजर में हम होते नहीं उस पर फिर ये बात ही नहीं करते।
1: मौसम काफी अच्छा है आज।
0: हाँ, मौसम काफी अच्छा है। और सवाल कैसा है आज का?
1: सवाल भी बहुत अच्छा था।
0: हाँ, नहीं है,
1: इसका जवाब भी बहुत, हाँ बहुत अच्छा है, और इसका जवाब भी बहुत अच्छा है हमारे पास।
0: अरे वाह, प्लीज बताइए।
1: एक्चुअली हमारी बहुत अच्छी खास दोस्त है, उन्होंने मुझे एक बार एक थॉट शेयर किया था, और कुछ इस तरह से था कि क्योंकि कला मुझे खुल कर वह आनंद देती है जिसे देने में प्रेम संकोच करता था।
0: वाओ, क्या बात है।
1: और इसको पढ़ने के बाद लिटरली माय लाइफ चेंज, मतलब मैंने खुद को टाइम देना शुरू कर दिया अपनी इस कला को जो बहुत पीछे चली गई थी शायद प्रेम की वजह से। और फिर मैंने अपनी लाइफ को स्विच किया उन चीजों में जो मुझे टाइम देते, जो मुझे करना अच्छा लगता था, लाइक ड्रॉइंग करना, नॉवल पढ़ना।
0: अरे वाह,
1: और मुझे ज्यादा आनंद आने लगा उसमें, जो मुझे शायद प्रेम करते वक्त नहीं आ रहा था उतना।
0: तो प्रेम आप ईमानदारी से कर रही थी, उसमें भी आपने कुछ संकोच किया था?
1: नहीं नहीं, वो तो ईमानदारी ना, लेकिन वही ना एक तरफा था तो थोड़ा मसला था।
0: अच्छा अच्छा,
1: लेकिन कला जो थी ना वो मुझे बैक टू बैक वाइब्स दे रही थी मेरी, तो वो थॉट मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ने के बाद, और उसके बाद लिटरली मेरी लाइफ बहुत चेंज हो गई। फिर
0: वाओ, तो मुझे
1: तो लगता खुद को देना शुरू किया, अपनी कला को टाइम देना शुरू कर दिया।
0: तो मैं भाई दिल से दुआ निकल रही है उस आपकी फ्रेंड के लिए जिन्होंने ये बोला। मतलब होता है ना, किसी का कहा हुआ आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट ले आता है, और ये मैं देख रहा हूँ। मतलब लिटरली आप बहुत ब्लेस्ड हैं कि वो आपकी लाइफ में है, बहुत बड़ी बात है। ऐसा
1: बहुत ब्लेस्ड चुकी हूँ मेरी लाइफ में
0: सच में। मतलब ये बड़ी अच्छी बात आपने कही कि एक थॉट आपने सुना अपनी फ्रेंड से, उन्होंने बताया कि कला वो आनंद देती है जो प्रेम भी नहीं दे पाता है,
1: और जो प्रेम संकोच करता है देने में।
0: अच्छा, जो प्रेम संकोच करता है देने में, और ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में इम्पैक्ट लेकर आया, यानी आप जो ड्राइंग से या नॉवल पढ़ने से दूर हो गए थे आपने कहा,
1: हाँ,
0: उसकी तरफ वापस से आप आ पाए। वाओ
1: जी,
0: क्या बात है। चलिए, मुझे लगता है कि बस उसी फ्रेंड को
1: आप बताइए अब कि आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है, कोई थॉट पड़ा आपने जो आपको लगता है कि चेंज लेकर आया?
0: ये तो मैं सोच के बैठा ही नहीं था आज कि मुझसे भी कोई पूछ लेगा।
1: आपको बताया ना अपने लाइफ का ऐसा इंसिडेंट शेयर करें जो शायद ऐसा कभी हुआ आपके साथ, कोई इंसिडेंट या कोई इंसान या कोई थॉट या कोई जर्नी है।
0: बिल्कुल। सो एक बात जो मुझे बहुत अपने बारे में लगती है, जैसे मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि बहुत कुछ ऐसा है जो यूजुअली ख्याल जो पहली बार आते हैं वो ही सही हो, वो जो चीज़ें दिख रही हों उनको वैसा ही मान लिया जाए। मुझे अब हमेशा इससे लगा कि नहीं, इससे इतर होना चाहिए, क्योंकि जो आपको वैसी दिखाई जा रही हैं या जो चीज़ें आपको दिख रही हैं, जब उसके बारे में थोड़ा सा आप उसको वक्त देते हैं, उसके पास में वक्त बिताते हैं, तो वो चीज़ें समझ में आती है कि वैसी भी नहीं है जैसी दिखती हैं या बताई जाती है। तो मुझे लगता था कि यार हर चीज में दूसरे का ओपिनियन क्यों, मेरी लाइफ है, मेरे डिसीजंस हैं, दूसरा बार बार क्यों बताएं। हाँ, ये बात सही है कि आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स या आपके चाहने वाले हमेशा आपका बेहतर चाहते हैं और वो राय भी देते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, इसको हमेशा लेना चाहिए। लेकिन एट द एंड करने वाले आप होते हैं, क्योंकि लाइफ आपकी होती है। आप उनसे बेहतर जानते हैं कि आप क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ में और क्या चीज़ें आपके लिए नहीं हो पाएगी। सो उन चीज़ों को जब मेरे थॉट में आए और थॉट से जब मैं उस चीज़ को करने लग गया, कोई किसी की बुराई करता था तो मैं नहीं मानता था, मुझे लगता था पहले मुझे भी जानना पड़ेगा, मैं किसी के कहे पे नहीं विश्वास कर सकता, चाहे वो मेरा कितना ही ख़ास दोस्त क्यों ना हो, कोई भी कह दे। इसी तरह बहुत सारी बातें हुई तो मुझे लगा कि हाँ मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ, और वो मेरी पर्सनैलिटी में आए। लोग कहने भी लगे कि हाँ तुम्हारा अपना ओपिनियन होता है, लोग पूछने लगे कि बताओ इस बात पे तुम्हारी क्या राय है क्योंकि तुम कुछ अलग बताते हो। तो वो चीज़ें मुझे लगी कि मेरी पर्सनैलिटी पर शायद आ चुकी है, और आज अगर हम उससे ज़िंदगी की दिशा बताएं तो मैं बहुत सुकून में बस इसलिए रहता हूँ कि मुझे किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं होता है कि मैंने किसी के कहने पे किया, ये मैंने खुद किया। अब वो चाहे अच्छा हुआ हो या बुरा हुआ, ये मेरे लिए बहुत सेटिस्फैक्टरी रहता है, ये मेरा चेंज है।
1: अच्छा, मतलब अगर किसी को चाहिए तो आपके अंदर पहले उस खूबी को ढूंढेगा, फिर वो आपको राजी करेगा, उसके बाद ही वो चेंजेस दूसरी लाइफ में आ सकते हैं ना।
0: मतलब ये मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो मानना है वो ये है कि हर चीज़ को पहले अपने एक तराजू में आप देख लें, क्या सही क्या गलत ये आप खुद तय करें। आपके मानने चाहने वाले हमेशा आपको गाइड करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन आपको क्या करना है ये आपको खुद ही देखना पड़ेगा। उसके बाद आपको वो रिग्रेट नहीं होगा कभी, वो अफसोस नहीं होगा कि आपने क्यों सारी चीज़ें दूसरे के कहने पर लगा दी। करेक्ट
1: जी, क्या बात है, लगा आपसे बात करके।
0: मुझे भी बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच शाजिया, एंड नेक्स्ट टाइम प्लीज जब भी वक्त निकलेगा तो जरूर करिएगा संडे कॉल इन प्रोग्राम में।
1: थैंक यू सो मच।
0: तो भाई ये शाजिया थी गोंडा से, जिन्होंने फर्स्ट टाइम आज कॉल किया, और इन्होंने बड़ी अच्छी बड़ी ही प्यारी बात कही। जो एग्जाम्पल इन्होंने दिया अपनी फ्रेंड का, उस थॉट का, वो बड़ा ही अच्छा लगा कि इंसान समटाइम्स भूल जाता है, अपनी चीज़ों से काफ़ी दूर हो जाता है, और जब इस तरह दूर हो जाता है तो उसकी लाइफ में भी वो चीज़ें नज़र आने लग जाती है। चलिए फिलहाल इसी कड़ी में हम चलते हैं आगे अगले कॉलर की तरफ और देखते हैं अगली कॉल पर कौन है मौजूद। हाँ जी, हेलो।
2: हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर।
0: वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका?
2: मेरा नाम मुसना अंसारी है।
0: हाय मुसना, आप बहुत बढ़िया हैं। आपने पहले ही अच्छा बताया कि मैं बता रहा हूँ।
2: मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
0: मैं एकदम अच्छा, आपसे सेम चीज नहीं बोलूंगा, हाँ मैं अच्छा हूँ, ठीक हूँ। अभी इससे पहले सेम सवाल किया गया था, मैंने कहा मैं स्मार्ट हूँ। नहीं, आप मानते हैं, इससे पहले वाले कॉलर नहीं मान रहे थे ना, इसलिए मैंने बात ही पलट दी। सो बहुत बढ़िया मोसिना, गुजरात में अभी फिलहाल मौसम कैसा है वहाँ पे?
2: सर यहाँ पे तो गर्मी पड़ रही है, धूप भी हो रही है, बादल भी आते जाते रहते, लेकिन बारिश नहीं हो रही है फुल के।
0: बारिश
2: अगले संडे को हुई थी, जब से अभी नहीं हुई है, पूरा एक हफ्ता हो गया बारिश यहाँ पे नहीं हुई।
0: असल में जब लास्ट संडे आपने शेयर किया था कि आपके यहाँ बारिश हो रही है, तो गोंडा वालों ने इतनी कस के दुआएं की थी कि कल की बेहतरीन बारिश हुई है।
2: वहाँ चली गई।
0: हाँ, मतलब कल दिन भर बारिश हुई है और रात में इतनी जमकर जबरदस्त बारिश हुई है कि उसका ठंडापन बहुत साफ महसूस
2: हो रहा है। पानी की जो जरूरत है वो थोड़ी कम है अपने वहाँ के अकॉर्डिंग, क्योंकि वहाँ पे जो मिट्टी हमारी है वो कितनी और रेतीली है, वहाँ पे पानी की जरूरत ज्यादा है। अगर पानी नहीं होगा तो धान नहीं होगा तो हम लोग खाएंगे क्या? धान इस समय खाया जा रहा है ना, उसका सीजन चल रहा है,
0: डांट खाएंगे और क्या खाएंगे।
2: नहीं सर, डांट खाने से किसी का पेट नहीं भरता, उल्टा पेट और भी
0: खाली हो जाता है। बहुत सही बात कही कि पेट जो है खाली नहीं होता, भर जाता, मतलब भर नहीं जाता, खाली हो जाता है। सो ऑफ कोर्स आपसे भी यही चीज मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है क्या? कभी कोई थॉट आपने अपने मन में लाए हो?
2: मैं उसको थॉट तो नहीं कहूंगी, हाँ आदत जरूर कह सकती हूँ, क्योंकि मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं डीपली कि मैं क्या चेंज कर सकती हूँ, या कभी अच्छा माहौल ही नहीं रहा है हम बहनों के बीच में तो कुछ चेंज करना हो खुद में, लेकिन हाँ आदत को जरूर कह सकती हूँ। और वो एक नहीं दो है, एक इग्नोर करना और दूसरा गुस्सा कम करना, ये तो मेरी लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इनफैक्ट मैंने जब इसको खुद से कंट्रोल किया, कभी कभी होता नहीं है, लोग कहते हैं कुछ भी हो मतलब छोड़ा जा सकता है लेकिन आदत नहीं बदली जा सकती, लेकिन नहीं, अगर आप खुद अपने ये एतमाद पैदा करें कि आप कर सकते हैं, नहीं आप कर सकते हैं, जैसे यू कैन डू इट, कोई काम है, कोई चैलेंज है, उसको पूरा करना ही करना है. तो सर अपने अंदर की जो आदतें हैं उनको भी एक चैलेंज की तरह अगर आप एक्सेप्ट करें और उन पे वर्क करना शुरू करें, काम करना शुरू करें, तो बेशक कुछ दिन, कुछ हफ्ते या कुछ महीने लग सकते हैं, लेकिन आप उसको चेंज कर सकते हैं खुद में. और मैंने ये अपने आप पे आजमाया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ इस रिजल्ट से कि मेरी दोनों ही आदतें जा चुकी हैं. इनफैक्ट एग्जाम से तो नहीं खत्म हुई क्योंकि वो आदतें हैं, लेकिन इग्नोर करना तो मैंने बिल्कुल सही अपना लिया. किसी की बातों को इतना मैं डीपली नहीं लेती, देते नहीं लेती. पहले होता था, शादी से पहले मैं घर में होती थी, अम्मी या बहनें बोलती थी तो मुझे बहुत बुरा लग जाता था. फिर मेरी बड़ी अच्छी कहती थी, हाँ मुंह खुला के बैठ जाओ, कुछ देर में ठीक हो जाएगा तुम्हारा ये सूझा हुआ मुंह. लेकिन अब जो है यहाँ पे आने के बाद मैंने उन आदतों को छोड़ दिया है, गुस्सा भी कम करती हूँ और इग्नोर करना सीख लिया है. तो एक छोड़ा है और एक अपनाया है. तो
0: ओके, सो आपने एक आदत छोड़ी है और एक अपनाई है.
1: जी.
0: अरे वाह, क्या बात है. और उसका आपने बताया कि जिंदगी पर असर भी काफी ज्यादा हुआ. वाह,
2: बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट हुआ.
0: ये ऐसे ही इम्पैक्ट चलता
2: नहीं कह सकते, लेकिन हाँ आदत जरूर मैंने बदली है.
0: वाह, क्या बात है. सो ये बड़ी प्यारी बात आपने कही है और इस तरह की ये जो आदत आपने डाली है ये तो बहुत अहम है. एंड ये हमेशा यूं ही बरकरार आप रख पाएं, आपको कोई इसमें कोई दिक्कत ना आए, हम ऐसी दुआ आपके लिए ज़रूर करते हैं.
2: जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया.
0: बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मोहसिना कॉल करने के लिए.
2: जी शुक्रिया सर,
0: अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़. सो भाई ये थी मोहसिना अंसारी फ्रॉम मोरबी, गुजरात का एरिया है रहने वाली. आप गोंडा की हैं लेकिन आप चूँकि वहाँ रहती हैं और वहीं से गोंडा एफ एम को आप सुनती हैं और हर संडे आप कॉल करने की पूरी कोशिश करती हैं, जिसमें आज भी हमारी इसी कड़ी में बात हो ही रही थी. सो भाई इतनी सारी बातों के बीच में अब हम चलते हैं अगले कॉलर की तरफ और देखेंगे कि अगली कॉल किसकी है, उनके थॉट क्या हैं, उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं. क्योंकि हमने बताया ना, थॉट क्या होता है कि हमें कहीं से भी मिल जाता है. हो सकता है किसी ने कुछ कहा हो सकता हो कोई घटना हमारे आसपास ऐसी घटी हो, या हो सकता है कि हमें अचानक से ऐसा महसूस हुआ हो कि यार यहाँ पे हमें ये चीज़ सोचने पर मजबूर कर रही है, एक सवाल उठा रही हमारे काम पर. यानी हम जो कई बार सोचते हैं उस पर एक बार सवाल हम खुद ही उठा लेते हैं और हम कहते हैं कि यार ये जो हम कर रहे हैं ये मुझे खुद ही सही नहीं लग रहा है, तो दूसरे को क्या लगेगा. जाहिर है तो ये समटाइम्स होता है, इससे भी हम लोग बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे पर पड़ता है. और ये बहुत अच्छी बात है कि हम अपनी सोच को जो है वो एनालाइज करें और उस पर उसके बाद मंथन करके देखें. फिलहाल चलते हैं अगले कॉलर की तरफ और देखते हैं कौन है अगली कॉल पर. हाँ जी हेलो.
3: गुड मॉर्निंग.
0: गुड मॉर्निंग आशु जी फ्रॉम लखनऊ. बढ़िया, केम छो? आले वाह. कैसा है मौसम उधर का? ये वाला नहीं बोल पाएंगे है ना?
3: नहीं सर, मौसम तो बहुत उमस है सर. बारिश तो हुई लेकिन उस हिसाब से नहीं हुई जिस हिसाब से होनी चाहिए सर.
0: कितने किलो रहेगी, मतलब हाँ कितना रहेगी? हिसाब की बात आपने कर दी ना.
3: सर मौसम आ रहा जा रहा, हवा भी चल रही है, लेकिन सर उमस बहुत है.
0: उमस बहुत है, उमस बहुत है, बात सही है. आज भी आपके घर में वो बेना है कि नहीं जिससे हाथ से जो झलते हैं?
3: जी सर है, है सर.
0: मुझे लगता है आप कहीं पे भी रहें, कितना भी घर में फैसिलिटी हो, लेकिन अगर वो है तो इमरजेंसी में वही काम आता है.
3: बिल्कुल सर.
0: सो ये बहुत अच्छी बात है, आपका एक बार वापस से वेलकम करते हैं. सवाल आपने सुना होगा हमारा कि हम पूछ क्या रहे हैं. आप क्या बताना चाहेंगे?
3: सर मैं बस यही बताना चाहूंगी, मेरी जिंदगी में बहुत उथल पुथल हुई
0: जी,
3: बहुत सुख दुख, फिर सुख फिर दुख, फिर सर अब सुख आया, अब आ ही रहा है सर.
0: बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है
3: सर. जी सर बहुत ज्यादा सर, मैं भी बहुत ख्यालता बाहर निकलने से डरती थी, किसी से बात करने में भी मुझे डर लगता था. लेकिन जो भाई बड़ी दीदी है वहाँ एल जी एस में, जब मैं एडमिशन होना था तो मैं वहीं कह रही थी बिल्कुल नहीं कराऊंगी वहाँ पे, मेरा एडमिशन नारी ज्ञान अश्विनी में करा दो, लेकिन बड़ी बड़ी दीदी वो बोली भैया से कि इसको बाहर निकलना है, इसको ऐसी जगह कराओ कि इसका डर खत्म हो जाए।
0: डर खत्म हो जाए, वाओ क्या बात।
3: बिल्कुल सर, तो उन्हीं के कारण मैं एलबीएस में मैं पढ़ी हूँ, वहीं की पढ़ी हूँ।
0: ओके
3: बिल्कुल सर।
0: जिंदगी में
3: सर आने जाने में भी बहुत डर लगता था।
0: अच्छा,
3: पहले सर हम लोग पैदल ही आते जाते थे, कोई ना साधन कुछ नहीं, हम लोग कुछ भी नहीं लेते थे, बस कई लोग ग्रुप में रहते थे, निकल जाते थे सर।
0: बिल्कुल
3: सर,
0: बिल्कुल, मतलब
3: आप ने मेरा हौसला बढ़ाया।
0: ओके, मतलब आप कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा निकलने से घबराते थे, तो आपको आपके भैया और बड़ी दीदी ने किया ये कि जिस चीज से आपको डर लगा उसको ही करवाया जानबूझ के।
3: बिल्कुल सर।
0: तो आज कितना बदलाव देखती
3: हैं? शादी हुई तो भी साल का ज्यादा नहीं, किसी से बोलना किसी से टालना नहीं। फिर उसके बाद बच्चे, अभी अब मेरे बच्चे मेरा इतना हौसला बढ़ा दिए सर कि मैं कहीं भी जा सकती हूँ, अकेले भी जा सकती हूँ, किसी से भी बात कर सकती हूँ।
0: That's very great. क्या बात है, बहुत बढ़िया।
3: सर मेरे बच्चे ये कहते हैं मम्मा अपनी बात आप रखो।
0: बिल्कुल सही है,
3: बिल्कुल, आप क्यों डर रही हैं?
0: सही बात है,
3: बिल्कुल सर, मैं तो अकेले भी अप डाउन कर लेती हूँ सर।
0: हाँ, और आपका हौसला इतना बढ़ गया कि आप गाना भी अब गाती
3: हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, म्यूजिक में बहुत अच्छी थी सर मैं, लेकिन जब एग्जामिनर आ जाते थे
0: जी
3: लेने इंटरव्यू तो थोड़ा डर लगता था, लेकिन सर वो भी बहुत अच्छा जाता था मेरा।
0: बिल्कुल
3: बिल्कुल, राई ज्ञान श्री ने तो मेरा इतना हौसला बढ़ाया सर, इतना हौसला बढ़ाया कि मैं कुछ बता नहीं सकती। इस मंच पे लाने के लिए मैं अपनी बड़ी दीदी का शुक्रगुजार हूँ सर।
0: क्या बात है, हाँ, क्योंकि नारी ज्ञानस्थली में आपको म्यूजिक का पूरा माहौल मिला होगा।
3: बिल्कुल सर, सब कुछ बहुत अच्छी चीज, आप बातें जो बताते हैं, थॉट बताते हैं सर, बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे नारी ज्ञानस्थली से।
0: बिल्कुल
3: सर, अच्छे अच्छे लिसनर मिले। बिल्कुल सर,
0: तो चलिए एक मौका भी मिल गया है आपको, अब दो लाइन आप सुना भी दीजिए। इतना कुछ मिला, हमने कहा ये भी मिल जाए। ओके,
4: जीवन की यही है कहानी, इस जीवन की यही है कहानी, आने जाने इसकी दरिया, बस दरिया का पानी। जी सर,
0: क्या बात है, बहुत प्यारी आवाज और बहुत प्यारा अंदाज। प्लीज आप गाया करिए अपने लिए, खूब सारे गाने गाया करिए।
3: जी सर,
0: बहुत सारी दुआएं।
3: मैम का जब अंदाज खड़ी खिलाती है सर
0: जी,
3: एक मिनट का सॉन्ग कहती है, एक मिनट में आप जितना गाना गा पाए गाएं सर, लास्ट में आके बस जिता ही देती हूँ। इतना गाना होता है गा ही देती हूँ, चाहे वो कविता हो चाहे जो, पढ़ते रहो पढ़ते रहो।
0: क्या बात है, जब तक जीतेगा ना आई तब तक छोड़ेगा ना आई।
3: बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आज सर मैं ये छोटी भतीजी का बर्थडे, मैं वहाँ पे हूँ नहीं।
0: बिल्कुल,
3: आप तो बात जरूर आपसे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, एंड थैंक यू सो मच कि आपने कॉल किया और इतना प्यारा गाना भी सुनाया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो भाई, ये थी हमारी प्यारी आशु मिश्र जी फ्रॉम लखनऊ, जो कि रोज जुड़ती हैं और रोज ही विशेष के साथ साथ अपनी सारी बातें जो बयां करनी होती है वो भी आती है आपकी, और काफ़ी अच्छा लगता है कि आप भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किया करते हैं। इसके अलावा गाने का टैलेंट भाई आपने देख ही लिया है, सुन ही लिया है किस तरह से, कितनी प्यारी आवाज़ है, और ये आवाज़ आगे तक जानी चाहिए। फिलहाल आज की लास्ट कॉल एक और ले रहे हैं हम, देखते हैं कौन है कॉल पर। हाँ जी, हेलो,
5: हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग।
0: जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, अपना नाम हमारे श्रोताओं को बता दीजिए।
5: जी मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से अविनाश त्रिपुरी बोल रहा हूँ।
0: अविनाश जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत करते हैं गोंडा एफएम पर।
5: जी जी बिल्कुल, गोंडा एफएम 89.6 पे मैं भी आपको स्वागत करता हूँ कि आपने हर रविवार को इतनी बढ़िया कार्यक्रम रखा है, तो हम सभी को जुड़ने का मौका मिलता है।
0: पहले कौन किसका स्वागत करेगा, मैं बस पूछ रहा था ऐसे। कंफ्यूजन हो गई ना, आपने भी हमारा कर लिया।
5: जी जी जी,
0: वाह क्या बात है। तो अविनाश जी, आपने भी मेरा सवाल शायद सुना होगा, जहाँ तक मैं लोगों से पूछ रहा हूँ।
5: जी जी, मैंने पूरी तरह सवाल सुन लिया है और आपने सबसे ही एक ही सवाल पूछ रहे हैं, तो ये बढ़िया लग रहा है कि आज के कार्यक्रम का विषय भी तो यही है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो आप क्या बताना चाहेंगे इस विषय में?
5: जी इस विषय में मैं बोलना चाहता हूँ कि देखिए पहले हम क्या बोलते हैं जब दसवीं में पढ़ते थे तो हम मेरा खास करके लक्ष्य था कि वहाँ पर टीचिंग करने का, मतलब टीचर बनने का। तो उसके बाद उसे मैंने देखा कि टीचर के लिए मतलब कि उसके बाद फिर मेरा मन लग गया क्रिकेट के ऊपर। तो उसके बाद मैंने अपनी 12वीं की जो फाइनल एग्जाम थी वो भी क्रिकेट के खातिर मैंने एक साल के लिए मतलब कि पीछे कर दिया, क्योंकि उस वक्त 2011 का वर्ल्ड कप चल रहा था। इस वजह से मैंने वो एग्जाम भी नहीं दिया था, बोर्ड एग्जाम, और एग्जाम ना देने के कारण से मुझे एक साल मुझे मेरा नुकसान हो गया। उसके बाद मैंने सोचा चलिए अब क्रिकेट में ही हर इसी पे ही अपना लक्ष्य को बनाते हैं। उसके बाद से क्रिकेट खेलना पसंद था, उसके बाद क्रिकेट आगे चल के मुझे कॉमेंट्री करने का शौक था। और जो मैं आपको इसके बारे में बातचीत हो चुका है कई बार, तो काफी सारे लैंग्वेज में मैं कॉमेंट्री भी करता हूँ, तो इसी वजह से मेरा उसी पे रुझान था। और आप देखिए मैं किधर भी जाता हूँ तो मुझे कॉमेंटेटर के नाम से ही बुलाया जाता है।
0: वाह क्या बात है, एक पहचान हो गई आपकी कॉमेंटेटर के नाम से। वाह
5: जी जी जी बिल्कुल।
0: तो मतलब एक छोटी सी चीज, बहुत छोटा सा शौक जो है आज एक कहीं ना कहीं आपके पहचान का एक हिस्सा बन गया है। वाह
5: जी बिल्कुल बिल्कुल,
0: क्या बात।
5: और खास करके इसमें आकाशवाणी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उस टाइम पे देखिए आकाशवाणी में सुनता था विनेश गर्ग जी का कमेंट्री, उसके बाद सुशील दोषी जी का, तो उन सब उनकी जो आवाज थी उनसे मुझे प्रेरणा मिली। और उनकी जो जिस प्रकार से कमेंट्री करते थे तो मुझे इसकी आदत पड़ रही, और मैंने सोचा चलिए उनकी ही तरह मैं भी अपनी आवाज को लिखने की कोशिश करते हैं। तो काफी हद तक मुझे सफलता भी मिली, और इस वजह से देखिए अब कहीं भी मेरा पहचान कमेंटेटर के रूप में ही हो चुका है।
0: ये बड़े ही परफेक्ट एग्जांपल आपने दिया, क्योंकि मैंने कहा था कोई सोच से आपके व्यक्तित्व में और वो चीज आई व्यक्तित्व में, और व्यक्तित्व के जैसे आज आपको पहचान मिल गई है, यानी आपकी जिंदगी की लाइफ कुछ इस तरह मुड़ गई है। वाह बहुत बेहतरीन सफर आपने बताया, छोटी सी बात में आपने पूरा मुकम्मल जवाब दे दिया, क्या बात है।
5: जी जी बिल्कुल, और आपके कार्यक्रम का समय भी समाप्त होने वाला है।
0: जी बस हो ही गया है, बस मैं तो आपसे दो लाइन का ही इंतजार कर रहा था।
5: जी जी जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया,
0: बहुत
5: इस कार्यक्रम में हिस्सा मैं भी बन पाया, क्योंकि देखिए यहाँ पर कोशिश करने में हार नहीं होती। मैं कई मतलब कि 10 बजे से लगा हुआ था, लेकिन चलिए आखिर तक मुझे मौका मिल ही गया।
0: बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल
5: जी, जी।
0: धन्यवाद आपका अविनाश जी। सो भाई त्रिपुरा जैसी जगह से देखिए इतनी दूर से भी प्यार दे रहे हैं हमारे अविनाश जी, बहुत ही उम्दा शख्सियत हैं, क्योंकि ये प्यार जब इतनी दूर से मिलता है तो कहीं ना कहीं वैल्यू और भी बढ़ जाती है। और बड़ा अच्छा लगता है कि गोंडा FM की गूंज देश के कोने कोने तक जा रही है, सरहदों तक जा रही है, सरहदों के पार जा रही है। सो ये इस FM को पहुंचाने के लिए जाहिर है कि आप शुक्रगुजार तो हम हैं, आप इसके ज़िम्मेदार हैं। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हम अपनी बातों को एक ऐसे मंच पर कह पाते हैं जहां पर हम बेखौफ होकर के बिना इस डर के कि क्या जजमेंट किया जाएगा अपनी बातों को रख पाते हैं। एंड ऐसे ही हम अपने अंदर भी होते हैं, कोशिश बस यही रहती है कि हम जो अपने अंदर हैं उसका थोड़ा सा ही सही, बहुत थोड़ा सा, लेकिन वो अंश हम बाहर भी रख पाएं बहुत ही अच्छे माहौल में इस तरह से। सो इसके लिए आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप ही इसके ज़िम्मेदार हैं और ये क्रेडिट आपको ही जाता है। एंड ऑफ कोर्स आज का संडे स्पेशल शो आपको कैसा लगा ये हमको आप कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल इस प्रोग्राम से तो हम इजाज़त ले रहे हैं, क्योंकि अब वक्त हो गया है इस प्रोग्राम से इजाज़त लेने का, और साथ ही साथ वापस से एक कॉल बस लास्ट आ गई, देखते हैं कौन है कॉल पे। हाँ जी हेलो।
6: हेलो
0: हाँ, क्या नाम है आपका?
6: अरमान।
0: अरमान पीछे जो आपके साउंड स्पीकर चल रहा है उसको प्लीज आप थोड़ा स्लो कर दें।
6: जी
0: हाँ अरमान, प्लीज आप गाना सुना दे कोई बढ़िया सा, क्योंकि अभी तक उस तरह हम गाने के साथ एंडिंग नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब आपने चूंकि कॉल कर दिया तो एक गाना आप सुना दे और फिर हम एंडिंग कर दे, दो लाइन बस छोटी सी।
6: ठीक है। मैं बहुत
0: ओके
6: जय हाथ चाल गलो छोड़ के हम के नगरी भैल सुनसान हो, जाए चंदा नया वा खबरिया, जाए चंदा नया वा खबरिया, कहाँ गइल मोरे श्री राम हो ए चंदा, कहाँ गइल मोरे श्री राम हो। पुलवा के डारी पूछे सरजुजी के पनिया, बाग और बगीचा पूछे पूछे सारी दुनिया, फूलवा के डारी पूछे सरजुजी के पनिया, बाग और बगीचा पूछे पूछे सारी दुनिया, भगत सहार सब आके पूछे, भगत सहार सब आके पूछे, पूरा होई कब अरमान हो, जाए धनुमत ले आवा खबरिया, जाए हनुमत ले आवा खबरिया, कहाँ गइल मोरे श्री राम हो। जैसे जानकी जी का पता तो लगाए, लक्ष्मण मूर्छित पड़े वहाँ काम आए, जैसे जानकी जी का पता तो लगाए, लक्ष्मण मूर्छित पड़े वहाँ काम

0: हनुमत ले आवा खबरिया, कहाँ गइल मोरे सिर राम हो।
1: क्या बात है, थैंक यू सो मच अरमान, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि आपने जिस तरह से लास्ट में अरमान शब्द का इस्तेमाल कर लिया, उसमें हमें लग गया कि भाई आप यही चाहते रहते हैं। एंड फाइनली एक ऐसी एंडिंग जिसमें हमने प्रॉपर एक पूरा सॉन्ग सुना। थैंक यू सो मच टू एवरीवन, एंड वंस अगेन प्राणिका एंड ऑफकोर्स हमारे दीपक जी फ्रॉम हथियागढ़ गोंडा, आप लोगों को बर्थडे की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज का गुड मॉर्निंग गोंडा शो कैसा रहा ज़रूर बताइएगा। और फिलहाल जाते जाते ये हिट सॉन्ग वापस से आ रहे हैं।

0: हम अतुल कुमार कश्यप, आप सुनत हो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की

0: मतलब खिल गया
1: मतलब कैसे खिल गया ये तो पूछ रहे हैं।
0: अब कैसे खिलता है, मन खुश हो गया मतलब मन खिल गया।
1: वाह,
0: और सबका मन खिला हुआ, आपका नहीं?
1: मेरा,
0: आप तो बस पानी से डरते हैं ना।
1: मेरा हिला हुआ है, नॉट खिला हुआ है। ऑलराइट, सो पानी से दीदी हम डरते क्या है, थोड़ा सा जुकाम बुखार से डरते हैं, और कोई बात नहीं है।
0: नहीं, बहुत मजा आया, दो दिन तो मैं खूब बारिश में भीगी।
1: अरे है, क्या बात है। तो वो
0: छतों पर पानी बाहर, मतलब पानी निकालने के बहाने बार बार चढ़ के जाना, इतना मजा आ रहा था कि पानी में खेलने का मन कर रहा था। सब चिल्ला रहे थे, ऊपर क्या कर रही हो, अब कह रहे थे कचरा निकाल रहे नाली का। और इस बहाने खूब भीगे, खूब मजा आया।
1: वाह, हम बस वही पूछने वाले थे कि पानी निकालने के बहाने पहले बंद करके स्विमिंग पूल तो नहीं बना रही थी आप?
0: पहले तो ऐसे ही होता था।
1: हाँ, वही जानना चाह रहे थे।
0: कि हम लोग जानबूझ के नालियों में कपड़ा ठूस दिया करते थे और उसको स्विमिंग पूल बना करके, और फिर उसको खोलने के बहाने घंटों खेला करते थे। बहुत मजा आता था,
1: सच में बताइए।
0: आज के बच्चों को तो बस तुरंत ही सर्दी जुकाम ये वो लग जाता है, लेकिन हम लोग इतने ढीठ थे, कुछ भी नहीं लगता था।
1: आज भी बहुत है।
0: आज भी बहुत ढीठ।
1: बिल्कुल। सो ये यादें तो हमारे साथ, हमारे ख्याल से भाई आप लोगों की भी जरूर होंगी और याद भी आती होंगी हर बारिश में। सो दीदी, आज मानसून स्पेशल स्टोरी में क्या है?
0: बस आज तो मैंने सोचा है कि क्या ही बताऊं, मुझे किसी की कंजूसी याद आ गई, तो मैंने कंजूसी वाली स्टोरी खोज निकाली।
1: कंजूसी वाली स्टोरी।
0: कुछ लोग इतने कंजूस होते हैं कि हम लोग तो सोचते हैं कि हमारे घर हमेशा मेहमान आते रहे, हम उनकी आओ भगत करते रहे, और मतलब कोई भी खर्चे हो दिल खोल कर करें। कहते हैं कि दिल खोल कर करो तो ऊपर वाला खुद ही जो है इंतजाम कर देता है,
1: कर देता है।
0: लेकिन कुछ लोग होते हैं इतने माइजर होते हैं कि बता नहीं सकते। तो आज ही मैंने कहा कि चलो उन लोग को थोड़ा सा सबक मिले, इसलिए मैंने एक ऐसी कहानी चुनी है कि मजा आने वाला है।
1: तो चलिए निकलते हैं सबक सिखाने के लिए।
0: बिल्कुल।
1: सो भाई, आज जो कहानी होने वाली है वो होने वाली है कंजूसी के ऊपर। इसको आपको अपने ऊपर नहीं लेना है, डोंट वरी। अगर कभी ऐसी होगी ये हरकत तो आप चुपके से इस चीज को चेंज कर दीजिएगा।
0: बिल्कुल।
1: सो दीदी शुरू करें।
0: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। कि एक बहुत बड़ा गांव था और उसमें एक कंजूस बनिया रहा करता था। उसके घर में धन दौलत अनाज और किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो इतना कंजूस था कि अपने घर का भोजन करने के बजाय रोज किसी न किसी पड़ोसी के घर जाकर रोटी खा के आ जाता, कोई ना कोई बहाने बना करके उससे रोटी खाने का मौका मिल ही जाता। शुरू शुरू में तो गांव वाले उसे आदर से भोजन करा देते थे, लेकिन धीरे धीरे धीरे सभी को उसकी आदत समझ में आ गई और उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि इतना संपन्न धन धान से भरा उसका घर, वो व्यक्ति दूसरों पर बोझ बने, दूसरों के घर भोजन करने जाए। तो एक दिन पूरे गांव ने चुपचाप निश्चय कर लिया कि अब आज के बाद कोई भी उसे भोजन नहीं कराएगा। उस दिन बनिया पूरे गांव में घूमता रहा, पर किसी ने उसे रोटी नहीं दी। बेचारा भूखा प्यासा वह निराश होकर अपने घर ही लौट आया। रास्ते में उसे एक विशाल पीपल का पेड़ दिखाई दिया, जिस पर मीठे मीठे बरबट्टे, जानते हो ना उसके पीपल के जो फल होते हैं, वो लगे हुए थे। बचपन में खाए हैं कि नहीं?
1: बचपन में ही खाए थे।
0: तो भूख से व्याकुल होकर वो पीपल के पेड़ पर चढ़ के उसके बरबट्टे खाने लगा और भर पेट बरबट्टे खा गया। अब नीचे उतरने के लगा तो डर के मारे उसके हाथ पर कांपने लगे। भूख के मारे चढ़ तो गया पर अब उतर नहीं पा रहा था। उसे लगा कि कहीं गिरकर उसकी जान न चली जाए। सो उसने दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करना शुरू किया। हे प्रभु, यदि आपने मुझे सकुशल नीचे उतार दिया तो मैं आपके नाम पर 100 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। जैसे जैसे वह थोड़ा थोड़ा नीचे खिसकने लगा, उतरने लगा, तो उसका डर कम होता चला गया और उसका लालच बढ़ता चला गया। पहले उसने कहा 100 नहीं 90 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा, फिर कुछ और नीचे उतर आया तो बोला 80 ही काफी हैं। इस तरह घटते घटते संख्या 10, 5 और आखिर में 1 ब्राह्मण तक पहुंच गई। जब वह जमीन से बस

0: ही ऊपर रह गया तो उसने आंखें बंद करके छलांग लगा दी। वह सुरक्षित नीचे उतर आया। तब वह हंसकर बोला, भगवान, आपने तो मुझे वैसे ही नीचे उतार दिया, अब मैं किसी ब्राह्मण को भोजन नहीं कराऊंगा। और इतना कहकर वो अपने घर चला गया। अब हुआ क्या, संयोग से उसकी सारी बातें एक ब्राह्मण चुपचाप वहीं खड़ा होकर के सुन रहा था। वह बनिया से पहले उसके घर पहुंचा और बनिया की पत्नी से बोला, आज आपके पति ने 100 ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प ले लिया है, जल्दी से भोजन तैयार कर दीजिए। अब उसकी पत्नी ठहरी धर्मपरायण, बिना किसी संदेह के उसने भरपूर एकदम 100 ब्राह्मणों का भोजन तैयार करके और गांव के 100 ब्राह्मणों को बुला भी लिया और सबने खूब तृप्त होकर उस बनिए के घर में भोजन भी किया। जब बनिया घर पहुंचा तो पत्नी ने मुस्कुराकर कहा, आपके कहने के अनुसार मैंने 100 ब्राह्मणों को भोजन करा दिया है, वे प्रसन्न होकर वापस गए हैं। अब यह सुनते ही बनिया के होश उड़ गए। वह क्रोध में लाल होकर ब्राह्मण से झगड़ा करने उन लोगों के घर पहुंचने लगा। लेकिन वह ब्राह्मण भी कम चतुर नहीं था, उसने पहले ही अपनी पत्नी को सारी प्लानिंग समझा दी थी, सारी बात समझा दी थी कि जैसे ही बनिया वहां पहुंचे तो ब्राह्मणी रोने लगे और बोले, तुमने मेरे पति को इतना भोजन करा दिया कि वे आते ही मर गए, अब मेरे बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा। बनिया यह सुनकर घबरा गया। अब मामला बढ़ता गया, ब्राह्मणी जोर जोर से रोती रही और बनिए को कोसती रही कि तुमने मेरे पति को कौन सा ऐसा भोजन खिला दिया जो घर आते ही वो मर गए। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण की पत्नी रास्ते में बनिए की पत्नी से मिली। बनिए की पत्नी ने आश्चर्य से पूछा, अरे बहन, तुम्हारे पति तो मर गए हैं, फिर वे गाँव में कैसे घूम रहे हैं। ब्राह्मण ने हंसते हुए कहा, मैं तो स्वर्ग से अपने बच्चों का हाल देखने के लिए यहाँ वापस आया हूँ। बनिए की पत्नी की एक छोटी बेटी का कुछ समय पहले निधन भी हो गया था, जिससे वह बहुत प्रेम करती थी। उसने भावुक होकर पूछा, पंडित जी, जब आप फिर स्वर्ग जाएं, तो मेरी बेटी का भी हाल जानकर आइएगा। अगले दिन ब्राह्मण फिर आया और बोला, तुम्हारी बेटी स्वर्ग में ठीक ठाक है, लेकिन उसके पास कपड़े और धन की बहुत कमी है। उसने तुम्हारे लिए संदेश भेजा है कि कुछ सामान भेज दो। अब ममता में अंधी बनिए की पत्नी ने कपड़े, गहने और पैसे बांध कर ब्राह्मण को दे दिए और कहा, ये मेरी बेटी तक पहुंचा देना। जब बनिए को ये बात पता चली तो वह सिर पकड़कर बैठ गया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। कुछ दिन बाद ब्राह्मण फिर मिला और बोला, चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी अब सुखी है, मैंने उसे सब सामान पहुंचा दिया और वो अच्छे से घर में उसको एक अच्छे से घर में बसा भी दिया है। बनिया अपनी कंजूसी और लालच के कारण बार बार ठगा गया। उसे समझ में आ गया था कि जो व्यक्ति भगवान से किया वचन तोड़ देता है या तोड़ता है और वो दूसरों को धोखा देने की कोशिश करता है, अंत में वही सबसे बड़ा नुकसान उठाता है। तो समझ में आई इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? लालच बुरी बला है। लालच और कंजूसी मनुष्य की बुद्धि को हर ली लेते हैं।
1: बिल्कुल सही।
0: ईश्वर से किया वचन भी भूल जाता है इंसान, और जो भी ईश्वर से हमने वादा किया उसे तो निभाना ही चाहिए और दूसरों के साथ हमेशा ईमानदारी का व्यवहार भी करना चाहिए। तो कैसी लगी मेरी ये कहानी?
1: बिल्कुल। सो गीता दीदी ने जो माइजर्स यानी कंजूसी के ऊपर कहानी बताई है, वो जरा आप नीचे बैठे बैठे बता दीजिए कि आपको आज की ये कहानी कैसी लगी। क्या आप तो नहीं कहीं कंजूसी करते हैं?
0: अगर करते हैं तो होशियार हो जाइए, सुधर जाइए।
1: बिल्कुल। एंड सुजीत एस जी आ गए हैं, सुप्रभात आपको भी। और साथी दीदी ने पूछा है कि स्टोरी कैसी लगी, तो अगर आपको जाहिर है अपनी सी लगी हो और खुद को इसमें पाया हो तो आप लिख सकते हैं, यस यस आई एम देयर। सो बच्चे कहाँ हैं दीदी?
0: बस बच्चे सब आ गए हैं हमारे।
1: अरे वाह, तो चलिए भाई बच्चों को आप लेकर के थोड़ी देर में आइए, तब तक हम अपने श्रोताओं को बच्चे वाले गाने।
0: प्यारी हाँ राइम सुनाइए।
1: बिल्कुल।

UVWXYZ. Now I know my ABCs.

0: भारत पोलियो मुक्त है, लेकिन कुछ देशों में पोलियो अभी भी है। इसीलिए 28 जून 2026 को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक जरूर दें। सुनिए सीएमओ गोंडा की अपील।
1: सभी अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि 28 जून 2026 को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत 0 से 5 वर्ष तक के अपने सभी बच्चों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर पल्स पोलियो की 2 खुराक अवश्य पिलाएं। स्वस्थ बचपन की यही पहचान, पोलियो मुक्त हो हिंदुस्तान।
0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स ही फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
3: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
4: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
5: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
6: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
7: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
8: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
9: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
10: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
11: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
10: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स ही फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराल रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। अरे सुना?
2: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल, फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगर, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग। और तो और, कोर्स के आखिर में पूरे 1 हफ्ते का रोजगार मेला, यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88-40-33-95-84। अब बारी है आपकी।
3: भाई, जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: भारत पोलियो मुक्त है, लेकिन कुछ देशों में पोलियो अभी भी है। इसीलिए 28 जून 2026 को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक जरूर दें। सुनिए सीएमओ गोंडा की अपील।
3: सभी अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि 28 जून 2026 को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत 0 से 5 वर्ष तक के अपने सभी बच्चों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर पल्स पोलियो की 2 खुराक अवश्य पिलाएं। स्वस्थ बचपन की यही पहचान, पोलियो मुक्त हो हिंदुस्तान।

0: लीजिए, अंततः हम आ ही गए हम्प्टी डम्प्टी विद गीता दीदी के मंच पे, और हमारे साथ ढेर सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। आज हमारे साथ सानिध्या है, हमारे साथ अनन्या है, और हमारे साथ आराध्या है, साथ में छोटे से शशकर भी है, और बहुत सारे बच्चे हैं। लेकिन समय हो रहा है बस प्रोग्राम को शुरू करने का, क्योंकि बच्चे अपनी बारी की का इंतजार कर रहे हैं। तो किसकी तरफ चलते हैं?
1: गुड मॉर्निंग दीदी।
0: गुड मॉर्निंग।
2: गुड मॉर्निंग दीदी।
0: गुड मॉर्निंग। अरे वाह, सब आज गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, और हम तो बोलेंगे भारत माता की
3: जय।
0: तो चलो किसकी तरफ चलते हैं? सबसे छोटा छोटी छोटी अनन्या है, और हम चलते हैं अनन्या की ओर। और अनन्या आज क्या सुनाने वाली है?
4: पोयम दीदी।
0: पोयम सुनाने वाली है। कौन सी पोयम? जल्दी से सुना दो।
4: मैंने पारे गैया उसके लिए चारा पानी लाकर रखती मैया, उसे जगाकर गाकर गाती भैया बन गई पूरा गवैया।
0: ओ भैया, गाना सुनाते सुनाते गवैया बन गए। क्या थी फिर से पोयम? मेरी तो समझ में नहीं आई। क्या? मैंने पाली गैया, उसके लिए चारा पानी लाती मैया, गाय को जगाते भैया, और बन गए गवैया। तो देखो बच्चों, तुम लोग भी ऐसे ही सबको गीत सुनाया करो। एक दिन अनन्या ने जैसे कहा है ना कि भैया गवैया बन गए, ऐसे आप लोग भी गवैया बन जाओगे। तो चलते हैं, इसके बाद नंबर आता है सानिध्या का। आज सानिध्या बताने वाली कि वो क्या क्या करने वाली, क्योंकि पहले से मैं जानना चाहती हूँ, उसके पर बहुत सारा कंटेंट होता मुझे सुनाने के लिए।
5: तहानी।
0: ओ, कौन सी तहानी सुनाओगी?
5: समझ का
0: फेर। चलो तो फिर जल्दी से कहानी सुन लेते हैं सानिध्या की।
5: तो नेवला बड़ा हो गया। नेवले तो बच्चे के साथ खेलना पसंद था। एक दिन बच्चे की माँ तो बाजार जाना था, उसे बच्चे को पालने में लिटाया, और उसके पिता से उसकी देख भाल करने के लिए घर तक चली गई। पिता पालने के पास बैठ कर उसे छुड़ाने लगा, बच्चा सो गया।
0: देखा, नेवला कितना अच्छा था है ना। जो उसकी बच्ची की माँ थी, उसने नेवले को भी पाला था, उसको भी बड़ा किया था। तो नेवले को अपना कर्तव्य पता था कि उसको क्या, उसके छोटे भाई की मतलब रक्षा करनी है, और उसने उस सांप को काट कर मार कर फेंक दिया है ना। लेकिन माँ को क्या पता ये कहानी, उसने सोचा इसने मेरे बच्चे को काट लिया, तभी तो इसके मुंह में खून लगा हुआ है।
1: जी दीदी।
0: तो गुस्से में आके उन्होंने नेवले को मार दिया। तो बिना सोचे समझे काम नहीं करना चाहिए, हमेशा सोच विचार कर काम करना चाहिए है ना। पहले उनको बच्चे को देखना चाहिए था कि बच्चे को कितनी चोट लगी है, क्या हुआ है, लेकिन उन्होंने बच्चे को नहीं देखा और नेवले के ऊपर सारा गुस्सा उतार दिया। नेवला बेचारा मर गया। कैसी थी कहानी? तो ताली बजा दो भाई। भाई देखो, इतनी प्यारी कहानी सुनाई हमारी सानिध्या ने। हाँ
4: एक कहानी मेरी।
0: तुम भी, तुम्हारे पास भी एक कहानी है? ओ कौन सी कहानी है?
4: पानी वाला।
0: पानी वाला, अच्छा तो अभी सुना देना है, अभी फिर तुमसे सुनते हैं कहानी, ठीक है? ओके। अच्छा आप कविता सुनाने जा रही हो, देख लो बच्चे दूसरे का नंबर नहीं आने देते। अच्छा तो सुना ही दो कविता।
5: टिप टिप टप बरसा पानी, बारिश में है तेरी कहानी, इसमें छप छप डरते हम, जब बादल गरजे डरते हम, इन बूंदों से बीज उड़ेंगे, फसल उड़ेगी, पेड़ लगेंगे, पानी है तो सारा जीवन है, नदी तालाब बेटा यही तो धन है, हम सब मिलकर इसे बचा लेंगे,
0: तो देखा पानी बरस रहा है, इस समय क्या हो रहा है ना? देखिए कितने छोटे छोटे नन्हे नन्हे पौधे ढेर सारे निकल आए हैं ना?
1: जी दीदी।
0: और सबसे ज्यादा अच्छा कौन पानी में खेलता है? अरे वाह सारे बच्चे खेलते हैं।
1: जी दीदी।
0: मैं भी खेलती हूँ। तो कल तो खूब जोरदार झमाझम बारिश हुई थी, किन किन बच्चों ने मजा लिया है बारिश का जरा बताएं तो।
1: दीदी हाँ।
2: दीदी बस।
0: अरे वाह आदित्या ने सानिध्या ने कोई बचा नहीं, सबने हाथ ऊपर कर दिया कि हम लोगों ने खूब धमा चौकड़ी मचाई है, तो मजा आता है ना बारिश में खेलने का। लेकिन बच्चों जरा सावधानी से खेलना, नहीं तो हाँ मजा नहीं बहुत मजा आता, वास्तव में बहुत मजा आता, क्योंकि इतने दिनों बाद तो बारिश हुई, हम लोग कितना इंतजार कर रहे थे ना।
1: जी दीदी।
0: हमेशा कहते थे आज बरस दो भगवान जी, आज बरस दो भगवान जी, इतनी गर्मी क्यों कर रहे हो सूरज भगवान, थोड़ा अपनी आंख बंद कर लो, ऐसे बोलते थे ना।
1: जी दीदी।
0: तो देखिए बच्चों की जो प्रार्थना होती है वो भगवान जी सुन लेते हैं और उन्होंने ढेर सारा पानी बरसा दिया, क्योंकि बच्चे मजा करें, खेले कूदे, धमा चौकड़ी मचाएं, तो मजा आया ना पानी बरसने पे। अच्छा अभी थोड़ी देर में फिर बारिश होने वाली है।
1: जी दीदी।
0: ये बताओ कि बारिश में जब पानी बरसता है तो खाना किसको क्या क्या अच्छा लगता है, जल्दी से बताओ।
4: दीदी मुझे मैक कनारी।
0: क्या चीज?
4: मैक कनारी।
0: और आराध्या तुम्हें क्या अच्छा लगता है?
1: आलू भरा पराठा।
0: आलू, हाँ ये बात तो तुमने सही की कि गर्मा गर्म आलू भरा पराठा। और सानिध्या को क्या अच्छा लगता है? पकौड़ी। हाँ हमें मालूम था कि सानिध्या को पकौड़ी अच्छी लगती है। और शशकर तुम्हें क्या अच्छा लगता है?
3: दीदी मुझे भी पकौड़ी अच्छी लगती है।
0: अच्छा पकौड़ी भी बहुत मजेदार होती है।
1: जी दीदी।
0: जब पानी बरस रहा हो बाहर और बीच में ढेर सारी पकौड़ी रखी है और एक एक करके गर्मा

0: से पहले शुरू हुई कुछ टिप टिप बूंदा बांदी,
1: बिल्कुल सच।
0: फिर आई घनघोर गरजती बारिश के संग आंधी। मंगलू धोबी बाहर लपका, चाची भागी अंदर। गाय उठकर खड़ी हो गई, झबरू दौड़ा भीतर। राज मिस्त्री ने गारे पर ढक दी फौरन टाट, और होंदी पर औंधी कर दी टूटी फूटी खाट। हो गए चौड़म चौड़ा सारे, धूप से सूखे कपड़े। इधर उधर उठते फिरते थे, मंगलू कैसे पकड़े। चाची ने खिड़की दरवाजे बंद कर दिए सारे, पलंग के नीचे जा लेटी बिजली के डर के मारे।
1: ओ भाई, बहुत मजेदार कविता थी। इस कविता के लिए तो क्या बजाना है?
2: ताली।
1: तो भाई, बहुत सुंदर कविता सुनाई है हमारे छोटे से शेषकर ने, और अब चलते हैं हम आराध्या की ओर। आराध्या क्या सुनाने वाली है आज?
2: कहानी है दीदी।
1: कहानी है
2: जी दीदी।
1: तो भाई कहानी सुना दो, सब दीदी की तरह कहानीकार ही बनना चाहते हैं। कोई बात नहीं, सुना दीजिए।
2: एक समय की बात है, एक शेर और एक चूहा जंगल में रहता था।
1: अच्छा।
2: एक दिन शेर सो रहा था, चूहे उसके ऊपर खेलने लगा। शेर जग गया, शेर जग गया और चूहे को पकड़ लिया
1: गुस्से से।
2: जी दीदी। और चूहे ने माफी की, भिखारी मांगी। शेर तुरंत छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद शेर एक जाल में फंस गया, चूहा ने अपने दांतों से जाल को काट दिया। शेर आजाद हो गया, उसने चूहे को धन्यवाद किया। अच्छा करो तो अच्छा पाओ।
1: हाँ, तो जो अच्छा करेगा उसको अच्छा, अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है। तो देखो, इतना छोटा सा चूहा था ना
2: जी दीदी,
1: और कूद रहा था, उसकी नींद भी खराब कर दी। शेर को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने गुस्से को संभाल लिया, गुस्से पे काबू पाया और चूहे को छोड़ दिया, और उसका बदला चूहे ने जाल में फंसे हुए शेर को बचा करके किया। उसका जाल, उसने चार जो उसके टीथ थे उनसे कुतर कुतर के जाल को पूरा काट दिया और शेर को आजाद कर दिया। हाँ, सच में चूहा बहुत ही पाजी बदमाश होता है, जो हम लोग के कपड़े भी कुतर डालता है। तो ये चूहे आ कहाँ से जाते हैं?
2: पता नहीं दीदी।
1: हाँ, कहाँ से आते हैं? चूहों का भी घर होता है, अपने घर से हमारे घर में क्यों आते हैं? चूहों को अपने घर में रहना चाहिए, दूसरों के घर में आ करके दूसरों की चीजों को कुतर डालते हैं, ये गंदी बात है। चूहों से कहना पड़ेगा, है ना? तो आप चलते हैं, किसकी तरफ चलें भाई, किसकी तरफ? ओहो, फिर से सुनाना है कुछ क्या? पोयम, तो जल्दी से सुना दो पोयम।
3: पानी बरसा थम थम थम,
1: ओहो
3: था लड़का निकले हम, पहाड़ पे चल गया गिर गया हम, ऊपर छाता नीचे।
1: वाह, ऊपर छाता नीचे हम। तो भाई बरसात में तो छाता लेके निकलना पड़ता है, पर संभल के पैर भी रखना पड़ता है, क्योंकि फिसलन हो जाती है और बच्चे सबसे पहले गिरते हैं, क्योंकि वो तो बहुत छोटे होते हैं ना, संभल नहीं पाते हैं। अब किसकी ओर चलते हैं हम? शेषकर की ओर। शेषकर फिर कुछ सुनाने वाला है। शेषकर आप क्या सुनाओगे?
0: दीदी आज मैं एक स्टोरी भी सुनाने वाला हूँ।
1: अरे वाह, तो चलो शेषकर की स्टोरी सुनते हैं।
0: एक बहुत ही प्रतिभाशाली और बुद्धिमान छात्र था जिसका नाम राघव था। वह पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी एक बहुत बुरी आदत थी। वह हर रोज काम को कल पर टाल देता था। एक बार स्कूल में एक बड़ी विज्ञान प्रतियोगिता की घोषणा हुई, जीतने वाले को शहर के सबसे बड़े कॉलेज में मुफ्त दाखिला और छात्रवृत्ति मिलने वाली थी।
1: अच्छा।
0: राघव बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि वह सबसे अच्छा मॉडल बना सकता है। प्रतियोगिता के लिए पूरे एक महीने का समय दिया गया था। राघव ने सोचा
1: करने के लिए।
0: जी दीदी, राघव ने सोचा अभी तो बहुत समय है, मैं अगले हफ्ते से काम शुरू करूंगा। अगला हफ्ता आया तो उसने सोचा अभी भी 15 दिन बाकी हैं, 2 दिन में मॉडल तैयार हो जाएगा। इसी तरह टाल मटोल करते करते प्रतियोगिता की आखिरी रात आ गई। राघव ने हड़बड़ी

0: घड़ी में रात को जाग कर जैसे तैसे अपना मॉडल पूरा किया, लेकिन जल्दबाजी के कारण मॉडल में कई कमियां रह गईं और वह ठीक से काम नहीं कर रहा था। अगले दिन प्रतियोगिता में राघव का मॉडल जजों के सामने चलते चलते बंद हो गया। वहीं उसके दोस्त ने पूरे महीने मेहनत करके एक बेहतरीन मॉडल बनाया और पहला पुरस्कार जीत लिया। राघव को अपनी लापरवाही और समय गंवाने का पर बहुत पछतावा हुआ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो व्यक्ति आज का काम आज कल पर टाल देता है, उसे भविष्य में केवल असफलता और पछतावा ही मिलता
1: तो
0: है।
1: कहा भी है, काल करे सो आज करे सो अब। अब पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब, ये किसने कहा है? देखो इसमें क्या कि जो कल का काम है वो परसों करोगे, आज का काम कल करोगे, तो फिर समय तो हाथ से निकलता हुआ चला जाएगा और दोबारा लौट के नहीं आएगा। तो काम को तुरंत के तुरंत करना चाहिए, जब जरूरत पड़े तो फट से कर लेना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए। आलस करने से सारे काम बिगड़ जाते हैं। तो आलस, सानिध्या, आलस करना चाहिए?
2: नहीं दीदी।
1: हाँ, अब क्या सुनाने वाली हो सानिध्या? फिर पोयम। चलो अच्छा, फिर से मजा लेते हैं पोयम का। तो देखा बच्चों, स्कूल तो खुल गया है और स्कूल जाना भी पड़ेगा, है ना? लेकिन अभी तक जब तक स्कूल बंद था तो हम लोगों ने खूब घूमा, कितने घुमाई करी है ना, कभी नानी के घर गए, कभी मामा के घर गए, कभी बुआ जी के घर गए, खूब घूमे और कभी कभी तो पहाड़ों पर भी घूमने गए। लेकिन साथ ही साथ दिमाग में क्या चल रहा था, स्कूल रीओपन से होगा, फिर से हम अपने दोस्तों से मिलेंगे, फिर से हम अच्छे अच्छे नई नई ड्रेसेस आएगी, नए नए बैग्स आएंगे और नई नई बॉटल आएगी, और उसके बाद फिर स्कूल में हमारी प्यारी जो मैम है, हमारे प्यारे जो सर हैं, वो हमको मिलेंगे और ढेर सारा प्यार देंगे, साथ में ज्ञान भी मिलेगा। तो कितनी अच्छी पोयम सुनाई है सानिध्या ने। सानिध्या, आपकी पोयम तो बहुत प्यारी थी और बहुत ही, मतलब आज के समय में सच्ची बात तो यही है ना बच्चों?
0: जी दीदी।
1: कि स्कूल को नहीं भूलना है, सब जगह जाना है, आना है, एंजॉय करना, लेकिन हमको अपने स्कूल को हमेशा
0: याद
1: रखना है। तो ताली बजती है कि नहीं? वाह, बहुत प्यारी पोयम थी। तो इतनी सारी हमने बातें करी आप लोगों के साथ, इतनी सारी पोयम सुनी, इतनी सारी स्टोरी सुनी। तो अब क्या बनता है, एक छोटा सा
2: ब्रेक
1: बनता है। तो चलो चलते हैं ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद फिर आपसे ढेर सारी बातें करते हैं, ढेर सारी कहानियां सुनते हैं, ढेर सारी किस्से सुनते हैं, और उसके बाद फिर वापस मिलते हैं।

संजू, हे बिच्चू, हे मुन्नी, तुम भी गाओ। ऐसे नहीं, बोलो में गाओ।

एक बार फिर से हम हाजिर हैं अपने नन्हे मुन्ने शैतान टोली के साथ। अब हमारे साथ कुछ बड़े बच्चे भी जुड़ गए हैं, लेकिन इनके प्रोग्राम से पहले अभी एक बार फिर सानिध्या जो है एक प्यारी सी क्या सुनाने वाली हो सानिध्या? प्रार्थना करने वाली है, तो चलो शुरू करते हैं।

0: प्रभु, गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम, हाँ इतना बने महान गगन को छू ले हम।
1: वेरी गुड, वेरी गुड, जरा सा तालियां बजाओ भाई। इतनी अच्छी सी प्रार्थना आती है इसको, इतनी प्यारी बच्ची है ये कि बहुत, मतलब देखो कितनी सुंदर प्रार्थना ये ढूंढ करके लाई है आप लोगों के लिए कि हमेशा ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए, है ना
2: जी दीदी?
1: हाँ, कोई काम से पहले, काम करने से पहले हमेशा ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। चलो तो फिर हम भी आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हम तन्मय की ओर और देखते हैं आज तन्मय क्या सुनाने वाले हैं।
2: दीदी आज हम स्टोरी सुनाने वाले हैं।
1: अच्छा
2: जी दीदी, जिस स्टोरी का नाम है जादुई पौधा।
1: जादुई पौधा?
2: जी दीदी।
1: तो जल्दी से सुना दो।
2: एक बिच्छू अपने परिवार के साथ पहाड़ों में रहता था। एक दिन वह धूप सेकने एक पत्थर पर बड़े आराम से बैठ गया। तभी उसकी नजर पास उगी झाड़ियों की तरफ गई। उन झाड़ियों में तरह तरह के रंग बिरंगे सुंदर फूल देखकर उसने सोचा, क्यों ना आज बच्चों के लिए इन फूलों को तोड़कर ले जाऊं, बच्चे बहुत खुश होंगे। अभी वह यह सोच ही रहा था कि अचानक उसके कानों में एक आवाज आई, अरे वाह मिल गया यह जादुई पौधा, रुको रुको कोई देख ना ले, संभल कर तोड़ना। बिच्छू ने मुड़कर देखा तो लोमड़ियों आपस में कुछ सलाह मशवरा कर रही थी। बिच्छू समझ गया कि ये लोमड़ियां इन्हीं फूल पौधों की बात कर रही हैं। उसी वक्त बिच्छू पत्थर के नीचे से छुपकर देखने लगा कि आगे लोमड़ियां क्या करती हैं। तभी एक लोमड़ी अपनी साथी से बोली, बस अब यह पौधा हाथ आ ही गया है, अब मजा चखाऊंगी जंगल में सबको, सारी शक्ति मेरे हाथ में आ गई, शेर की जगह अब मैं जंगल की रानी कहलाऊंगी। इसके बाद हंसती हुई लोमड़ी फूलों का पौधा तोड़कर जंगल की तरफ भाग गई। अब बिच्छू ने सोचा, क्यों ना मैं भी यही पौधा तोड़कर ले जाऊं और अपने साथियों में राजा कहलाऊं। यह सोचते हुए बिच्छू भी उस पौधे की तरफ बढ़ा और बोला, आजा मेरे जादुई पौधे, तू बना दे मुझको भी शेर। जैसे ही उसने पौधा तोड़ा कि कटीली झाड़ियों में उसका मुंह फंस गया और उसके कांटे उसके पूरे शरीर में घुस गए। कुछ देर बाद वह तड़प तड़प कर वहीं मर गया। यह सारा नजारा वहां पास बैठी एक मधुमक्खी देख रही थी। वह अपने साथी से बोली, देखा तुमने दूसरों की बातों में आने का अंजाम। इस बेचारे बिच्छू ने सोचे समझे उन चालाक लोमड़ियों की बातों पर विश्वास कर लिया। अरे भाई कौन धरती पर राजा कहलाएगा और कौन रंक, यह सब तो ईश्वर तय करता है या फिर सदगुण। जड़ी बूटियों के पास रखकर भी क्या कोई अमीर बुद्धिमान या भाग्यशाली बना है? साथ ही मधुमक्खी ने जवाब दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बिना सोचे समझे विचार किए लोगों की बातों में आना दुख को बुलाना।
1: हाँ, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। तो चलो चलते हैं हम अतुल की ओर, और अतुल आज कुछ क्या सुन, काफी दिनों बाद आए हैं आप अतुल जी, जी कहाँ थे?
3: गांव पर था।
1: ओ गांव चले गए थे, नानी के घर? हाँ
3: जी। नहीं
1: तो सारे बच्चे अब वापस आ रहे हैं क्योंकि स्कूल रीओपेंस हो चुके हैं, कोई नानी के घर से, कोई मामी के घर से, कोई बुआ जी के घर से। तो चलो अभी हमारे अतुल जी वापस आ गए, क्या सुनाएंगे आज आप?
3: दीदी आज विश्व जनसंख्या दिवस।
1: ये तो कल था
3: जी दीदी, तो आज इसके बारे में आज हम।
1: ओ चलिए कोई बात नहीं, तो जनसंख्या एक ऐसा विषय है कि चाहे जब इस पे बात की जाए।
3: जी दीदी।
1: हाँ,
3: हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने की थी
1: जी।
3: इस दिन का उद्देश्य बढ़ती जनसंख्या और उससे जुड़े मुद्दों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। आज दुनिया की आबादी 8 अरब से अधिक हो चुकी है। बढ़ती जनसंख्या का असर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, खाद्य सुरक्षा, जल और पर्यावरण जैसे कई क्षेत्रों पर पड़ता है जी दीदी। अगर जनसंख्या के साथ संसाधनों का सही संतुलन न हो तो कई सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां सामने आती हैं। विश्व जनसंख्या दिवस हमें यह संदेश देता है कि छोटा परिवार, स्वस्थ परिवार और परिवार नियोजन महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता तथा जिम्मेदारी नागरिकता एक बेहतर भविष्य की नींव है। भारत दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देशों में शामिल है
1: जी।
3: इसलिए हम सभी की जिम्मेदारी है कि शिक्षा को बढ़ावा दें, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें और समाज में जनसंख्या से जुड़े विषयों पर सही जानकारी साझा करें। आइए इस विश्व जनसंख्या दिवस पर हम यह संकल्प लें कि जागरूकता फैलाएंगे, संसाधनों का सोच समझकर उपयोग करेंगे और एक स्वस्थ, शिक्षित तथा संतुलित समाज
1: की स्थापना करेंगे।
3: स्थापना करेंगे।
1: तो देखिए भाई बच्चों, क्या होता है ना कि कुछ लोगों की सोच ऐसी होती है कि परिवार में जितने सदस्य होंगे उतना ही अच्छा होगा, उतने ही जितने हाथ होंगे उतना ही कमाई के साधन बन जाएंगे। पर ये तो धारणा मेरी समझ से परे, क्योंकि जितने कम लोग होंगे उतने ही उनको संसाधन ज्यादा मिलेंगे, चाहे वो पढ़ाई का विषय हो, चाहे वो पर्यावरण का ही विषय हो, चाहे जितने भी हमारे ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनका विषय हो। तो कम लोग होंगे तो ये साधन जो है ज्यादा मिलेंगे, और ज्यादा लोग होंगे तो देखिए वही चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, कम कम मिलेंगी। तो हम बच्चों का ये फर्ज है कि ये जो धारणा है कि ज्यादा परिवार होगा, बड़ा परिवार होगा, वही खुशहाल परिवार होगा, उसमें ज्यादा इनकम होगी, तो ये भ्रांतियां जो है कौन दूर करेगा? हम और आप।
2: जी दीदी।
1: तो सबको समझाने का काम जितना अच्छा हम बच्चे कर सकते हैं उतना अच्छा और कोई नहीं कर सकता है। तो आज लोग अपने आस पड़ोस में जो भी शिक्षित वर्ग नहीं है और वो इन बातों पे विश्वास रखता है, तो उसका विश्वास कैसे बताना है उसको कि दो बच्चे सबसे अच्छे।
2: जी दीदी।
1: तो चलिए चलते हैं हम ऋषभ की ओर। और ऋषभ क्या सुनाओगे आज?
4: दीदी कहानी।
1: कितनी कहानी, कितनी कहानी। अरे कभी कोई गीत भी सुना दिया करो, हमारे तो कान कहानी सुनते सुनते जो है बिल्कुल बड़े हो रहे हैं। चलो जल्दी से सुना दो।
4: एक गांव में रमेश नाम का एक गरीब लेकिन दयालु किसान रहता था। वह हमेशा लोगों की मदद करता था। एक दिन उसे रास्ते में एक घायल बूढ़ा व्यक्ति मिला। रमेश उसे अपने घर ले गया, उसकी मरहम पट्टी की, खाना खिलाया और ठीक होने तक उसकी सेवा की। कुछ दिन बाद वह बूढ़ा व्यक्ति चला गया। जाते समय उसने रमेश को धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारी भलाई का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। कुछ महीनों बाद रमेश की फसल बाढ़ में बर्बाद हो गई। वह बहुत परेशान था। तभी गांव में एक अधिकारी आया। वह वही बूढ़ा व्यक्ति था जिसकी रमेश ने मदद की थी। उसने रमेश की ईमानदारी और दयालुता को याद रखा था। उसने सरकारी योजना के तहत रमेश को बीज, खाद और आर्थिक सहायता दिलवाई। अगले साल रमेश की फसल बहुत अच्छी हुई और उसने अपना जीवन खुशहाली से बिताया। सीख, कर भला तो हो भला।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी कहानी थी, बहुत ही मोटिवेशनल थी कि हम अच्छे कर्म करें वो फिर से लौट करके हमारे तक पहुंच ही जाते हैं। तो चलिए चलते हैं हम समर की ओर। और समर जी आज क्या बताने वाले हैं आप?
5: आज कल रात से ही बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
5: कल नहीं पता नहीं, मुझे तो याद भी नहीं है कि लास्ट बार सूरज की बिल्कुल चिलचिलाती धूप हमने कब देखी थी। हमको तो लगता है 3-4 दिन पहले हम लोगों ने देखी होगी। बिल्कुल
1: बहुत तेज वाली। हाँ बिल्कुल सही बात
5: है। बहुत सारे लोग कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि समर तो इस बार कह रहा था कि भारत में एल नीनो है
2: सुपर एल नीनो की
5: बात हो रही थी। समर भी कह रहा था तो ये इतनी सारी बारिश क्यों हो रही है? तो मैं बताऊँ की एल नीनो कोई बारिश को टालने वाला फिनोमेना नहीं है, वो बस बारिश की मात्रा को कम
1: या ज्यादा करने वाला है। तो किन्हीं क्षेत्रों में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और कहीं तो बिल्कुल नहीं हो रही है।
5: बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जैसे एल नीनो की वजह से सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज और जो है राजस्थान जैसे प्रदेशों में बहुत ज्यादा बारिश हुई, जबकि मेघालय, चेरापूंजी यहाँ सब पे कम बारिश देखने को मिली।
1: जहाँ ज्यादा होती थी इस बार वहाँ कम हो रही
4: है। वेदर उल्टा कर दिया।
1: उल्टा हो
5: बस वो थोड़ा सा अंतर होता है, बस इसीलिए इसको कहते
1: हैं एल नीनो। हाँ तो ऐसे ही कुछ हमारे गोंडा के साथ भी हो रहा है कि इतना सूखा, अभी तक तो किसान भी परेशान हो रहे थे कि बारिश नहीं हो रही है, किस तरीके से हमारी खेती होगी। तो अब थोड़ी सी बारिश हुई है तो खुशी की लहर दौड़ पड़ी है और किसानों ने मन बना लिया है।
6: लगभग 113 mm
5: बिल्कुल बहुत अच्छी बारिश हुई,
1: है तो अब धान की खेती जो है
6: 113 mm की बारिश
5: सटीक समय पर हुई और ऐसी बारिश होनी ही
1: चाहिए।
5: तो मैं सोच रहा था कल कि हम लोग जब छोटे थे तो पहले ऐसे ही बारिश होती थी तो हम लोग हर शाम को या फिर हर सुबह जाते थे छत पे और रेनबो देखने की कोशिश करते थे कि रेनबो निकला। और
1: रेनबो तो एक बहाना होता था कि छत पे जाके देखेंगे, एक बहाना ये होता था कि ऊपर जाकर के धमा चौकड़ी मचाना पानी में और मैंने तो कल भी मचाई, बहुत मजा आ रहा था कि छतों पे भरे हुए पानी में कूदना, हल्का हल्का थपकी देना और
5: वो बिल्कुल चरम सुखान है वो आप कह सकती है।
1: बिल्कुल।
5: तो जो है हम लोग देखते थे छोटे से थे कि रेनबो बनता है, तो हम लोग जब छोटे थे तो रेनबो के बारे में बहुत सारी मिथ सुनते थे, बहुत सारी अफवाहें सुनते थे। अब जब हम लोग बड़े हुए, जब हम लोग को पता चला कि रेनबो बनता क्यों है, तो पता चले कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। रेनबो तो एक नेचुरल फेनोमेना है, इसमें तो फिजिक्स है और ऑप्टिक्स है। तो अब मैं सोचता हूँ कि हमारे जो प्रोग्राम है ये वाला, तो इसको बहुत सारे छोटे बच्चे सुनते हैं तो वो उन मिथ से दूर हों और साइंस की तरफ जाए, इसलिए मैंने सोचा कि आज रेनबो के बारे में बात करते हैं। क्योंकि रेनबो जो है बहुत क्यूरियोसिटी का विषय रहता है हर बच्चे के दिमाग में।
1: बिल्कुल।
5: ये आसमान में कहाँ से इतना बड़ा सा ये धनु जैसा आ गया?
1: नहीं, और हम लोग को तो ये बहला भी दिया जाता, पूछते थे ये कैसे हो जाता, इतने सारे इसमें कलर्स कहाँ से आ जाते, तो कहते थे ये इंद्र भगवान ने निकाला है, इसलिए इसको कहते इंद्रधनुष।
5: ऐसा कुछ। तो वही सारे मिथ्स को हम आज तोड़ने वाले हैं। सबसे पहली बात
6: देखिए, इन चीजों को देखने के लिए दो वेज होते हैं। पहला तो आप स्पिरिचुअली देखें तो वैसे कहा जाता है, हमारे धर्म है, जो हमारा धर्म है उसमें कहा जाता है कि इंद्र भगवान इसे कंट्रोल करते हैं।
1: हाँ।
6: बिल्कुल, वर्षा के मतलब जो पूरा वेदर है उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, लेकिन इसका दूसरा वे साइंटिफिक वे, और साइंटिफिक वे क्या है वो अभी हम समर से जानेंगे।
5: तो आपने हमेशा ऑब्जर्व किया होगा कि कभी भी रेनबो दोपहर में नहीं दिखता, या तो वो सुबह सुबह दिखता है
1: या शाम को,
5: और या तो वो शाम को दिखता है। इसका रीजन ये है कि रेनबो में तीन मेन चीजें यूज होती हैं पानी की बूंदों से। एक तो यूज होता है, अभी तो हम थोड़ा बहुत टफ वर्ड्स की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप 2-3 मिनट साथ रहेंगे तो बिल्कुल आप समझ जाएंगे क्या होता है। सबसे पहली चीज होती है रिफ्रैक्शन, यानी कि अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन। वही फेनोमेना है जब हम पानी में पेंसिल डालते हैं तो उनको पेंसिल थोड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, लेकिन वो वास्तविकता में टेढ़ी नहीं हो जाती है, बस
6: वो थोड़ी सी चौड़ी भी हो जाती है,
1: थोड़ी बड़ी सी। हाँ। हाँ,
5: जी। दूसरा होता है डिस्पर्जन, यानी कि जब हम प्रिज्म से कोई व्हाइट लाइट गुजारते हैं तो अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट्स में बदल जाती है। तीसरा होता है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, जब किसी पानी की बूंद या फिर किसी लेंस पे उसके क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल की लाइट जाती है तो वो वापस घूम के आने लगती है। मतलब ऐसा है कि पानी भी कभी कभी लाइट को रिफ्लेक्ट करने लगता है, कभी कभी पानी पे जब लाइट पड़ती है तो वो भी लाइट को बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करने लगता है।
1: बिल्कुल। हाँ, हाँ।
5: देखते होंगे। अब हम सोचते हैं कि बनता क्यों है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बादल होता है वो नीचे जब ऊपर रहता है और सन जब नीचे आता है शाम को या फिर सुबह, तो बादल और सन के बीच में 45 से 42 डिग्री का एंगल बनना चाहिए।
1: हाँ।
5: तभी रेनबो को दिखाई देगा। अब जब 45 या फिर 42 की रेज डिग्री की रेज बादल में जाती हैं, तो वो डिस्पर्स हो जाती है, जैसे प्रिज्म में कोई व्हाइट लाइट जाती है तो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है, तो वो पूरा 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। अब ये तो हमको समझ में आया कि 7 कलर का क्यों होता है रेनबो, सुबह और शाम क्यों दिखता है। अब ये गोल क्यों होता है, थोड़ा कर्व क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे वेवलेंथ की जो है किरणें होती हैं। जैसे जो उसमें रेड कलर होता है वो सबसे ज्यादा चमकता है, हमने ऑब्जर्व किया होगा, वो 42 डिग्री के 42 डिग्री के एंगल पे बनता है। और जो वायलेट यानी कि बैगनी होता है वो हमको सबसे कम दिखता है, बहुत ध्यान लगाने पे दिखता है, वो 40 डिग्री पे बनता है, यानी कि 40 डिग्री पे बनता है। तो इसलिए जब कलर ऊपर से नीचे आते हैं तो उनका सिर्फ एक ही तरीका है ऐसे चीजों को रिप्रेजेंट करने का कि रेनबो कर्व हो, तभी ये सारी चीजें रिप्रेजेंट हो सकती हैं, स्ट्रेट लाइन में ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा रीजन ये भी है कि कि हमारी धरती भी गोल है, तो अगर स्ट्रेट लाइन भी होगी तो हमको नहीं दिखाई देगी, वो कर्व ही दिखाई देगी। तीसरी बात यह है कि रेनबो हमें सेमी सर्कल ही क्यों दिखता है, ऐसा नहीं है, रेनबो हमें सेमी सर्कल दिखता है पर रेनबो
6: असल में पूरा सर्कल होता है,
5: वो होल सर्कल होता है।
6: अगर आप कभी माउंटेन्स पे जाएं तो वहां पर अगर आपको कभी रेनबो विटनेस करने का मौका मिले तो आप देखिएगा वो पूरा
1: गोल होगा।
5: बहुत बड़े माउंटेन्स पे जाएं और नीचे रेनबो बने तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, ये बहुत रेयर है। और या फिर आप किसी फ्लाइट में सफर कर रहे हो
1: तो भी हो सकता है।
5: और
1: चलिए बहुत अच्छी जानकारी दी है और चलते हैं हम यश की ओर, और यश देखते हैं आज क्या बताने वाले हैं।
6: सोचिए ऐसा समय कि आपका जो नाम है बिना आप स्पेस में गए आपका नाम स्पेस में चला जाए। आप ना स्पेस में जाए बस आपका नाम
1: ये भी बड़ी बात होगी,
6: बहुत बड़ी बात है। आज हम बात करने वाले हैं नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप जो कि नासा के द्वारा लॉन्च किया जाने वाला है 30 अगस्त को। आज मैं नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। यह नासा का एक एडवांस स्पेस टेलीस्कोप है जो भविष्य में अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में रिवॉल्यूशनरी खोजें करने वाला है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है डार्क एनर्जी, डार्क मैटर और एक्सोप्लैनेट्स खोजना। एक्सोप्लैनेट्स ऐसे प्लैनेट्स जो कि अलग अलग स्टार्स जो होते हैं हमारे यूनिवर्स में, उसके जो स्टार सिस्टम्स होते हैं उसमें जो प्लैनेट्स होते हैं उन्हें एक्सोप्लैनेट्स कहते हैं। और उन्हीं एक्सोप्लैनेट्स को मतलब 1 मिलियन से 2 मिलियन या कुछ बिलियंस में भी एक्सोप्लैनेट्स ये जो टेलीस्कोप है ये खोजने वाला है। और हो सकता है उन मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ जो हमारे जो एक्सोप्लैनेट्स हम खोजेंगे, हो सकता है कुछ एक्सोप्लैनेट्स उसमें ऐसे हों जो कि अप्रॉक्सीमेटली उसी तरह हो जैसे हमारी अर्थ है, मतलब वो लाइफ हैबिटेबल हो, वहाँ पर लाइफ हो सकती है, सस्टेन हो सकती है। और क्या पता कभी हमें कोई प्रूफ मिल जाए किसी एंशियंट एलियन सिविलाइजेशन का, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना हो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कोई सिविलाइजेशन का कोई प्रूफ मिल जाए, तो यही नासा करना चाहता है। इस पावरफुल टेलीस्कोप का नाम डॉक्टर नैन्सी ग्रेस रोमन के सम्मान में रखा गया है। वे नासा की पहली चीफ ऑफ एस्ट्रोनॉमी थी और उन्हें मदर ऑफ हबल स्पेस टेलीस्कोप भी कहा जाता है। अंतरिक्ष अनुसंधान में उनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन को सम्मान देने के लिए वर्ष 2020 में इस मिशन का नाम उनके नाम पर रखा गया था। इस मिशन की योजना कई वर्ष पहले बनाई गई थी, पहले इसका नाम डब्ल्यू फर्स्ट था यानी कि वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप। वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने कई वर्षों तक इसकी डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग और असेंबली पर कार्य किया। इस मॉडर्न स्पेस टेलीस्कोप का लॉन्च वर्ष 2026 में स्पेसएक्स फाल्कन हैवी रॉकेट द्वारा कैनेडी स्पेस सेंटर जो कि मोस्ट फेमस स्पेस सेंटर है एंड लॉन्च साइट है यूएसए में, वहां से इसको लॉन्च किया जाएगा, फ्लोरिडा में है ये। इसके बाद यह पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर जाएगा।
1: 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर,
6: बिल्कुल 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर सन अर्थ के बीच में L2 लैग्रेंज पॉइंट जो है वहां पर स्थापित होगा, वहीं से ये जो इमेजेस है वो कैप्चर करेगा।
1: तो वहां तक हमारा नाम जो है,
6: बिल्कुल ऐसा अभी मैं आगे बताता हूँ इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। वहां से बिना किसी बाधा के अंतरिक्ष का पूरा अध्ययन कर सकेगा। अब इसके फीचर्स की बात करते हैं। इस टेलीस्कोप में 2.4 मीटर प्राइमरी मिरर लगा है जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है उसके समान आकार का ही है। इसमें एक वाइड फील्ड इंस्ट्रूमेंट है जो एक बार में हबल स्पेस टेलीस्कोप की तुलना में लगभग 100 times लार्जर इमेज एक बार में कैप्चर कर सकता है।
1: वाओ,
6: बिल्कुल कि देखिए
1: ये तो बहुत बड़ी बात,
6: बहुत ये बहुत मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी बात है। जो तारों की तेज रोशनी, देखिए इसमें एक इसके अलावा एक कोरोना ग्राफ इंस्ट्रूमेंट भी लगा हुआ है। कोरोना का मतलब हम सभी जानते हैं, दो चीजें होती हैं, एक कोरोना वायरस जो था, दूसरा है जो भी जैसे मान लीजिए हमारा जो सन है, सन का जो आउटर एटमोसफेयर है, कोई भी स्टार है जो उसका आउटर एटमोसफेयर है उसे कोरोना ही कहते हैं। और ये कोरोना जो ग्राफ इंस्ट्रूमेंट इसमें लगा है ये क्या करेगा, ये दूसरे जो तारे हैं उनकी रोशनी को रोकेगा, रिस्ट्रिक्ट करेगा एंड उसके आसपास के एक्सोप्लैनेट्स को भी देख पाने में हमारी बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। जैसे कैमरा में होता है एक्सपोजर, हमने देखा होगा जब भी आप कैमरा खोलेंगे और उस पर एक कहीं भी पूरे स्क्रीन में क्लिक करेंगी तो आप अपने हिसाब से ब्राइटनेस या एक्सपोजर को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकती हैं। तो वैसे ही इसमें भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट हम कह सकते हैं लगा हुआ है। इसके मेन कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जैसे इसकी डार्क एनर्जी का रहस्य को समझना, दूसरा डार्क मैटर का अध्ययन करना, तीसरा नए एक्सोप्लैनेट्स की खोज करना, चौथा ब्रह्मांड के निर्माण और उसके एवोल्यूशन को समझना। ये मिशन आने वाले वर्षों में अंतरिक्ष विज्ञान में कई हिस्टोरिक डिस्कवरीज कर सकता है। एंड हम चलते हैं अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की ओर, सेंड योर नेम जो मिशन है उसके बारे में। देखिए आज रात तक का ही समय है हमारे पास, 12 जुलाई आज रात मिडनाइट तक 12 जो एएम रहेगा वहीं तक आपके पास ये समय है। आप एक गूगल पे एक वेबसाइट है सेंड योर नेम विथ जो नैन्सी ग्रेस रोमन रोमन है, आप बस उसको इतना सर्च करिए सेंड योर नेम विथ नैन्सी ग्रेस रोमन, आपको ये सर्च करना है। आपके पास एक नासा की ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी, उसको खोलना है एंड आपको बस अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो कि आपका सरनेम ही है एंड अपनी ईमेल आईडी जो कि मतलब ईमेल जो भी जीमेल है आपका वो आपको बस रख देना है। 30 सेकंड लगने वाले हैं, सबमिट करना है देन फिर उसके बाद आपके सामने आपको एक बोर्डिंग पास डिजिटल स्मार्ट बोर्डिंग पास आपको देखने
1: को मिल जाएगा। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी जितने भी हमारे लिसनर्स हैं जितने भी बच्चे हैं अगर वो अपना नाम
6: स्पेस में
1: भेजना चाहते हैं तो
6: अपना नाम कर सकते हैं। अब देखिए उसमें क्या रहेगा, ये जो जितने भी नाम है विथ देयर जीमेल आईडीज ये सब जाके US में जो कैलिफोर्निया गूगल का जो सॉरी नासा का जो हेडक्वार्टर्स है वहाँ पर स्टोर है, देन इसको एक SD कार्ड में लोड किया जाएगा एंड उस SD कार्ड को उस टेलीस्कोप के साथ ही लगा दिया जाएगा। देन 30 अगस्त को ये टेलीस्कोप लॉन्च होगा एंड जैसे ही ये मतलब आप समझ लीजिए लैग्रेंज पॉइंट 2 है वहाँ पर इतनी दूरी पे हमेशा के लिए जब तक ये टेलीस्कोप रहेगा जब तक हमारा ब्रह्मांड है तब जब तक ये टेलीस्कोप रहेगा तब तक उसके साथ हमारा जो
1: नाम
6: है,
1: भी अमर रहेगा।
6: अमर मतलब
1: नाम अमर हो जाएगा
6: लेकिन जब तक
1: हम ये रहे ना रहे पर हमारा नाम वहाँ रहेगा।
6: बिल्कुल जब तक हमारा ये जो टेलीस्कोप जब तक है तब तक तो ये भी बड़ी बात है ना। देखिए
1: बिल्कुल और क्या
6: हमारा नाम उसके साथ जा रहा है,
1: नाम वहाँ तक पहुँच रहा ये एक हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात होगी।
6: और मैं तो कहूँगा कि अभी से अभी आप इस चीज को कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज भी है और क्योंकि अभी हमारे पास रात 12 बजे तक का ही समय है, कुछ नहीं करना है बस अपना नाम और जीमेल आईडी सबमिट कर देनी है, बोर्डिंग पास अगर डिजिटल उसको डाउनलोड कर लेना एज अ प्रूफ, कुछ भी नहीं करना है बाकी सब नासा को नासा के ऊपर छोड़ दीजिए, नासा अपना काम कर रहा है।
1: तो आज तो बहुत सारी ढेर सारी इम्पोर्टेंट बातें हो चुकी हैं और हमारा वक्त भी हो गया है आपसे विदा लेने का और हम आपसे विदा ले रहे हैं और दे रहे हैं ये मंच ओपन माइक को,
6: तब तक के लिए
1: आपसे कहते हैं आप सुनते रहिए
6: रेडियो गंजथली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराल रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88404095 84 95 84 88 40 35 95 84। अब सपने होंगे साकार।

0: नमस्कार नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो गैनस्टलिटी 9.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन और आज है रविवार। रविवार के इस खास वाले प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है जिसका नाम है ओपन माइक अपना टैलेंट अपना FM। जी हाँ, मैं हूँ आप सभी के साथ आपका दोस्त मनु और हमारे साथ जुड़ चुके हैं आप सभी के फेवरेट आरजे
1: अदनान। वैसे आप ये जो कहते हैं जुड़ चुके हैं तो क्या मतलब उससे पहले टूटे हुए होते हैं क्या?
0: मतलब इसके पहले हम कहाँ उनके साथ होते हैं।
1: अच्छा, उसी सेंस में कह रहे हैं ना आप, जुड़ गए।
0: हाँ, जुड़ गए हैं।
1: अच्छा, नहीं हाँ। कई बार हमें जैसे इंजन और वो कपलिंग जो जुड़ती है रेलवे में, उसकी याद
0: उसकी याद आ जाती है। मतलब आपने वहाँ पर लगता है काफी समय तक काम किया है।
1: हाँ, तो देखने का काम किया है। ऑलराइट, सो भाई एक ब्राइट सी स्माइल के साथ इस शो की शुरुआत करते हैं क्योंकि हमारे साथ इस स्टूडियो में एक नहीं दो नहीं तीन तीन प्यारे प्यारे बच्चे दिख रहे हैं। हालांकि एक पे अभी डाउट चल रहा है, वो बच्चा है कि बहुत अच्छा बच्चा है,
0: अच्छा
1: इस बात पे डाउट चल रहा है, बच्चा समझ गया। ऑलराइट, सो आज का मौसम बड़ा सुहाना था, मॉर्निंग से ही काफी अच्छा लगा। सो कैसा लगा आपको शानवी? शानवी भी हमारे साथ पहुंचा था।
2: मुझे तो बहुत अच्छा लगा।
1: व्हाई?
2: क्योंकि एक तो सुबह सुबह उठो और फिर अच्छी सी हवा मिले नेचुरल, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। लेकिन वहीं जब इतनी तेज धूप रहती है उससे मुझे सख्त नफरत है। लेकिन अगर वो मतलब 5-6 बजे वाली धूप होगी तो वो अच्छी है क्योंकि इसमें विटामिन डी मिल जाएगा।
1: 5-6 सुबह वाली या शाम वाली बता?
2: सुबह।
1: सुबह
2: शाम
1: नहीं, जैसे तो यहाँ से 2 इंटरसिटी भी जाती है, 1:15 बजे 1:30 बजे। मतलब उस तरह मैंने पूछा था कि ये मॉर्निंग की आप बात कर रहे हो या इवनिंग?
2: मॉर्निंग।
1: मॉर्निंग
0: मतलब आप 5 बजे उठ जाती हैं?
2: नहीं।
0: तब कैसे विटामिन डी मिलता है?
2: नहीं मतलब कभी कभी उठ जाते हैं,
1: कभी कभी। अच्छा। जब लाइट नहीं रहती होगी और वो क्या कहते हैं बेना,
0: हाँ।
1: वो जब चल रहा होता होगा उसमें।
2: हमारे यहाँ तो वो इन्वर्टर लगवा है, पूरा हेल्प कर।
1: कभी कभी तो डिस्चार्ज होता होगा ना वो भी कभी?
2: हाँ, डिस्चार्ज होता है तो उससे पहले मम्मा ही हम लोग को मतलब चार्ज कर देती हैं क्योंकि अगर वो पंखा बंद कर देंगे अपने आप ही नींद खुल जाती है।
1: वाह,
0: क्या टेक्निक लगाई मम्मी ने
1: बिना हिंसा के। ये अच्छी टेक्निक लगती है कि किसी को उठाना। वैसे मैं भी अपने बहन के साथ यही करता हूँ।
0: अच्छा,
1: बोलता है कुछ नहीं हो, लाइट जला देता हूँ जानबूझ के कि आंखों पे रोशनी पड़ेगी। और
2: मैं अगर इसके साथ ऐसा कुछ करूँगी इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके लिए पंखा बंद कर दो, एसी चला दो, चाहे वो 16 डिग्री पे एसी चला दो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये ऐसे सोएगी कि जब उसको उठना होगा तभी उठेगी।
0: मतलब क्या हम इनको छोटी कुंभकर्णी कह सकते हैं?
2: बिल्कुल,
1: कि विपक्ष में बैठी हमारी छोटी सी बच्ची बताएगी क्या है। हाँ, बेटा ऐसे ही सोते हैं क्या आप? दीदी क्या कह रही
3: है? इसमें कर रही है वरना ये कितने देर, ये तो मुझसे पहले ही सो जाती है।
2: हाँ तो हम थके भी तो रहते हैं।
1: मतलब खाना बनाना, बर्तन धोना,
2: उस तरह का थका नहीं,
0: वो भी तीन तीन घर पकड़े हुए हो।
2: नहीं,
0: मतलब वो बात नहीं कह रहे, मतलब
2: मैं थक ही जाती हूँ स्कूल से आओ। और स्कूल में भी अगर मॉनिटर एब्सेंट हो गया तो फिर मुझे ही संभालना है। और क्योंकि मैम कह देती हूँ जबकि मुझे नहीं अच्छा लगता है, गुस्सा आती है। और दूसरी बात कि मतलब वो घर पे आने के बाद रेस्ट किया, फिर 4-5 ट्यूशन, देन 5-6:30 ट्यूशन।
1: मतलब ये बचपन में भी इन लोग की कॉर्पोरेट लाइफ हो जाती है।
0: हाँ,
1: मतलब कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ, कितने से कितना, ये सारी चीज़ें।
2: लेकिन ये दोनों ट्यूशन मुझे बहुत ही हेल्प करते हैं क्योंकि 4-5 तो सिंगिंग वाला है तो मुझे मतलब फेवरेट है।
1: वो और दूसरा है, है? 4-5 सिंगिंग वाला किस चीज़ में आपको हेल्प करता है?
2: मतलब मैं यहाँ आती हूँ तो उसमें मुझे मतलब गाने सुनाती हूँ तो मेरी आवाज़ को, मेरे गले को मतलब अच्छा और ठीक रखने के लिए वो मेरी हेल्प करता है। और जो 5-6:30 है मुझे फिजिकल फिटनेस के लिए क्योंकि मैं खो खो प्रैक्टिस करती हूँ उस टाइम पे, तो वो मुझे फिजिकल फिटनेस और मेंटली फिटनेस की भी वो देता है बेनिफिट्स।
1: क्या बात है भाई,
0: पढ़ाई वाला ट्यूशन नहीं है आपका एक भी?
2: पढ़ाई मैं घर पे करती हूँ।
1: वाह,
0: क्या बात है, मतलब घर पर पढ़ती हैं आप?
1: दोस्तों के घर करते थे ना, स्टडी के बहाने जाते थे और उसके बाद पता चला चाय चल रही है,
0: चाय चल रही है,
1: बाइक चल रही है। बहरहाल भाई स्वागत कर दिया है, अभी शुरुआत नहीं की हमने।
0: हाँ, शुरुआत नहीं की है और शुरुआत सबसे छोटी वाली से करेंगे क्या?
1: बिल्कुल, बहुत प्यारी सी बच्ची है और अपने सर पे एक फ्लावर खिला के लाई। बेटा ये बारिश में खिल गया, पानी जैसे बारिश हुई थी तो ऐसे खिल गया क्या? क्या वो बताइए आप?
3: नहीं, वो हेयर बैंड ही है।
1: हेयर बैंड है? मुझे लगा, अरे मुझे लगा रियल वाला है ये। ऐसे निकल आया?

0: Oh my God. अच्छा, अपना नाम बता दिए पहले हमारे लिसनर्स को जो आपको सुन रहे हैं।
1: My name is Nimisha Tiwari.
0: निमिषा। मैं लिसनर से पूछना चाह रहा था, मैं तो जानता ही हूँ, ठीक है, मैं कंफर्म करा रहा था कि देखो लिसनर्स को कितना बताया, ठीक है, कोई बात नहीं। सो वी हैव निमिषा, और जो कि स्टार्ट करने वाली हैं, सबसे छोटी हैं आज के इस पार्टिसिपेंट्स में, सभी लोगों में। तो बच्चे क्या सुनाने वाले हैं आप हम लोगों को?
1: तेरी है जमीन।
2: अरे क्या
0: तेरी है जमीन,
2: तेरा
0: बेटा जमीन तो है लेकिन मकान सच में नहीं बनवा पाए अभी। प्लॉट की बात कर रहे हैं आप? हमें लगा जनसंख्या जो आजकल वो चल रहा था ना,
2: सेंसस,
0: हाँ, उसमें पूछ रहे थे कितनी जमीन है क्या है, मुझे लगा वो वाला क्वेश्चन है, तेरी है जमीन है कि नहीं है।
2: लेकिन तेरा आसमा, आसमा तो उसी का हो सकता है।
0: करेक्ट। वैसे मैं बता दूं भाई, हमारे श्रोता भी जान गए और हम लोग भी जान गए कि ये एक प्रार्थना की बात कर रही है, और जिसको मैंने भी अपने स्कूल में किया हुआ है, 3rd to 5th के बीच में ये प्रार्थना कराई जाती थी, बहुत अच्छी लगती मुझे, बहुत प्यारी लगती है, राइट। सो इनको भी अच्छी लगती है, शानवी को, सो निमिषा भी मौजूद है। सो चलिए निमिषा, आप प्रार्थना से शुरुआत करिए इस खूबसूरत से प्रोग्राम की।

0: क्या आवाज है भाई, वाह शानदार तालियों के साथ।
1: इतनी प्यारी सी आवाज, इतनी मासूम से बच्चे की इल्तिजा सुन करके क्यों नहीं करने वाला, जाहिर सी बात है। सो बहुत प्यारा आपने शुरुआत की प्रार्थना से निमिषा, थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा अभी आपको प्रार्थना पढ़ने के बाद में?
2: बहुत ही अच्छा लग रहा है।
1: बहुत अच्छा लग रहा है। क्या लग रहा है कि जिन लोगों ने सुना होगा निमिषा की आवाज में इस प्रार्थना को, उनको कैसा लगा होगा?
2: अच्छा ही लगा होगा।
1: अच्छा लगा होगा, कैसे पता?
2: क्योंकि गाय रहे हैं।
1: गाय रहे, अच्छा गाते हैं आपको लगता है?
2: मम्मा तो कहती हैं। तो
1: मम्मा कहती है ना, मम्मा तो अपनी है ही है, वो तो कहेंगी। आपको क्या लगता है?
2: वे भी ठीक लगता है। अच्छा नहीं ठीक, मैं कभी कभी गला खराब हो जाता तो
1: देखिए अभी से सेज में इनको गले का ख्याल रखना पड़ता है।
0: सही बात।
1: बट थैंक यू सो मच, बहुत प्यारा आप गाती हैं। आप अच्छा नहीं गाती, मम्मा कहती हैं अच्छा गाते हैं, बट मैं कह रहा हूँ आप बहुत प्यारा गाते हैं। आपकी वॉइस बहुत प्यारी है और देखिए स्माइल उससे भी ज्यादा, जो कि हमारे लिसनर्स देख तो नहीं पा रहे, लेकिन जब आप बोलते हैं तो उसमें जरूर महसूस कर लेते हैं आवाज में आपकी स्माइल को।
2: असल में मैं मुस्कुराना ही हंस रही हूँ।
1: असल में ये मुस्कुरा नहीं रही है, ये हंस रही है। अब इनकी हंसी इतनी प्यारी कि मुस्कान जैसी लग रही है।
0: अच्छा बताइए, हंसी और मुस्कान में कोई अंतर होता है? शानवी तो आप बताइए।
1: पहले निमिषा से पूछ।
0: हाँ निमिषा से पूछ लेते हैं। अच्छा हंसी और मुस्कान
1: में क्या फर्क होता है बेटे, बताइए आप।
2: मुस्कान में खाली थोड़ा सा बस स्माइल कर देना और हंसना
1: खर खर खर खर, ये तो पंखा चलता है ना। अच्छा एक खरखरा मतलब एक हंस के दिखाइए ऐसे।
2: मेरे वैसे ही अभी मैंने गर्म पानी पिया है तो आवाज ठीक हुई है।
1: अच्छा अरे वाह क्या बात है। हाँ तो भाई ये शानी बताने वाली थी क्या फर्क होता है हंसी और मुस्कान में।
3: हंसी अंदर से निकलती है, मुस्कान जो होती है वो मतलब बाहर से भी हो सकती है, लेकिन मतलब वो दिखावा भी कर सकते हैं कोई इंसान मुस्कुरा के, लेकिन जो हंसी निकलती है वो इंटरनल होती है। अब उसको हंसेंगे तो फिर खुल के हंसना।
1: एक डेमोंस्ट्रेशन करके दिखाइए जो दिखावे वाली एक मुस्कुराहट होती है, कैसे करते हैं पर मुंह बना के दिखाइए।
0: हंसना मत, ना ना ना ना ना।
1: हंसा दिया हम लोगों ने फाइनली। वाओ क्या बात है।
0: मतलब जब हम मुस्कुराते हैं तो आवाज नहीं निकलती और हंसते हैं तो आवाज होती है। हमको लगता है बेसिक डिफरेंस यही होना चाहिए। तो आप मुस्कुरा रही थी कि हंस रही थी?
3: आवाज नहीं निकल रही थी।
0: आवाज नहीं निकल रही थी ना, तो अदनान सर ने सही कहा था कि आप मुस्कुरा रही थी। अब जा हंस के दिखाइए।
3: घर पे तो इतना हंसती है जब हम लोग खेलते हैं बहुत
1: खुलकर। आप कब हंसती हैं निमिषा, आप बताइए। जब ज्यादा फनी होता है कुछ, ऐसे कोई इंसिडेंट याद है जब फनी बहुत ज्यादा हुआ हो?
2: अब जब बड़े मामा के हम लोग घर जाते हैं और छोटी मामी भी लखनऊ रहती हैं तो आती हैं, तब हम हंसी मजाक का होता है तो
0: मतलब ग्रेट फन जब होता है तो आप हंसती हैं खुल के।
3: अच्छा ये घर पे इस तरह से हंसती हैं कि इसकी हंसी देख कर सामने वाले को हंसी आ जाए।
0: क्या बात है।
3: मतलब ये ऐसे हंसेगी कि मतलब हंसना पड़ेगा ही पड़ेगा।
1: जैसे पूरी को
0: नहीं, जैसे कैसे हंसती है
3: कैसे बताएं?
0: नहीं जैसे जैसे आपने कहा इनकी हंसी देखकर आपको हंसना पड़ेगा, तो कैसे हंसती हैं जरा बताइए।
3: मैं कैसे बताऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं इसको कैसे बताऊं? अब इन्हीं से पूछ लीजिए इनकी हंसी है।
0: हाँ बता, आपकी हंसी है जरा बताइए।
1: उनका गला खराब बताया।
0: हाँ नहीं आपकी आपका गला खराब
2: है। पता, मैं पता नहीं कैसे हंसती हूँ।
0: ये देखिए भी आपने
2: खाली बाहर वाले को लगता है कि हाँ मैं हंस रही हूँ पर मुझे अंदर से कुछ नहीं लगता।
1: ओह माय गॉड
0: क्या बात है, ये बहुत
1: मतलब ये बच्चे तो बड़े गहरे हैं भाई। इसको तो समझने के लिए अलग से वक्त चाहिए। चलिए फिलहाल चलते हैं शानवी की तरफ और सिंगिंग आप करने वाली है राइट? क्या सुनाने वाली है आज?
3: आज मैं एक निर्गुण भजन सुनाऊंगी जो कि मेरे पापा को बहुत अच्छा लगता है।
1: अरे वाह, यानी पापा सुन रहे हैं, क्या बात। प्लीज, अरे वाह। तो चलिए भाई निर्गुण भजन जो आपके फादर को आपके वालिद को बहुत पसंद है वो शानवी सुनाने जा रही है।

0: चले जो आंधी वो तिनका तिनका बिखर जाए आसिया गम नहीं है। चले जो आंधी वो तिनका तिनका बिखर जाए आसिया गम नहीं है। जो तोड़ दे मेरे हौसलों को, जो तोड़ दे मेरे हौसलों को।
1: अभी वो तूफान उछा नहीं है।
2: क्या
0: है
2: बात है, वाह।
0: जिंदगी इतनी खूबसूरत अभी ये।
2: अरे कोई बात नहीं, बहुत प्यारा, वेरी नाइस। मतलब यार मैं ये सोच रहा हूँ, इतने छोटे छोटे बच्चे और इनकी चॉइस देखी आप, कि मतलब कितना प्यारा है।
1: हाँ, मतलब मौसम का कुछ असर है, हल्का सा कुछ गले में खराश टाइप
2: अरे
1: की है।
2: खराश तो छोड़िए, इन्होंने जब चुन लिया है वही इतना दिल जीत गया
1: हाँ
2: है। क्या
1: सही
2: बात
1: है,
2: है, आई एम सो
1: जिंदगी
2: प्राउड
1: कितनी
2: ऑफ यू। वाओ
1: खूबसूरत।
2: वाओ, वेरी नाइस। मतलब बहुत बढ़िया। इसको अभी हम लोग वापस से फिर सुनेंगे जाने से पहले, जब तक के लिए इनको थोड़ा सा पानी वाला ब्रेक दे देते
1: हाँ,
2: हैं
1: पानी वाला ब्रेक दे
2: और
1: दीजिए।
2: चलते हैं अपने अगले पार्टिसिपेंट की तरफ। भाई अपना नाम हमारे लिसनर से आप बता दिए, आप मौजूद हैं।
3: मेरा नाम दिव्यांशी सिंह है।
2: दिव्यांशी आई है, सबसे पहले तो वेलकम करते हैं दिव्यांशी आपका।
3: थैंक यू।
2: कैसी हैं आप?
3: फाइन।
2: अच्छा, अब इस कौन सा फाइन बोला आपने, मतलब वो अच्छा वाला या जो चाय के साथ वाला? अच्छा वाला। सो बढ़िया। हम तो सुबह हमसे पूछा गया कि कैसे हैं आप, हमने कहा स्मार्ट हैं हम, बताइए आप। तो फिलहाल नहीं, अच्छे हैं, आपको वो रिप्लाई नहीं करेंगे, अच्छे हैं। सो क्या लेकर आई हैं हमारे श्रोताओं के लिए आप?
3: पोम।
2: अरे वाह, क्या
3: इंग्लिश
2: बात।
3: में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है।
2: सेम है?
3: अलग अलग।
2: अलग अलग है।
3: एक्चुअली आई राइट, आई लव टू राइट पोम्स।
2: अरे वाह, ज्यादा किस में आप लिखते हैं?
3: ज्यादा हिंदी में भी लिखते हैं, इंग्लिश में भी बराबर।
2: मतलब जैसा आपको लगता है थॉट। वाओ, कई सारे सवाल लेकिन आ रहे हैं। अब सोचते
1: हाँ।
2: सोचते आप हिंदी में हैं कि इंग्लिश में हैं?
3: सोचते हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। कुछ चीज़ें हम सिर्फ स्पेसिफिक टॉपिक पे नहीं लिखते, जो क्राइम्स हो रहे हैं कुछ क्राइम्स पे भी लिखते हैं, प्रकृति पे भी लिखते हैं, और संगीत बोल सकते हैं सिंगार वगैरह का हिंदी में होता है, उस पर भी कुछ लिखे हैं। ऐसे ही पोम्स लिख करके इंस्टा पे पोस्ट करते हैं।
2: क्या बात है, वाओ। देखिए ये आज की जिंदगी
1: कौन सी है।
3: मेरे प्रिय ऐसे मैंने स्पेसिफिक किसी को पढ़ा नहीं है, बट मेरे टीचर्स ने मुझे सिखाया था जब वो 12th में थे, जो सलमान सर और रिस्पेक्टिव टीचर्स थे, जिन्होंने मुझे थोड़ा आइडिया दिया था। फिर स्लोली स्लोली अपने आप से लिखना शुरू कर दिए थे, जिन्होंने मुझे थोड़ा आइडिया दिया था, फिर स्लोली स्लोली अपने आप से लिखना शुरू कर दिया।
2: क्या बात है।
1: तो वो कौन सी चीज़ जिसने आपको बहुत इंस्पायर किया?
3: सीरियसली बताएं तो प्रेजेंट टाइम क्राइम चल रहे हैं, उन चीज़ों को मुझे चाहिए कि लोगों के पास पहुंचाए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो हम देख कर भी इग्नोर मार देते हैं, तो उसी को देख करके, क्योंकि डायरेक्ट आर्टिकल की तरह भी मैंने लिखना शुरू किया, पर कोई इस पर ध्यान नहीं देता था, फिर स्लोली स्लोली पोएम में ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर दिया था, जिसकी इंटरेस्टिंग वे हो जाए, कोई पढ़ने को भी ट्राई करे और नॉलेज भी दूसरों को उससे मिले।
1: हाँ, मतलब गद्य थोड़ा सा नीरस होता है तो आप पद्य की तरफ आ गई। क्या बात है। तो भाई कविता तो अपने आप में ही एक खूबसूरत एहसास है, तो
2: बिल्कुल।
1: हिंदी वाली पहले सुनेंगे हम।
3: जी
1: जी
3: तो शुरू करें।
1: जी निसंदेह।
3: प्रकृति की याद, हवा चली दिन ढले बात उठी, कभी यहाँ जंगल की लहराती हवा थी, कभी यहाँ प्रकृति भी फैली हुई थी, प्यारे प्यारे जानवरों की चहल पहल थी, हर सुबह चिड़िया चहचहाती थी, मधुर सरों से जग को जगाती थी, रातों में झुड़ों में तारे चमकते थे, आकाश में दीपों से टमटमाते थे, अब ये दृश्य कहीं खो से गए हैं, प्रकृति के रंग जैसे सो से गए हैं।
1: क्या बात है,
2: क्या बात है, वाह वाह वाह। ये जो पॉम आपने बताया, ये लिखा है, ये कैसी इंस्पिरेशन थी, कैसे इसका ख्याल आया था?
3: एक्चुअली ये रात में बारिश हो रही थी, तो इससे पहले यहाँ पे मैंने अपना 9th-10th किया है, मनकापुर ITI, तो वो आप शायद वहाँ गए हो, देखा होगा उसका पूरा सराउंडिंग।
1: हाँ, बहुत अच्छा है
2: वहाँ का प्रमाइसेस।
3: बहुत प्यारा है।
2: ओके।
3: तो उसी को याद करके मैंने थोड़ा बहुत लिखा।
2: वाओ, नाइस।
1: मतलब जो चीज वहाँ आपने फील की वो यहाँ नहीं मिल पा रही।
3: यहाँ नहीं, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक है, वहाँ पे पूरा आपने अगर ध्यान दिया हो तो ज्यादातर जंगल है, शांति है, एक बोल सकते हैं हम पूरी तरीके से वहाँ पे नेचर में डूब जाएंगे, बट यहाँ पे एक तरह से बोले पॉल्यूशन है, बहुत कुछ है, शोर शराबा, वहाँ एकदम शांति है, पढ़ने की सबसे अच्छी जगह।
2: कौन कहता है कि जेन ज़ी को जोड़ के यो यो, अरे ऐसा मत सोचो, इनको देखो देखो मतलब ऐसे हैं आज के यंगस्टर्स जो नेचर लवर्स हैं, या वो पीस ढूंढ रहे हैं जो शायद हमारी जनरेशन ने भी काफी मिस किया है ना, कि बस कुछ ऐसा करो करने के लिए करते हैं। बट मुझे लगता है जैसे कई बार बहस भी हुई है, कई मैंने बड़े मंचों पे भी सुना है, जेंजीज ने अपनी राय रखी है कि उनको बहुत नई सक्सेस होना है, सक्सेस के वो जो परिभाषा हम करते रहे हैं अपनी जिंदगी में वो नहीं चाहिए, इनको पीस के साथ काम करना, इनको स्ट्रेस मत दो, ये काम बहुत बढ़िया करेंगे, लेकिन हाँ ये अपनी पर्सनल लाइफ ही फिर जीना चाहते हैं। इनके लिए वो नहीं कि बस आप करते रहो एक चीज पाने के लिए, आप सब चीज उसमें डाल दो, सब चीज नहीं,
3: हम लोगों को उतने के चाहिए लिए चाहिए कि हम लोग पे कोई फोर्स ना करे, अपनी मर्जी से करे, कमाए खुशी खुशी, वही चीज उड़ाए सब कुछ समझ के।
2: क्या बात है, ये बहुत अच्छी सोच है और बहुत नेक इरादे।

0: हम दुआ भी करते हैं कि आप ऐसा कर पाए, डेफिनेटली आप कर पाए। अब हम आपकी दूसरी पोएम सुनना चाहेंगे, इंग्लिश वाली।
1: ये पोएम मैंने खुद के लिए लिखी है।
0: ओके।
1: इसका जो मेन है वो है आई वांट।
0: जी जी बिल्कुल। ओके। तो ये इंग्लिश पोएम है आपकी, सो आप प्लीज बताइए।
1: आई वांट टू बी, ये शुरू ये शुरू एक प्यारी सी लाइन से होती है। आई वांट टू बी द रेन फॉर इट नोस नो लिमिट्स। I want to be fire, for it has the power to transform everything it touches. I want to be a tree, for it stands fair through every storm. I want to be a cloud, for it silently carries its emotions until the time is right to let them fall. I want to be acid rain, for it reminds me that every action leaves an impact. I want to be flood, for it teaches me to respond according to every situation. I would love to be a peacock, for I want to be dance in the rain with the joy. I want to be snake, for it teaches me to move forward with patience, resilience and adaptability. I want to be a turtle, for it carries its own shield and reminds me that true strength also lies in protection. I would love to be a cockroach, for it teaches me to survive even in the harshest circumstances. I would love to be a dog, for it teaches me to be friendly with everyone until someone hurts me. I would love to be a butterfly, for it carries countless colors, and each color reminds me to be treat every person according to their personality. Ultimately, I would love to be eagle, for it show fearless above the storm, guided by the courage, vision and freedom. Thank you.
0: वाओ, क्या बात है। मतलब सेंस देखिए कि प्रकृति की हर चीज से इनको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। ये बनना चाहती है।
2: मतलब हम लोग क्लाउड भी बने, डॉग भी बने, चीता भी बने, मतलब यहाँ टर्टल तक आपने कछुए तक को नहीं छोड़ा। अब आपसे एक प्रश्न करेंगे हम कि अगर इनमें से आपको कुछ एक बनने का मौका मिले कि चलो ये बना देते हैं, ईश्वर आपके समक्ष आ जाए, तो व्हाट विल बी योर फर्स्ट चॉइस? एयर।
0: व्हाई?
2: क्या आप बात है,
1: एयर को कोई रोक नहीं सकता, एंड इट सिंबलाइज अ फ्रीडम। आई डोंट थिंक सो कि हाँ जानवर हैं, बट वी आर द ह्यूमन बीइंग्स जो हम उनको कैप्चर करके रखे हैं। बट आई डोंट थिंक सो देयर कोई भी ऐसी चीज है जिसे एयर रुक जाए। दैट्स व्हाई आई वांट टू बी एयर।
2: क्या बात है, कहा जाता है मोहब्बत हवा और खुशबू, इन तीनों को कोई रोक नहीं सकता, ये अपना रास्ता बना ही लेती हैं।
0: वेरी गुड, लेकिन फिलहाल हम रोक सकते हैं। पूछिए क्या?
2: जी हम रोक सकते हैं।
0: इस प्रोग्राम को थोड़ी देर के लिए यानी म्यूजिकल ब्रेक की तरफ ले चलते हैं। तो चलिए भाई एक शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं। एंड बहुत अच्छा दिव्यांशी आपने लिखा है, मतलब लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू, और बहुत अच्छे से आपने उसको डिफाइन किया, आपके पढ़ने के अंदाज में वो चीजें फील हो रही
2: फील हुई। मैं तो पीवी शैले को पढ़ाता हूँ बच्चों को, यहाँ तो वो भी कुछ इसी प्रकार नेचर पर लिखते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। तो मतलब जब आप पढ़ रही थी तो मुझको लग रहा था कि उनके विचारों और आपके विचारों में काफ़ी सिमिलरिटीज़ है। पीवी शैले ने कहा कि आई वॉन्ट टू बी अ डेड लीफ, तो किसी ने पूछा कि डेड लीफ क्यों बनना चाहते हो, सूखा हुआ पत्ता? तो उन्होंने कहा क्योंकि ये खाद बनता है और नए पौधों को जन्म दे सकता है।
0: क्या
2: तो मतलब वो जो
0: नजरिया होता,
2: नजरिया होता है पीवी शैले का, उन्होंने भी जो है इस बात को कहा है, लेकिन उन्होंने कुछ बहुत ही कम शब्द बोले, लेकिन आपने प्रकृति के जितने ऑब्जेक्ट्स उठाए और उनसे जो सीखने की प्रेरणा मिली, वो वास्तव में भाई हम पहली बार देख रहे हैं।
0: क्या बात है
2: कि हम बहुत ईश्वर करे कि आपको जो है वो बच्चे आपकी किताबें छपें और एक आध पोम जो है आपकी वो बच्चों के सिलेबस में हो और बच्चे पढ़ें, तो गर्व महसूस होगा।
0: क्या बात है, थैंक यू सो मच।
2: चलिए ईश्वर आपको कामयाब करे भाई।
0: बिल्कुल, और हम फिलहाल लेते हैं एक शॉर्ट सा म्यूजिकल वाला ब्रेक। ब्रेक के बाद हमारे तीन तीन कैंडिडेट्स और भी मौजूद हैं।
2: जी
0: साथ में है हमारी शानवी
2: जो है सब पर भारी।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: सादा दिल तेरा लेके ही तो लिख बेबी किसी से भी पूछ लौटा टू मच।
1: जी हाँ, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत अभिनंदन वंदन नमन इस्तकबाल आप ही के प्रोग्राम ओपन माइक अपना टैलेंट अपना एफएम में। भाई बहुत सारी प्रतिभाएं हमने देखी और अब हमारे साथ कई सारे लोग और जुड़ चुके हैं।
2: बिल्कुल जुड़ ही चुके हैं, बल्कि अच्छे से जुड़ चुके हैं।
1: अच्छे से जुड़ चुके हैं।
2: सो वापस एक बार आपका वेलकम करते हैं आपके ओपन माइक वाले प्रोग्राम में, और हमारे साथ अंजनी जी वापस से मौजूद है। हम सभी लोगों को बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपसे मिलती है, न जाने कितने सारे नए नए टैलेंट्स को इंट्रोड्यूस कराया है आपने यहाँ इस मंच पर, ताकि उनको एक बड़ा मंच मिल सके, उनको अपनी एक रिकग्निशन मिल सके। सो आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं ओपन माइक में।
1: और इसके सबसे बड़ी बात यह है कि इतने ऊंचे पद पर होने के बाद भी जो विनम्रता है वो एकदम धरती से जुड़े हुए इंसान है, जो इनको पर्सन नहीं बल्कि पर्सनालिटी बना देता है।
2: बिल्कुल,
1: व्यक्ति नहीं बल्कि आप व्यक्तित्व है, तो आपको प्रणाम करते हैं।
2: तो हम चाहेंगे कि वैसे तो आप जो कुछ भी कहना चाहते हो, लेकिन अब मौसम इतना रोमांटिक है, तो एक गाना छोटा सा
3: जी,
2: एक स्टैंजा तो किसी एक रोमांटिक गाने का आपसे सुनना ही हम चाहेंगे, प्लीज।
0: मुझे दर्द दे दिल।

0: दे दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए, मैं अकेला यूं ही मजे में था, मुझे आप किस लिए मिल गए।
1: वाह,
0: ना मैं फूल हूँ किसी बाग का, ना चराग हूँ किसी शाम का।
2: क्या बात है।
0: ना मैं फूल हूँ किसी बाग का,

0: रास्ते का लिख दिया मुझे आप इसलिए मिल गए।
1: क्या बात है,
0: मैं अकेला नहीं मजे में था, मुझे आप इसलिए मिल गए।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: मैं गरीब हाथ बढ़ा तो दू तुम्हें पा सकूं के ना पा सकूं।

0: पा सकूं के ना पा सकूं, मेरी जान बात है ये फासला, मुझे आप किस लिए मिल गए।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
0: मैं अकेला यूं मजे में था।
1: वाह
2: क्या बात है, बात है। अच्छा सर, आपसे एक चीज जानेंगे, मैं अकेला यूं ही मजे में था, मुझे आप किस लिए मिल गए? अगर आपसे पूछा जाए कि ये आपकी जिंदगी में कौन है, तो आप क्या जवाब देंगे?
1: नहीं, पहली बात तो मुझे आपकी ये बात बहुत गड़बड़ लगती है।
2: गड़बड़ क्या लगती
1: है? आप जो है हर चीज का पर्सनल कनेक्शन
2: नहीं, पर्सनल कनेक्शन नहीं निकाले, इसे मतलब सामान्य व्यक्तियों की बात की जाए।
1: आपके कनेक्शन तो उलझे हुए तारों की तरह है, जो अब जो बिजली विभाग सही करवा रहा है, और आप दूसरों के कनेक्शन में बहुत जाते हैं।
2: नहीं नहीं, मतलब
1: ये हस्ती नहीं, हर जगह की जाके फंसती है।
0: मेरे पास कोई भेद है को कह देना होगा।
2: हाँ, सही बात।
0: मैं ये नहीं बताऊंगा कि इसमें
1: कुछ यही तो आर्ट है।
2: नहीं, मुझे लगता है जैसे ये गाना हमको अगर डेडिकेट करना हो तो मदनान सर को कहते हैं कि मैं अकेला यूं ही मजे में था।
1: मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आप ओपन माइक अकेले करें। ऑल राइट, सो फिलहाल चलते हैं समय को देखते हुए सृष्टि की तरफ। क्या लाई है सृष्टि आप?
3: कुछ पुराना।
1: कुछ पुराना, चलिए साझा करिए हमसे कुछ पुराना।
3: गुजर रही थी उम्र पर जीना अभी बाकी है, जिन हालातों ने पटका है जमीन पर मन, उन्हें उठकर जवाब देना अभी बाकी है। चल रही हूँ मंजिल के सफर में, मंजिल को पाना अभी बाकी है। कर लेना दो लोगों का चर्चे में हर बात, कामयाबी के शेर मचाना अभी बाकी है। वक्त को करने दो अपनी मनमानी, मेरा वक्त आना अभी बाकी है। कर रहे हैं सवाल मुझे जो लूजर समझकर, उन सबको जवाब देना अभी बाकी है। निभा रही हूँ अपना किरदार जिंदगी में के मंच पर, गिरते ही तालियां बजाना अभी बाकी है। कुछ नहीं गया हाथ से अभी तो, दीप बहुत कुछ पाना बाकी है। थैंक यू।
1: वाह क्या बात है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा बोला,
0: वेरी गुड बेटा,
1: बहुत बढ़िया। चलिए भाई, इसी के साथ में हम इस वक्त एक और पोएम सुनते हैं दिव्यांशी से, चूंकि दिव्यांशी भी मौजूद हैं और खुद से लिखती हैं। ऑफ कोर्स बहुत बढ़िया, अभी हमको एक हिंदी में सुनाया, एक इंग्लिश में सुनाया, अब इसका चाइनीज मतलब थोड़ा सा ऐसे पूछ रहे थे।
3: इस बार फिर से एक हिंदी में।
1: अच्छा, हिंदी में, ओके ठीक है।
3: क्या है ये आंखें, ये आंखें जो बिन बोले सब कुछ बयां कर जाती हैं, किसी की खुशी और किसी के गम को पहचान लेती हैं। ये आंखें जो चेहरे के पार देखकर इंसान के चरित्र की एक झलक दिखा देती हैं, कभी आदर के लिए झुक जाती हैं तो कभी सम्मान के लिए उठ जाती हैं। इनकी बातें अनगिनत हैं, इनकी बातें अनगिनत हैं, इनके राज गहरे हैं। गुस्से में यही आंखें खड़ी हो जाती हैं और शर्म के पलों में यही आंखें झुक जाती हैं, कभी प्रेम का संदेश देती हैं तो कभी दर्द का इतिहास कर देती हैं। सच में कितनी प्यारी हैं ये आंखें जो बिन शब्दों के दिल की हर बात कह जाती हैं। धन्यवाद।
1: क्या बात है, आंखों के बारे में,
2: आंखें क्या बात है।
1: कितने कितने गाने बने, आंखों में आंसू लेके आंख है भरी भरी, कितने ऐसे गाने मतलब अलग अलग मौजू को लेकर के आंखों पे। और आज तो आंखों पे इतना प्यारा चश्मा आप लगा रखा है हमारे अंजनी जी, स्मार्ट लग रहे हैं आज आंखों की वजह से। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा लिखा है, डिटेलिंग कर दी है। एंड अच्छी बात ये कि आप अलग अलग जैसे कहा ना मौजू पे लिखते हो। एक्चुअल में आर्टिस्ट कोई एक फिक्स नहीं करता खुद का, जो रियल आर्टिस्ट कहलाता है, क्योंकि भावना ही व्यक्त करता है अपनी आर्ट के जरिए, वही आर्टिस्ट होता है। तो आप प्रकृति को देखते हैं तो उसके बारे में ख्याल आता है, आप आंखों को देखते हैं उसके बारे में ख्याल आता है, आप जो देखते हैं उसके बारे में ख्याल आता है। ख्याल का आना जरूरी है, एक ही तरह के ख्याल आना ये जरूरी नहीं है।
2: नहीं, क्या बात है,
1: क्या बात है, हमारी भी तारीफ कर दी ना, क्या बड़ी बात बोल गए, थैंक यू सो मच। अब हम अपनी सबसे प्यारी बिटिया की तरफ चलते हैं, जिसको हम बहुत चिढ़ाते हैं लेकिन ये बहुत रेस्पेक्ट करती है, बहुत टैलेंटेड है और अभी फिलहाल हमको जा रही हैं सुनाने क्या?
4: वही निर्गुण भजन।
1: अरे वाह, वही निर्गुण भजन। एक तो भाई आपकी चॉइस बहुत अच्छी है, पहली बात तो।
4: थैंक यू।
1: सो चलिए बच्चे, हम लोग तैयार हैं आपका ये निर्गुण भजन सुनने के लिए। बहुत प्यारी चॉइस है, और अब हमको शानवी ये भजन सुना रही
4: है। जिंदगी कितनी खूबसूरत,

0: गम नहीं है, चले जो आंधी वो तिनका तिनका, बिखर जाए आसियां गम नहीं है, जो तोड़ दे मेरे हौसलों को, जो तोड़ दे मेरे हौसलों को, अभी वो तूफान उठा नहीं है।
1: क्या बात
0: जिंदगी
1: है, क्या
0: इतनी खूबसूरत जिन्हें अभी ये पता नहीं है। हमें तो मतलब है सिर्फ तुमसे, हमें तो मतलब है सिर्फ तुमसे, हमारे दिल में बस तू ही तू है, हमारे दिल में बस तू ही तू। तुमसे मोहब्बत तुमसे शिकायत, तुमसे मोहब्बत तुमसे शिकायत, और किसी से गिला नहीं है,
2: क्या बात
0: है। जिंदगी इतनी खूबसूरत जिन्हें अभी ये पता नहीं है। मेरी निगाहों से दूर मत जा, मेरी निगाहों से दूर मत जा, सुकून दिल बंदिल में समा जा, ये कह रही है हर एक धड़कन, तेरे बिना कुछ मजा नहीं है, ये कह रही है।

0: ये बच्ची कितनी टैलेंटेड, अभी इसे खुद पता नहीं है। देखा भाई क्या मतलब, क्या चॉइस है आपकी, मान गए।
1: मतलब अंजुम रहबर की लिखी हुई ये गजल है,
0: मुझे लगता है सुपर। हाँ। कमाल धमाल एकदम सुपर शानदार बेमिसाल। और
2: थैंक यू
0: सो मच, बहुत शुक्रिया। और फिलहाल हमारे साथ एक श्रोता जुड़ गए, उन्होंने कहा हम आ तो नहीं पाए लेकिन परफॉर्म जरूर करना चाहेंगे। सो भाई अपना नाम बता दिए हमारे श्रोताओं को, आपको लाइव सुन रहे हैं इस वक्त। जी हेलो,
3: हेलो
0: जी, अपना नाम बता दिए हमारे लिसनर्स को।
3: मुमताज अंसारी बात कर रहा हूँ।
0: मुमताज अंसारी साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं, क्या सुना रहे हैं आप?
3: सर एक गाना सुना रहे हैं।
0: जी जी प्लीज सुनाइए।
3: आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा।
1: क्या बात,
0: क्या बात है।
3: सृष्टि के समंदर तूने पतझड़ नहीं देखा।
0: क्या बात है।
3: पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूँ उसने मुझे छूकर नहीं देखा।
0: क्या बात है, क्या बात है।
3: इसलिए सर एक गाना सुना रहा हूँ आपको।
0: हाँ।
3: अगर पसंद आए तो आप लोगों से गुजारिश है कि दुआओं से नवाज देना।
0: बिल्कुल

0: क्या बात है भाई, आंखों में नींद है।
1: मतलब रोमांटिक तो आपने मौसम बना दिया।
2: तेल ना देखिए, तेल की बाहर देखिए।
1: बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत दिल से गाया गया गीत और बहुत शानदार तरीके से निभाया।
3: तो दो लाइन दूसरा गाना सुनाते हैं अगर इजाजत हो तो।
1: अच्छा, बस थोड़ा सा समय का बस पाबंदी है।
3: ज्यादा ज्यादा दो मिनट।
1: जी जी जी जी जी जी जी

0: क्या बात,
1: क्या बात है भाई।
0: मुझे लगता है कि आज छन भाई पकौड़ी में आपको पुराने टिक्की याद आ रहे
1: हैं। बिल्कुल बिल्कुल
2: जी सर, जी सर।
0: आपके इमोशन बता रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत उम्दा, बहुत शानदार,
1: बहुत प्यारा गाया भाई। मुमताज जी बहुत प्यारा गाते भी हैं।
0: थैंक यू सो मच, आपने हमको कॉल किया और सुनाया, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है
1: जी, और हमारे पास अब चलते चलते एक छोटी सी बच्ची और है, सुन लेते हैं कि क्या है उसके पास।
0: क्या नाम है बेटा आपका? बच्चे अपना नाम बता दिया। हाँ जी,
3: मेरा नाम नित्या सिंह है।
0: नित्या है, सो नित्या बेटा क्या लाई हैं आप?
3: सॉन्ग।
0: अरे वाह, प्लीज सुनाइए। इस सॉन्ग के साथ ही हम इस प्रोग्राम को मुकम्मल करेंगे।

0: थैंक यू।
1: वाह
2: क्या बात है, क्या बात है,
1: आपने सुपर्ब कमाल कर दिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो और फिलहाल भाई पूछ लेते हैं कि कैसा लगा शो सभी को, सो कैसा आप लोग को लगा, अंजनी जी आपको कैसा लगा, मजा आया? कमाल कर
3: छोटे बच्चे निर्गुण गा रहे हैं, सबसे बड़े
1: बताइए हम लोग में कितने गुण, मतलब दुर्गुण हैं और ये बच्चे निर्गुण गा रहे हैं।
3: भाई आप लोगों का जो क्रिएटर है बहुत अच्छा है।
1: बिल्कुल अपडेटेड हैं ये लोग बहुत ज्यादा, एंड मुझे भी बहुत मजा आया, आवाज का मजा मिला, पोएम्स का मजा मिला, जिंदगी के फलसफे का मिला, प्रार्थना का मिला, और कुछ सॉन्ग्स का भी मिला, मतलब सब सारे रस जो थे आज मिले हुए थे इस
2: कुदरत के कई सारे पहलुओं को हमने एक साथ देखा।
1: बिल्कुल सही बात है। सो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सुनने वालों का भी, और नेक्स्ट वीक हम जरूर मुलाकात करेंगे।
2: जी हाँ, तब तक भाई आसमान वाले ने चाहा तो अगले रविवार को पुनः आपसे मुलाकात होगी ठीक 1 बजे, तब तक सुनते रहिए रेडियो गणेश 89.6 FM,
1: ये है गोंडा शहर की धड़कन।

0: अरे सुना
1: क्या,
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ,
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
0: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
0: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
0: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
3: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
4: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
0: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
5: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
0: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
6: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुंहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

0: हेलो हाय नमस्कार आदाब, कैसे हैं आप सभी। घड़ी में वक्त हो चला है 2:11 बाद स्टूडियो क्लॉक और आपने ट्यून कर लिया है 89.6 FM। ये गोना शहर की धड़कन पर आपकी अपनी आशुति मौजूद है आप सभी के साथ लेकर के सुनने वाला आफ्टरनून का स्पेशल शो, जिसमें होती है बॉलीवुड की गपशप, बॉलीवुड की बातें, बॉलीवुड की न्यूज और बॉलीवुड के 20 गाने। फिलहाल हम आपके लिए लेकर आ रहे थे पुराने टाइप के गाने, थोड़े से ओल्ड इज गोल्ड, थोड़े से आपके पसंदीदा सिंगर्स, पसंदीदा आर्टिस्ट, पसंदीदा एक्टर्स के गाने। लेकिन इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं 2026 में जो ट्रेंड कर रहे हैं सॉन्ग उनको। फिलहाल हम आपको बता दें 2025-2026 में कुछ गानों ने धमाल मचाया हुआ था, कुछ फिल्में आई, कुछ को ट्रोल किया गया, कुछ को मोहब्बत मिली, कुछ अंडररेटेड रह गई लेकिन कुछ ओवररेटेड भी हो गई, कुछ के किरदारों ने आकर वो धूम मचाई कि भैया लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई, और कुछ किरदार इतने सादगी के साथ आके गुजर गए कि उनके बारे में लोगों को खबर तक नहीं पता चली। कुछ फिल्में जो आने वाली हैं जिन्होंने आने से पहले ही अपना एक माहौल सेट कर लिया है, इमोशंस से कनेक्ट कर लिया है लोगों को, वहीं पर कुछ फिल्में ऐसी हैं जिनकी कोई बात ही नहीं कर रहा है। क्या बात है, तो उन सबकी बात करने वाले हैं हम आपके इस इंडिया टॉप 20 में। फिलहाल मैं हूं आपकी आरजे उन्नति, मौजूद हूं आप सभी के साथ। और क्या ख्याल है, लेकर चलूं मैं आपको अपने पहले गाने की तरफ, अपने की और पूछ पूछ नहीं करते हैं। फिलहाल लेकर चलते ही हैं सीधे और आपको सुनाते हैं आपका सॉन्ग नंबर 20। और सॉन्ग नंबर 20 वैसे काफी पुराना भी है लेकिन काफी फेमस भी है, पॉपुलर भी है, ट्रेंड तो कर ही रहा है। गाना है वो वाला जिसे कहा जाता है कि भैया हार नहीं मानना, क्योंकि हार मान जाओगे तो इस गाने पे स्टोरी नहीं लगा पाओगे, और इस गाने पे स्टोरी लगानी है तो हार नहीं मानना काम करने के लिए, क्योंकि आपको भी तो बोलना है। वो वाला गाना है ना कि जो तेरे संग काटी रातें, जी हाँ आप समझ गए होंगे, ब्लड मनी से सॉन्ग है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा पॉपुलर और स्पेशली आजकल यूथ के बीच में काफ़ी ट्रेंडिंग सॉन्ग है, क्योंकि इसकी लाइंस, इसके लिरिक्स कहीं ना कहीं वो खुद से कनेक्ट करते मान रहे हैं कि जहाँ मैं हाथ रख दूँ वो सोना चांदी हो जाता है, पानी पानी हो जाता है, चाय कम पानी हो जाते हैं हम। फिलहाल तो आइए लेके चलते हैं सॉन्ग नंबर 20 की तरफ, टॉप 20 की सुपर डुपर हिट वाली प्लेलिस्ट का पहला गाना पेश करते हैं आपके लिए, जो तेरे संग काटी रातें From Blood Money। Stay tuned, मिलते हैं इस गाने के उस पार, तब तक के लिए बने रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रेटिंग जरूर से दीजिएगा इस गाने को।
1: Radio Gana 89.6 FM presents India Top 20 Songs. Song number 20.

0: मुस्तफा जाहिद की आवाज और जीत गंगोली का म्यूजिक, सईद कादरी के बोल, और इन तीनों ने मिलकर इस सुपर डुपर हिट गाने को बजाया जिसको आज का यूथ बड़ा ज्यादा सुन रहा है, एंजॉय कर रहा है और कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग म्यूजिक को फॉलो करते हुए स्टोरीज लग रही हैं, स्पेशली वो बाइक वाले भैया जो दिखते हैं ना आजकल। जी हाँ, बाइक चलाते चलाते जो अपनी वीडियोज बना रहे हैं, ब्लॉग्स बना रहे हैं, स्पेशली वो इसको ज्यादा बजा रहे हैं और वो कहते हैं कि नहीं नहीं कामयाब तो होकर रहना है क्योंकि इसकी जो लिरिक्स है उस पर अपना भी नाम होना चाहिए ना, इतिहास तो अपने नाम पर भी होना चाहिए, पन्नों में नाम हमारा भी रहेगा और अपने पूरे खानदान में वो पहले इंसान बनेंगे जो इस गाने पर कहीं ना कहीं वाइब करेगा। हालांकि ऐसा है नहीं, उनके फादर भी कर चुके हैं, इवन मैं कर चुकी हूँ जब ये गाना बहुत अंडररेटेड हुआ करता था और मुझे लगता था कि शायद कभी ये ओवररेटेड होगा नहीं, शायद कभी ट्रेंड में आएगा नहीं, बट क्या है ना, जिंदगी, किस्मत, वक्त कभी भी कहीं भी कैसे भी बदल जाते हैं और इस गाने का भी हाल कुछ इसी तरह से हुआ। पहले जहां इस फिल्म को अंडररेटेड माना गया वहीं पर राहत फतेह अली खान की आवाज़ में इसका एक और खूबसूरत गाना था जिसका नाम था चाहत, वो धीरे धीरे ट्रेंड किया और अब इस गाने ने इंस्टाग्राम पर तो आग लगा रखी है। फिलहाल आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ और हम आपको लेकर चलते हैं दर्शन रावल की आवाज़ में, खो जाने को हो जाइए तैयार क्योंकि बदतमीज से, यानी कि बदतमीज दिल से निकल कर आया है एक ऐसा खूबसूरत गाना जो था तो किसी सीरियल के लिए था, तो एक ओएसटी सॉन्ग, बट लोगों के दिलों पे इस कदर छाया कि भैया पूरा जनरेशन इस पे वाइब कर रहा है। फर्क नहीं पड़ता वो जनरेशन आज की है, अल्फा है, जेन जी है या उससे पहले वाली है, लेकिन जिसने भी दर्शन रावल की आवाज़ में इस गाने को सुना है ना, ओ माय गुडनेस, वो उनके फ़ैन हो चुके हैं और फ़ैन ऐसे हुए हैं कि आज भी ये गाना उनकी प्लेलिस्ट का टॉप वन सॉन्ग है। नाम है मेरे निशा, आपने इस गाने को जरूर सुना होगा, गुनगुनाया होगा और अगर आपने भी गाना नहीं सुना है तो आज के बाद ये आपकी प्लेलिस्ट का टॉप वन सॉन्ग होने वाला है क्योंकि सॉन्ग बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत, दर्शन रावल की आवाज़ में यानी कि लवर बॉय की आवाज़ में पेश करते हैं आपके लिए सॉन्ग नंबर 19 इंडिया टॉप 20 की प्लेलिस्ट से, स्टे ट्यून्ड।
1: रेडियो 89.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 19।

0: और अगर निशान की बात करें तो आपके घर में एक छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा मेहमान है जो चलता है, भाव भाव करता है, आपको समझ में आ गया होगा हमने किसकी बात की है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आपके उस छोटे से पपी की जिसकी आवाज़ सुनते ही आपके दिलों में ना राहत, सुकून और सब कुछ एक साथ दौड़ पड़ता है। फिलहाल आइए बात कर लेते हैं कि हमने आज कुत्तों की बात कहाँ से लगा दी निशा के अंदर, क्योंकि आप सुन तो दर्शन रावल की आवाज़ में इस खूबसूरत से गाने को रहे थे और अचानक से कुकुर बिलार कहाँ से आ गए, यही सोच रहे हैं ना। चलिए हाँ बता देते हैं भैया, कुत्ते को सुनकर आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वो डायरेक्टर याद है जिन्होंने ओ माई गॉड बनाई थी, हाँ वही जिन्होंने ओ मेरे भगवान बनाई थी, और आपने देख कर उसे बहुत इन्जॉय किया था, बहुत सारी लेसन उससे मिले थे और हमने जाना था कि ज़िंदगी कैसी होती है, खुदा कैसा दिखता है, और उसका एक बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग जिसमें ऑफ कोर्स मेरे निशा शामिल है, उसको आपने एंजॉय किया था। उसी के सेम डायरेक्टर ने 31 जुलाई में आपके लिए एक बड़ी ही ज़बरदस्त फिल्म का इंतज़ाम कर दिया है। अगर आप डॉग से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, अगर आपको कुत्ते बहुत ज़्यादा पसंद हैं, स्पेशली वो जिन्हें कुत्तों से बहुत ज़्यादा प्यार है या वो स्क्रीन पर देखना चाहते हैं कि ओ माई गॉड आई एम अ डॉग लवर और मेरे पास कुत्ते होने चाहिए, दो तीन फिल्में आपने देख रखी हैं लाइक एंटरटेनमेंट आपने देखी होगी। इसके अलावा हमारी 90s की पिक्चर्स में कहीं ना कहीं डॉग्स का इस्तेमाल करते हैं, वो एक ब्लैक कलर का लेबरा डॉग जो आपने अक्सर देखा होगा फिल्मों के अंदर, जो बड़ी ज़बरदस्त एक्टिंग करता था, उस कुत्ते को तो आपने देख लिया, एंटरटेनमेंट को भी देख लिया जो कि अक्षय कुमार के साथ आई थी। बट इस बार जो फिल्म आ रही है वो किसी एक कुत्ते के ऊपर नहीं है, एक नहीं दो नहीं बोली 250 कुत्तों का इस्तेमाल किया गया एक फिल्म के अंदर स्पेशल ट्रेनिंग के दौरान, और ऑस्कर नाम का एक कुत्ता है उसमें जिसके ऊपर ये पूरी फिल्म है, वैसे उसके साथ एक उसका पार्टनर भी है, उसका नाम आप बताएंगे चैट बॉक्स में। और सुनने में आया है कि 31 जुलाई नियर बाय थिएटर्स यानी कि आपके आसपास वाले थिएटर्स में नजर आने वाली है एक ऐसी इमोशनल हार्ट टचिंग फिल्म जो आपको पक्का मजा देने वाली है। प्लस उस फिल्म की स्टार्टिंग होती है अमिताभ बच्चन के एक पुराने सॉन्ग से, जो कि और भी ज्यादा खूबसूरत बात है। अब आप सोचिए, जिन्होंने अभी तक ओ माई गॉड बनाई थी उन्होंने अब डायरेक्ट कर दी है ओ माई डॉग यानी कि ओ मेरे कुत्ते, मतलब मानना पड़ेगा इमेजिनेशन की एक लिमिट होती है, लेकिन ऐसा हमें ही लगता है, दूसरों को नहीं लगता। जो आर्टिस्ट होते हैं उनकी इमेजिनेशन की कोई लिमिट नहीं होती, और इसलिए तो मैं अपना टैगलाइन बनाकर चलती हूँ कि इमेजिन द इम्पॉसिबल, यानी कि वो सोचो जो कोई ना सोचता हो, इमेजिन द इम्पॉसिबल, हमेशा वही इमेजिन करो जो इस दुनिया को नामुमकिन सा लगता है। और इसी चीज़ से इंस्पायर्ड होकर आई थिंक 250 कुत्तों की कहीं ना कहीं एक फिल्म आ चुकी है। तो क्या आप देखने जाने वाले हैं? अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे मौका मिला तो ऑफकोर्स मैं ज़रूर जाऊंगी। हालांकि चार्ली मैं आज तक नहीं देख पाई क्योंकि बहुत इमोशनल फिल्म थी, और मैं किसी डॉग की स्पेशली किसी एनिमल की अगर फिल्म में डेथ होने वाली होती है मैं पहले ही फिल्म बंद कर देती हूँ, देखना ही नहीं है मुझको, मैं इमोशनल इंसान, रोने लग जाती हूँ। पर आप नहीं रोने वाले हो, आप हंसने वाले हो, इमोशनल होने वाले हो, और आई थिंक आप देखने जाने वाले हो आने वाली फिल्म ओ माई डॉग। आप अपनी बात ज़रूर बताइएगा चैट बॉक्स में। मिलते हैं इस गाने के उस पर आपके चैट बॉक्स में दर्शन करने की आपने क्या पैगाम, क्या मैसेजेस और क्या कुछ लिखकर भेज दिया है आपके अपने एप्लीकेशन वाले चैट बॉक्स के अंदर, जो कि आपको मिलता है प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर रेडियो 106.6 FM के नाम से। एंजॉय कीजिए हमारा अगला गाना जो कि आयुष्मान खुराना और अश्मिका के ऊपर फिल्माया गया सॉन्ग है, जिसमें साफ साफ कहा जा रहा है तुम मेरे ना हुए तो ना सही, तुम कौन सी मेरी किस्मत हो जो बदल ना सके, तुम आदत हो ना बदली जा सकती है, इतने गए गुजरे हम भी नहीं। फिलहाल लिरिक्स को पूरा यहाँ पे हम नहीं बता देते, आपको सुनाते हैं, क्योंकि अगर हमने बोल के बताया तो आप कहेंगे चलो भैया गाना कहीं और सुन लेते हैं, है कि नहीं। आइए एंजॉय कीजिए सॉन्ग नंबर 18 और हम मिलते हैं अगले गाने पर, तब तक के लिए सुनते रहिए इंटर टॉप 20 आपके अपने FM रेडियो 106.6 FM यह गुना शहर की धड़कन पर अपनी आरजी के साथ। स्टे ट्यून्ड
1: Radio Gana 39.6 FM presents India Top 20 Songs. Song number 18.

0: मेरे ना हुए ना सही। और ये इस गाने में जो आवाज है ना, वो किसी और की नहीं, बहुत ही आजकल की ट्रेंडिंग एक सिंगर हैं जिनका नाम है मधुमानती बख्शी। उनकी आवाज़ सचिन जिगर का म्यूजिक है और अमिताभ भट्टाचार्य ने इस गाने के खूबसूरत बोल लिखे हैं। रश्मि का आयुष्मान पर फिल्माया गया थामा का सॉन्ग, यानी कि वो ड्रैकुला वाली फिल्म जिसको आपने देखा है। वैसे तो ड्रैकुला आप हमेशा देखते आए हैं हॉलीवुड फिल्मों में, लेकिन इस बार बॉलीवुड ने लगाया एक्सपेरिमेंट और आपको इंडियन ड्रैकुला भी दिखा दिया। वैसे खून पीने वाला ड्रैकुला था क्या वो, मैंने देखा नहीं। आइए चलते हैं हमारे चैट बॉक्स की तरफ और देख लेते हैं चैट बॉक्स में क्या मैसेजेस आ चुके हैं और हमारे साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है। तो भाई हमारे साथ जुड़ी हैं तमन्ना अरजू जी, कैसी हैं आप, आपका स्वागत करते हैं। और आपने लिखा है गुड आफ्टरनून मैम जी, गुड आफ्टरनून टू यू, आई होप आप बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी और जैसी आपका नाम है उतनी ही खूबसूरत और उतनी ही मुस्कान के साथ आप कहीं ना कहीं हमारे प्रोग्राम को सुन रही होंगी। इसके बाद महेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी राजस्थान से। लिखा है मैं महेंद्र दीपन, गाँव रूड जिला नागौर राजस्थान से। सबसे पहले आर्जुनती मैम जी और चैट बॉक्स में मौजूद मेरे सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार आपको भी। कुंडा की इस प्यारी सी महफिल में हम राजस्थान की खुशबू लाए हैं और हम आपका स्वागत करते हैं तहे दिल से। उन्नति मैम की मीठी आवाज़ सुनने हम नागौर से दौड़े आए हैं। क्या बात है जनाब, आइए आइए, स्वागत है अगेन। चैट बॉक्स के सभी दोस्तों को दिल से मेरा सलाम है। आप सबकी बातों से ही रोशन होती हमारी ये दोपहर है और हमको लगा आपकी रोशन हम शाम भी कर रहे हैं। रेडियो की सुहानी लहर में चलो मिलकर कुछ रंग जमाते हैं, आज फिर कुछ अच्छे गीतों से अपनी इस महफिल को सजाते हैं। बहुत खूब, बहुत बेहतरीन और बहुत प्यारा लिखा है। इतना प्यारा लिखा है कि हमने इस फोटो लेकर भी अपने पास सेव कर ली है। एंड इसके बाद दीपक जी हमारे साथ जुड़ गए अतियागढ़ गोंडा से, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून आज होती मैम जी, गुड आफ्टरनून टू यू, कैसे हैं आप, आपका भी स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं आपके अपने शो इंटर टॉप 20 में। और क्या ख्याल है अगले गाने की तरफ बढ़ा जाए? अब बेशक बढ़ा जाए क्योंकि भैया इंटर टॉप 20 सुन रहे हैं और ऑलमोस्ट आधा घंटा हो चुका है मुझे आपके साथ मौजूद रहे और इंजॉय करते करते ये सॉन्ग पेश करते हैं आपके लिए। इंटर टॉप 20 का सॉन्ग नंबर 17 धुरंधर फिल्म से शरारत सिखावा। आइए मैं भी आपको थोड़ा शरारत सिखाती हूँ, इस डांस के स्टेप आप सीख कर आइए, मुझे भी सिखाइए क्योंकि मुझको डांस वांस नहीं आता, गाना भी नहीं आता। वो अलग बात है कि हम गाना गाने की कोशिश करते हैं और गा उल्टा देते हैं जो भी होता है। इन्जॉय करते रहिए और इसके बाद हम चलेंगे आपकी टॉप फिल्मों की रेटिंग की तरफ और जो नई फिल्में आने वाली हैं उनके थोड़ी सी बातें करने वाले हैं कि कौन सी फिल्म आने वाली है, कब आने वाली है इसका तो ऐलान नहीं हुआ है लेकिन आने वाली है तो ये नाम हमें पता चल गया है, तो जरा आपको भी बताएं लेकिन इस गाने के उस पार। तो बने रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अगले बीट पर, अगले ट्यून पर, अगले म्यूजिक, अगले सॉन्ग के साथ। स्टे ट्यून्ड।
1: रेडियो 99.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 17।

हाँ जी, तो धुरंधर से आप एंजॉय कर रहे थे वो पावरफुल हिट गाना जिसपे तो भैया प्रियंका चोपड़ा के हस्बैंड भी डांस कर चुके हैं, यानी कि निक जोनस भी डांस कर चुके हैं। और आवाज किसकी थी, चलिए वो भी बता देते हैं। आवाज थी मधुबंती बख्शी और जैस्मीन जी की। शाश्वत का म्यूजिक था और नाम था शरारत सिखावा। इसके अलावा जैस्मीन ने और शाश्वत जी ने ही इसके बोल लिखे थे, जो कि इतने खूबसूरत थे, इतने प्यारे थे, इतने जानदार थे ना, कि सुनने के बाद आपके हाथ पैरों पे, अगर आप हेडफोन के साथ सुन रहे हैं तो गारंटी से मैं कह रही हूँ आपको नाचने का मन करने लगता है। स्पेशली काफ़ी ट्रेंडिंग सॉन्ग रहा इंस्टाग्राम पर, हर किसी ने इसके हुक स्टेप को फिल्माया है और करने की कोशिश की है, दोहराया है। प्लस बाहर के यानी कि विदेशी लोगों ने भी इसको करने की कोशिश की, स्पेशली योर नेबरहुड, आपका पड़ोसी चाइना, उसने भी इस पर डांस किया है। वैसे कहा, वैसे सुना जा रहा है, मतलब कह सकते हैं हम कि आजकल इंडिया का म्यूज़िक ना बॉर्डर पार कुछ ज़्यादा जा रहा है। चाइना देख लीजिए, जापान देख लीजिए, जापान में तो भोजपुरी गानों की भैया बौछार हो चुकी है, न जाने क्यों, लेकिन हरियाणवी और भोजपुरी गाने बहुत ज़्यादा सुने जा रहे हैं जापान के अंदर। अब लोग कई लोग ये भी कह देते हैं कि हो सकता है इनको एनजीआ वाले चाहिए, यानी कि फॉलोवर्स चाहिए। कुछ कहते हैं नहीं भैया, म्यूजिक में बात है, बॉलीवुड के सॉन्ग बॉर्डर पार जा चुके हैं और हर कोई इंजॉय कर रहा है, फिर चाहे वो अमेरिका हो, चाइना हो, जापान हो, कोरिया हो, ये हो, वो हो, कोई भी हो। और ऑफकोर्स कुछ ऐसे ट्रेंड होते हैं, स्पेशली अगर म्यूज़िक की बात करें तो म्यूज़िक कभी भी एक बॉर्डर के अंदर नहीं रहता, एक देश के अंदर नहीं रहता, वो हमेशा बॉर्डर क्रॉस करता ही करता है। और ये चीज़ जब से सोशल मीडिया हमारे पास आया है तब से और ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही है, और जो कि मुझे बड़ी खूबसूरत भी लगती है कि हमें भले ही भाषा समझ में नहीं आती है, इसके बाद भी हम उस गाने को इस कदर इन्जॉय करते हैं, इस कदर इन्जॉय करते हैं, जैसे कि हम बचपन से ही उस भाषा को बोलते आ रहे हैं। हमें कुछ समझ में नहीं आता उसमें कहने का मतलब क्या है, वो क्या कहना चाह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, इसके अर्थ क्या निकल रहे हैं, किसके लिए डेडिकेटेड है, क्यों लिखा गया है, कुछ मतलब नहीं है। बीट्स को एंजॉय करते हैं, उस आवाज़ को एंजॉय करते हैं, सिंगर को एंजॉय करते हैं, और कहीं ना कहीं उन इमोशंस में बह जाते हैं बिना ये जाने कि भाषा क्या है। इसीलिए कहते हैं ना संगीत में म्यूज़िक है, मतलब जादू है, म्यूज़िक में जादू है, मैजिक, म्यूज़िक, म्यूज़िक, मैजिक। और हम लोग न जाने क्यों जादू का इंतज़ार करते रहते हैं कि कोई जादूगर आएगा तो जादू दिखाएगा। भैया जादू आपके आसपास ही है, कभी संगीत में, कभी किसी के साथ रहने में, कभी किसी को हक कर लेने में, बेवजह बस यूं ही, और इसको ही तो कहते हैं जादू। चलिए अब बात कर लेते हैं उन फिल्मों की जो रिलीज़ हुई थी 2026 में और जिनकी रेटिंग IMDb पर सबसे ज़्यादा आ रही हैं। पहला तो है पंजाब 95, जिसमें 9.3 की रेटिंग मिली है। 2 घंटे 49 मिनट की यह फिल्म है, जिसको कई लोगों ने देख भी चुके हैं, तारीफ़ें की हैं, आपने देखा है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। धुरंधर को 8.2 की रेटिंग मिली है। कॉकटेल 2 जो रिलीज़ हुई है, हालांकि इसको काफ़ी ट्रॉल किया गया है, बहुत सारे लोगों ने इसको ट्रॉल किया है ये कह करके कि इसमें कोई ख़ास बात नहीं थी, हमें कॉकटेल ही पसंद है, इसमें क्यों इस गाने को छेड़ा गया, ये वो फलाना ढिमकाना, बहुत सारी बातें हुई। इसके बाद भी इसने 7.7 की रेटिंग हासिल की हुई है। 2.5 घंटे की यह फिल्म सबके लोगों को जीत रही है। 21 रिलीज हुई थी, जो कि ऑफ कोर्स 2 घंटे 24 मिनट की है। 6.1 की रेटिंग मिली है। मैं वापस आऊंगा, एक जबरदस्त हिट फिल्म साबित हुई है। बॉर्डर पार की लव स्टोरी, जहां पर हर दूसरा इंसान बॉर्डर में एक्शन दिखाने की कोशिश करता है कि एक देश वाले दूसरे देश को किस तरह से मार पीट रहे हैं, एक्शन रिशम रिशम दिखाया जाता है, वहीं पर एक मोहब्बत की कहानी दिखाई गई है इसमें। बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत फिल्म, एक वो कहानी कि दो लोग किस तरह से सिर्फ देश अलग होने से बिछड़ जाते हैं, उनकी कहानी अधूरी रह जाती है, और इसके बाद भी उम्मीद होती है कि मैं वापस आऊँगा। अगर आपने ये इमोशनल फिल्म देखी है ना, तो मैं आपको बता दूँ ये बड़ी ही सादगी के साथ बनाई गई है। अगर आपको वो फिल्में पसंद हैं जिनमें बहुत ज़्यादा खून खराबा ना हो, जिसमें एक्शन ना हो, तोड़ा फोड़ा ना जा रहा हो, मारा मारा ना जा रहा हो, जिसमें बहुत ज़्यादा रोमांटिक सीन्स ना हो, सॉफ्ट रोमांस हो, सूथिंग हो, और फैमिली के साथ आप एंजॉय कर सकें, तो मैं वापस आऊँगा उनमें से एक फिल्म है जो आप एंजॉय कर सकते हैं। कुछ ऐसी मेमोरीज, कुछ ऐसे नॉस्टैल्जिया और कुछ ऐसे इमोशंस इसमें बंधे हुए हैं जो कहीं ना कहीं आपको भी उसमें बहने के लिए छोड़ देंगे। लोग सीट से उठ नहीं पाते जब इस फिल्म को देख कर आते हैं। इसके बाद रिलीज़ हुई थी बॉर्डर 2, जिसके बारे में सबने सुना था। गानों को लेकर काफ़ी कुछ था कि भैया पुराने गानों के साथ छेड़खानी ना करा करो, पुराने गाने पुराने ही अच्छे लगते हैं, बट थोड़ा बहुत चेंज आता है, रीमेक होते हैं, और ऑफकोर्स रीमेक होने के बाद भी वो गाने हिट ही जाते हैं। और रोमियो फिल्म आई थी, आपको याद होगा, 2 घंटे 58 मिनट की यह फिल्म थी। 5.2 की रेटिंग से आगे बढ़ी है।
सूबेदार फिल्म आई थी जिसने 6 की रेटिंग हासिल की है, और 2026 में एक और फिल्म रिलीज हुई थी जिसको कहते हैं मर्दानी 3। अब एक मैं सोचिएगा ये सिर्फ इसी महीने हुई है, जी नहीं, अभी तक 2026 में जितनी फिल्में रिलीज हुई हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। और अब बात कर लेते हैं उन फिल्मों की जो एक्सपेक्टेड हैं कि 2026 में रिलीज होंगी, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। फिलहाल कन्फर्म नहीं है बट उम्मीद तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो उम्मीद में सबसे पहले है रामायण, जिसको सुनने में आ रहा है कि भैया नवंबर 2026 में इसको रिलीज कर दिया जाएगा। वहीं पर एक फिल्म है जो कि है शाहरुख खान की, नाम है किंग। 2026 के दिसंबर 24 में एक्सपेक्टेड है कि ये रिलीज किया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें किसी और फिल्म की तो वो है दृश्यम 3, जो कि अक्टूबर 2026 में रिलीज होने वाली है। विवान फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट रिलीज होगी सितंबर 25 को, और इसके बाद जो मैंने अभी हाल फिलहाल में बताई थी ओ माय डॉग, जो आपको 31 जुलाई को देखने को मिलेगी। एक फिल्म जिसका इंतजार लोग सालों से कर रहे हैं, हालांकि ये फिल्म जब बनी थी तब तो हो गई थी फ्लॉप, महाफ्लॉप फिल्म गई थी, लेकिन उसके म्यूजिक ने सबके दिल को जीता और कुछ वक्त के बाद, एक अरसे के बाद उस फिल्म को उसकी पहचान मिली, उसको नाम मिला, और अब वापस से इमरान हाशमी उस फिल्म को लेकर आ रहे हैं। नाम है आवारापन 2। सुनने में आ रहा है 14 अगस्त 2026 को इस फिल्म को रिलीज कर दिया जाएगा। तो भैया ये वो फिल्में हैं जो एक्सपेक्टेड हैं कि रिलीज होंगी ही होंगी। मिर्ज़ापुर अगर आप देखना चाहते हैं, मिर्ज़ापुर द मूवी सितंबर 4, 2026 को रिलीज़ होने की बात की जा रही है। डॉन 3 रिलीज़ होने वाली है। स्पेशली सुनने में आ रहा है कि 25 दिसंबर 2026 को इसका फाइनल चैप्टर रिलीज़ किया जाएगा, चामुंडा। और ये वो फिल्में हैं जो रिलीज़ हो सकती हैं। भेड़िया 2 पर काम चल रहा है फिलहाल। हॉन्टेड 3D, अब ये बताइए ये रिलीज़ हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। और हम आपको लेके चलेंगे उस गाने की तरफ जिसमें दिशा पटानी नज़र आई थी। 2000 के जितने भी किड्स हैं उन्हें थोड़ी सी मिर्ची लगी थी कहकर कि नहीं नहीं भैया इस गाने पर तो हमें सिर्फ कैटरीना कैफ ही पसंद आती है, तुमने हमारी बारबी डॉल को हटा करके कहाँ से दिशा पटानी रख दी, गानों के साथ ऐसी छिड़कानी पसंद नहीं है। और उन्होंने कहा कि आप समझ में आता है कि जब पापा के गानों का रीमेक बनता था तो उन्हें क्यों इतना बुरा लगता था। फिलहाल गाना अगर आप समझ गए हो, क्योंकि ये गाना भी बहुत ज़्यादा हिट गया है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। दिशा पटानी की इसमें इतनी खूबसूरत नज़र आई हैं, प्लस उनके साथ नज़र आए हैं अक्षय कुमार, जो अपनी एज के, दिशा पटानी की एज के डबल हो रखे हैं, लेकिन वो एनर्जी, वही रुतवा, वही उम्दा कलाकारी वो लेकर आए हैं दोबारा से। तो आइए एंजॉय करते हैं ऊंचा लंबा कद 2.0। स्टे ट्यून्ड। Radio Gana 79.6 FM presents India Top 20 Songs. Song number 16.

0: हां जी, तो भैया 2000 के जितने भी बच्चे थे वो तो खुश हो गए होंगे या थोड़े से उदास भी हो चुके होंगे, आई डोंट नो, क्योंकि कई बार जब हमारे पसंदीदा गानों का रीमेक हो जाता है ना तो हमें थोड़ा सा बुरा लग जाता है कि अरे यार ये क्या हो गया, वो वाइब चली गई। बट मुझे लगता है कुछ लोग बड़े खुश हो जाते हैं ये सोचकर कि अरे वाह मेरे गाने का रीमेक। तो आप किस कैटेगरी से आते हैं मुझे ज़रूर से बताइएगा। और अब बारी है उन लोगों की जो 90s में आए थे, जिन्होंने इस बेहतरीन से गाने को दिल से इंजॉय किया था, दिल क्या फेफड़ों से भी इंजॉय किया था, क्योंकि गाना इतना खूबसूरत था ना, अभी भी है एक्चुअली। गाने का नाम है ए जाते हुए लम्हों, ज़रा ठहरो ज़रा ठहरो। आइए इस बेहतरीन से नगमे को सुनते हैं, लेकिन 90s वाला वर्जन नहीं, बॉर्डर 2 में जो रिलीज हुआ है वो वाला। देखते हैं अब आपको ये गाना कितना ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि इस गाने को लेकर भी बड़े सारे लोग आए थे जो कहते थे ये इस गाने का रीमेक नहीं होना चाहिए। बट वहीं पर कुछ लोग कहते थे कोई बात नहीं बॉस, मज़ा तो है, वाइब तो है और गाना तो वही है, लिरिक्स भी वही है, बस नया अंदाज़ है, नई आवाज़ है और हम तो इन्जॉय करेंगे। अब आप किस कैटेगरी से आते हैं मुझे ज़रूर से बताइएगा। हर गाने हर फिल्म जो भी किसी की रीमेक बनती है या किसी से इंस्पायर्ड होकर बनती है हमेशा दो कैटेगरीज में ज़रूर बटती है, एक जो सपोर्ट में होते हैं, एक जो हमेशा विरोध में होते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। फिलहाल आप इन्जॉय करते रहिए सॉन्ग नंबर 14 और देखते ही देखते एक घंटा कंप्लीट होने जा रहा है और अभी तक हम सिर्फ अपने 14 नंबर के ही गाने पर आए हैं। देखते हैं, संडे का वक्त कुछ ज्यादा जल्दी गुजरता है ऐसा मुझे लगता है या आपको भी लगता है, बताइए बताइए। फिलहाल एंजॉय करते रहिए आपका अपना शो इंटर टॉप 20 अपनी आज नदी के साथ, आपके अपने एफएम रेडियो 89.6 एफएम पर। स्टे ट्यून्ड,
1: रेडियो 89.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 14।

0: भाई इस गाने के ना जो ओरिजिनल क्रिएटर हैं, यानी कि जिन्होंने इस गाने की असल बोल लिखे थे, उनका नाम था जावेद अख्तर साहब, और अनु मलिक ने इसका म्यूजिक दिया था, बट जो ये रिक्रिएट हुआ है इसका म्यूजिक दिया है मिथुन ने, रूप कुमार राठौड़ और विशाल मिश्रा ने अपनी आवाज दी है। रूप कुमार राठौड़ को देखकर, उनके नाम को सुनकर कई लोगों का दिल खिल उठता है, उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, क्योंकि रूप कुमार राठौड़ इतने मोहब्बत के साथ, इतनी सादगी और इतने इत्मीनान के साथ किसी गाने को गुनगुनाते हैं कि इंसान कितना ही टेंशन में क्यों ना बैठा हो, फ्रस्ट्रेट होकर गुस्सा हो कि ये हटाओ यार, सब फेंक देंगे, तोड़ देंगे, वो आते ही ना कहीं शांत हो जाता है और एकदम आराम से बस उनकी आवाज में कहीं तक तो हो जाता है। सूथिंग सॉन्ग्स, और ऑफ कोर्स जो पुराने सिंगर हैं जो आराम से जमीन पर बैठकर अपने तबले के साथ, अपने ढोलक के साथ, एक प्यारा सा माइक लेकर बस गुनगुनाते हैं, गाते हैं, और उन लम्हों में आप कहीं ऐसे खो जाते हैं कि आपको लगता ही नहीं कि ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम भी है। ऐसा था प्रॉब्लम सब खत्म हो चुकी है, सब बढ़िया, एकदम शांत माहौल है, शांत ज़िंदगी चल रही है, और ये लम्हा बस यूं ही अभी ऐसे ही ठहर जाए, काश ये कभी ना गुजरे। और ऐसी ही आवाज़ हमारे कुछ प्यारे प्यारे सिंगर्स की है, जिसमें से मोहम्मद रफ़ी साहब हैं, जिसमें से आरडी बर्मन के सॉन्ग हैं जिनको हम पंचम दा कहते हैं, जिसमें किशोर कुमार की आवाज़ है, जिसमें आपके फेवरेट रूप कुमार राठौड़ साहब हैं, विनोद राठौड़ हैं, अभिजीत भट्टाचार्य हैं, अरिजीत सिंह की आवाज़ है। अरिजीत सिंह ने तो भैया हर जॉनरे को टच किया है, यहाँ तक कि उन्होंने अरेबिक सॉन्ग भी दिया है, आपको याद होगा बिंत दिल, जी हाँ, वो थोड़ा सा अरेबिक टच में है और उन्होंने उस गाने को भी गाया है, गुनगुनाया है। हार्ट ब्रेकिंग सॉन्ग से लेकर मोहब्बत में डूब जाने तक के गाने दिए हैं उन्होंने। तो भैया ये वो सिंगर्स हैं ना बॉलीवुड के जो अपने जॉनरा से निकलकर बाहर निकलते हैं, आपको अपनी फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकालते हैं, स्ट्रेस से बाहर निकालते हैं, और बस संगीत की इस खूबसूरत महफिल में आपका स्वागत करते हैं, प्लस आपको कहीं लेकर चले जाते हैं। हमारे साथ चैट बॉक्स में ओके महेंद्र जी जुड़े हैं, जिन्होंने लिखा था थैंक यू मैम जी, वेलकम टू यू। एंड विभू जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू यू, आपका भी स्वागत करते हैं। महेंद्र जी ने लिखा है गाना सुपर ढूंढ कर लाई हूँ नती मैम जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मैम मुझे तो रीमेक गाने अच्छे नहीं लगते, तो भाई आप ओजी ही सुनिए, ओजी इन्जॉय करते रहिए, लेकिन मेरे इस प्लेलिस्ट के गाने आपको बेहद पसंद आने वाले हैं, ऐसा मैं दावा कर सकती हूँ थोड़ा थोड़ा सा। फिलहाल आइए चलते हमारे अगले गाने की तरफ, और उसके बाद हम रुख करेंगे अपने बॉलीवुड की तरफ दोबारा से। बॉलीवुड में कुछ गाने हैं, कुछ बातें हैं, कुछ न्यूज़ हैं जो आप तक पहुँचानी है, लेकिन अब मैं असेंबल करना चाहूँगी उनको जो है पंजाबी सॉन्ग्स के पगलू, यानी कि वो दीवाने लोग जो पसंदीदा, जिनके पसंदीदा जॉनरा पंजाबी सॉन्ग है, जिन्हें जैस्मीन की आवाज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आइए आपको सुनाते हैं उन्हीं का एक सॉन्ग उनकी आवाज़ में, सिप सिप, स्टे ट्यून्ड।
1: रेडियो 89.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 13।

0: गजेंद्र वर्मा की आवाज में आप एंजॉय कर रहे हैं मन मेरा टेबल नंबर 21 से। भाई कई लोगों का पसंदीदा गाना हमने प्ले कर दिया है और राहुल श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो हमसे कह रहे हैं भैया इश्क दे फनियर बजा दे, हम बजा देते लेकिन माफ़ी चाहेंगे आपसे, तहे दिल से माफ़ी चाहेंगे क्योंकि आज हमारा फरमाइशों का कार्यक्रम नहीं जाता है। उम्मीद करूंगी आप शाम में सेम मैसेज करेंगे और हमारे शाम के आर्जे यानी कि इवनिंग में जो आर्जेज आते हैं वो आपकी इस फरमाइश को ज़रूर से प्ले करें। लेकिन इंडिया टॉप 20 की प्लेलिस्ट पहले से डिज़ाइन की जाती है तो इसमें चेंजेस करना इम्पॉसिबल है, सो आई एम सो सॉरी। फिलहाल आइए चलते हमारे अगले गाने की तरफ और एंजॉय करते हैं सॉन्ग नंबर 11, जिस फिल्म की हमने तारीफों के पुल बांधे थे यानी कि मैं वापस आऊँगा, जिस फिल्म की हमने बात की थी, जिस मोहब्बत की हमने बात की थी, उसका एक गाना जो कि इंस्टाग्राम पे बहुत ट्रेंड कर रहा है, बहुत ज़्यादा आग लगा रहा है, लोगों के दिलों में अपनी जगह बना रहा है, वो है मस्कारा। तो आई एंजॉय करते रहिए इस प्यारे से ब्यूटीफुल से बेहतरीन से गाने को आपके अपने इंडिया टॉप 20 की प्लेलिस्ट में। मैं मिलती हूँ इस गाने के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: Radio Garasari 9.6 FM presents India Top 20 Songs. Song number 11.

हां जी, तो आपने एंजॉय किया मस्कारा इरशाद कामिल के बोल हैं, निलंजना होश दस्तीदार और वेदांग रैना की आवाज, और आपने एंजॉय किया इस खूबसूरत गाने को जिसका म्यूजिक अरेंज किया गया था बाय एआर रहमान। तो दोस्तों क्या ख्याल है, इस बेहतरीन से सूथिंग गाने के बाद कुछ अलग हो जाए? अगर हाँ तो आइए चलते हैं हमारे सॉन्ग नंबर 10 की तरफ, आपको एंजॉय करवाते हैं एक और उम्दा गाना। लेकिन उससे पहले तमन्ना जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो अगेन लिख रही हैं गुड आफ्टरनून अति मैम जी, गुड आफ्टरनून टू यू। अक्षय सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो लिख रहे हैं हेलो मैम, गुड आफ्टरनून टू यू, आपका स्वागत करते हैं इंटर टॉप 20 में। आइए चलते हैं सॉन्ग नंबर 10 की तरफ रुख करते हैं, और ऑफकोर्स वक्त गुजरता जा रहा है लेकिन इन गानों का जो भूत है ना, जो दीवानगी है, वो मेरे सर से नहीं उतर रही है। आई थिंक आपके भी नहीं उतर

शान की आवाज की शांति पसंद आई? अगर हाँ तो आप सुन रहे थे तूने मुझे पहचाना नहीं, राजू चाचा फिल्म से जतिन ललित का म्यूजिक, आनंद बख्शी के बोल, और आपने एंजॉय किया खूबसूरत सॉन्ग सॉन्ग नंबर 10। इसी के साथ आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ, यानी कि सॉन्ग नंबर 9 आपका वेट कर रहा है और मैं इंतजार करूंगी इस गाने की रेटिंग का कि आपको ये गाना शान की आवाज में किस कदर पसंद आया, कितना ज्यादा पसंद आया, क्योंकि वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग और इसको अक्सर मैं शाम या फिर रात में सुनती हूँ और बारिश के मौसम में इस तरह के बेहतरीन और कहीं ना कहीं शांत कर देने वाले गाने बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं हमेशा। बारिश का ना अपना ही एक जलवा होता है, जब भी बारिश आती है आपका टेस्ट बदल जाता है। हो सकता है कि आपको पकौड़े बिल्कुल पसंद ना हो, हो सकता है आपको चाय बिल्कुल पसंद ना हो, हो सकता है आप कभी चाय ना पीते हो, लेकिन बारिश आते ही ना जो क्रेविंग होती है वो थोड़ी अलग होती है। चाय पकौड़ों की क्रेविंग होती है, बाहर सुकून से बैठकर किसी के साथ बात करना, और अगर

0: अकेले बैठे हो तो एक बुक या फिर कोई बढ़िया सा म्यूजिक सुन, और म्यूजिक वैसा वैसा नहीं, कोई बहुत ज्यादा हाई बीट सॉन्ग सुनने का मन नहीं करता, तब मन करता है शान की आवाज में कुछ इस तरह के गाने सुनना, चांद सिफारिश सुनना कैलाश खेर की आवाज में। अगर आप भी उनमें से एक हैं जो बारिश आते ही अपनी प्लेलिस्ट को थोड़ा सा बदल कर ले आते हैं सूथिंग सॉन्ग की तरफ, और उसके बाद कानों में ईयरफोन लगाकर हाथ में एक कप चाय की प्याली पकड़कर और अपनी विंडो के पास खड़े होकर इस मौसम का मजा लेते हैं, तो इस गाने को रेटिंग करना तो बनता है बॉस। फिलहाल आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ, और आप एंजॉय करने जा रहे हैं बॉर्डर टू से कि घर कब आओगे। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते इस गाने के बाद, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: रेडियो 99.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 9।

0: हिमेश रेशमिया की आवाज में आपने इस एनर्जेटिक सॉन्ग को एंजॉय किया और वक्त है अब अगले गाने की तरफ चलने का। अगला सॉन्ग जो आपके लिए पेश करने जा रहे हैं इंडिया टॉप 20 में, वो होने वाला है धुरंधर फिल्म से अगेन, और आप एंजॉय करने जा रहे हैं एक रोमांटिक गाना। धुरंधर से भी अब तक आपने एक हाई एनर्जेटिक सॉन्ग सुना था शरारत, लेकिन अब आप एंजॉय करेंगे बेहद रोमांटिक सॉन्ग। जैसा बाहर मौसम हो रखा है वैसा ही कुछ अंदाज है इस सॉन्ग का, और नाम है गहरा हुआ। आइए एंजॉय करते हैं, मिलते हैं इस गाने के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: रेडियो 99.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 7।

0: हाँ जी, मीका सिंह की आवाज में आपने एंजॉय किया समथिंग समथिंग। और अब वक्त है अगले गाने की तरफ चलने का। अगला गाना शान की आवाज में तारारंबम से हम आपको सुनाना चाहते हैं, हे शोना, हे शोना। और ये गाना उसको भेजिए जो आपका है शोना, मतलब जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और जिसके रूठ जाने पर भी आपको मोहब्बत नज़र आती है। तो ये गाना उनको ज़रूर से डेडिकेट कीजिएगा, अपने स्पेशल वन को ज़रूर भेजिएगा। सुनते रहिए इंटर टॉप 20 का सॉन्ग नंबर 5 अपनी आर्जुनति के साथ, स्टे ट्यून्ड।
1: Radio Garasari 9.6 FM presents India Top 20 Songs. Song number 5.

0: तुम हो जो रहा हो।
1: हां जी, अब तो फॉरएवर, और ये उनको जो है हमारे जिगरी दोस्त यार, जिनको हम कहते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, और अगर वो हाँ कहे ना कहे तो क्या फर्क पड़ता है, दोस्त है, और अब तो फॉरएवर वाला दोस्त है। इसी के साथ आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। सॉन्ग नंबर 3 पेश करते हैं आपके लिए, आपका पसंदीदा चढ़ती जवानी तेरी चाल मस्तानी। स्टेडियो
2: रेडियो 89.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स। सॉन्ग नंबर 3

0: हाँ जी, और उसी के साथ आइए चलते हैं हमारे अगले यानी कि आखिरी के दो गानों की तरफ जो आपके लिए पेश करते हैं बैक टू बैक। आ ही जाइए और शान की आवाज में सुनो ना सुनो ना सुनो ना सुन लो ना। आई होप आपको ये गाना पसंद आएगा। और इसी के साथ अब मैं आपसे चाहूंगी इजाजत, मुलाकात होगी आपसे बस कुछ ही लम्हों में अपने अगले वाले शो क्लिनिक ज्ञान असली में, जिसमें बात करने वाले हैं मानसून के ऊपर, यानी कि मानसून में होने वाले जो बीमारियां हैं जिनको लेकर काफी अलर्ट जारी कर दिया गया है, वार्निंग मिल चुकी है, वो कौन सी हैं, क्या हैं, किस लिए हैं, कैसे उनसे बचना है, सारी बातें करेंगे लेकिन इस शो के उस पार यानी कि दूसरे शो में अपने। तो आप सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, आप सुन रहे हैं द टॉप 20 अपनी आरजीवती के साथ आपके अपने एफएम रेडियो ज्ञान असली 99.6 एफएम पर। अपना फीडबैक जरूर से दीजिएगा कि आज का शो आपको कैसा लगा। मुलाकात करते हैं बस कुछ ही पल का इंतजार और उसके बाद वापस आते हैं आपसे बात करने। स्टे ट्यून्ड,
1: रेडियो ज्ञान असली 99.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स। सॉन्ग नंबर 2।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है और इसका असर सालों तक रह सकता है।
1: पैरों में सूजन, बुखार, थकावट, ये हो सकते हैं फाइलेरिया के लक्षण, लेकिन घबराइए मत, बचाव मुमकिन है।
0: हर साल एक बार खाओ दवाई प्यार से, फाइलेरिया दूर भगाओ, स्वस्थ जीवन अपनाओ। फाइलेरिया की दवा सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। ये दवा सुरक्षित है बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी के लिए।
1: बस याद रखिए, जब आपके गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता आए तो दवा जरूर लें और दूसरों को भी दिलवाएं।
0: फाइलेरिया से डरना नहीं, दवाई से लड़ना है। एक छोटी गोली सेहत में बड़ी जीत।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं आपकी अपनी आरजी आकांक्षा और आज हमारे बीच में आई हुई हैं आप सभी के स्वास्थ्य का पूरा पूरा ख्याल रखने वाली हम सभी की प्यारी आशा बहन जी, और सबसे पहले मैं इनका स्वागत करना चाहूंगी। नमस्ते दी, कैसी हैं आप?
3: जी नमस्ते, मैं बहुत अच्छी हूं और धन्यवाद आपको, आपने हमें यहाँ बुलाया।
2: अब हम जानेंगे कि आज ये हमसे कौन सी जानकारी साझा करना चाह रही हैं, लेकिन उससे पहले हम इनका परिचय जानना चाहेंगे ताकि हमारे श्रोता जो हमें सुन रहे हैं वो ये जान पाएं कि आप हैं कौन।
3: जी हमारा नाम रेनू सिंह है, मैं गोंडा नगर से हूँ
2: जी,
3: और आज हम बात करेंगे टीबी और कुष्ठ रोग बीमारी के बारे में।
2: जी बहुत बहुत शुक्रिया दी। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में टीवी मरीजों में कमजोरी या वजन कम होने की समस्या कितनी आम है और आप इसे पहचानने के लिए क्या संकेत देखती हैं?
3: जी हमारे क्षेत्र में ये समस्या आम तो नहीं कह सकते क्योंकि धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं
2: जी,
3: और इसका इलाज भी पूरी तरीके से संभव है अब। लेकिन क्षेत्र भ्रमण के दौरान कभी कभी देखने को मिलता है टीबी के मरीज में अक्सर शरीर में कमजोरी, थकान, धीरे धीरे वजन कम होना, लगातार बुखार या रात में पसीना आना, भूख का कम लगना और रोजमर्रा के कामों में मन न लगना।
2: जी तो जैसा दीदी अभी आपने बताया कि भूख न लगना, तो जब आप कोई टीवी मरीज का इलाज शुरू करती हैं तो उस वक्त उसके खाने पीने को लेकर क्या सलाह देती हैं, खासकर ताकत और वजन बढ़ाने के लिए?
3: जी जब कोई मरीज इलाज शुरू करता है
2: जी,
3: तो मैं उसे तुरंत संतुलित पौष्टिक आहार लेने की सलाह देती हूँ। रोज भोजन में दाल, दलिया, दूध, दही, अंडा, सोयाबीन जैसे प्रोटीन युक्त पदार्थ शामिल करने को कहती हूँ। साथ ही हरी साग सब्जियाँ, मौसमी फल लेने को बोलती हूँ और साबुत अनाज लेना जरूरी है। थोड़ी थोड़ी सही, वर्ष दिन में कई बार खाएं, पानी भरपूर मात्रा में पीना, तला भुना या बहुत मसालेदार भोजन कम करना या ना करने की सलाह देती हूँ और मरीज को समझाती हूँ कि डॉक्टर द्वारा दी गई दवाएं सही समय और नियमित रूप से खाना बहुत जरूरी है।
2: मतलब आप सभी के स्वास्थ्य का पूरा पूरा ख्याल रखती हैं।
3: जी आज दीदी
2: है? क्या बात है। अभी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी दीदी कि क्या टीबी मरीजों और उनके परिवारों को सरकारी पोषण सहायता जैसे राशन, निश्चय पोषण योजना आदि मिल पाती है? इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है आपके क्षेत्र में, जब आप जाते हैं तो दिक्कत कहाँ देखने को पाते हैं?
3: हाँ, टीबी मरीज और उनके परिवार को सरकारी पोषण सहायता जैसे राशन और निश्चय पोषण योजना मिलती है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जानकारी की कमी की होती है। कई मरीजों को यह पता ही नहीं होता कि यह सुविधा मिल सकती है। कुछ जगहों पर कागजी प्रक्रिया जटिल होती है, बहुत कठिन होती है
2: जी।
3: कई बार आधार या बैंक खाते की समस्या के कारण पैसा समय पर नहीं पहुंच पाता है, जिससे मैं अपने क्षेत्र में जाती हूं तो लोगों को सही जानकारी देकर सरकार द्वारा जो उनको राशि मिलती है और राशन है, निश्चय रोग के जो पोषण तत्व हैं, जो सहायता मिलती है उसकी उनको जानकारी देती हूँ
2: जी,
3: और ये सुविधा उन तक पहुँचाने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ।
2: क्या बात है भाई, आप कहीं ना कहीं वो कड़ी हैं जो हमारे सरकार और हमारी जनता के बीच में एक संपर्क स्थापित करती हैं।
3: जी दीदी
2: जी, इसके लिए आप बधाई की पात्र हैं। अब आपसे एक और सवाल है मेरा कि आपके अनुभव में बेहतर खाना या सही पोषण मिलने से टीबी मरीज के इलाज और ठीक होने में क्या फर्क पड़ता है?
3: मेरे अनुभव में सही पौष्टिक भोजन मिलने से टीबी मरीज के इलाज में साफ फर्क पड़ता है। इससे शरीर की ताकत बढ़ती है, दवाएं बेहतर असर करती हैं और मरीज जल्दी ठीक होने लगता है, वजन बढ़ता है और कमजोरी कम होने लगती है और बीमारी से लड़ने की क्षमता मजबूत होती है।
2: तो दोस्तों, टीबी सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक सामाजिक जिम्मेदारी है। डॉक्टर, आशा दी और आप तीनों मिलकर ही इसे हरा सकते हैं। सुनते रहिए अपना सामुदायिक रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ जो होगी आपके लिए बहुत लाभकारी। धन्यवाद।
4: हां जी, हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? गुड इवनिंग। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन। पर आपकी आशुनती मौजूद हैं आप सभी के साथ लेकर के संडे का हेल्थ का स्पेशल शो क्लिनिक ज्ञानस्थली, जिसको हम लेकर आते हैं सेहत सही लाभ के बैनर के तले स्मार्ट NGO और रेडियो ज्ञानस्थली की एक बहुत ही खूबसूरत पहल, जिसमें बात है आपके सेहत की। क्योंकि भाई, हेल्थ इज़ वेल्थ, बचपन से आपने ये लाइन सुनी है और हम इस बात को मानते भी हैं। मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में इस वक्त हमारे हेल्थ एक्सपर्ट राहुल विश्वकर्मा जी, जिनका मैं स्वागत करती हूँ। कैसे हैं सर आप?
5: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम बिल्कुल अच्छे हैं, आशा करते हैं कि आप भी अच्छे होंगे और हमारे लिसनर्स भी अच्छे होंगे।
4: जी, और क्योंकि बारिश हो रही है, मॉनसून का सीजन आ चुका है आई थिंक।
5: जी, मुझे भी लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं दस्तखत तो दे ही दी है मॉनसून ने। और धीरे धीरे अभी जितना चाहिए उतना पानी तो नहीं बरस

0: पकौड़ों का नाम तो सुनते ही सुनते हो, और उसके बाद जो होता है उसको फूड पॉइजनिंग कहते हैं।
1: जी बिल्कुल, और इन बीमारियों का थोड़ा सा फ्लक्चुएशन बढ़ जाता है ऐसे सीज़न में, तो बिल्कुल उनके बचाव के बारे में, उनसे सुरक्षित रहने के तौर तरीकों के बारे में और ऐसी तमाम चीज़ों के बारे में अवेयर करने के लिए हम आते हैं हर संडे, और इस बार फिर आ गए हैं। जल्दी से अपना मोबाइल फ़ोन उठा लीजिए, हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करके या हमें डायरेक्ट कॉल करके भी आप अपनी समस्याओं को पूछ सकते हैं।
0: हमारा कॉलिंग नंबर है 6393316429, आई रिपीट 6393316429, और चैट बॉक्स आपको मिलता है एप्लीकेशन पर, जो आपको मिलेगी प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर। फिलहाल क्योंकि मॉनसून आ चुका है, बारिश हो रही है और हर जगह पर नमी बनी हुई है, आसपास चावल के खेत भी तैयार हो चुके हैं, उनमें कहीं ना कहीं बीज लगा दिया गया है, वो जो पेड़ लगाए जाते हैं लगा दिए गए हैं, और अब वहाँ से कुछ जापानी बुखार जैसे मच्छर भी निकल के सामने आने वाले हैं, बस कुछ दिनों का इंतज़ार है।
1: जी बिल्कुल, और इसी के साथ और भी तमाम बीमारियां, मच्छरों से संबंधित जो समस्याएं होती हैं, कई बार जो है फंगल इन्फेक्शन जैसी भी चीज़ें बढ़ती हैं, स्किन के दूसरे इन्फेक्शंस और वायरल इन्फेक्शन भी कहीं ना कहीं ऐसे सीज़न में देखने को मिलता है।
0: और हमने हाल फिलहाल में एक और इन्फेक्शन या फिर कहें एक और बीमारी के बारे में सुना है, जिसके लिए वार्निंग जारी कर दी गई है, स्पेशली इन मुंबई।
1: जी बिल्कुल, ऐसी नई नई बीमारियां भी आती रहती हैं जिनके लिए हमारे सरकार को और दूसरी संस्थाओं को अवेयरनेस के लिए और चीज़ों को जागरूकता के लिए नोटिफिकेशन जारी करना पड़ता है।
0: और उस बीमारी का नाम है लेप्टोपोरोसिस, आपने नाम सुना होगा आई थिंक।
1: जी बिल्कुल, लैक्टोपोरोसिस ये एक नई बीमारी, खैर मतलब इतनी भी नई नहीं है, लेकिन अब चूंकि कई बार उनके स्प्रेड होने के और उनकी महामारी फैलने के बाद उन बीमारियों, जैसे अब हमारा जो कोविड था ये भी इतना नया नहीं था हमारे लिए, ये इसके पहले भी इंट्रोड्यूस हो चुका था, बट उसके बाद जब ये समस्याएं आती हैं कि कोई मतलब महामारी स्प्रेड हो जाती है और कोई बड़ा पैंडेमिक क्रिएट होता है, तब हमें उसके बारे में पता चलता है।
0: तब जाकर हम सोचते हैं कि अरे इस बीमारी से बचना भी तो है।
1: जी बिल्कुल,
0: तो ऐसी ही बीमारी फिलहाल मॉनसून में आ गई है। इस बीमारी की तरफ जाने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, ये आजकल जो पानी भर रहा है सड़कों पर और इससे लोग गुजर रहे हैं, इन पानी में कहीं पैर डाल रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, बच्चे कूदते रहते हैं, क्या इनसे भी किसी तरह की कोई बीमारी फैल सकती है या फैल रही है?
1: जी देखिए बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो पानी का जमाव होता है जिनमें बच्चे आते जाते हैं या खेलते कूदते हैं, तो जाहिर सी बात है वो पानी का जो जमाव होता है उसमें तमाम तरह के बैक्टीरिया और दूसरी गंदगियाँ, टॉक्सिसिटीज़ रहती हैं, कूड़ा कचरा। देखिए जो पानी बरसता है वो मतलब ऐसा नहीं होता है कि उसमें बीमारियाँ हैं, लेकिन वो पानी ज़मीन पर गिरने के बाद ज़मीन पर उपस्थित जो प्रदूषण है, कूड़ा कचरा है, इनसे मिलता है और उसके बाद हमारे लिए ये घातक बनता है।
0: जी, और हम आपको बता दें कई लोगों को दिक्कत होती है कि वो गंदे पानी में जाते हैं तो उनके पैरों में कहीं ना कहीं, वो कहते हैं कि पैर पक गया है, बहुत खुजली हो रही है, बहुत पेन हो रहा है, चला नहीं जा रहा है, और इस तरह की प्रॉब्लम्स भी सामने आती हैं, इसमें फंगल इन्फेक्शन भी होता है, और ऐसी पानी के दौरान आपको अब लेप्टोपोरोसिस नाम की बीमारी के भी दर्शन हो जाएंगे अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं तो।
1: जी बिल्कुल,
0: तो पहले हम आपसे जान लेते हैं कि ये क्या है, उसे फ्लड फीवर क्यों कहते हैं?
1: देखिए ये जो समस्या है जिसको लेक्टोस्पायरोसिस या लेक्टोपोरोसिस ऐसे वर्ड से प्रोनाउंसिएट करते हैं, ये स्पेशली एक तरह का बैक्टीरिया होता है लेक्टोस्पायरा, और इस बैक्टीरिया के वजह से ये बीमारी होती है। अब समस्या ये है कि जो फ्लड डिसीज़, मतलब बारिश वगैरह के मौसम में, क्यों, तो यूजुअली क्या होता है कि ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये यूजुअली कम रहते हैं, लेकिन जब पानी, बाढ़ और ऐसी कंडीशन बनती है, जल भराव जैसी कंडीशन बनती है, तो इनका स्प्रेड बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। ऐसे कंडीशन में पानी से इनका कंटामिनेशन, जैसे अब जब जल भराव होने लगता है और वो जल जमाव भी हो जाता है, तो कई बार जो हमारे पानी के पीने के जो स्रोत होते हैं, जैसे जो भी हम नल लगा कर के रखते हैं अपने घरों में या मोटर लगा हुआ होता है वो टंकी में पानी भरता है, तो कहीं ना कहीं फिर वो फिल्टर में आता है। फिल्टर में भी कई बार, देखिए फिल्टर क्या होता है, उसमें बेशक रिवर्स ऑस्मोसिस और जो ब्लू लाइट ट्रीटमेंट होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, बट इसके बाद भी वो 100% बैक्टीरिया फ्री सेफ नहीं हो पाता है, और भी कंटामिनेशन की चीज़ें होती हैं। बर्तन जैसे जिस पानी से हम धुलते हैं, अब फिल्टर के पानी से तो हम बर्तन धुल नहीं सकते हैं,
0: बिल्कुल।
1: तो कंटामिन

0: इनेशन के चांसेस बारिश के मौसम में, स्पेशली जब भारी जल भराव या जल जमाव जैसी परिस्थिति उत्पन्न होती है, तो इन बैक्टीरियाज का ज़्यादा होता है, और इसलिए ये मतलब फ्लड डिसीज़ या ऐसी नामों से जाना जाता है।
1: अच्छा सर, ये कहते हैं कि जो ये बीमारी है स्पेशली जानवरों के या फिर जो संक्रमित जानवर होते हैं उनके मलमूत्र में पाई जाती है,
0: जी
1: कहाँ जहाँ पर वो रहते हैं, और इस वक्त क्योंकि स्पेशली गांव में मवेशी चूहे और ये सारी चीज़ें हैं पाली जाती हैं जानवर्स, और स्पेशली उस एरिया में जब पानी भरता है तो कहीं ना कहीं ये बीमारी और भी तेज़ी से स्प्रेड होती नज़र आती है आई थिंक।
0: बिल्कुल। अब जैसे अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो पानी का अरेंजमेंट है, वाटर अरेंजमेंट सिस्टम है, वो कुछ ऐसा होता है कि सभी घरों में नल लगे होते हैं। यूजुअली उन नलों से लोग पानी पीते हैं। जैसे शहरों में अगर ऐसी भारी बारिश जैसी समस्या बनती है, तो थोड़ा सा उसके लिए और भी लोग प्रिकॉशंस लेते हैं। गाँव में चूंकि उतनी सुविधाएँ उपलब्ध हो नहीं पाती हैं, तो वहाँ पर मवेशी भी होते हैं, उनके मलमूत्र भी होते हैं, और उसमें जो पाए जाने वाले तमाम बैक्टीरियाज हैं, उनका स्प्रेड बारिश के मौसम में स्पेशली पानी के थ्रू ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। तो वहाँ पर आपको ये समस्या शहरों की अपेक्षा हो सकता है ज़्यादा देखने को मिले।
1: बिल्कुल, और मैं आपसे जानना चाहूंगी जो पानी के भराव में लोग निकल रहे हैं वो निकलते ही सबसे पहले क्या करें, क्योंकि एक तो होता है कि हम सादे पानी से पैर धो लेते हैं ये सोचकर कि चलो सफाई हो गई, गंदगी से निकल के आए थे,
0: जी
1: बट मुझे नहीं लगता कि इससे जो हमारे बैक्टीरिया जो वायरस हम लेकर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं ट्रीट हुए होंगे।
0: जी
1: वो सादे पानी से 1-2% भले ही हिल गए हो अपनी जगह से, लेकिन क्योंकि वो छोटे होते हैं दिखते नहीं है, सेल्स के अंदर भी जा सकते हैं,
0: जी
1: कट लगा है तो उसके अंदर तो ऑब्वियसली जाएंगे ही जाएंगे,
0: जी जी
1: तो इसके लिए कोई भी इंसान क्या करे। अब हर वक्त जूते पहन के भी उसमें जाना जरूरी नहीं है, क्योंकि लोग जूते निकाल के जाते हैं, पानी भरा हुआ है जूते कौन
0: जी
1: पहनेगा, चप्पल पहन के जा रहे हैं, सिर्फ नल के पानी से पैर धो लेते हैं और भूल जाते हैं कि मुझे पैर दोबारा ढंग से साफ भी करना है।
0: बिल्कुल।
1: तो आप मुझे बताना पसंद करेंगे कि अगर पानी का भराव है और आप उसमें से गुजर रहे हैं और आपके पैरों से वो पानी टच हो रहा है, तो उस वक्त उसको निकलने के बाद क्या कुछ करना चाहिए?
0: ज़रूर बताना चाहेंगे। और देखिए, चूंकि जैसे मान लीजिए हम शहरों में ही ले लेते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जब भारी बारिश होती है तो गलियों में पानी भर जाता है। अब गलियों में चूंकि सड़कें तो होती हैं, सड़कों के साथ साथ नालियाँ भी होती हैं,
1: जी
0: और अगर वो पानी भरता है तो कहीं ना कहीं नालियों में भी वो पानी पहुंचता है, और नाली के पानी में वो मिक्स होता है, क्योंकि अब नाली का जो पानी होता है उसमें तमाम घरों के, सभी घरों के जो लेटरिन का टॉयलेट सिस्टम होता है उसका भी पानी जाता है, जो लोग कंज्यूम करते हैं उसका भी पानी जाता है, मतलब तरह तरह के घरों से, और तरह तरह के इन्फेक्शंस और बैक्टीरियाज जो है उसमें आते हैं। जब वो पानी सड़कों पे भरे पानी के साथ मिल जाता है, तो वो उसको भी कंटामिनेट करता है। जब आप ऐसी किसी जगहों से, अगर आपको मान लीजिए उन पानी में से होके आना ही पड़ रहा है, तो एक चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। पहले तो वो आप कपड़े चेंज करें जिन कपड़ों को आप पहन करके आए हैं। इसके अलावा अपने पैरों को, हाथों को अच्छी तरीके से और किसी साबुन से या हैंड वॉश से, इन सभी चीज़ों से साफ़ करें, और पैरों को भी मतलब साबुन या हैंड वॉश से, जो भी आपके पास उपलब्ध है उससे साफ़ करें। अगर इन चीज़ों का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो उस पे जो बैक्टीरिया, अच्छा एक एक समस्या और समझिए। जैसे हम जब भी कभी आते हैं, तो चूंकि जो बड़े लोग होते हैं, एडल्ट्स होते हैं, वो इतने समझदार होते हैं कि उन्होंने पैर धो लिया, और पैर धो करके सोफे पे या कुर्सी पे कहीं पर भी वो बैठ गए, पैर ऊपर करके भी, जब थोड़ी देर में पैर सूख गया तो पैर ऊपर करके भी बैठ गए, वो वहाँ पर हाथ नहीं रखते, या हाथ रखते हैं तो वो हाथ अपने मुंह पे नहीं लगाते। बट
1: जी
0: जो घर में छोटे बच्चे होते हैं, ये क्या होता है कि उस सोफे पर अपने हाथ से भी रखते हैं, खाने की चीज़ें सोफे पर रखते हैं, फिर सोफे से उठा करके खा भी लेते हैं। अच्छा, इसीलिए बच्चों में ये मतलब केसेस, जो डायरिया है, पेट दर्द है, वॉमिटिंग फीवर और ऐसे तमाम तरह की चीज़ें बच्चों में ज़्यादा इसीलिए देखने को मिलती हैं, क्योंकि वो कंटामिनेशन एडल्ट्स बाहर से लेकर के आते हैं। लेकिन अब चूंकि एडल्ट होने के नाते उनकी इम्यूनिटी भी होने के नाते, और जो थोड़े मोटे वो प्रिकॉशंस लेते हैं उनके नाते, वो कंटामिनेशन उनको नहीं होता है, बट वो बच्चों को जो है डिलीवर कर देते हैं।
1: जी
0: तो आप अपने हाथों पैरों को अच्छी तरीके से सैनिटाइज करें, यानी साबुन वगैरह से धोएं, या फिर उस पर कुछ भी सैनिटाइजर वगैरह स्प्रे करें, उससे भी बैक्टीरिया वगैरह सब डिस्ट्रॉय होते हैं। तो इन चीज़ों का और जो पर्सनल हाइजीन है, इन चीज़ों का ख्याल रख करके आप थोड़े उसके चांसेस को कम कर सकते हैं।
1: ऑल राइट, और जैसे आपने बच्चों का नाम लिया स्पेशली इस वक्त, तो मुझे कुछ याद आया,
0: जी
1: क्योंकि जो बच्चे छोटे हैं 6 महीने के हैं या जिन्होंने घुटने पर चलना स्टार्ट कर दिया है वो पूरे दिन कहीं ना कहीं चलते ही रहते हैं, उनको मम्मी पकड़ पकड़ के घसीटती हैं कि यहाँ आराम से बैठ जाओ और उनसे बैठा नहीं जाता
0: जी।
1: इस वक्त क्योंकि बारिश हो रही है लोग अंदर से बाहर बाहर से अंदर करते रहते हैं और वो हर वक्त एक चिप चिप चिप चिप बनी रहती है घर के अंदर
0: जी।
1: मैं खुद भी बहुत ज्यादा परेशान रहती हूँ इस मौसम में इसी चीज से
0: जी।
1: और स्पेशली बाहर से कोई भी चीज आ रही है, बैक्टीरियाज अंदर आ रहे हैं या फिर अगर चलो उन्होंने चप्पल बाहर भी निकाल दी है तो भी फर्श पर बहुत सारे बैक्टीरिया पहले से मौजूद होते हैं। अब कुछ लोगों को लगता है कि अगर हम पोछे में फिनाइल डाल के लगा दें तो इससे बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएंगे, बट उसकी एक स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। और मैंने देखा है जो बच्चे फर्श पे चलते हैं वो अपने अंगूठों को मुंह में डाल रहे हैं, इवन पैर के अंगूठे भी मुंह में ले जाते हैं
0: जी।
1: तो आपको क्या लगता है ये फिनाइल से जो फर्श साफ हो रहा है क्या ये उनके लिए सेफ है?
0: बिल्कुल, और मैं इस पर एक और नई चीज़ भी आपको आज बताने वाला हूँ और मैं आशा करता हूँ कि वो हमारे लिसनर्स को भी चीज़ें अच्छी लगें और समझ में आए। देखिए बेसिकली क्या होता है कि जो फिनाइल हम लोग यूज़ करते हैं वो बच्चों के लिए तो सेफ नहीं होता है और ऐसे तमाम जो ब्रांड्स होते हैं वो इसको प्रमोट भी करते हैं कि बच्चे खेलते हैं उनको प्रॉब्लम होती है और हमारा ब्रांड आप यूज़ करिए फर्श क्लीन करने के लिए, फ्लोर क्लीनर्स हैं उससे आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए ये पूरी 100% तो ये बात बिल्कुल सही नहीं हो सकती है क्योंकि वो केमिकल्स से बने होते हैं और केमिकल्स स्पेशली जो डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं एंड क्लीनर्स होते हैं ये सेफ तो बिल्कुल नहीं हो सकते। जब कभी भी आप, अब चूंकि हमारे पास और दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है, ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं है कि वो हम हल्दी का लेप बना करके उसको फर्श पर लगाएं और वो फिर डिसइंफेक्टेंट भी करे और
1: वो तो बहुत बेकार लगेगा एंड बहुत मैसी लगेगा
0: जी बिल्कुल। तो ऐसा करने के लिए जैसे आप जो भी यूज़ करते हैं, आप फिनाइल यूज़ करते हैं या आप दूसरा कोई फ्लोर क्लीनर यूज़ करते हैं, डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं, उसको क्लीनिंग करने के बाद आप जो है किसी दूसरे कपड़े से 1 से 2 बार और अच्छे से पानी से भिगो करके पोछा लगाएं, जिससे क्या होगा कि आपका फर्श डिसइंफेक्टेंट तो हो चुका है, बैक्टीरियाज वगैरह तो अभी आपने बहुत ज़्यादा मिनिमाइज कर दिया है, बट उसके बाद जब आप साफ पानी से और सादे पानी से 1-2 बार पोछा लगाते हैं तो आप उस केमिकल को और डाइल्यूट कर देते हैं, मतलब उसका मैक्सिमम पार्ट हो सकता है आपके पोछे के साथ और पानी के साथ वहां से हट जाए। तो ये करने के साथ साथ आप थोड़ा सा अपने इस सेफ्टी को भी बढ़ा सकते हैं कि जो आपका केमिकल्स हैं फॉर डिसइंफेक्शन वो बच्चों को बहुत ज़्यादा हार्म ना करें।
1: ऑल राइट, और ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कुछ फर्श पर लगी चीज़ों की वजह से ही बच्चों के अंदर कुछ बीमारियां डेवलप होती हैं।
0: बिल्कुल,
1: स्किन इन्फेक्शन हो जाता है।
0: और मैं एक बात ये भी ऐड करना चाहूँगा कि जैसे अगर किसी तरह का बैक्टीरिया वायरस इन्फेक्शन हमारे बच्चे में आया है तो वो तो चलिए उसके सिम्टम्स आपको 2-4 दिन में आ जाते हैं
1: जी।
0: फीवर आएगा, वॉमिटिंग आएगी, पेट में दर्द होगा, मतलब जो तमाम तरह के सिम्टम्स होते हैं वो सिम्टम्स आपको दिख जाएंगे। बट ये जो केमिकल्स से होने वाले हार्म हैं, मतलब जो फिनाइल वगैरह इन सारी चीज़ों से होने वाले हार्म हैं, पहली बात तो ये बहुत मेजर नहीं होते, छोटे हार्म्स होते हैं और ये धीरे धीरे मतलब स्लो पॉइजन की तरह एक्ट करते हैं और हमारे बच्चों के बॉडी में उनके डेवलपमेंट में तमाम तरह की डिफर्मिटीज क्रिएट करते हैं।
1: और इसी कारण आजकल कुछ ऐसे भी हेल्थ वाइज काम कर रहे हैं लोग जो कहते हैं कि जो आप खाना खा रहे हो उसमें भी देखो कि कौन सा कलर इस्तेमाल हो रहा है, क्या वो एडिबल है या फिर ऐसे ही चल रहा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और देखिए ऐसी तमाम नई रिसर्चेस सामने आ रही हैं कि मतलब यूजुअली एक एवरेज अगर फीमेल को देखा जाए तो वो जितने अपने कॉस्मेटिक और पर्सनल यूज़ के जो प्रोडक्ट्स यूज़ करती है उसमें लगभग 160 से 170 प्रकार के केमिकल्स वो अपने बॉडी पे अप्लाई करती है और ये सारी चीज़ें मतलब उनके हार्मोन बैलेंस पे, उनके रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे और उनके तमाम तरह के मतलब समस्याओं का वो कारण बन रही हैं। लेकिन ये अभी तक तो इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी लेकिन अब धीरे धीरे ये सारी चीज़ें भी पॉपुलर हो रही हैं लोगों में।
1: बिल्कुल, कॉस्मेटिक की ही बात नहीं, अगर आप बच्चों की चीज़ों की बात करें जो स्पेशली खाना पसंद करते हैं, जिसमें रंग बिरंगी टॉफीज आती हैं जिसमें भी केमिकल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है और आजकल लोग इसको भी लेकर अवेयर कर रहे हैं कि आप खा तो रहे हो बट नोटिस करो आप खा क्या रहे हो।
0: बिल्कुल,
1: चलिए अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पर और बात करते हैं लैप्टोपोरोसिस पर। अगर किसी के घर में आसपास बहुत चूहे रहते हैं तो उन्हें सावधान होने की ज़रूरत है क्योंकि ये कहीं ना कहीं चूहों से होने वाली बीमारी है।
0: जी बिल्कुल, मतलब जो सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं इन बैक्टीरियाज को स्प्रेड करने के चूहे गाय भैंस, दूसरे जानवर, कुत्ते बिल्लियाँ, तो क्या होता है कि जैसे कुत्ते बिल्लियाँ सबके घर में नहीं रहते हैं, गाय भैंस हमारे शहरों में आपको सबके घरों में देखने को नहीं मिलेंगे, बट चूहे एक ऐसा मतलब वो हैं, एक रोडेंट्स हैं, एक ऐसे जानवर हैं जो ऑलमोस्ट सभी घरों में आ ही जाते हैं, कहीं ना कहीं बाहर से आ जाते हैं और अपने साथ वो तमाम तरह के ऐसे बैक्टीरियाज और बीमारियां लेकर के आते हैं।
1: और क्योंकि चूहों से तो हर कोई परेशान है, क्या कोई मेडिकल में ऐसा सोल्यूशन है कि हम बिना किसी को नुकसान पहुंचाए चूहों को मारना भी नहीं चाह रहे हैं, जाल में वो फंस नहीं रहे हैं? और आपको भी पता होगा आजकल किचन में जो भी चीज़ रखी होती है उसको वो खा जाते हैं, भले आपने कितनी महंगी सामान क्यों ना मंगाया हो, उसे काट देंगे। बड़े चूहे तो होते हैं वो तो खा ही जाते हैं, सब कुछ खत्म कर देते हैं।
0: इनफैक्ट हम हमारे डिपार्टमेंट में कई बार ऐसा होता है जब कुछ चूहे आ जाते हैं तो जो ड्रग स्टोर्स होते हैं उनमें वो दवाइयाँ तक काट डालते हैं और दवाइयाँ भी खा जाते हैं। तो कई बार हम लोग ये आपस में बात भी करते हैं कि क्या इनको खाने के बाद ये मरते नहीं है या फिर
1: उनका डीएनए एक्चुअली मॉडिफाई हो जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: और इसीलिए मुझे लगता है उन्हें कुछ नहीं होता। और बाकी जब उन्हें लोग जहर वहर देते भी हैं खाने के लिए कि चलो चूहे मारने वाली दवा दे दो, मुझे लगता है उन दवाइयों की वजह से उन पे असर भी नहीं करता।
0: बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए वो भी जैसे क्या होता है कि जो बैक्टीरिया वायरस या जो सारे जीव हैं इस धरती पे वो म्यूटेट करते हैं अपने आप को, मतलब जो परिवर्तन होता है, जो भौतिक या सामाजिक रासायनिक परिवर्तन होता है संसार में, उसके हिसाब से वो खुद को जो है वो म्यूटेट करते हैं और उस अकॉर्डिंग धीरे धीरे उन पीढ़ी दर पीढ़ी उनके हाव भाव, बिहेवियर, बॉडी की बनावट, इम्यूनिटी सिस्टम और ऐसी चीज़ों में भी परिवर्तन आता है।
1: तो मैं आप ही से जानना चाहूँगी कि कोई मेडिकल में सोल्यूशन है इन चूहों को घर से बाहर कैसे निकाला जाए?
0: देखिए वैसे तो मतलब जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो सारे सभी को पता हैं, इसमें ऐसा कोई सॉल्यूशन नया नहीं है जो किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट ही बता सके। जो रोडेंट कंट्रोल होता है, मतलब ऐसी दवाइयों का छिड़काव करना, कुछ ऐसी दवाइयां भी आती हैं जिनका छिड़काव करने से चूहे वगैरह नहीं आते हैं, तो स्पेशली उन जगहों में जिन जगहों पर चूहे ज़्यादा जा कर के बैठते हों, उन जगहों पर जो कोने किनारे की जगह हों उन पर अगर आप छिड़काव करते हैं तो उससे बचते हैं। और दूसरे तमाम तरह की दवाइयाँ भी होती हैं और यही सारे आप जो है चीज़ें अपना सकते हैं। और इसके पीछे विज्ञान ने भी तमाम तरह की रिसर्चेस की कि ऐसा कुछ करके उनका प्रजनन ही कम किया जा सके, लेकिन ये बहुत एक बड़ा टास्क है। मुझे लगता है इंसानों का इलाज करने से कहीं ज़्यादा बड़ा टास्क है ये।
1: बिल्कुल, फिलहाल अब बात करते हैं लेप्टोपोरोसिस और डेंगू के बीच में जो डिफरेंस होता है उसका।
0: जी,
1: क्योंकि दोनों बीमारियां आई थिंक वो बीमारी है जिनमें बुखार सबसे पहले ही आता होगा।
0: जी बिल्कुल,
1: कहीं ना कहीं आपको स्किन पे रैशेस दे सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ तो ऐसे डिफरेंसेस होंगे जो इन दोनों को अलग करता हो जिससे एक इंसान पहचान सके। और इन दोनों में जो सबसे ज्यादा डेंजरस वाली है वो कौन सी है जिससे आपकी जान की रिस्क होती है?
0: देखिए वैसे दोनों अपनी जगह रिस्की हैं, क्योंकि लैक्टोस्पायरोसिस में भी मतलब ऐसा एक्यूट और क्रॉनिक कंडीशन बनता है जिसमें हमारे बॉडी के ऑर्गन्स फेल हो जाते हैं, हेमरेजिक कंडीशन बन जाती है,
1: मतलब पानी में रहने से या फिर किसी से हम कंटेमिनेट हो जाते हैं तो हमारा अंदर के ऑर्गन फेल हो सकते हैं।
0: जी बिल्कुल, चूँकि क्या होता है कि कुछ स्पेसिफिक बीमारियां ऐसी होती हैं और स्पेशली जो ऐसी स्प्रेड होने वाली बीमारियां होती हैं, जैसे ये COVID-19 में भी ऐसा देखने को मिला था कि बहुत से लोग ऑर्गन फेलियर के वजह से या हार्ट स्ट्रोक के वजह से मारे जा रहे थे, तो उसमें तमाम तरह की रिसर्चेस हुई तो जिसमें पता चला कि हमारे बॉडी का जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। ये हमारे बॉडी का ऑटो इम्यून कंडीशन होती है, तो बिल्कुल ये भी घातक बन जाता है। और कहीं ना कहीं जो डेंगू है वो भी एक तरह की घातक कंडीशन क्रिएट कर सकता है। बट हाँ ये है कि ये लैक्टोस्पायरोसिस जो है ये आपको थोड़ा सा मुझे लगता है 5-7 दिन या 10 दिन आपको एक्स्ट्रा दे सकता है कंपेरेटिवली डेंगू के, और डेंगू जो है वो थोड़ा सा आपको कम टाइम देता है। थोड़ा सा मैकेनिज्म में भी अंतर है, जैसे जो डेंगू में क्रॉनिक कंडीशन बनने पे जो डेथ होती है वो ब्लीडिंग के वजह से होती है, इंटरनल ब्लीडिंग के वजह से होती है, हमारा ब्लड अंदर ही अंदर ब्लीड कर जाता है, जीआई ब्लीड हो जाता है, प्लेटलेट्स बिल्कुल लो हो जाते हैं, लास्ट में स्ट्रोक हो जाता है। और जो इसमें लैक्टोस्पायरोसिस में जो कंडीशन बनती है वो ब्लीडिंग के वजह से नहीं, हैमरेज के वजह से, क्लॉट की वजह से ऐसी ऑर्गन फेलियर या हार्ट स्ट्रोक जैसी कंडीशन बनती है।
1: मतलब तो एक में खून का थक्का जम रहा है और दूसरे में खून बह रहा है,
0: बहुत पतला हो गया है, तो ऐसा कंडीशन थोड़ा सा विरोधाभास आपको दोनों में कंडीशन में दिख सकता है। अब अगर बात करते हैं कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है, इनको हम डिफरेंशिएट कैसे करें
1: बाय सिम्टम्स,
0: तो देखिए इसका कुछ बेसिक चीज़ें समझिए। जैसे अगर आपको लैक्टोस्पायरोसिस का कोई कंटामिनेशन है, तो इसके कंटामिनेशन में आपको नौजिया वॉमिटिंग भी आपको हो सकती है, फीवर तो आपको आएगा ही आएगा, जीआई डिस्टर्बेंस जैसी कंडीशन बनेगी, पेट में दर्द भी हो सकता है। और डेंगू में यूजुअली ये सिम्टम्स नहीं आते हैं, डेंगू में बॉडी पेन और घुटनों के आसपास मसल्स में रिजिडिटी और पेन फील होता है। और इसी के साथ साथ जो है मतलब डेंगू में क्या होता है कि आपको जो कंडीशन होती है वो धीरे धीरे वीकनेस की वजह से और बहुत ज़्यादा बॉडी में ऐसा लगता है कि एकदम से दम ही नहीं लग रहा है, पेशेंट चलने में सक्षम नहीं होता है, चेहरे वगैरह पे हल्का सूजन और थोड़ी सी भवरन जैसी दिखती है। तो इन सभी मतलब सिम्टम से आप थोड़ा सा इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं।
1: लेप्टोस्पायरोसिस में आँखों में खुजली क्यों होने लग जाती है?
0: देखिए जितने भी ऐसी बीमारियाँ हैं जो कि बारिश या फिर फ्लड, बाढ़ और ऐसी चीज़ों से स्प्रेड होती हैं, ऐसी बीमारियों में हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो बहुत तेज़ी से ट्रिगर होता है। जब हमारा इम्यूनिटी सिस्टम ट्रिगर होते हैं, जब हमारे WBCs बढ़ते हैं हमारे बॉडी में, तो आँख से पानी आना, आँख में मिचलाहट होना, नाक से पानी आना, ये सारे सिम्टम्स बहुत कॉमन होते हैं, जिनको हम मतलब फ्लू और कोल्ड के सिम्टम्स कहते हैं।
1: और हमें लगता रहता है कि हमें सिर्फ जुकाम हुआ है
0: जी,
1: और वो कहीं ना कहीं सीरियस बीमारी में कन्वर्ट हो जाता
0: है। जी, एक गंभीर बीमारी होती है, जबकि हमें जो मतलब इनिशियल सिम्टम्स आते हैं। अच्छा, चूंकि हमारे जो नाक और मुंह का जो एक मैकेनिज्म है, मतलब कभी भी देखिए जब भी ऐसा मौसम चेंज होता है या जो भी होता है, गले में खराश वगैरह होती है, हमको सर्दी होती है, खांसी होने वाली होती है, तो हमारे नाक से आँख से पानी आना स्टार्ट हो जाता है। हमारे बॉडी को ये पता होता है कि ये जो रूट होते हैं, स्पेशली नेजल रूट, ओरल रूट, इन्हीं रूट से ज़्यादातर बीमारियां एंटर करती हैं। हमारे बॉडी को ये चीज़ें पता होती हैं, तो जब कभी भी ऐसा होता है तो ये हमारे बॉडी का ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर करती है और हमारे नाक से आँख से पानी आना स्टार्ट करता है, ताकि मैक्सिमम बैक्टीरिया जो हैं वो यहीं पर ट्रैप हो सकें या फिर बॉडी से डिस्कार्ड हो सकें। ये एक मैकेनिज्म है हमारे बॉडी का।
1: ओके, तो ये हमारी बॉडी का जो मैकेनिज्म है आपने ये समझ लिया। अब बात कर लेते हैं कि क्या लेप्टोस्पायरोसिस की मेडिसिन है, और है तो कितने दिन का कोर्स है?
0: जी बिल्कुल, देखिए जो लेप्टोस्पायरोसिस होती है ये एक तरह का बैक्टीरियल डिसीज़ है, और इसके इलाज के लिए तमाम तरह के एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं, इंक्लूडिंग डॉक्सीसाइक्लिन और पेनिसिलिन्स जो होती हैं, जैसे एमोक्सिसिलिन या क्लेवम जैसी दवाइयों का नाम आपने सुना होगा तमाम हमारे लिसनर्स ने भी। तो ऐसी एंटीबायोटिक्स जो टेट्रासाइक्लिन ग्रुप की या पेनिसिलिन ग्रुप्स की हैं, इन एंटीबायोटिक्स से हम इनका इलाज करते हैं। और इसका जो ट्रीटमेंट पीरियड होता है ये एक एटलीस्ट 15 से 21 दिनों का ये सबसे मिनिमम होता है। कंडीशन ज़्यादा ख़राब होने पर, TLC लेवल्स ज़्यादा हाई होने पर, अब चूँकि क्या होता है कि ऐसे जो पेशेंट्स आते हैं उनका हम एक बार पहले कंडीशन देख करके इलाज स्टार्ट करते हैं, उनके कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट करते हैं जिसमें इंक्लूडिंग उनका ब्लड काउंट, प्लेटलेट्स काउंट और ये सारी चीज़ें, तो उनको हम इलाज के दौरान भी बीच में उनके दरमियान चेक करके पेशेंट की कंडीशन को देखते रहते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि वो कितना तेज़ रिकवर हो रहा है, उसका इम्यूनिटी सिस्टम कितना काम कर रहा है, या फिर उसकी जो दूसरी कंडीशंस हैं, मतलब वो शुगर का पेशेंट है, नहीं है BP, या फिर ऐसा कोई मरीज़ ना हो, तो ये डिपेंड करता है। इलाज लगभग आपका 15 से लेकर के 45 दिनों के बीच में रहता है।
1: ऑल राइट, और अब बात कर लेते हैं हमारे किसान भाइयों की, क्योंकि इस वक्त मौसम है धान उगाने का, चावल लगाने का, और इसमें हर कोई लगा हुआ है
0: जी।
1: और मॉनसून के सीजन में ही सबसे ज़्यादा बीमारियां भी फैलती हैं। जो खेत में काम करने जाते हैं वो चप्पल जूते हर एक चीज़ निकाल देते हैं, उनका पैर जो होता है वो ऑलमोस्ट मिट्टी में होता है
0: जी।
1: आप मतलब मैं जानना चाहूँगी कि किसानों में ज़्यादातर बीमारियाँ इस दौरान होती हैं वो कौन सी होती हैं? स्पेशली बच्चों में तो जापानी बुखार देखने को मिलता है
0: जी,
1: बिकॉज ऑफ सीज़न, और इस वक्त आपके धान के खेतों से कुछ मच्छर निकलते हैं जो उन्हें काटते हैं, इसलिए कहा जाता है कि पूरी आस्तीन के कपड़े पहनो, गर्मी लग रही है इसके बाद भी पहनो
0: जी।
1: तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किसानों को जो लोग खेत में काम कर रहे हैं, पहले तो उन्हें कौन कौन सी बीमारियां इस मौसम में हो सकती हैं, और फिर उन पर बात करेंगे कि इसका इलाज क्या है, इसका बचाव क्या है।
0: जी ज़रूर। और कहीं ना कहीं मुझे वो याद आ रहा है कि मैं अपने किसान भाइयों से कहना चाहूँगा, और ऐसे तमाम शोज़ जो रेडियो पे चलते हैं मैंने अपने बचपन में भी सुने हैं, और आज वो दिन भी आ गया कि मैं किसान भाइयों से चीज़ों को बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा अपने जो मेरा व्यक्तिगत इस चिकित्सा क्षेत्र का अनुभव है। मैंने एक चीज़ देखी है, जैसे कुछ कॉमन समस्याएं जो किसान हर बार लेकर के आते हैं,
1: जिनमें कौन क्या है,
0: जैसे एक तो जो उनके फंगल फीट इन्फेक्शन होते हैं, मतलब पानी में रहने की वजह से और तरह के बैक्टीरियल भी इन्फेक्शंस लेकर के वो आते हैं, तो जो ये चमड़ी की और ये फंगल वगैरह बीमारियां होती हैं, ये यूजुअली किसान ऐसे मौसम में बहुत लेकर के आते हैं, जो कि साधारण इलाज करने से ठीक भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके वजह से उनको कोई बहुत गंभीर बीमारी हो जाती है, बट ठीक हो जाते हैं वो। इसके अलावा जो डेंगू मलेरिया ऐसी बीमारियां तो होती ही हैं, इसके अलावा कई बार पैरासाइटिक इन्फेक्शन्स हो जाते हैं। पैरासाइटिक इन्फेक्शन मतलब जैसे जो एक हम लोग कैंपेन भी चला रहे हैं फाइलेरिया के बारे में, अभी थोड़ी देर पहले एक प्रचार भी हमारे रेडियो पे चल रहा था
1: जी।
0: ऐसी बीमारियां जो हमारे बॉडी में पैरासाइट्स की वजह से एंटर करती हैं और कॉम्प्लिकेट करती हैं, डेवलप होती हैं, जिनके वजह से हमारे लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग आती है, मतलब जो फाइलेरिया जैसी कंडीशन है वैसी कंडीशन बनती है, वो तरह की बीमारियां हो गई। और इसके अलावा मतलब जो ये ऐसी भी गंभीर बीमारियां हैं जिन पे आज हम चर्चा कर रहे हैं, लैक्टोस्पायरोसिस, इसके अलावा और दूसरी कंटामिनेशन जिनकी वजह से डायरिया और टाइफॉइड ऐसी बीमारियां होती हैं। तो देखिए, जो ऐसे कंटामिनेशंस हैं जो बॉडी के अंदर जा कर के और डायरिया फीवर ऐसी चीज़ें पैदा करते हैं, उनका तो चलिए और भी तरह के बचाव हैं और भी उपाय हैं, बट जो हमारे पैरों के, जब जैसे पैरों में कट लगे हैं तो उनको कवर करना होता है क्योंकि वहाँ से वो इन्फेक्शन एंटर करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मैं अपने किसान भाइयों से एक अनुरोध ये करूँगा कि जो भी किसान भाई खेतों में काम करते हैं, बराबर जाते हैं, वो अपने लिए वो एक विशेष प्रकार के जो ऊंचे जूते होते हैं, रबड़ के बूट्स जिनको कहते हैं, जो रबड़ के होते हैं और घुटनों तक लगभग होते हैं, तो उनको ज़रूर वो परचेज करें और इसका प्रचार भी करें और भी लोगों को ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को, मतलब मुझे लगता है कि खेतों में काम करने वाले एक 20-30% लोगों के नाखून में मैंने देखा है कि वो नाखून बहुत मोटा हो जाता है, मतलब एक जो फंगल नेल इन्फेक्शन होता है वो इन्फेक्शन, मतलब मुझे हर 10 में से 3-4 लोगों को दिख ही जाता है खेतों में काम करने,
1: थोड़ा सा मोटा
0: मोटा हो जाना, उसका येलोइश हो जाना, फिर वो धीरे धीरे उसका स्ट्रक्चर खराब हो जाना, धीरे धीरे दूसरी तरह से बढ़ना, फिर वो पैरों में दर्द पैदा करना, फिर वो लंबे समय तक ऐसे ही रहता है, वो ठीक नहीं होता है, फंगल नेल इन्फेक्शन। तो इन सभी बीमारियों से कई बार ऐसे लोगों को देखा है जिनको पेपिलोमा वायरस के जो वार्ट्स होते हैं वो भी ऐसे पेशेंट्स में देखे हैं। तो इनसे बचाव करने के लिए मैं अपने किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि खेतों में काम करते वक्त वो जो बूट्स होते हैं, जूते जो कि मुझे लगता है 500-700 रुपए तक आ जाने चाहिए, तो उनका ज़रूर प्रयोग करें, और उनका प्रयोग करने से वो पैरों में होने वाली बहुत तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। हाथों में जब वो खेतों से बाहर आए काम करके, तो अपने हाथों को पैरों को अच्छी तरीके से साबुन लगा करके या फिर हैंड वॉश लगा करके अच्छे से धोएं, और धोने के बाद ही फिर कुछ भी खाएं पिएं या ऐसी चीज़ें करें, खाने पीने की वस्तुओं को छुएं, और ऐसा करके मुझे लगता है कि वो भी ऐसे कंटामिनेशन से बच सकते हैं और अपना बचाव कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, बस छोटी छोटी आदतों में बदलाव और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से आप अपने सेहत को सही रख सकते हैं, आप अपने स्वास्थ्य को सही रख सकते हैं, और ऑफकोर्स आप अपने आप के अलावा दूसरों को भी बचा सकते हैं, क्योंकि कई बार जो बीमारियां हमें होती हैं वो हमसे दूसरों तक भी पहुंच जाती हैं, कम्युनिकेबल होती हैं, और हमको पता भी ये बात नहीं चलता है।
0: और सबसे ज़्यादा इसके प्रभावी बनते हैं हमारे घरों के बच्चे, क्योंकि हम वही कंटामिनेशन ले जाकर बैठते हैं, चीज़ों को छूते हैं, बच्चों को भी उठाते हैं, बच्चों को हाथ में गोद में लेते हैं, तो वो कंटामिनेशन कहीं ना कहीं हमसे ही बच्चों तक जाता है।
1: चलिए, हमारे एक लिसनर हैं जो चैट बॉक्स में आपसे सवाल कर रहे हैं, धर्मेंद्र मोहन जी हमें सुनते हैं आवाज़ विकास से, और उन्होंने लिखा है, उन्नति नमस्ते, डॉक्टर साहब जी नमस्ते।
0: जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: एंड पैर की उंगली की जो स्किन होती है वो उजड़ रही है मेरी भाभी का, इसके लिए कौन सा मलहम है, क्या कोई क्रीम है तो बता दीजिए।
0: जी बिल्कुल, ये एक वैसे नॉर्मल फिनोमेना है, ऐसे जो सीजन होते हैं इसमें होता है। नॉर्मल जो क्रीम्स बेटनोवेट सी वगैरह आपको आती हैं एंटीफंगल क्रीम्स, वो आप लगाएंगे और इससे वो धीरे धीरे रिकवर हो जाएंगी। जब इससे अगर नहीं रिकवर होता है बेटनोवेट सी से, तो आप हमें दोबारा संपर्क करेंगे और हम कुछ आपको और भी बेहतर बता देंगे।
1: आई थिंक ये एक नेचुरल फिनोमेना है, इसमें अगर पेन नहीं होता है
0: जी, पेन इचिंग रेडनेस और रैशेज अगर नहीं होते हैं, सिर्फ स्किन ही शेड हो रही है, तो ये एक नेचुरल फिनोमेना होता है।
1: बिल्कुल, जिस तरह से बाल शेड होते हैं उस तरह से स्किन भी शेड होती है और हर दिन होती है, बस अलग बात है कि कभी कभी कम मात्रा में होती है और किसी सीजन में वो ज्यादा दिखती है।
0: जी
1: तो भाई, ये तो हमने बात कर ली आपसे इस बीमारी के बारे में, और अब हम बात करेंगे कि मानसून में आपकी डाइट क्या होनी चाहिए। मैं हर मौसम इस बात को रखती हूँ कि यार डाइट क्या होगी, क्योंकि मानसून आ रहा है, चिपचिप का मौसम है, हम पानी पी रहे हैं, पानी भी पी लेते हैं कई बार बाहर से और बीमार पड़ जाते हैं
0: जी,
1: कुछ भी खा लेते हैं, और स्पेशली जब बाहर हम लोग होते हैं तो कहा जाता है कि बाहर का ज़्यादा नहीं खाना चाहिए इस वक्त, क्योंकि बाहर का खाओगे पता नहीं कैसा पानी है, कौन कौन से बैक्टीरियाज उड़ रहे हैं, कहाँ से क्या आकर आपको नुकसान कर जाए, फूड पॉइजनिंग हो जाए, जिसकी बात मैंने शुरुआत में ही की थी
0: जी।
1: तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, मानसून के वक्त में हमारे डाइजेशन को ध्यान में रखते हुए एक इंसान, एक कॉमन इंसान जो दिन में कहीं ना कहीं एक्टिव भी रह रहा है या फिर जो ऑफिस में है ज्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, दोनों की डाइट में क्या डिफरेंस रखना चाहिए?
0: बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए कि मानसून के सीजन में हम जो भी खा रहे होते हैं उसको बहुत ही अच्छी तरीके से साफ करके, स्पेशली जो मतलब हम अनप्रोसेस्ड खाते हैं सैलड वगैरह, उनको गर्म पानी वगैरह से धो करके जो हम डिसइंफेक्टेंट करते हैं बैक्टीरिया वगैरह से, उनका बचाव करते हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही साथ बारिश जैसे मौसम में, वैसे लोगों का मन तो पकौड़े और चाय ऐसी चीज़ों खाने का मन करता है, बट ऐसी चीज़ें उन्हें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए।
1: क्या बात है, अगर आपने किसी की पसंदीदा चीज़ को रोक लगा दी हो।
0: जी बिल्कुल, ऐसी चीज़ें तो नहीं खानी चाहिए, या फिर कभी कभी थोड़ा सा अगर खा भी ले रहे हैं तो कम खाना चाहिए। बाहर की चीज़ें स्पेशली इसलिए मना की जाती हैं ताकि, क्योंकि उनमें कंटामिनेशन और बाहर के वातावरण का जो भी प्रदूषण है वो लगता है और उसके वजह से बीमारियां पनपती हैं, तो इनसे हमारा बचाव मतलब करने के लिए हमें ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए बाहर की चीज़ें। और घर में भी हमें बहुत ज़्यादा तेल मिर्चा मसाला ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, मतलब जो सादा खाना है, जो हेल्दी भोजन है, हमें ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए। और अगर किसी को, कोई ऐसा इंसान है जो बार बार बीमार पड़ता है, जो ज़रा सा भी बारिश में सर्दी जुकाम छींके आना ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, तो उन लोगों को स्पेशली जो फ्रूट्स होते हैं, साइट्रस फ्रूट होते हैं, खट्टे फल जो होते हैं, इन फलों का सेवन करना चाहिए। और इसके साथ साथ जो काढ़ा वाले इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनका, उनसे अदरक, मुलेठी, अश्वगंधा, तुलसी, ये सारी चीज़ें डाल करके उनको काढ़ा वगैरह बना करके पीना चाहिए। हल्का भोजन लेना चाहिए और थोड़े थोड़े समय पर, मतलब थोड़ा थोड़ा अच्छा हेल्दी आहार लेते रहना चाहिए।
1: ऑल राइट, और हमारे साथ एक अविनाश शुक्ला हमारे कॉल इसमें जुड़ गए हैं, चलिए लिख रहे हैं, गुड इवनिंग सर। सर, इस मौसम में बच्चों के शरीर में छोटे छोटे रेड कलर के दाने क्यों निकल आते हैं?
0: जी बिल्कुल, देखिए बहुत ही अच्छा एक पॉइंट हम लोगों से छूट रहा था, और हमारे बहुत ही शुभचिंतक इनका हार्दिक स्वागत करते हैं अविनाश शुक्ला जी का। इन्होंने प्रश्न भी बहुत अच्छा रखा है जो हम लोगों से छूट रहा था, कि इस कंडीशन में बच्चों को दाने और कुछ बच्चों को मतलब वो फोड़े टाइप के जिनमें से पस और मवाद भी आने लगता है, ऐसी चीज़ें भी बढ़ जाती हैं। जी हाँ बिल्कुल, देखिए क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, पानी जो बरसता है या पानी जो भी लगता है वो हमारे शरीर के आउटर सरफेस पे ही लगता है, तो वहाँ से बैक्टीरियाज़ का आवागमन बढ़ जाता है। नमी बढ़ने की वजह से और काफ़ी देर तक, जैसे जो लोग भीग जाते हैं, काफ़ी देर तक भीगे हुए जो लोग होते हैं वो अगर इस बात को नोटिस करेंगे तो उनकी जो स्किन है वो थोड़ी सी फूली हुई लगेगी, मतलब लगेगा कि थोड़ी स्किन फूल गई है। ऐसे कंडीशन में बैक्टीरियाज़ के लिए और वायरसेस के लिए हमारे बॉडी के मतलब इनर डर्मा पोर्शन में, जो त्वचा की आंतरिक परत होती है इंडोडर्मिस, उसमें अप्रोच करना और उसमें पहुंचना उनके लिए सरल हो जाता है, और इसलिए वहां पहुंच के वो ऐसे छोटे छोटे दाने और फोड़े हमारे शरीरों पे ये उत्पन्न कर देते हैं।
1: जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और घड़ी ने इशारा कर दिया है कि वक्त है आपसे विदा लेने का। आई होप आपको हमारा शो पसंद आया होगा, आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप रखिए अपना ख्याल, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बारिश में खास ख्याल रखिए अपनों का और आपका खुद का भी। अगर बाहर कहीं जाते हैं तो घर पर आकर हाथ पैर ज़रूर धुलें, खुद को साबुन से या हैंडवॉश से क्लीन करें। डिटॉल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। बच्चों के लिए स्पेशली हमने जो बात की वो आई थिंक आपको पसंद आई होगी, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं स्पेशली उन्हें। और इसी मैसेज के साथ अब लेंगे आपसे इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। रखिए अपना ख्याल, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे हैं रेडियो कैनसली 89.6 FM की एक खास पेशकश जिसका नाम है क्लिनिक कैनसली। बाय बाय, टेक केयर।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स ही फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराल रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

स्वागत है श्रोताओं, और आप सुन रहे हैं अपना रेडियो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, और मैं हूं आपका अपना दोस्त आरजे अदनान। आपके अपने प्रोग्राम सेहत सही लाभ कई की इस श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, यानी कि नवजात शिशुओं की सुरक्षा। जी हाँ, हम अक्सर देखते हैं कि बच्चे पैदा होते ही अचानक बीमार पड़ जाते हैं और परिवार जो है वो घबरा जाता है। कुछ लोग घर के नुस्खों में लग जाते हैं तो कुछ देर

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोदली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला, होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोदली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सारी मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं, और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधुली में, स्टे ट्यून्ड।
1: शुरू करते हैं चटपटी चाची।
2: ये चटपटी का बताई, इतना पानी बरसत है इनका, जब देखो तो वल्लीन रहती।
1: यहाँ हमरे लोग चलत से जान पता भराए पर अब तनिको बिछलन लाई तो।
2: अब बहनी देख लो कंचन,
1: हाँ
2: तू हूँ हम हूँ आए हैं, अब तू देख लो, तू ही देबो जवाब।
1: हाँ
2: कई बाजी इनका गोराई थे, वो चटपटाओ
3: लागत कोई आवा है।
1: अरे गुड़वा इतना गंदा भय है, पनिया तो पहले लाओ गुड़वा धो।
4: अरे के हो थोड़े रुकी जाओ भाई, तने रुकी जाओ।
2: सुवाई ले, तू सुवाई ले, खूब निधर के।
4: अरे सो इतना ही रहा है,
2: पलवा खोलाओ
4: ना ही, छता पानी भरा रहा है, खोली
2: था। अरे मोर भाई पनिया बहुत, अच्छा जल्दी आओ नीचे हमारे सबके गोड़वा साड़ी गा। अरे
4: ठहर रहो एक मिनट,
1: पानी लेके आयो चाची।
4: अच्छा अच्छा बहनी ठीक है,
2: आओ कंचन आई है।
3: आई गन ले भाई, आओ सब जनी अंदर है, आओ
2: आओ बताओ। राम राम बहनी,
3: राम राम भाई भाई।
2: अब देखो कंचन का लेके आए ना,
4: काहे दरवाजा का है पीट डाल था,
2: दरवाजा हम पीटी थे ना, कि तू पल्लवा खोला तो नहीं हो।
3: ए दुलारी, अब की बार जो दरवाजा हमारा टूटगा ना,
2: हाँ
3: तो ई जन्म में तो हम नहीं कर।
2: बहनी कंचन,
1: हाँ
2: एक पल्ला इनके पीट पीट हम तू डाल।
1: अरे दादा तो काहे नहीं सुनते
4: बहनी, कौनो झूठ नहीं देखो
1: तो दरवाजा गलती नहीं है, ना ही हमारे चाची गलती है, ये आपके कान एक गलती है, वहाँ थोड़ा तेल डराओ।
4: वो जाता है
1: नहीं, आवाज आपका नहीं सुना थे, तनी जोर
2: लाओ। आज हम बिठी वक्त लेके आए तो हमका नाच बनी, तू देखो कि चटपटो
1: का बाजी। पनिया और चहलो हमें घसीट लाई है, गोड़ भर देखा तो पूरा बूढ़ा है, माटी कीचड़ मैं
2: देखो, मटर गुड़वा देख लो, गुड़वा देख लो, मटिया
4: देखी था
2: तो पनिया लाओ ने
3: बता। खुशी नहीं है तो के कि बरसा भैया, तने दिनों बाद इंतजार कर करके हम तो परेशान हो गए।
2: हाँ
3: हाँ,
1: और रास्ता भर में जो छीछा लेदर भय तो ना, जो कपड़वा जो नहीं झुराते तो
3: इकर कौन गारंटी बताओ।
1: जो गारंटी छोट मोट लड़कवे घर में
3: दीना भैया, हम तो सुखान जाती है, और देखो
2: तो हाँ घमावा तो
3: खपड़िया दगी जाते, ये सब खात रहे।
1: अरे तो बरस के निकल जाते तो जान पाई, तब एकदम से बमार जीव कचुआए हैं।
2: पूरा कहू बनी हम कचाए जाते
1: हैं,
2: भागे लगे
1: आपके भैंसी, हमारे छोटे छोटे लड़के कपड़वा खराब
3: है न, कि जो मनई है वो मतलब का संतोष नहीं है जीवन में, ना बरसे पानी तो देव बरसत नहीं, देव बरसत नहीं, देव
2: बहनी फंतोष का होते, फंतोष
3: फंतोष नहीं कहा, संतोष कहा, संतोष।
1: वह तो हमारे मोहल्लों में रहा था, वो तो हमारे मोहल्लों में रहा था चाची।
3: नहीं हो संतोष की बात नहीं कही था भाई।
1: तब कौन संतोष,
3: अरे कहा नहीं जाता कि संतोष नहीं है तू का,
1: अच्छा जीव का ठंडक नहीं,
3: ठंडक नहीं पड़ा। हाँ,
2: अरे हाँ जाइनी बहनी कहूँ बजारी में बिकात है।
3: अब देखो
2: अब
3: जब से हम दिल्ली गए हैं,
2: हाँ
3: तब से हम थोड़ा थोड़ा ठीक से बोलने लगे हैं।
1: अच्छा दिल्ली गए हैं,
2: दिल्ली गई तभी अंग्रेजी भूखा ही लगी,
3: वहाँ वहाँ पर सब ठीक से बोलते हैं।

0: भारी उठा लिया थी
1: चाहती हो चटपटाऊं
0: तो और बड़े बड़े हां यत्त यत्त घुंघटवा जोन गउवा में करथिन तोन हुआ लोअर पहन के करथिन जी
1: वाह देखो बिलाए गई कुल ने करवा पहना था तनी छोट छोट एकदम
2: अरे बहनी सब तो ये जोन हमार सब के संस्कृति सभ्यता सब खत्म होन जाती अब यही से बहुत
1: गुलारी अब बस गउवा तक ही सब रही गा है
2: पूरा कहा तू बहनी पूरा
1: गउवा वाली बिटिया जोन आजकल
0: लुकाए लुकाए जाती चाची
1: हां वही सबके कान उड़ाए
0: झूठ बोल बोल जाती
1: एक तो ई आए गवा है कनफुअर जोन सबे कनवा में लगावत थी बहनी
0: अरे कैसे पिरात नहीं हमार तो पिराए लग रहा है एक दिन हम लगाए रहे चाची
1: हम तो हमार नतिया आवा बंजदरवा और कही से है दादी दादी इतनी कनवा में लगाओ और लगाए जोर से बजाए दी समकन मारा मत जा बो तू जो हमरे कनवा में तू लगायो बताओ
2: मारे नहीं उठे
1: मारे तो उठे लेकिन भाग ही गवा बताओ इतना जोर जोर से सुनबो तो कनवा कहूं रही
0: ना रही ना रही
1: वैसे भस्ट हो जाए तब कभी सब जो पुरान जमाने की चीजें रही बहनी बहुत सब समझ लो तब भाई मने स्वस्थ रहत रहा
2: अब देखो वो
1: बेरामी नहीं रही
2: हमरे गांव में तो सब ठीक है हम हमरे घर में देखो मिलौनी रोटी बने बढ़िया है हम लोग बनाए ली थे रोटी
1: तब का
2: मिलाई के और लहसुन मिर्चा सुंदर नमक पीस लिया
0: अरे चाची जान चूल्हा का रोटी और है नुअन से आ हा हा आनंद रहत रहा और लोहा कराही कहूं जोर नहीं
1: नहीं जोर नहीं लो बहनी एक दिन हमने बगलिया रहती कहा था कि नुअन मिर्चा पीसो और ये बहिया चुलवा के रोटी पो
0: अरे हमरे मुंह में पानी आवत है बरसात के मौसम है चाची हमरे मुंह में पानी आवत
1: और जतना बहिनी गैस भरे लाग अतना महंग मिले सुन ले चटपटो जतना गैस भरे लाग और जतना गैस में महंग आवे लाग गैस एक रोटी खाए खाए सबके गैस बने लाग
0: अरे दादा
2: पूरा कहो
0: बिलाई गे
2: अब देखो अब बरखा लाग है ना
1: हाँ
2: इमा जौन है हरी सब्जी तो खाए के नहीं चाहिए
1: अच्छा बरखा में ना खाए
2: ना खाए
0: साग तो छुआ ही नहीं चाहिए
2: छोटे छोटे किरवा होते है ना वो लाग जात है
1: तो बहनी बताओ पूरा हमें बताओ साफ कह के
2: अंग्रेजी में का कुछ कहा था बैक्टीरिया
1: बैक्टीरिया अच्छा बैक्टीरिया
2: हाँ बैक्टीरिया फैल जात है
1: बैक्टीरिया
2: वह सब पत्ता जो पाता हो तो वह बैक्टीरिया लग जाता
1: है अब हमका ये बताओ बहनी हम अपने घर जो है अनिवास लेबे कमावा कौन सब्जी कौन खाए चाहिए बताओ बहनी
2: अब देखो
0: सोयाबीन खाए
2: चौमासा कहा गा है
1: चौमासा
2: चौमासा माँ
1: हाँ
2: कहा पुरान कहावत है कि एक टाइम भूखे सो जाओ
1: अच्छा
2: तो सबसे बढ़िया राहत है
1: हाँ
2: अब भूखे मतलब ये नहीं कि उपवास करके सो रहे ऐसे नहीं कि मतलब भर पेट खाना व्यंजन
1: हाँ।
2: ना हो
1: हाँ
2: कि दालो है तरकारियो है चटनियो हाँ, हाँ। है तमाम
1: सामान
2: भुना है नहीं खाए चाहिए काहे से जो पेटवा होते ना जल्दी बगदत है
1: जल्दी तब तो सब बेराम हाँ। रहते पटवे बगदा रहते बरखवा
0: अब तो भोलेनाथ का मौसम आवत है चाची अब दुइये दिना मतलब तो, चलता है दुइये दिना का तो है ये दूसरा दिन है
1: तो का बनी उ लाग गा सावन
0: हाँ हाँ क्या 11 कलियां रहा आज 12 है और 12 से लाग गए
1: समय कहा था कि 30 तारीख तक
2: लाग गई अब ना ही लगा हो
1: अब है ना लाग हो सब
0: अब ही ना लाग है तो मैंने पहले से परहेज शुरू कर दिए का मतलब
2: बताई था कि चौमासा तो है
0: हाँ हाँ
2: चौमासा तो जेठ खत्म हुईगा आधा मतलब अब आषाढ़ लगा आधा आषाढ़ खत्म होए वाला
1: तो बहनी बताओ चटपटो सब्जियां में तरकारियां में का खाए
2: देखो ऐसे है कि अरता भरता बना लो
1: हाँ
2: ठीक है इका खूब खाओ
1: हाँ।
2: ना नुकसान करी
1: अच्छा और जैसे
2: उसके अलावा जैसे चना धरे हो मटर हाँ। धरे हो इका भेम है बढ़िया तरकारी बना लो खा
0: सोयाबीन है राजमा है प्रोटीन बढ़ावत
2: है यही सब खाओ
1: हाँ
2: और दलिया खा लो
0: है चाची पनीरों खा सकी थे ना
2: पनीर हाँ जो ठीक ठाक हो तो बहनी खाओ नहीं तो कौन डॉक्टर बहनी पनीर
1: ये बहनी चटपटाओ
2: हाँ
1: कलिया है जिनी बतवात रही तनी बड़ मनी ही कहा था नहीं की फोफू कर वो हो आवत है,
0: है?
1: फोफू कर पनीर आप फोफू का होता बहनी
2: फोफू ना ही कहे नो ये तो अच्छा तू नाम बिगाड़े में सबसे ज्यादा आगे हो
1: तब बहनी
2: अब ये का हमार दिमाग अगर अतना ना चले तो तू अर्थ का अनर्थ कर जा
0: हम तो खाली तकते हैं मुंह है तोरे दोनों जन के चाची
2: फोफू बताओ दी
0: अरे हम जान ही ना पाए कौन भाषा
1: हो फोफू बहनी कहीं
2: नहीं जान लो
0: हां
2: टूफू कहा तुम
0: अरे बाप रे टूफू ना यू टोफू हुआ
2: वहाँ टूफू टोफू कहा था
0: हाँ।
2: फोफू कहा थी हम तो
1: फोफू सुनना बनी फोफू
2: वहाँ कहा तो अर्थ का अनर्थ कई दरी हो अब बुआ फूफा सब
0: कौन तो चौका मारा जाए
2: बुआ फूफा बना
1: खाए हम यहाँ सुनन के फोफू के रावत है पनीर
2: फोफू ना टोफू हो तो का कहा था सोयाबीन का पनीर
1: उ कहाँ मिला थे बताओ हमका
2: अब बजरिया मिला तो ये भैया हमारे दोहरे तो गंगू हम नाई मिला था तो हम नाई जानी था ना बजरियम कहूँ बिकात जरूर हो तब सब जाने है तू का बताई ना
0: अरे बहुत हो गए
2: चोचला हो
0: अब बहुत चोचला हो गया हमें मन कहा था एक ठो तनी गाँव नहीं हो जाए तनी आनंद हो जाए। देखो सावन के

0: मौसम आवत है, धीरे धीरे बरसात पसरा है, तो तनी गव नहीं बिना मन नहीं मानत।
1: तो अब हमारे चटपटो बहुत निक गाना गावत है।
0: अरे वाह चाची, सुनाए दो।
2: सुनो वो बरखा लाग गा, कौनो बरखा वाला गाना सुनाए दो।
1: अरे तू कौनो एठो लाइव तो सुनाओ बहनी, हमका जानत हूँ कि का बताई।
2: नहीं अब देखो बरखा है तो बरखा वाला गाना,
1: बरखा है गर्म हुआ कितना लागत है।
2: एक हम लोग लड़को है पनमन गाए हन तनी छोट भाई रहा, याद नहीं पड़त है। अंधेरी अंधेरी घिरी आई धीरे धीरे, कहाँ से आए बादर कहाँ से आई बरसा, और कहाँ से आए साजन धीरे धीरे।
1: अरे गाय तो चटपटो बड़ा नीक कहा था।
2: आदावा कि नहीं आवा?
1: आदावा लेकिन हम बिसरी हैं बहन।
2: हाँ, अम्मा हम लोगों की अम्मा गावा करती हैं।
1: हाँ हाँ
0: सब धीरे धीरे काहे आवत है।
2: ये गनवा कौनो सुना?
1: गनवा बहनी धीरे धीरे है।
2: हाँ तो ये गनवा बड़ा नीक लागत रहा है, वो गावा करती रहे जैसे बरसात बरसात हो तो दोनों जनी बैठ जाए। हाँ। उनकी अम्मा और हमार अम्मा।
1: हाँ
2: तो बढ़िया
1: संगरिये बैठ के गाँव है बहनी।
0: बादर बरखा बताई तो ठीक, लेकिन सजनवा धीरे धीरे काहे आये?
1: वो आई नहीं थे धीरे धीरे।
0: अरे वो नहीं सजना तो रहे कि पड़ोसी रहे,
2: चुप्पे चुप्पे आए कौनो देख ना पावे।
0: हाँ टुपुर टुपुर आए।
1: टुपुर टुपुर ये बतिया पूरे कहो। तो चटपटो अब हमें फिर तुम्हारे ऊपर आज गुस्सा लागेगा, तो आज ढोलिया फिर गाया भी आज
2: हमारा ढोलिया तो भाई मंगती बहुत ज्यादा आता ना मंगे।
0: इनके ढोलिया के पीटे रहा था चाचा जनी है तो बताई है तुम्हें?
2: वह तो बांटे रहा थी।
0: अरे
1: चाचा है?
2: हाँ उनसे सब मैं मांगा कर, हमसे तो डर के मारे नहीं मंगी है।
0: हमें लगा था लोटन चाचा के सामने सब लोटी जाते हैं, बस वो दई दिया था उठाई के।
2: अब यहाँ समझो और सीध पाए के
0: बस वही है।
2: सोच मनाई हुई अब बस उनसे कहें कि दई दे चाचा तरीका
0: सुबह तीन चाहे
2: कहूँ सालगिरह मनावा जात है कहूँ कुछ मनावा जात है
0: मूड़न छे दिन हुई जच्चा बच्चा
2: बस हमसे कहें कि चाची ना दे तो उनका तब जरूर देख है।
0: हम तो तालम मार के राखी चाची ऐसे बांट दिया थी
2: कोई कि चाची ना दे है चाचा।
0: हाँ
2: तो चाचा का जरूर देख है।
0: अब अगर फोर फार के वापस कीनता
2: जरावे में उनका बहुत मजा आवत है।
0: अरे दादा
1: हाँ। अच्छा तू जरती रहा तू भाई जब देखो तब जरते रहा थी
2: हम का वही बहुत जर रही है
0: जानो जेठ महीना पैदा भाई हुई है।
1: अरे भाई सही कहे
2: सही कहो जेठ है वो पैदा भाई और जेठ हम हूँ पैदा भाई
0: तब भाई जोड़ी लगाए थी भगवान साथ
1: भगवान लगाई जोड़ी एक
0: बरते रहा तो बुता था ये नहीं है दोनों जने
1: नहीं राम लगाई जोड़ी एक आंधर एक कोढ़ी वहाँ वाली हलिया हो गए। तो चलो चटपटो एक ठो गाय दो ने बेबी दीवा कही के देखो हम कहें तब नहीं गाए।
2: तू नहीं कहे नहीं गाओती।
0: अरे तू तू मैं तो ऐसे टरेनिया निकल गए रहा एक दफा।
1: हाँ अब देखो तू तू तो छोड़ दिए हो बतिया ही करो। देखो बहनी कंचन इनके ढोलिया गाया भी।
0: हाँ
1: आप बताओ हम
0: अभी बांटे रहा थी और नाम डाल थी चाचा के झूठ। हाँ। बोला थी
2: नहीं, हम नहीं कोई दे थे बस ये आई गए हमारे घरे तो बजा ही देखे घर चली गई बहुत ज्यादा।
0: हाँ।
2: लेकिन हम
0: नहीं आज जो ने मेरे दरवाजा खुला जान ही है की क्यों कावे नहीं देते हो घर में
2: यहाँ से तो हम कही थे कि छुपाए के धरो लेकिन बालू में पतुहिया एक नंबर की काहिल ऊपर ना ले जाएगी जहाँ धरी वहीं परी रहे हमारे घर की तो लीला अपरंपार है बहनी तो से काका हम बतवाई।
0: अरे दादा रे फूटी फाटी जात हुई तो वो देख रेख के कर
2: ही घर में हमारे
0: बहुत दयनीय स्थिति है चाची तुहार।
2: अब मजाक में कहती हूँ?
0: अरे मजाक नहीं हमारे करियर एकदम मतलब हमारो दर्द या यही कुछ
2: तो
0: है जान
2: तो लागत है तू मजाक हमारा उड़ा।
0: अरे नहीं तनी को हम आओ मजाक आपके उड़ा ले
2: तो पूरे बतवाई बहनी अपन
1: तू हमारे चटपटा।
0: अरे हम कुछ नहीं उड़ायन है बस ढोलिया उड़त जात रही हम रोक लिया ना।
1: अच्छा आई न करो हमार सखी हो बहनी।
0: हाँ
2: हम देखो झूठ नहीं बोलित बहनी जो हमरे ऊपर बीता था।
0: हाँ।
2: हम उनका बताई थे तुका
0: वही बात है ना आपके ऊपर जो
2: करे वाला कोनो है नहीं।
0: हाँ आपके ऊपर जो बीता था वो हमरे ऊपर भीजा है तब तो हम जोड़ पाई थे अपने आप का
2: समझ ले
0: वही बतिया है हम
2: का है
0: तब हम ये करी थे तब इन्हें से
2: उतरी है नहीं अतनी सुकुवार अतनी सुकुवार महरारू मिली है शिवम का कि अब तुझे का बताई भाई।
0: अरे राम राम राम
2: तू जान ना पाई उनका चरित्र।
0: हाँ वो कहा ना यार त्रिया चरित्र दयो न जाना
2: जाने महीन की है कि हम कतो से का बताई
0: का बताई
2: ऐसे लुप से लगाई दे आई कर हम ही से फिर बतवाई।
0: अच्छा साइंटिस्टो इन्हें लेंस लगा देखिए तो ना ही दिखाई पड़ रहा
2: है ना ही दिखाई पड़ी
1: साइंटिस्ट का होते साइंटिस्ट।
2: अरे अब इन के सामने तू नवा शब्द ना बोलो
1: कुछ कहीं नहीं फाइंडिस
2: बिना बनाए दे है ओके
1: बनी फाइंडिस का होत है
0: चीजन का बिगाड़ के सही करत है जी
1: फाइंडिस
0: हां चीजन का बिगाड़
1: भैया शरीरिया में जो समन्वय है बिगाड़ देते फिर सही करते हैं
0: हर एक चीज में वो चाहे आपका कौनो भी सामान हो ओका पहले बगदाए के बिगाड़ दे हैं फिर ओका सुधार दे हैं हां
2: बिगाड़ दे
1: आओ बहनी ये का बतावत है कि फाइंडिस के मतलब ये होते कि वो आवत है कि समन्वय बिगाड़ दे हैं के बनाए दे
0: हां पहले ओका खराब करके फिर ओका सुव्यवस्थित एक एक सही कदम पे बढ़ाए बढ़ाए एकदम सही कह दे हैं
1: वो किए होते मनई होए
0: मनाई तो होत है दिया खाए में यहां तो मनई है लागत है दुई कान दुई आंख दुई नाक में एक नकवा हुआ था हां मनई नहीं लागत है
1: मनई घस लागत है बस कहां से आवत है
0: वो अरे पढ़ी लिखी के सरकार से कोनो
1: अच्छा ज्यादा पढ़ी लिख लो तो फाइंटिस हो
0: हां बहुत चश्मा उसमें लागत बरोरो झरी जात है
1: अरे मोरी मैया तो आज कौन काम करे पैसों मिलते उनका फाइंटिस का
0: पैसों वेब तो बैठा था तब तो फाइंटिस का हाथ है
1: अरे मोरी माही रे
2: फाइंटिस नहीं भाई देखो बिगारो ना नाम साइन बोलो ऑटिस्ट कह दो साइंटिस्ट बोला जाए
1: साइन
0: ऑटिस्ट
1: ऑटिस्ट तो साइंटिस्ट साइन ऑटिस्ट ये दोनों ये सब बहुत पढ़त है
2: ये बहुत पढ़े पड़त है का और घर द्वार बिकाए जात है हो
1: तो क्या कह रहा उनका साइन ऑटिस्ट बनेगा
2: तो अब महतारी बाप बनावत है तो बना था लड़को है
1: कुछ बहनी पढ़ के और बन जाते
0: अरे ना ही चाची आप ना ही जान पाओ थी देखो जैसे खेती बाड़ी के समान है हाँ। दुनिया में तो खेती बाड़ी वाले साइंटिस्ट अलग होते हैं और कंप्यूटर वाले साइंटिस्ट अलग होते हैं और ये जो टेक्निकल होते हैं जो सिस्टम वगैरह हार्डवेयर एक साइंटिस्ट मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग साइंटिस्ट होते हैं
1: तो बहनी हम तो कुछ समझ नहीं पाए थे कि फाइंटिस का करे करे
0: अरे का करियो इतना समझ
2: हां फाइंटिस ना कहे तो तू का एक नंबर की गुहार कहियां देहातिन
1: अच्छा जब हम कहबे फाइंटिस तब तब हम देहातिन कहिए
2: हां
1: और जब हम कहबे साइन और टेस्ट
2: तब तब जलिए कि यह पढ़ी लिखी है वैसे तो तोरे संग व्यवहार करिए
1: अच्छा एक शब्दवा देखो आज बहनी एक सोच सीख गेन साइन और टेस्ट
0: और टी कहां लेके चली गई हूं
1: काहे
0: साइंटिस्ट है टी कहां गए तुम्हार
1: साइन
0: टीस्ट टीस्ट टा बदियम फिर है
1: बहनी हम ना बोल पाई हम मुहा नहीं गोल कर पाई
0: अरे दादा हो
1: हम ऐसे बोल पाई पे साइन और टीस
0: बस हो जी फिस अरे हमरे चाची सामने क्यों रुकी कही रहो लागत है क्यों जोर लागी कहूं
2: कसर कही सके फिस
0: अरे हमरे चाची बहुत नीक है
1: कंचन मजा कई दियो
2: तो चलो भाई तो कुछ खाए को तो कहो तो हम लइया ही खा लियो
1: मैंने सुबह हम नैया कई ले तब तब खा भाई नहीं बहनी
0: हां
1: ये गौनैया कई लो हैं
2: गौन तो अब का बताई हम तो कहें कि खा लो एकदम गर्मा गर्म लइया बनाए हन लइया ई बूजा उजा खाए चाहे
0: जानो ये गावन आई चाहती
2: चाहे कई
0: नहीं बहुत रची के धरे ही आज हम लोग कर रचाए दे
1: तो पहली भूजा कसके बनाई
0: भूज दे हैं अब खाओ
1: हम तो का भूत दरबो का
2: नहीं सुन तो लइया बहुत आई गई रहा घर में
1: तब बहनी बांध दे इनका कंचन का दही दो हमें दे दो 4 किलो
2: अरे तब खाई लो बांध दे खबा दे
0: अरे तो पहले बताए होते हो आज बीफ है
2: लहसुन मिर्चा बहुत बढ़िया चट वो भूखे हन
1: नोनवा
2: नून
1: हां
2: और चना है और लइया है और तनी चूरा है और इनका बना लो बढ़िया मक करुआ रुआ तेल मिला के बढ़िया बनाओ खावा जाए
0: पहले
2: बरसात का बढ़िया भोजन होता
0: अरे
2: अब देखो कैसा पनिया बरस रहा है उनका मार मन तो देखे खाई लो
1: अब तो खाई लो बहनी तनी खाई लो तनी चलो खाई लो
0: ये ये ये अभी कहती संतुष्ट हो जाओ और संतुष्ट ना की गाना गाओ नहीं ना सुनाई है ये आज खवाए खवाए मार दे रही है मैं लोग का
1: चलो बहनी लाओ देवा पंचवा
2: लो देखो ये बरखा में है सब अच्छा लागत है
0: चलो तो ही बात पे फिर खाई लिया जाए
1: बतिया मान ली बहनी बिरेक कह दी जाए अपन कमावा अब इनके वो भुजौआ जन भोजिन ही है
2: ओका भोज एक ठो बिरेक ले लो थोड़ा ही आराम कर लो उनके बाद अब गाना एकदम बढ़िया सुनाई थे
1: चलो ठीक है यह मान ले थे तो हर बतिया मान ली
3: जी हाँ बहनों और भाइयों आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए
4: ओ छोटे सुन
5: पता
4: तू इस साल के कैलेंडर को टच करेगा ना तो तुझे शॉक लग जाएगा
5: वो भला क्यों
4: तुझे नहीं पता
5: क्या नहीं पता
4: कि शॉक क्यों लगेगा
5: क्यों लगेगा
4: वो इसलिए क्योंकि वो करंट कैलेंडर है ना
6: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
7: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
6: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
7: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
6: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
1: ये चटपटाओ
2: कस लगा पहले ही बताओ।
1: भुजवा तो बड़ा नीक भुजे बाड़ू
0: चटर पटर एकदम।
1: हाँ जस ये चटपटो ही तैसा चटपटे
2: यार के उका खूब कलर के।
1: अब बहनी हर हर का मिर्चवा जो ने काट के डार दी हुए का
2: नहीं हो पिसा। हाँ। भूखे रहन
1: अच्छा लिया पे। हाँ भूखे रहुआ तो ठंडा वाना चाहते मारे गर्मी खा मरी जाई थे बहनी।
2: अब बिजुरिया वाला मरा जाते तो का करी नहीं देते गौवा वालन का समझते ये सब बैल हो।
0: हाँ तो वही झोलिया बैलवन के साथ लथार लथार मारा जाए।
2: हाँ तो ऐसे बैलवा लतियात नहीं लतियात है लतियाए
0: वही वही चाहता है उन्हें
2: चाहता है यार।
1: तब हनी चलो छु गवनैया कहू रहा तो खाए लियो देखो जेकार देखो आएगा पेटवा भर डालियो आज
2: अब यार तो
1: पेटवा भर खवाई हुआ आज नायकंचन।
0: हाँ हाँ अरे एकदम जू जुड़ाई गया
2: पानी वानी बरसा है ऐसे। हाँ। यहाँ सब बैठ के खाओ बतुआवा जाए जैसे हम लोग बतुआई था
0: बिल्कुल। और इतना चटपटा रहा कि मतलब लागत है संजय वाले खाना जरूरत ना पड़ी।
1: पनिया और कनवा से धुआं निकलने लगा।
0: हाँ वही निकरा कहूँ और उसे नहीं निकरा।
1: हाँ है कहो
0: लेकिन तो सवेरे पता लगी अब हम कुछ ना कहा।
1: बहुत बहुत कड़ू खाती बहनी कहते ना मिर्चवा कितना नाये हो
0: तब चटपटी ना
2: मिर्चा हो
1: यही तुहार ना हो तुहार मम्मी मम्मी और
2: चटपटा धरी
1: चटपटा धरी अब जान के तू कहे चटपटी
0: चटर पटर।
1: चलो गाँव हम यही मिर्चवा बचा दे तुहार जब आए तू नाश्ता वाला लाई रहा का करी तो ढोलिया कहूँ यार बार रहा थी
0: बाटिया रहा थी
2: का बताइए। अब की बार एक ढोलिया हम आपन लेके रखे और इनसे कही तू बांट डालो जेका बांटे खोए।
1: हाँ।
2: तो दही डालो
1: कह तू दही डालो दो चार ठोर
2: खरीदार कहीं तो। हाँ और हम आपन ढोलिया धरब यहाँ पर।
1: हाँ
2: और वहाँ पे हम लोग गावा जाए बजावा जाए।
1: तू आपन अपने जो बेटा बैठी हो बेटा ये बक्सवा वाला बैठा।
2: हाँ बक्सवा वाला हो यार
1: ढाई के लाख कही दो
2: वहाँ।
0: अरे चाची यो नहीं हम तो कही थे 100 रुपये नहीं 1000 रुपया सीधे बताए दो जे छुई ढोल ते का 1000 रुपया फिर भरे पड़ी।
1: जुर्माना
0: बस बदले अब ना करी है कौनो फिर हम पाई जाते है ना तब लेके चला जाते।
2: बड़ा बेसरम भरा है सब गौवा
0: ये तो पूरा है कहो
2: चाहे जो कुछ कह दिए
1: चाहे जो कहे लेके जावे
2: लगी उनने कछु बुरा
1: अब लेके चले जाई
2: चले
1: कछु कहो चलो शुरू करो
2: चलो चलो
1: वो है वाली धीरे धीरे।
2: हां
1: चला शुरू करो भाई नमिया बजा दे।

0: अरे वाह वाह वाह, मजा आएगा भाई, मजा आएगा, कमाल हो ही गए
1: बहनी। कंचन कंचन हो नी गावती बहनी,
2: बढ़िया गाओ पुरवाए ली ना।
0: अरे हमें हमार साजन याद आए के रे, उनके मुसुकी हमें का बताई, अखी हम जोन कहू आखरी जीवा जुड़ाए गे चाची।
2: हमार सबकी अम्मा रहे
0: हाँ,
2: तो यह गाना हम अक्सर जब जैसे देखे बादल वादल घिरा हाँ, है हाँ, हाँ। और आज देखो कितना अंधेरी अंधेरी घिरे हाँ, रही रही।
0: अरे जाओ चाची एकदम जुआ हमारे जुड़ाएगा, हम घर जावे अपने महातारिक सुनाई देता।
1: अच्छा ये तो तू अपने मायके आई हो नहीं साई
0: हाँ हाँ सावन चल।
1: कहाँ बियाहवा कहाँ बा है?
0: अरे बियाहवा तो हम उखनऊ कहूँ परत है।
1: उखनऊ नखलाऊ का कहा थी?
2: नखलाऊ हो हाँ,
0: नखलाऊ उखनऊ ऐसे कुछ हाँ,
1: है नखलाऊ बहनी
2: नखलाऊ
1: नहीं जान
2: पाई जान पाओ
0: नहीं जान पा। अरे बहुत सब नखराइल है हुआ जो
2: यहाँ हुई सकते उखनऊ को गाँव
0: गाँव नहीं है शहर हो चाची जानो यहाँ कान है उत्तर प्रदेश जो है ओकर राजधानी
1: हो नखलाऊ हो
2: जानो।
0: अरे इतना कुल नखराइल है वहाँ हम जानी नहीं पाई थे
1: नखलाऊ हो
2: और नखलाऊ हो
0: हाँ,
2: तो हम कहा कि उखनऊ
1: ये चटपटाओ ये चटपटाओ।
0: अरे जिंदा हो
1: चली गए हो
0: बिजलिया वाले कुल जिंदा हो गए मर गए
1: बत्ती वाले बहुत नीक है भैया
2: उनका गरिया उतन
1: नहीं गरिया ना बहुत नीक है मेरे बत्ती वाले भैया बत्ती बिजली दे दी नहीं कहता ना नीक है बताओ चटपटाओ।
2: हम तो यहाँ गौते के काली मैया
1: नहीं बहनी देखो दई दिन कहूँ बनावत हुई है बेचारे
0: हाँ, वनहु तो सोचो आंधी तूफान आए
1: टूटे थे लई लई सीढ़ी दौरा रहा था
2: हाँ। इंजीनियर की हम लोग इतनी बड़ाई करें इंजीनियर बहुत बड़ा होता अस इंजीनियर का उन्हें काम के।
0: अरे सोच लो चाची हम लोग दो ही कदम चल के आने इतना चहला लाग गया गोड़े में और दिना भर दौरा थे
1: दिना भर कुल
0: लाइन सब टूट रहा था।
2: तू लोग जो बाजी पलट दीने
1: नहीं बाजी नहीं पलटी अब दई दिन अब गर्मिया से शांत हो गई तब काहे को उनका गरिया बेचारे
2: बेचारे हुई गए रतिया दुपुर दुपुर का आटा करे थे तब बेचारे
1: काटे थे। अब देखो बनी
2: सब गाय गरिया हुई हो तू सब गाय हमें मालूम है बहुत गरिया
1: गरियाई थी जब काटे थे तब गरियाई तो दिए थे तब
0: अच्छा हमारे बात सुनो चटपटो चाची और दुलारी चाची आप लोग विभाग के नंबर हो तो कर लई लिया करो और फोन मिला लिया करो SDO बैठत है वो विभाग
2: का नंबर हुआ तो दे दे
1: PDO के होते हैं PDO।
0: अरे वही है खतिर होते शिकायत देखे खतिर कहाँ बत्ती आए है कहाँ नहीं आए है और उनके जिम्मेदारी हुआ था तू बताई हो कि हमारे घरे ई भय दुर्घटना हुए से पहले जांच और पूरा देख रेख करे कौन के जिम्मेदारी हुआ था।
2: बहनी एक बार हम नंबर वन ले लिया रहा तू कब बताई
0: हाँ हाँ
2: है ऐसे बत्तिया हमार खराब हुई गयी
0: हाँ हाँ हाँ
2: अब हम करत करत फोन करत करत फोन करत करत फोन दादा
0: अरे दादा रात ही सुबह हो गए
2: रतिया से सवेर
1: हो सके कहूं वो सोए गए
2: कोई नाई सुने नाई उठाए।
0: अरे हमरे होरे के बताई हमरे होरिया के जोन करत माने हमरे होने के हाँ। जतना SDO है हम भैया फोन वो नाई मिलाई थे घंटिया कटत है बिजुरिया दे दिया था और जो कहूं उठाए लिहिन कब भव और कहा था एक घंटा बाद आई जुड़ते 5 मिनट बाद मारिए डर के दे दिया था सहार हुए ना किए सोई जाई
2: पूरे बताई थी कि ना अपने
1: गौवा का तो मैंने गौवा खलिया ना कहो
2: अरे गौवा
1: मैंने हां बता नहीं आवत
2: नहीं आवत है
1: आठ रोज भी
0: अरे गाँव एकदम सुने ने खम्भा पाई जाते तो मनाई लेके अपने दुआरी गाड़ लेते हैं तो वहाँ बिजली वाले के कौन गलती है
1: ये तो बतिया बहनी पूरे कहा तू।
0: अरे ये देखे ना हम
2: अपने की लाइटिया जलावत है की का कर जा देखो सरकार जहाँ कुछ करी के हार जा जिका चोरी करे
0: खाए
1: बहनी रास्ता निकाल लिया था नवा नवा
0: हाँ टुल्लू मशीनिया लगाए दो रतियम खेतों पानी भरे कही खोल ले जाते चलते मशीनिया हाँ चलते मशीनिया के जाने कैसे डरा तो नहीं कि करंट लाग जाये।
1: अरे मोरी माँ
2: बहनी बताओ भूसवा हमार चुराई ले गए हाँ। तो बताए रहन कि हम तो पूरी झल्ली झल्ली भूसवा लगाए दिया बाहर
1: हाँ।
2: तो हमका भूसा के चुराई
0: हाँ हाँ हाँ।
2: भूसा चुराई ले गए बहनी
1: अरे हाँ, ये बतावत तो रही दादा
0: ये सब जो आवे शहर भैया तो नोनो के बोरी वजह बाहर वहाँ हाथ उठा ले
1: कूली बहनी कूली
2: बोरवा उठाए लेंगे दो तीन बोरवा उठाए लेंगे भूसवा
0: हाय दादा
2: और तो जाय देओ भूसवा नहीं बचा
0: चलो जाय देओ दयु करे वो सुखी रहे कौन जानवर वो खवई है तुम्हें आशीर्वाद
2: तो हम इनकार ना करते
1: बहनी याद आज करो आज करो जब हमरे लौकिया कद्दूया कुल भरा रहा खेत में तो कथना कुल चोराई ले गए
0: परिवा नहीं खाई रहा लौकिया का है
1: काम बनाए
2: पहले जाए दो दुलारी हमरे खेत चुराई लाओ
0: अरे
1: हम चौराहे नहीं था, लोटन चाचा हुआ खड़ा रहे।
0: अच्छा अच्छा।
1: उनसे कहन कि भैया दूठो मुरई हम उखाड़ ले भाई।
0: हाँ हाँ।
1: तो कहन उखाड़ लो भाई, जाओ दुलारू उखाड़।
0: रास्ता चलत रही हुई चाची को बाज ही गए रहा हो।
1: सुनो दूठो मुरैया उखाड़े इनका ना बताए तब एक तू चौराहे ली
0: हाथ धो
1: हमारे खेत सुनी लो यहाँ हमारे खेतवा माँ के गोभी के बहनी फूल निकाल ले गई ना पाड़े से पूछे ना हमसे।
0: अरे वो लोटन चाचा कहीं जोन परत है ना चुप से दही ना जब फूल दिया जाते सभी गुलाब दिए थे तो ये गोभी फूल ले आई रहा।
1: जाओ ये बहनी ऊपर से बैलन
0: बैलन का जब टाइम आवत है जब बैलन का टाइम आवत है जतना बैल रहा था वैसे भी ये करत है
2: तो बताए ना कि बताओ चिकलेट डे कर
1: डे कर
0: अरे उसे गुड़ा
1: डे
0: पेटोई नहीं साफ होत होई तो वही वो करत है।
2: आंटी हगड़े होता तो शर्माई गन
0: हम हूँ
2: ऐसे धोतिया धोतिया से मुंह बंद कैले हम
0: बहनी हम लोग तो आपस में बतवायु ले थी तो बोलहिन लायक नहीं
1: बोलहिन लायक बहनी है बहनी ये सभी सुन ले
2: हम बतावा इनका सारी कहानी बतावा।
1: दिल्ली से तू आयु है अंग्रेजी पढ़े हो अंग्रेजी
0: ये तो कहो बंद कमर में हम लोग बगदई थे नहीं तो कहूँ आओ क्यों सुन ले तो पता नहीं का हो जाए
1: कहीं सब सुन लियो तनी का हो बहनी। अब जमाना जो नहीं जमाना बहुत बहुत दूर चला गया नहीं हमारे
0: लेकिन ये बताओ दुलारी चाची हम ही नहीं जान पाए चटपटो चाची काहे मतलब बैलन के डे महीन ये आपन डे खोज दी रहा
1: का जनी बहनी अब इनका सुनो
2: बैलन डे कहा है बार बार बैलन डे हमका बहनी के कौन सा त्योहार ले आई
1: है बहनी सुनी लो
0: त्योहार मनावे लागी रह गई रह गोभी फूलवा उखाड़ के आपके
1: ये अपने बैले के दिन बहनी।
0: अरे हम का बताई तुराय ना जाए लिए
2: बैलन डे तो हमका
0: तुराय ना जाए बैलवा ये लिए
2: अब दे बैलन का डे है कोई नहीं खवाई दे।
0: अरे दादा और क्यों नहीं मिला रे इतना नोक नोक हमारे चाचा है
2: खेतवा से निकाल
1: खेतवा से हमारे ये है नहीं।
0: हाँ हाँ
1: फूल के गोभी वाला जो रहा वो निकाली और धनीवा हमारे बड़ी खोटे नहीं जरा सुखा।
0: अरे दादा जान नहीं पा रहा गजरवा मिला नहीं रहा बरवा मुँह लगाए गए रही
2: हमारे खेतवा से गाजर चोराय ली है।
0: हाँ हाँ।
2: गजर बड़ा तना तना गाजर लगा
0: कहा नीक है तोहरे लोग के बीच में हम नहीं रहते ना हम लुटी जाई
1: नहीं तो तू थोड़े हमार चोराई लियो।
0: हाँ।
1: और थोड़े हम तुम्हार चोराई लिए तब कौन चोरी
0: चोरी कौन होना ये दोस्ती यारी मतलब चला
2: मजाक की बात
1: हो लौकिया हमार जब फरी रही बनी तब इनका हम ना दिन हुई तो कम से कम 50 लौकी दिन हुई।
2: अब झूठा बोलो हमें
1: कहे
2: हमें गुस्सा लागत है
1: अब दिया खेला बहनी कंचन
2: तो 50 लौकी हम कहाँ हजम कर लेबे
1: 50 लौकिया दिहन ना तब तू की हुरा भंडारवा उनका हनुमान जी का
2: हाँ, तो दान करे रहो हमें हाँ, नाई दिए रहो हमारे पेट खाते नाई दिए रहो
1: 50 लौकी
2: है देव तू
1: 50 लौकी
2: दिन
1: इनका 50 लौकी कम से कम इनका ध्यान होई 20 ठो बहनी कद्दू।
0: अरे दादा
2: हम हैतास रह गए दादा 50 लौकी हम कब कौने पेट में हजम कर लिया
1: आ एक के दिन थोड़े खुल खाए ले बहु और का खायो हम
0: अरे दादा एक दिन हम अब आपसे बताए दे थे बतायो ना चटपटो चाची कही है चुप से एक दिन कद्दू की सब्जी में है चना मिरो मिरोए के और बढ़िया मेवा और मखनवा जो हुआ था ये सब मिरोए के हमें एक दिन सब्जी बनाए के पूरी खवाई रहा मंगर रहा जेट के और लौकी का खीर रहा
1: आई आई रे
0: हाँ बहुत बढ़िया
1: हमारे खेतवा कदुआ हमारे खेतवा लौकी उगाती कौने पे
0: अरे भंडारा कहा रही ना चुप पर जाने रहो सबका ना बतायो
1: ना ना बताबे गई कुछ अमरम करे
0: हां हां अब बस जाने रहो ये भाई रहा और जेठ मंगर रहा देखो मंगर रही तरे मूड़ी ओकरे मतलब ढाई दही है अब बताई नहीं है अब भंडारम के खातरा हम खात रहे
1: अब हमें खाती देखो
0: अब बहन बिटिया लागी तो पंडित मान के हमें खवाई
1: दी दिन हो तो पूरे बतिया का
0: अब वन हूँ अपन बात पे सत्य ही आप अपने बतिया पे सत्य हूँ
2: कौन बात होता है
0: कछु नहीं कछु नहीं नहीं नहीं
1: हम लोग एक जगह गए ना बतिया कर तू नहीं कह रहा हूँ
0: हाँ हाँ
2: अच्छा अच्छा
1: नहीं कह रहा
2: तू दोनों जनी कब गई
1: अरे कंचन गई ना तू दिल्ली गई ना
2: तू हमरे बगैर कहूँ जाते नहीं हो
1: नहीं जब दिल्ली आ गए ना वो तू दिल्ली नहीं गई रहा तो कंचन यहाँ आई है तब दो महीने
0: बढ़िया बढ़िया भंडारा बनत रहा तो अपने चाची ना खवाई बहन दुलारी चाची हमारी दुलारी
2: अच्छा अच्छा अच्छा
1: बनाए लेके गए तो वह बताओ थी कि भंडारवा महिया बड़ा नीक नीक सामान
2: तो पहले हम तो भंडारा किया रहा है
1: खाई सा कन्या
0: सोच लो 50 मनी का केला खाए
1: इक्कीस बहनी 21 का होता बहनी
2: अरे 21 होता है गंती नहीं जाना तू का
1: गंती में
2: एक दुई और एक दुई के पीछे एक 21
1: अच्छा दुई के पीछे वाला एक, हम जानी कि दुई के आगे वाला एक
2: नहीं, तब तो बारह भाव।
1: अच्छा अच्छा,
2: इक्कीस कन्या खवायर है।
0: हम तो कन्फ्यूजी आ गए तोरे लोग के, एक दुई दुई एक, एक दुई दुई एक, कहाँ रुकी बताओ।
1: ऐसे गिनतिया जान पाई थे जैसे एक के पिछवरवा ऐसे गोल गोल धर दे तब दस हो जाते हैं। ऐसे एक के बगलिया में फिर एक डंडा और खींच दो तब ग्यारह हो जाते हैं।
0: अगारा अगारा,
1: और एक के बगलिया में दुई धर दो तब बारह हो जाते है ना।
0: अगारा बिगारा तू जान ही नहीं पाती
1: बहनी, जान पाई है बारह नहीं कहते बिगारा,
0: अगारा बिगारा।
1: अच्छा तो सुनो,
0: और तीसर का जन्म ना है कि अगारा, पहले अगारेन हाँ। फिर बिगारा, बिगारेन फिर तिहारा त्योहार।
1: कहाँ पढ़ावती
2: गारा बारा और तिहारा कहीं नहीं।
1: अच्छा वहा भाई, तब एक के पिछवा तीन धारा हो।
0: हाँ तो तिहारा हुआ तो कही थे अगारा बिगारा तिहारा।
1: तो सुनो, अब दुई के पीछे एक धरो कन्या।
2: हमार अब देखो हमार मतलब कि 21 कन्या खवा रहा, पाँच हाँ। पाँच रुपया सबका दक्षिणा दिया, पाँव पकड़ लिया सब।
1: तो कहती कि हम 2 रुपया पाए
2: नहीं, पाँच पाँच दिया रहा है।
0: पाँच पाँच कहाँ
2: के सिक्का हम जोड़े रहा
1: कहाँ ही के रुपए वाले
2: पाँच पाँच रुपया जोड़ के धरे रहन और 21 कन्या खवाएं।
0: जानी दुलारी चाची ये दही तो रहा पाँच, लेकिन सुन लो इनका दिमागवा देखो कतना चालाक है। ये हमें दही दुई का बड़ा बड़ा सिक्का और तीन सिक्का वो दे दी छोटका छोटका जो चलता ही
1: नहीं जाने
2: बहनी फेंके हो ना वो सिक्का।
0: तोहरे दिल्लू में जलत चलत हो ही ना चलत है
2: ना, सब जगह चलत है ना। पकड़ जाइये जे ना ले है ना
0: हाँ।
2: उनका वो मारे जाइये।
1: क्या पकड़ ली बहनी उनका? पुलुस
2: पुलुस
0: हाइया पकड़ ली जाओ तुम चाची।
2: पकड़ जाइये ना कि रुपया हम ना ले
1: हाँ।
2: मारा जाइये वही सब
1: मैंने मारी।
2: अब मारे सरकार मारी और के मारी।
1: अरे मोरी मैया रे मैया,
2: अब ना रुपया कौन मना कर सकत है। पहले रिक्शा वाले कहा था ये सिक्का ना चला था,
1: अब हूँ कहा थे परोइया भाई गहन बाजार एक ना ही लीज दई रिपोर्ट
2: तो फेंक देती हूँ के ऊपर।
1: हम अलगे अंत्य फेंक दिया
2: नहीं अंत्य का है फेंको को फेंक देती हूँ ले जाओ भारे में जाओ तू हाँ चलत है हम वहाँ दे थे
0: भारे में झोंकत यहाँ सब बरते जरत है
2: डरान डर तू डराए जे हुई डरवाई ले हैं
1: हाँ डरवाई सब डरवाई सब
2: हर जो नबे सखी जिंदा है
1: हाँ। तो हम जानी थी तू पुलिस से नहीं डरा तू बहनी है बजी है पुलिस से लड़ गई रहा।
0: अच्छा तो वो डराए गए रहे
1: हाँ डराए गए
2: कहीं की माफ कर दीजिए
1: हाथ जोड़ के कहीं की बहनी हमका
2: माफ करो
1: माफ करो हम मैं
2: गलत से पंगा ले लिया
1: हाँ पुरुष का नहीं डरा थी है
2: नहीं डराई।
0: तब तो गनो सुनाई हुई हो पंगा ना ले मेरे नाल है ना ही चाची
2: नहीं नहीं गए तो हम जरूर हम कहा कि देखो गलत है तू का करे नहीं दे भाभी कहूँ हम आए हो तो मतलब
1: इज्जत से आए हो इज्जत से चला जाओ
2: मैं तुहार करनी बिगाड़ दी।
0: बिल्कुल बिल्कुल कैसे हिम्मत भर की सीमा से अंदर आई
2: तू कहीं नहीं कौन मेहरारू होए तो कहीं की चाची होए गांव की
0: हाँ। शेरनी दहाड़ दे तो बाहर के इलाका से दूर दूर तक डरा
1: थे कि प्रधानी लड़ जाओ लड़ जाओ ना ही लड़ा थी
2: ये देखो लड़ाई भिड़ा हमका विश्वास नहीं है
1: नहीं अस नहीं लड़े के हो चटपटाओ प्रधानी
2: लड़े तो
0: अरे कुश्ती ना है उतर के दंगल ना है हो चाची
1: खाली खड़ी हो जाए के हम लोग कहा वोट दे चटपटाओ वोट दे चटपटाओ
0: हाँ
2: तो खड़न रही
1: और खड़ी न रहा है का तू बैठक ना ना बहनी
0: हाँ बस खड़ी ना है
2: नहीं तो अतनी देर हम ना देर
0: सावन भरी एक गोड़े एक गोड़े
2: गलत बात है थकी जाइए हमारे घर हमारे घर का काम काज क्या करी।
0: अरे तो चाचा नहीं है
2: आधा खड़े हुई जाओ
0: लोटन चाचा नहीं है
1: और
0: तो लोटी लोटी कुल काम कर लिया
2: था चाचा तो हर रोटियां ना बनाई है चाय ना बनाई है
0: हाँ।
1: ये चट बैठाओ ये एक घोड़ा कंचन पकड़ी
2: नहीं
1: पकड़ लिया भाई
2: हम खड़े ना
1: भाई हाथ है रखा वो
0: हां जीतेंगे भाई जीतेंगे चटपटी चाची जीतेंगे
1: हां बहनी खड़ी हो जाओ
2: वो जीत जाए वो तो भाई हम जीतब
0: ठाड़े रही हो
2: तो गुड़ पुरनिया हो
1: बड़वा तो हारी कंचनिया दाब दे हम दाब दे भाई
0: और जोर के दाब फिर बैठे लायक रहा
2: तो लोग मजाक हमार उड़ाए हो
0: मजाक नहीं उड़ाए हैं एक दाई दाब देवे तो वही खड़ा खड़ी रही हो ठाड़ी रही हो टस से मस ना हुई हो
1: तू जीत जाबो तो हमार सबके कतना देखो रुतबा हो जाए रुतबा
2: आवन दो मैं अलमीका वाले भैया उनसे पूछ ले कि हम
1: हाँ हाँ पूछ
2: माँ डागदरी वागदरी कराए दे कि हम पिया पाई लायक है कि नहीं है।
1: तू रुपया पाइबो जब बन जाबो ना
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तोरे हाथ में हो जाए के रुपया दे।
0: अरे रुपया
1: हर दे
0: रुपया बादिम
1: हे
0: चाचा का रुपया बादिम साइड में धरो तो हर दबदबा हो जाए। तू से लोग थर थर आई है जो तोर ढोलिया उठा ले जाते छुई है ना।
2: तोरे लिए हम एक साड़ी खरीदे और तोरे लिए दो खरीदे।
1: ठीक है
0: हाँ। नहीं तो ये तो डबल हम हो दुई चाहिए
1: तू दू दे हाँ। वो दुई ले रही।
0: अरे हम यहाँ एक, एक, एक नहीं अरे पहरब एक ससुर पहरब खाबे चाची माँ दिवाई रहा एक बात बताई हमारे जे पिया जी है ना उन्हें लाल नहीं पियर रंग बहुत निक लागत है और हरियर रंग देखो सावन आवत है चाची वह कलर वा दवाई
1: ये सुनो एक तो बुसटिया दवाई दी उनके मर देख
0: हाँ वो
2: अतना मिली पैसा
0: और करिया करिया
1: मिली बहनी
2: हजारन
1: मिली मिली
0: हाँ और करिया
2: हो अतना ना दे कोनो हमें।
0: अरे
2: आदमी के लिए खरीद दी
0: एक जरूरत है ना रही आज तो हर दबदबा रही जैसे कही हो लाए गोड़ धाई के जाके जाए
2: गांव के बिटिया हो जानो हो
0: हाँ।
2: और तोरे लिए हम खरीद सके तोरे मर्द के लिए हम ना खरीद
1: सुने ले बहनी सुने
0: अरे उनके पहले खरीदो हमार खरीदो चाहे
1: सुने ले बहनी तू जोने दुकानिया पजाबो और कबो है मनई
0: हाँ।
1: कपड़ा निकालो वो तुम्हें पूरा थनवा पकड़ाए
0: दे हफ्ता भी नहीं हफ्ता चढ़ावा
2: सच्ची कहा
0: अरे पूरा है
1: पूरा बतिया कही थे बहनी
2: अच्छा, तो चलो टराई करी था यार
1: अभी किन का ठाड़ कराए।
0: अरे तो डराओ ना जो तू से ना हो तो हमारी दुलारी चाची ही उनसे ना हो तो हम तो निपटिन ले बे
1: और का
2: तो चलो
1: कपड़वा तो एक ठुनका हरका इनके मरते इनके मरते के तो हरका कंचन करे मरते
0: कहीं नहीं उ करिया
2: हां ठाड़ करियो हमें कब ठाड़ कर
0: बस जाइए अब यही लागे खट खट ठाड़ हो जाऊं हम का
1: है वो अब हम काहे ठाड़ करबो भाई नहीं जब इलेक्शन हुआ आई
0: अच्छा अच्छा तो बतायो चाची
1: इलेक्शन होए हल्ला होए लागी कि हाँ जो अब प्रधान के बनी प्रधान के बनी तुम ठाड़ हो जाओ और एक बार कंचन गोड़ पकड़िए एक बार हम पकड़ ले तू ठाड़ रहे हो बस और बस जैसे कोई कही जीतेंगी भाई जीतेंगी
0: बस उचुक जायो
2: उचुक
0: जाए मुहा दिखाई हो ना तो जनिए कैसे
1: सकरिया
0: उचुक जाए कैसे
1: हम दूजे कहा चटपटाओ हमारी जीतेंगी
0: हाँ
1: ऐसे कहा बस तू जीत जाबो
0: जब तक तुम्हारे उत्साह देखिए ना कैसे उत्साहित हो या तुम्हें वोट दे खाते
1: तू कह दी हो कि तुहरे सड़किया के गौवा के हम बड़ा काम कर बे जो पनिया भरत है पनिया सुखवा दे
0: अब बिजुरिया जरूर आई खम्भा उखरे ना दे
1: बिजुरिया हम जो कटा थी
2: हफ्ता भर सब हम करावे
0: बिल्कुल आज अब बोलियो आज ठाड़ बहने अभी खम्भा पकड़े हम ठाड़ रहा तुहार खम्भा उखड़े
2: अब हम जाएंगे तो लोग हमारे जो है
1: ना ही इन कंचन मुराही करा थी और तू सुनी ले तू ही कह दो कि बिजुरिया हम जाए ना देव अरे कही दियो जाए तो जाबा ही करी
0: एक नहीं जीत जाओ फिर बैठ जाओ
1: मुहा से कह दो तुहार सोला किया बनाए देव तुहार बिजुरिया ना कटे देव तुहे राशन दवाई देव और कछु न दवाओ यही सब है करत है
0: बस बस
2: तो हम दवाई देवो राशन वाला तो हमार पट्टीदार लगे
0: अरे दवाओ एक नहीं है सब ले लिए खै बादी में ही
1: हां कछु न करो तू अपने घरे में धई लियो
2: ऐसे बहनी तो हमार पट्टीदार लगे ना
1: हाँ
2: तो
1: ऐसे सब है सुनो जितने प्रधान है सब ऐसे करत है मोल मोट मोट माल जोन होता है घर में धई अरे धई लियो
0: पहले तनखियो नहीं रही अब तो तनखियो आवत ही
1: हां
2: अच्छा हाँ। मिली
0: अरे मिली मिली
1: लोटन चाचा से तू एक रुपया ना मांगो
0: ना मांगो तो हार गोड़ हाथ दबाई है जान लियो
1: जो
0: रोटियां नहीं बनाओ थे गोल गोल रोटी बनाई है
1: और
0: मारे खुशी की
1: तैयार हो जाओ आपकी
2: अच्छा तो ये बात है अगर लोटन तुम्हारे चाचा रोटी बनावे लगे
0: हाँ, हाँ, हाँ।
2: तो हम चाहे
1: अरे रोटी पराठा पूरी बहनी कुल बनाई
0: कुल बने आरती उतरिये दोनों जन पूजी है चढ़ावा चढ़ी ना गाँव वाले सब आए चढ़ी है जब जब आई है नमस्ते बोल
1: है प्रधान जी हमारे कमा करा दो मोट एक गड्डी पान सके बगली में तोरे
0: धई दे अब तू जानी हो ना पई हो
2: साचो
1: हाँ अब तू हमें अपने बगली में बैठा लियो ताकि गड्डी सरका सरका हम अपने झरो में धई ली
0: हाँ।
2: देखो हमसे मजाक ना करे कोनो और सही बात
0: अरे ना ही चटपटी चाची
1: पूरा ही कहीं तो चटपटा
0: ना हम आप कह रही काम इन कर रही
2: हमारे पर मत चाहे जितना पिराए पर हम खड़े
0: पिराए ना दे पकड़े रहा दोनों जनी
1: हाँ यही सुर गड्डिया टारा अब भाई तू कोई ठाड़ कर हम दो जनी
0: ये खाते से पकड़ा रहा जाए
1: गड्डी है
0: हां ये खाते से आपका गोड़ पकड़े रहा जी दूसरा हाथ से गड्डी पकड़ा जाए
2: कई गड्डी मिली हमका रुपया
0: अब जय जय माने यही
1: अगर मान लो तेरे घर में यहां तू बैठी हो आराम से सोफा लगा के बैठो और मने वे यही
0: और बड़का सोफा मंगवाओ वो जो ऑनलाइन आओ
1: कुर्सिया और खूब सज धज के ठाट से बैठो
0: और पान वान हो सके तो मीठा पान खाई
1: लियो और सुनी रे बहनी पान वान खा के बगली में छोड़ लाठी खड़ा कर दो और दू मने ही खड़ा कर दो
0: अरे हम दो हैं नहीं का करें दूसरे के लेके
1: ओकरे बाद आई है हाय प्रधान जी हाय पल्ला खटकाइए तब हम लोग बोलबे की का काम है प्रधान से तो कंचनिया बोल दे की सोच समझ के तो आयो हाँ हाँ हाँ सोच समझ के, सोच समझ के मतलब कि अगर आए हो तो रुपया जरूर दी।
0: हाँ इशारा हुआ,
1: इशारा होता है,
2: ये सब होता था।
1: तो पल्लवा खुलबे तैसे आए तोरे गुड़वा फाट पड़े, प्रधान जी हमारी कमाओ आए तो हमारी कमाओ कराओ।
0: और चुप पैसे दे हैं बताइए ना कि हम लाए हैं।
2: सुनो तो बहुत हमारे जेठ लागत है, बहुत हमारे ससुरो तो लागत है, तो हमारे पाए पे गोड़े गिरी है
1: ना ही गौक मनाइए। जेठ ससुर तो हमारे दुल्हन के गोड़े हाँ। और का
0: और तरह तक जावे ना करी है
1: और का कई दिन की
2: नहीं तो हमें तो ओढ़े पड़ी है ना।
0: अरे तो तू घूंघट क्यों, हम तो आज तक नहीं किए अपने जेठ के आगे घूंगा। रोजा कहते जेठ जी हम भुला गए घूंघटो, कहते कौन बात नहीं बिटिया हम तो नहीं करी
1: थे। हम कह देवे की हे भैया
0: परा रही है जब तक काम न कराई हो जान लियो उठवाए ना करिए अनसन।
2: ये तो भाई तू लोग बहुत बढ़िया आज बता दियो, हम तो समझे
0: सनसनासन खबर हो जाये
2: सरकार होत है। हम तो ये जानी था कि प्रधानी सरकार।
0: अरे प्रधानी सरकार तो हर सरकार हमार सरकार, बाकी सब बेकार।
2: हम तो सरकार है नहीं।
0: अरे हो जाये हो तो कहते हर सरकार हमार सरकार बाकी सब बेकार। एक दिन जीतो तो प्रधनिया
1: अब की तू ठाल हो जाओ।
0: हाँ
1: द्वार घोड़ रहा है चाहे घोड़ रहा है और चाहे ना रहे, लेकिन अब की तू ठाल हो जाओ बहनी। तो हर घोड़वा एक बार ये पकड़िए, एक रंग हम पकड़ा।
0: अब सोची
1: खाली हिम्मत बनाए रहे
0: चाची। अब सोची था चलो तनी एक इंतजाम कर लिया जाए।
1: हाँ।
0: अब बस जैसे अब इलेक्शन अनाउंस हुई तैसे हमारे दोनों जनी फाट पर तो रखो पड़ी।
1: हाँ, फाट पर हो है बहनी बैनर ओनर बनवा ली हो।
0: हाँ।
1: और इनके चटपटों के बड़ी एक फोटो लगा
0: है बैनर तने तरे कई गड्डी खाए के तनी हम तो बतिया ली।
1: हाँ बतवा ली बैनर के तरे अगर ज्यादा आई जाए मान लो 25,000 आएगा।
0: अरे वो तो हमें चटपटी चाची से करवा रखे ना।
1: हाँ। तो कह दो बनरवा छपो दे तो ले लियो तू 2,000 रुपया ले लियो।
0: 2,000 कम लागत है तो 5,000। हाँ तो पांच तो हर पांच
1: मा
0: देखो कपड़ो तो पहिरे परी।
1: हाँ,
0: हाँ भाई अब जब सब सब जनसभा में उतरा जाये तो तनी नीक उक दिखाए पर चाहिए।
1: खूब बटुअर लीन जाये हम लोग ये जाने कुछ पहिमा न करी।
0: अरे बटुअर ही होना देखो बहुत नीक हीन जीव से बहुत निर्छल हीन तो उतना करा जाए जितना हमारा चल जाए
1: उनका ना दे पाए उन्होंने दे पाए।
0: हाँ देखो हमारे कितना मतलब जोसा आई कि हमें खांसी हुआ
1: नहीं बनी से मौसम हुआ है खोखी आई जाते गर्म ठंड होते देखो अब ठंड जला दी। आओ चटपटो कहाँ गए
2: हम सोचे लगे हम जाके शीशा जाके खड़ा हुई गया कि हम लागित है कि नहीं सरकार
1: है लागत तो थोड़ा मुकुट उकुट लगा दी जाए।
0: हाँ बिल्कुल एकदम से टीका भी कम मार दे रहे
2: शीशा के आगे खड़े होकर देखें कि हम सरकार लागी थे कि नाई लागी थे।
1: तोहरे सर पे हम सब है
2: तो हम दिल्ली जाए के लिए ना तोरे लिए बहुत बढ़िया हम साड़ी निकाला है समझरी रहा है हम नाई हम कहा कि तू कर चलवे बढ़िया बनवाए के हम वो साड़ी तू का दे दे हम तू पहन लियो जब हम हमका प्रधानी के लिए खड़ा करियो तो वो साड़ी तो तू का हम दे दे ठीक है
0: साड़ी। हाँ अब ये देखो ये साड़ी तक ना आई है ज्यादा सोच गए ही चाची
1: का बहनी का
0: तो तब से कहा थी साड़ी ले लू साड़ी लेता नहीं तो हम ले ली
1: नहीं बहनी का हम, ना
2: दिल्ली ले जाए के लिए बकसवा वही से निकाला है साड़ी ये पहन ले है हुआ ठीक ठाक लगी है बढ़िया लगी है लिपटिक रखी रहा है हम हमारे लगे कई ठो है तो एक
1: लिपटिक क्या ले लिया है। हाँ ले ले लिपटिक क्या ले लिया
2: लिपटिक ले लियो साड़ी ले लियो और जब मैं खड़ा करो तो तू पहने हुई का
1: हम लोग नवा नवा पहन पाए।
0: हाँ नवा एकदम
1: की धुतिया दी हो
2: अच्छा
0: देखो
2: अच्छा,
0: मालिक का देखे से पहले उनके आदमियन का देखा जाता है
2: तो हम लोग हाँ। बताई दे उनसे
0: सब आई है तो हम ही तू का तड़ी है।
1: हाँ।
2: अमेरिका वाले हमारे भैया जब आई है
1: हाँ।
2: तो उनसे कह दे कि हम का जो है 10,000 रुपया दे दे।
1: हाँ,
2: 10,000 में हुई जाए कि नहीं हुई
1: हो जाए 10,000 में
0: बस कम लागत है
1: कम लागत है
0: देखो बाइन देखो
2: बारह
0: कम है देखो हम बताए देखो हम लिस्ट बताए दी थे देखो बैनर बनवाई तो छापे वाले का देख पड़ी इंक शाही सबका पैसा लागी ओकरे अलावा तार लागत है फिर मनई जोन बंधी है उन्हें बलाग पड़ी खंभा गाड़े वाले का बलाग पड़ी और पूरा मतलब बहुत ज्यादा पैसा लगे हमें लागत है 20 तो कम से कम जा
1: 20 तो मांगे लो 20 मांग लो 20,000
2: तो जोन मिली हमका तो वहां से काम कर लिया
1: बहनी कम हो जाए तो मजा ना आए कि नहीं
0: अरे जब
2: कहा थी कि गड्डी गड्डी मिली ना
0: अरे वो तो बाद ही मिली ना
2: वो बढ़िया मिली
1: जब जाबो तब मिली हाँ। जाबो तब
0: अरे हाँ। देखो यहरियां जितना लगाई हो उसे चौगुना निकालियो चाची
1: तू 20 मांगियो भैया से कह दियो कि आपस कह दे आपस
2: तो चलो हम फुनवा लगाई थे।
1: हाँ लगाई फुनवा लगाई के यार
2: अब भाई हम बात करी थे तोहरे सामने बात करी थे।
1: अच्छा तो करो बतिया करो
2: को लगाए ली फोन उठाओ
0: अरे तो हुआ दिन में रात रहा था रात
1: ये तू गलत टाइम पर फोनवा करे हो
0: अभी सब सुआवत हुई है कैसे उठाए लिए
2: अरे बहनी कुमा दिखे तो उठाए ले है ना
0: तब बिना उखे करी है तब तब तो पूछ लियो
1: ये बहनी तू काल पूछ ली हो अब अगले मीटिंग में बैठबे तो हम सब तो बतवा ही लिन जाए
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: देखो कंचन लोग जाए खाए
2: हां जा मत गोड़ रहा चाहे जाए
0: बिल्कुल बिल्कुल ठाड़े रहियो
2: तो ये गाना गावे
1: नहीं नहीं राहिम गावत
0: है अरे हम बताए थे बाके लाल हूँ भाई आप
2: अच्छा अच्छा
1: अब इनके नाम के बहनी बहने दोनों छपाई लियो
0: हाँ।
1: अब इनका ठाट कर क्या गांव में आपकी इनका प्रधान बना दिया
0: बिल्कुल
1: हाँ।
0: एकदम तय
1: हाँ।
0: अब बनाए का देखे जान लो बनी
1: बनी
0: बस ठाड़ ही जाए एकदम
1: बस बस बस
2: तो चलो चलो देखो नई गाय दो आई है जब
1: चलो भाई पुरवाई लियो
0: ठीक है तो पुरवाए के फिर घर चले
1: कोई का पानी भरा है जहाँ देखो तहाँ पानी भरा है चाहे वह गंगा हो चाहे वह जमुना हो
2: हाँ पनिया बहुत है आपको सुना है कि सरजू मैया बड़ी बाढ़ आई
1: बहुत बाढ़ आई गई है
2: तो चलो भाई कब नहीं कहियो
1: तो बहनी
2: गाओ गाओ भाई
1: है बहनी
0: ना हाँ, देखो हमने खोखी आवत है चली थे चाय पी
1: खोखी आवत
0: हाँ, है घरे जाए का हूँ जाए
1: बहुत दम कर
0: और एक जन का और बदे हम जाए मिली आई
1: हाँ,
2: अच्छा
0: तो ठीक है तो चलो अभी तैयारी
2: करेंगे चलो ठीक
1: चलो भाई सबका राम राम
0: राम राम चाची
1: राम राम बहनी
0: राम राम आप
2: भाई आपने सुना ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा है चैट बॉक्स में आ करके एक बार आप लोग बताया जरूर करिए और हम आपका ऐसे ही मनोरंजन करते रहेंगे और आप चुस्त रहिए दुरुस्त रहिए मस्त रहिए और सुनते रहिए 89.6
1: FM ये है गोंडा शहर की धड़कन।

0: सफर से। और आइए पहला गीत आपको सुनाते हैं, मोहब्बत के नाम, ये प्यारा सा गीत। और मिलेंगे संगीत में अंतराल के तत्काल पश्चात। आप सुनते रहिए रेडियो ज्ञान स्लेट 9.6 FM। यह है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके थोड़ी सी और खास।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर नगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346। डिलीशियस
2: है ना, लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
1: और क्या क्या है खास,
2: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
1: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250-49-40-45।
3: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
3: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
4: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी, मेरा प्यार है सर्द पानी, मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ। हाँ

तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा सलामे इश्क आप सभी ने कबूल कर लिया होगा। जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो गणेश 9.6 एफएम, यह है गोंडा शहर की धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है गोंडा मैसेज मसाला ओल्ड इज गोल्ड के सेगमेंट वाला। जी हाँ, तो इस प्यारे से शो में आप सभी का स्वागत, एक बार पुनः अभिनंदन वंदन नमन और स्वागत। हमारे साथ भाई धर्मेंद्र मोहन जी हैं, जी हाँ प्रणाम करते हैं आपको, और अनिल साहब बबिता जी हैं, जी गुड मॉर्निंग कह सकते हैं, फर्स्ट मीटिंग इज ऑलवेज मॉर्निंग, जैसी आपकी इच्छा वैसे गुड शुभ संध्या। और जी हाँ, दादाजी चरण स्पर्श, सविता जी को हम देख पा रहे हैं, चरण स्पर्श करते हैं आपको। मोहित वर्मा जी हमारे साथ हैं, गुड इवनिंग सर, शुभ संध्या आपको भी। और मनीष शर्मा जी भी आ चुके हैं, गुड इवनिंग सर जी, शुभ संध्या आपको भी। मनीष शर्मा जी, और कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। इस तरह ढूंढिए उस तरह ढूंढिए, इस तरह ढूंढिए उस तरह ढूंढिए, जिस तरह हो सके उस तरह ढूंढिए, इस तरह ढूंढिए उस तरह ढूंढिए, जिस तरह हो सके उस तरह ढूंढिए। जिंदगी में अगर कोई गम हो तो भी, जिंदगी में अगर कोई गम हो तो भी, मुस्कुराने की कोई वजह ढूंढिए। आज गम है अगर कल खुशी आएगी, आज गम है अगर कल खुशी आएगी, जिंदगी फिर दुआओं से खिल जाएगी। चाहिए एक बहाना खुशी के लिए, वजह ना भी हो तो बेवजह ढूंढिए। इस तरह ढूंढिए उस तरह ढूंढिए, जिस तरह हो सके उस तरह ढूंढिए। गम मिले हैं तो गम की क्या बात है, गम मिले हैं तो भी गम की क्या बात है, वो हमारा खुदा भी अगर साथ है। हम तो इंसान हैं, भूल है लाजमी, सोचिए और अपनी खता ढूंढिए। इस तरह ढूंढिए उस तरह ढूंढिए, हर तरफ भीड़ है, हर तरफ भीड़ है, हर तरफ शोर है, हर तरफ भीड़ है, हर तरफ शोर है। ये है दुनिया नई, ये नया दौर है, इस बदलते हुए रंग में ढंग में, इस बदलते हुए रंग में ढंग में, बस सुकू की भरी एक जगह ढूंढिए। इस तरह ढूंढिए उस तरह ढूंढिए, जिस तरह हो सके उस तरह ढूंढिए। जी हाँ, हम जिंदगी में खुशी को ढूंढ कर लाएंगे। वैसे तो संसार का नाम दुखालय है, लोग कहते हैं जहाँ पुस्तक बहुत होती है वो पुस्तकालय, जहाँ दूध होता है वहाँ पर दुग्धालय, जहाँ पर विद्या सिखाई जाती है वो विद्यालय। संसार का एक पर्यायवाची संस्कृत में दुखालय भी है, अर्थात जिंदगी में दुख ही जीवन का शाश्वत सत्य है, ऐसा कहा गया। लेकिन इस गम की दुनिया में जीने की अगर हमारे पास कोई वजह है, तो वो वजह हमारा परिवार है, हमारे अपने हैं, हमारे रिश्ते हैं, हमारे नाते हैं, हमारे संबंध हैं, हमारी उम्मीदें हैं, हमारे सपने हैं। हकीकत इंसान को जीने की इजाज़त नहीं देती, ये तो इंसान के सपने हैं जो उसको जिलाए रहते हैं साहब। तो एक सपने के बिखर कर चकनाचूर हो जाने के बाद जो दूसरे सपने देखने का हौसला होता है, उसी को हम जिंदगी कहते हैं। जी हाँ, और जिंदगी ने एक चीज़ सिखाई है, जिंदगी ने सिखाया है कि हार के बाद हर इंसान की जीत होती है। जी हाँ, हम ऐसा जुड़ चुके हैं श्रीनाथ पटेल जी छपिया से, गुड इवनिंग शुभ संध्या आपको भी। दीपक जी जुड़ चुके हैं हथियागढ़ गोंडा से, गुड इवनिंग आरजे मनुसर जी, जी प्रणाम आपको भी और शुभ संध्या। धर्मेंद्र मोहन जी भाई हमारे बहुत ही प्यारे श्रोता वास्तविका से सुनते हैं, मनुसर जी गुड इवनिंग और शुभ संध्या। मैसांग जिंदगी की यही रीत है, क्या बात है, मतलब यही गाना हमारे प्लेलिस्ट का अगला गीत ही यही है, जिंदगी की यही रीत है।
और आपने क्या, आज तो लगता है कि मतलब आप वहाँ से बैठकर ये देख रहे थे कि हमारी प्लेलिस्ट में कौन सा गीत लगा हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल यही गीत ही लगा हुआ है। जिंदगी की यही रीति है, हार के बाद ही जीत है, इसी बात पर हम बात कर रहे थे और इस बात पर बात आई और आइए आपको सुनाते हैं। जी हाँ, जिंदगी की रीत, हार के बाद जीत। सुनते रहिए और रेडियो गणस्थलित 9.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारा सा गीत आप सभी के लिए, जो हम सभी को मोटिवेट करता है, प्रेरणा देता है।

जिंदगी कैसी है पहेली है, ठा अलग अलग लोग अलग अलग ढंग से जीवन को परिभाषित करते हैं। मतलब किसी भी प्रश्न का उत्तर कैसा होगा ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपने प्रश्न किससे किया है। अगर हम किसी राजनेता से पूछें कि एक और एक कितने होते हैं तो वो कहेगा 11 होते हैं, एकता में शक्ति है। अगर आप किसी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट से पूछेंगे कि एक और एक कितना होता है तो वो कहेगा 2 होते हैं। अगर हम किसी प्रेमी से पूछें कि एक और एक कितना होता है तो वो कहेंगे जब एक और एक मिल जाते हैं तो वो एक हो जाते हैं। और अगर आप किसी संत से तपस्वी से पूछिए कि एक और एक कितने होते हैं तो वो कहेगा 0 होते हैं। मतलब हम ईश्वर में विलीन हो जाते हैं। तो प्रश्न क्या है, मुझको लगता है इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि प्रश्न किससे है। जी, इसी प्रकार से ज़िंदगी को अलग अलग लोगों ने, अलग अलग कवियों ने, शायरों ने, दानिश्वरों ने अपने अपने तरीके से जीवन को परिभाषित करने की कोशिश की। कोई कहता है जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी हंसाए कभी रुलाए, कभी आया कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख दिया नाम इस पे तेरा। जिंदगी बन गए हो तुम जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम। कभी दोस्ती कहते हैं कि दोस्ती ही जिंदगी है, तो अलग अलग परसेप्शन है, अलग अलग समझ है। मैं तो कहता हूं कि तुम हो, तुम्हारी खुशी है, तुम हो तुम्हारी खुशी है, इसके सिवा कुछ नहीं है। तुम हो तुम्हारी खुशी है, इसके सिवा कुछ नहीं है, तुम साथ हो तो है क्या गम, तुम साथ हो तो है क्या गम, सब कुछ मेरा बस यही है। दिल में है तस्वीर तेरी,

आँखों में सपने तुम्हारे, दुनिया से हमको क्या लेना, मेरी तो दुनिया ही तू है, तुम हो तुम्हारी खुशी है। जब तक थे तुम साथ मेरे, दुनिया ये कितनी हसीन थी, जब से हो तुम साथ छोड़े, सब कुछ वहीं का वहीं है। दिल तो अकेला कभी भी रहता नहीं है किसी का, दिल इस जहां में सभी का लगता कहीं ना कहीं है। जी हाँ, आप देखें तो एक शायर की बहुत शानदार पंक्ति याद मुझको आती है कि तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा। तो इंसान न जाने कब तेरे दिल में नई सी दस्तक हो, न जाने कब तेरे दिल में नई सी दस्तक हो, मकान खाली हुआ है तो कोई आएगा। लेकिन अगली पंक्ति गजब की है, शायर ने कहा कि बेशक वो तुम्हें चाहतों की नजरों से देखेगा, बेशक वो तुम्हें चाहतों की नजरों से देखेगा, मगर वो आंखें हमारी कहां से लाएगा। मतलब चाहना एक अलग बात है, लेकिन उस तरीके से या उस शिद्दत से चाहना, शायद वो जिंदगी में एक ही बार होता है, फर्स्ट टाइम होता है, और इसके पश्चात जीवन अगर मुझसे कोई पूछता है क्या है, तो मैं कहता हूं समझौता है। कुछ आप अपनी वाली कर लें, कुछ हम अपनी वाली कर लें, इसी का नाम तो जिंदगी है साहब। सिर्फ आप वाली होगी या सिर्फ किसी वाली होगी तो घर नहीं चल पाएंगे। पति पत्नी में क्या होता है, कुछ पति वाली कुछ पत्नी वाली, कुछ जगह वो सरेंडर कुछ जगह वो सरेंडर, भाई बहन में यही होता है, कर्मचारी और अधिकारी में यही होता है, भाई कुछ आपकी वाली कुछ हमारी वाली। और जहां ये भावना आ जाती है कि नहीं सिर्फ मेरी वाली ही चलेगी, वहां रिश्ते टूट जाते हैं। तो कभी कभी समझौता कर लेने का नाम भी जिंदगी होता है। अगर आप नहीं कर सकते तो शायद हम सबको टूट जाना पड़ेगा। मतलब प्राइड एक अच्छी चीज है, वकार एक अच्छी चीज है, लेकिन जहां पर बात रिश्तों की हो जाए, वहां पर हमको लगता है कि इंसान को अपना स्वाभिमान, अगर लगता है कि रिश्ते और स्वाभिमान दो में से एक जाएगा, आपको लगता है कि आपकी अना महत्वपूर्ण है, तो रिश्तों को जाने दीजिए। और अगर आप रिश्तों को महत्व देते हैं, संबंधों को महत्व देते हैं, तो बातों को दरकिनार कर दीजिए। दोनों नहीं हो सकती, बातें भी रहें और रिश्ते भी रहें। जहां रिश्ते होते हैं वहां कुछ खट्टी कुछ मीठी बातें होंगी, कभी लड़ाई झगड़ा होगा ही होगा, स्वाभाविक है। तो आपको अच्छी जिंदगी जीने के लिए मुझे लगता है कि दो चीजों की आवश्यकता सबसे अधिक है, एक आपका अंदाज और दूसरा आपका चीजों को नजरअंदाज कर देना। ठीक है, हो गया होगा, कोई बात नहीं। अगर ये एहसास हमारे पास है तो हमको लगता है जिंदगी अच्छी चल सकती है। बाकी अपनी अपनी सोच भाई, अपनी अपनी परंपरा, मुंडे मुंडे मत भिन्ना, जितने सर है उतनी अलग प्रकार की सोच है। लेकिन मैंने ये देखा कि जो लोग थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना जानते हैं, उनके रिश्ते बहुत मीठे होते हैं। ठीक है, आज हमने कुछ कह दिया, आपने सुन लिया, ठीक है, कल आप कुछ बोलेंगे, हम कुछ सुन लेंगे, क्या अच्छी सी बात है। हमेशा हम ही कहें, हमेशा आप सुने, या हमेशा आप कहें और हमेशा हम सुने, ऐसा शायद किसी रिश्ते में संभव नहीं होते। एज फार एज आई एम कंसर्न, जहां तक मैं अपनी व्यक्तिगत बात कर रहा हूं, जी हाँ, धर्मेंद्र मोहन जी हैं, सर जी वो दोस्ती जो आपस में बकवास ना हो वही दोस्ती खास होती है, कभी तुम गलती करो कभी हम, यही प्रेम का बंधन है। बिल्कुल सत्य है, और
मनु यू आर ग्रेट, आके आपने परिभाषित किया। अरे अरे, हमने कुछ परिभाषित नहीं किया साहब, ये तो बस खाली ऐसे बता दिया आप लोगों से सीख करके कुछ दादा। और महेंद्र दीपेन जी हैं मेरे साथ, गजबसर जी, धन्यवाद आपको। और जी, तुम साथ हो सब मेरे, दुनिया को भुला दूंगा। बिल्कुल, आप साथ रहें तो सब कुछ संभव है। तो चलिए आपको सुनाते हैं प्यारी सी प्यारा सा गीत जिंदगी पर, और इसके बाद जिंदगी के बाद आएंगे दोस्ती पर। फिलहाल जिंदगी पर एक बहुत ही प्यारी कविता है। इसका वाकया है कि ये गीत गाना था मुकेश कुमार जी को, और इत्तेफाक से उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया, तो उनके बेटे ने ये गीत गाया। और जब ये गीत गाया गया तो शायद बहुत से लोग पहले कंफ्यूज ही थे कि ये मुकेश जी ही हैं, बाद में पता चला नहीं, लाइक फादर लाइक सन, जैसा पिता वैसा पुत्र। आइए सुनाते हैं आपको एक पैसा गीत, तो मिलते हैं संगीत में अंतराल के उस पार। बहुत ही खूबसूरत गीत, मुझे बहुत पसंद है, देखिए आपको कहाँ तक पसंद आता है।

0: जी हाँ, और आखिरकार वो घड़ी आ गई। जी हाँ, कौन सी घड़ी? वो घड़ी जब गीत बजेंगे लेकिन आपके नाम पर। अजीब सी ऊप शामिल हो गई है रोज़ जीने में, अजीब सी ऊप शामिल हो गई है रोज़ जीने में। पलों को दिन में दिन को काट कर जीना महीने में, महज मायूसियाँ जगती हैं अब कैसी भी आहट पर। हजारों उलझनों के घोंसले लटके हैं चौखट पर। अचानक सबकी सब ये चुप्पियाँ एक साथ पिघली हैं, उम्मीदें सब सिमट कर हाथ बन जाने को मछली हैं। मेरे कमरे के सन्नाटे ने अंगड़ाई सी तोड़ी है, मेरी खामोशियों ने एक नगमा गुनगुनाया है। तुम्हारा फ़ोन आया है। जी हाँ, अब हम इंतज़ार करेंगे आपके फ़ोन का, और आपका दूरभाष क्रमांक वही है साहब, 63-93-31-64-29। इंग्लिश में बोले तो 63-93-31-64-29, 63-93-31-64-29। जी हाँ, तो फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम करते हैं प्रारंभ, और हमारे पास पहली फरमाइश है सबलू शांता क्रूज मुंबई जी की। चलिए भाई, इनकी फरमाइश को करते हैं पूरा और देखते हैं कि इनकी फरमाइश में क्या है खास।
1: सुर में गाना सीखिए पाधानी सा ऐप के साथ, AI powered पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।

जी हाँ, ये बहुत ही प्यारा सा गीत हमने सुना। ये पहली फरमाइश थी हमारे पास, और अब चलते हैं अपने दूसरी फरमाइश जी की ओर। और दूसरी फरमाइश है हमारे पास तनु जी की बेलसर से। अभी बरखा से उनका मन नहीं भरा है और कह रही हैं कि नहीं, अभी कम बरसा है, थोड़ा सा और बरसो। तो बरखा रानी ज़रा जम के बरसो और पूरे बेलसर को पानी में भिगो दो। इस तमन्ना को लिए ये पैसा गीत आप सभी के लिए।

जी हाँ, उम्मीद करते हैं कि अब बरखा रानी झूम के बरस जाएंगी, क्योंकि रेडियो गन इसलिए 89.6 एफएम ने बजा दिया है बरखा रानी जरा जम के बरसो, और आवाज़ भी किसकी, मुकेश कुमार की। जी हाँ, आप चलते हैं, अगली फरमाइश हमारी है राही जी, जो उनको सुनते हैं लखनऊ से, फिल्म सावन का ये गीत है शायद जी, सलमान। हाँ, तेरे नाम तू बुला ले बुला ले बुला ले, मेरे रब्बा मेरे महबूब से तू मिला दे, बहुत ही प्यारा सा गीत। आइए आपको सुनाते हैं राही लखनवी जी की फरमाइश।

बहुत ही प्यारा सा गीत हमने भाई इंजॉय किया जी हाँ, बहुत ही प्यारी सी फरमाइश ये रही। और अब चलते हैं भाई, हमारी अगली फरमाइश आशु मिश्रा जी की है, दिल कहे रुक जा रे रुक जा। बहुत ही प्यारा गीत है आशु मिश्रा जी, जो हमको सुनती है लखनऊ।

जी हाँ, और अब चलते हैं भाई अपने बहुत ही प्यारे श्रोता श्री राम हेयर कटिंग सैलून जी और जिनके मालिक हैं आनंद जी। बहुत ही प्यारा गीत उन्होंने भेजा है, मौसम को देखते हुए मिलते मिलते हंसी वादियों में। जी हाँ, वादियाँ हसीन हैं और हमको डर है आनंद जी कहीं खो न जाए, जरा संभल के रहिएगा, वादियाँ हसीन हैं। आइए आनंद जी की फरमाइश करिए।

0: और हम उम्मीद करते हैं कि भाई इस गीत के बाद आनंद जी कहीं खोए नहीं होंगे। और अब चलते हैं अपने बहुत ही प्यारे श्रोता रईस जी की तरफ। बहुत ही प्यारे इंसान ने उस गीत भेजा है, तुम आ गए हो नूर आ गया है, और ये उन्होंने किसी के लिए डेडिकेट किया है, लेकिन ये बता नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा है, सर जी कोई आने वाला है और अभी से नूर आ गया है मेरे चेहरे पर, अब कौन है ये तो रईस जी जाने और वो जाने जो आने वाले हैं, लेकिन हम गीत बजा रहे हैं, तुम आ गए हो नूर आ गया है।
1: तुम्हारी रह जाती।

जी हाँ, और जिस तरह से नूर आ गया है, हम चाहते हैं रईस जी की ज़िंदगी में भी कुछ इसी तरह का नूर बहुत जल्दी आए। अब चलते हैं भाई, हमारे एक नन्हे से फरिश्ते हैं अयान जी, और बहुत ही प्यारा बोलते हैं, और उनकी फरमाइश है नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया। जी हाँ, आइए अपने नन्हे से फरिश्ते की ये प्यारी सी फरमाइश पहुँचाते हैं आप तक।

जी हाँ भाई, तुम्हारे नन्हे से फरिश्ते की फरमाइश होती है पूरी। अब चलते हैं धर्मेंद्र मोहन जी की तरफ। वो आँख ही क्या जिसमें तेरी सूरत न हो, बहुत ही प्यारा गीत है धर्मेंद्र मोहन जी की फरमाइश पर, जो हमको सुनते हैं आवाज़।

क्या बात है भाई, वो आखी क्या वास्तव में बहुत ही प्यारा गीत भाई धनंद मोहन जी। और अब चलते हैं अपने हनुमान भक्त श्री प्रबल मिश्रा जी के पास। उन्होंने गीत भेजा है, हालांकि बहुत प्यारा गीत भेजा है, तुझे देखा तो ये जाना सनम, लेकिन ये नहीं बताया है कि किसको देखा तब ये जाना। फिलहाल उनकी फरमाइश पर ये गीत बजाते हैं और उम्मीद करते हैं कि किसको देखा है ये हमको वो ज़रूर बताएंगे।

क्या बात है भाई, तुझे देखा बहुत प्यारी फिल्म, आज बहुत दिनों के बाद याद आ गई भाई, वो अपना दौर याद आ गया। आप चलते हैं भाई पूर्णिमा जी की तरफ। बरस बरस बरखा सुहानी क्यों आई, बहुत ही प्यारा सा गीत, एक विवाह ऐसा भी गया।

बिल्कुल टिप टिप बरसा पानी और बरसात हो रही हो और कहीं आपको चांद सा मुखड़ा दिख जाए तो कितना अच्छा लगता है जी। हाँ, महेंद्र जी जो हमको सुनते हैं राजस्थान से, गीत है ये मुखड़ा चांद का टुकड़ा।

0: अब समाचार विस्तार से। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट के नौवहन और वाणिज्य को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
1: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। ये बयान अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संवाददाता सम्मेलन में ये कहने के बाद आया है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य वाणिज्यिक जहाजों के लिए खुला है। अमरीकी सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जलडमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमरीकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। उन्होंने कहा कि ईरान का हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर कोई नियंत्रण नहीं है और सुरक्षित पारगमन मार्ग खुले हैं। इससे पहले ईरान द्वारा हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला करने और उसे आग लगाकर चालक दल को जहाज छोड़ने के लिए मजबूर करने के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हवाई हमले किए। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित 36 लोग सवार थे। दुर्घटना में घायल 16 भारतीय स्वदेश लौट रहे हैं। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति का वियतनाम के फूकवाक स्थित अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस बीच वियतनाम के प्रधानमंत्री ली मिन होंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और 12 अन्य पश्चिमी तथा एशियाई देशों ने 2016 के मध्यस्थता निर्णय के आधार पर दक्षिण चीन सागर में चीन के व्यापक दावों को अवैध बताया है। इन 14 देशों के संयुक्त बयान में कहा गया है कि विवादित जल क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने वाली कार्रवाई अस्वीकार्य है। 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के बयान में इसे विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय बताया गया है।
2: इन बयानों में 12 जुलाई 2016 को हेग में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन के तहत स्थापित न्यायाधिकरण के मध्यस्थता निर्णय का जिक्र किया गया है। उन्होंने इस ऐतिहासिक निर्णय को अंतिम और कानूनी रूप से बाध्यकारी बताया है। हालांकि चीन ने इस निर्णय को खारिज करते हुए इसे अमान्य बताया। उसने कहा कि इसका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है। चीन ने दोहराया कि वह इसे ना तो स्वीकार करता है और ना ही मान्यता देता है। एक वर्ष पहले विवादित जल क्षेत्र में तनावपूर्ण गतिरोध के बाद दक्षिण चीन सागर तनाव का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यहां चीन और फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान के बीच बार बार क्षेत्रीय गतिरोध होते रहते हैं। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देशभर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया इतिहास रचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के निकट नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाकर राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया।
3: कार्यक्रम के दौरान जन भवन की नक्षत्र वाटिका में कुल 29 चंदन के पौधे लगाए गए। पौधारोपण अभियान में जन भवन के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साथ बालिका गृह की लड़कियों ने भी हिस्सा लिया। इस अभियान में कई मंत्रियों और जन प्रतिनिधियों के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्यों, विभिन्न विभागों के लोगों, विद्यार्थियों और आम जनता ने भी भाग लिया। ये अभियान राज्य के 75 जिलों में चलाया गया। राज्य ने इस वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर 5 करोड़ से ज्यादा पौधे भी लगाए। उत्तर प्रदेश में इस साल अब तक कुल 40 करोड़ 29 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। ये अभियान 27 विभागों के आपसी सहयोग से चलाया गया, जिसमें वन विभाग ने 15.5 करोड़ पौधे लगाने का सबसे बड़ा लक्ष्य पूरा किया। लखनऊ से सुशील तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से रेशमा तिवारी।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्य भर में 21 लाख पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की भी योजना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से चिंतित है।
4: जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, जलवायु संकट गहराएगा और ये नुकसान 2100 तक बढ़कर जीडीपी में जो कमी हो रही 20% तक पहुंच सकता है। आप कल्पना कीजिए क्या होगा। ये आर्थिक संकट इतना बड़ा होगा कि इसको मुकाबला करना फिर कठिन हो जाएगा। और इसलिए वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम के 405 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। हमारी संवाददाता ने बताया कि गृहमंत्री ने 2029 के चुनाव तक निर्वाचन क्षेत्रों में पौधे लगाने की गतिविधि को 20% तक बढ़ाने की दीर्घकालिक पर्यावरणीय रूपरेखा पर बल दिया।
5: गृहमंत्री ने बरगद, पीपल, जामुन और अर्जुन जैसे स्वदेशी पौधे लगाने पर जोर दिया, जिससे शहर के तापमान में 5% की कमी आएगी और भावी पीढ़ियों के लिए एक रहने योग्य पर्यावरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने पर्यावरण स्थिरता में योगदान देने के लिए हर घर और आवासीय सोसाइटी से सोलर रूफटॉप अपनाने का भी आह्वान किया। इस पर्यावरण अभियान के तहत आज 101 नए ऑक्सीजन पार्क का भी उद्घाटन किया गया और उनकी जानकारी देने वाली एक विशेष ई बुक भी जारी की गई। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए AMTS और BRTS के बेड़े में आज 333 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई, जिससे अहमदाबाद BRTS देश का पहला 100% इलेक्ट्रिक और शून्य प्रदूषण वाला बेड़ा बन गया है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने चीन के ओर्डोस में खेली जा रही एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना अभियान 16 पदकों के साथ संपन्न किया। इनमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने आज अंतिम दिन 2 स्वर्ण और 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। भारतीय महिला टीम ने 4x400 रिले में स्वर्ण पदक जीता, जबकि भाला फेंक में भारत के आनंद सिंह ने स्वर्ण और शिवम लोहाकरे ने कांस्य पदक हासिल किया। भारतीय पुरुष टीम ने 4x400 रिले और महिला टीम ने 4x400 मीटर रिले में रजत पदक जीते। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का फाइनल मुकाबला इटली के यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव के बीच जारी है। इससे पहले चीन की गुओ हानयू ने और फ्रांस की क्रिस्टीना मिलाडेनोवा की जोड़ी ने महिला डबल्स का खिताब जीता। उन्होंने फाइनल्स में कनाडा की गैब्रियला डाब्रोवस्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी को 6-3, 7-5 से पराजित किया। उधर लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को एकमात्र टेस्ट में 457 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में तीसरे दिन इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट पर 23 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने अपनी दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन बनाकर घोषित कर दी। इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 170 रन की बना सकी। सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहन के ईंधन टैंक की सीमित समस्या संबंधी दावे का खंडन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर वायरल फर्जी तस्वीर में ऐसा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि तेल विपणन कंपनियों द्वारा आपूर्ति किया जा रहा E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुरूप है। निर्धारित मानकों के अनुरूप होने पर इथेनॉल और पेट्रोल पूरी तरह से घुलनशील हैं। नई पीढ़ी के प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधारों के विषय पर 2 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन कल से मेघालय के शिलांग में शुरू हो रखा है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा मेघालय सरकार इसका आयोजन कर रखे हैं। ये सम्मेलन देश भर के नीति निर्माताओं, प्रशासकों, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों और शासन से जुड़े लोगों को एक मंच पर लाएगा ताकि वो लोक प्रशासन और डिजिटल गवर्नेंस के भविष्य पर चर्चा कर सकें। सम्मेलन में 300 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने निर्माण क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल तकनीक अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के 172वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसी भी भवन या संरचना के निर्माण के दौरान उसकी मजबूती से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वो भारतीय उद्योग जगत के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और टिकाऊ विकास पर विशेष ध्यान देते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल कल स्पेन पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 16 तारीख को आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800117800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। वो नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम के माध्यम से भी ऑनलाइन अपने सुझाव दे सकते हैं। नागरिक 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर और SMS से प्राप्त लिंक का अनुसरण करके सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव भेज सकते हैं। आगामी एपिसोड के लिए सुझाव इस महीने की 24 तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया मंगलवार को देशभर में लगभग 668 करोड़ रुपए लागत वाली 7 कर्मचारी राज्य बीमा ESI स्वास्थ्य परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत पर हमले के बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में तुरंत तनाव कम करने का आह्वान किया। अमरीका ने कहा होर्मुज जल डमरू मध्य में सभी जहाजों के लिए खुला और अमरीकी सेना नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार। वियतनाम में नौका दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीयों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंचे, उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में नया इतिहास रचा। चीन में अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक जीते और लंदन में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज़ेवरेव का मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: क्या बात है भाई, हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें। बहुत ही प्यार सा गीत। और अब चलते हैं भाई अपने इम्तियाज जी की तरफ, इश्क कमीना को लेकर।
1: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

जी हाँ, कदे मुश्किल जी ना भाई भी इश्क का आसान काम नहीं है जी, बिल्कुल कठिन काम है। अब चलते हैं जितिन सिंह जी की फरमाइश, इतना तो याद है मुझे, और ये उन्होंने डेडिकेट किया है अपनी अर्धांगिनी को जिनका नाम है सुवर्णा। जी हाँ, इतना तो याद है मुझे।

0: लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु, और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में। सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, नगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346। छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज प्ले ग्रुप से क्लास 9। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन्स ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
3: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
3: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी करें 7234-020-202।
3: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
1: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से TV, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा TV एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे 1 हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी। मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
1: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेलीमानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या, शाम का सलाम कबूल करें, आदाब आप सभी को। आप सुन रहे हैं रेडियो गणेश 89.6 एफएम, यह है गोंडा शहर की धड़कन। और अब कार्यक्रम चल चुका है बहारे गजल। और सबसे पहले भाई क्षमा प्रार्थी हूँ कि कुछ लोगों के गीत आज नहीं बज पाए, समय अभाव रहा, समय कम था इसलिए गीत नहीं बज पाए, लेकिन आपसे ये वादा करते हैं कि जब अगले रविवार को गोंडा मैसेज मसाला करेंगे तो फिर आज जिनके गीत छूट गए हैं उनको हमने टिक कर लिया है और अगले रविवार को उनके दो गीत बजा दिए जाएंगे। जी, तो इस प्रकार से जो आपका एक गीत नहीं बज पाया आज, वो अगले रविवार को आसमान वाले ने चाहा तो ज़रूर बजेगा। मतलब कहीं से उदास होने की आवश्यकता नहीं कि हमारा गीत नहीं बजा। इस बार एक नहीं बजा, अगली बार दो बजेगा और पहले आपका बजेगा जिनका छूट गया। जी, ये मुलाकात फिर नहीं होगी, ये मुलाकात फिर नहीं होगी, आज सी बात फिर नहीं होगी, ऐसे बादल तो फिर भी आएंगे, ऐसे बादल तो फिर भी आएंगे, ऐसी बरसात फिर नहीं होगी, गजलों की बरसात लिए मैं मनु आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। आप सुन रहे हैं रेडियो गणेश 89.6 एफएम, यह है गोंडा शहर की धड़कन। और आज जिस शख्सियत को हम आपके पास लेकर आए हैं उनका नाम है नसीम शाद, एक ऐसा शायर जिसने बहुत ही कम उम्र में उन्होंने ज़िंदगी के कई सारे मौजूआत को छुआ और वो उर्दू अदब की दुनिया का आज एक बावकार नाम है, जिन्होंने गज़लों की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। उन्होंने कहा कि हमने माना अभी अंधेरा है, हमने माना अभी अंधेरा है, पास लेकिन बहुत सवेरा है। इसी बात को अगर अंग्रेजी के साहित्यकार कहते तो पीवी शेले ने कहा था कि इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, अगर पतझड़ आया है तो बसंत अब बहुत दूर नहीं हो सकता, मतलब दुख आया है तो सुख बहुत दूर नहीं है, आधा है, बस यू हैव टू वेट एंड वॉच, आपको इंतजार करना है और देखना है। और इसी बात को अगर हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद जी कहते तो वो कुछ ये कहा उन्होंने कामायनी में कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा ये झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात, जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान कभी मत उसको जाओ भूल। तो दुख के पश्चात सुख का सवेरा आता है, ऐसा हर साहित्य में आपको मिलेगा। हमने माना, नसीम शाद जी कहते हैं कि हमने माना अभी अंधेरा है, पास लेकिन बहुत सवेरा है, मेल दिल में कोई नहीं रखना, दिल में रब का अगर बसेरा है, मैल मत रखिएगा किसी के लिए, और छीन लेता है साथ अपनों का, छीन लेता है साथ अपनों का, वक्त वो बेरहम लुटेरा है, सब मुसाफिर हैं एक मंजिल के, सब मुसाफिर हैं एक मंजिल के, ये जहां तेरा है न मेरा है। अगर इस बात को कविता की जुबान में कहा जाए तो ये कुछ यूं भी कहा गया कि दुनिया नहीं जागीर किसी की, तो लोग आएंगे साहब, बहार बनकर जिंदगी में लोग आएंगे, लुभाएंगे और लुभाने के पश्चात फिर चले जाएंगे। जी हाँ, तो आइए, जब बात यह हो चुकी है कि लोग बहार बनकर आएंगे, लुभाएंगे और चले जाएंगे, तो शुरुआत करते हैं आज इसी नगमे से इस कार्यक्रम की। जी हाँ, तो आएंगे आए बाहर बनकर लुभाकर चले गए। बहुत ही प्यारा सा नगमा, बहुत ही प्यारी सी गज़ल, ये रफ़ी साहब की आवाज़ में आप सभी के लिए। सुनते रहिए और रेडियो गणेश 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारा सा नगमा आप सभी को समर्पित।
1: चेहरा हसीन, आंखें बेमुरव्वत, मैंने दुनिया में ऐसी अजीब खूबसूरत औरत नहीं देखी।

जी, अगर दिल किसी से लगाया ना होता, वास्तव में दिल लगी। कभी कभी जान भी ले लेती है, इम्तिहान लेती है, आसान नहीं होती। जी हमारे साथ इट्स कुमार जी हैं, शुभ संध्या श्रीमान, आपको भी शुभ संध्या। कैसे हैं आप इट्स कुमार जी? और प्रबल जी कहते हैं, कोई सबूत नहीं होता मोहब्बत का, नाम सुनते ही धड़कन बढ़ जाए तो समझो मोहब्बत है दोस्त। हाँ, क्या बात है, ये बात तो है। और दोस्त आपने कहा तो मुझको कुछ याद आया, नदीम शाह जी का ही, उन्हीं का लिखा हुआ, उन्हीं की लिखी हुई पंक्तियां हैं कि दुश्मनी इस तरह निभाएगा, दुश्मनी इस तरह निभाएगा वो तेरी हाँ में हाँ मिलाएगा। अगर कोई व्यक्ति आपकी हर बात में हाँ मिला रहा है तो जरा सतर्क हो जाइएगा, हो सकता है वो सिर्फ कहने के लिए ही आपके मित्र हों। दुश्मनी इस तरह निभाएगा वो तेरी हाँ में हाँ मिलाएगा, अरे टूट जाएगा कांच की मानिंद हर किसी से जो दिल लगाएगा। हर किसी से अगर दिल लगाएंगे तो कांच के मानिंद टूट जाएंगे। हाय ये दूरियां हैं दिल वाली, हाय ये दूरियां हैं दिल वाली, फासले किस तरह मिटाएगा, भेष बदला है रूप बदला है, भेष बदला है रूप बदला है, उसको पहचान तू न पाएगा, लाख काबिल है इल्मो फन में तू, मतलब आप बहुत भी काबिल हैं तो आपके पास ज्ञान है, सब कुछ है, लाख काबिल है इल्मो फन में तू, चापलूसों से मात खाएगा। आजकल के जमाने में अगर आप ध्यान से देखिए तो जो आपकी बात का विरोध करते हैं, हम लोग ऐसे व्यक्ति को अच्छा नहीं मानते कि हमने कुछ कहा उन्होंने विरोध कर दिया, उस व्यक्ति को हम अच्छा मानते हैं जो हमारी हाँ में हाँ। लेकिन हम, कहा जाता है कि तीन व्यक्ति अगर आपसे डरते हैं और आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं एक राजा के लिए तो वो खतरनाक हो जाता है। हाँ में हाँ मिलाना कुछ जगह पर ठीक है, लेकिन तीन राजा के लिए तीन जगह ऐसी होनी चाहिए जहां पर हाँ में हाँ न मिले। पहला कौन सा है? सचिव, अर्थात आपका मंत्री जो आपका सलाहकार है, वैद्य डॉक्टर, और गुरु आपका अध्यापक। अगर ये तीन लोग आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोल नहीं भय आस, तो अगर आपका सलाहकार है तो आपका राज्य चला जाएगा। वैद्य अगर झूठ बोलेगा, अब आप सोचिए कि आप किसी वैद्य के पास गए, डॉक्टर के पास गए, और आपका वो डॉक्टर आपसे थोड़ा सा डरता है कि हाँ भाई ये बाहुबली हैं, ताकत वाले हैं, रुपए वाले हैं, उन्होंने बताया कि चावल मत खाइएगा, कहा उसने, आपने पलट कर कह दिया क्या थोड़ा भी नहीं खा सकते, वो उत्तर देंगे अरे थोड़ा सा खा सकते हैं। अरे थोड़ा सा चावल अगर आप खा रहे हैं तो दवा भी तो थोड़ी सी है, वो कौन सी ज्यादा है, शरीर खत्म। डॉक्टर आपसे न डरे, और गुरु, गु माने होता है अंधकार, रू मतलब होता है प्रकाश, जो अंधकार से आपको प्रकाश की ओर ले जाता है वही गुरु होता है, वो कोई भी हो सकता है, आवश्यक नहीं कि वो कोई इंसान हो, वो पेड़ हो सकता है। अगर हम ध्यान से देखें तो इस दुनिया की हर एक चीज हमको कुछ न कुछ सिखाती है, और गुरु है हमारी। होता नहीं है कोई बुरे वक्त में शरीक, बुरे वक्त में कोई आपके साथ शामिल नहीं होता। पेड़ बताता है कैसे,
पत्ते भी भागते हैं खिजा में सजल से दूर। जब पतझड़ का मौसम आता है तो पेड़ पर रहने वाले पत्ते भी पेड़ों का साथ छोड़ देते हैं। अर्थात इंसान जब वृद्ध होता है, देखिए आप जब पैदा हुए होंगे तो मांस और हड्डी चिपकी रही होगी, वृद्धावस्था में इंसान का जो मांस होता है वो उसकी हड्डियों का साथ छोड़ देता है। जो एक ही साथ पैदा हुए वो एक दूसरे के साथ नहीं है, दांत साथ छोड़ देता है, टूट जाता है, जीभ रह जाती है साहब, जुबान रह जाती है। सूर्य से बहुत कुछ सीख सकते हैं। कद तुम अपना कितना ही ऊंचा क्यों ना उठाओगे, जो आसमान है उसे कभी छू ना पाओगे, इस तेज रोशनी पर इतना गुरूर क्यों, सूरज हो ये सच है मगर डूब जाओगे। माना कि आप सूरज हैं लेकिन कोई ऐसा सूर्य नहीं जो उदित हुआ हो और अस्त ना हुआ हो, और ये बात भी है कि ऐसा भी सूर्य नहीं है जो अस्त हो गया हो और फिर उगा ना हो, दोनों चलते हैं साथ। मतलब तो गुरु अगर आपसे भय करता है तो धर्म का नाश हो जाता है, धर्म मतलब कर्तव्य। तो जिंदगी में ऐसे दोस्त होने चाहिए हमारे पास जो हमारी गलतियों पर हमें टोके। कभी सोचा भी है कि खुद से हम बेजार हैं कितने, अपने आप को हम कितना पहचानते हैं, अपने आप से कितनी बात करते हैं। कभी सोचा भी है कि खुद से ही हम बेजार हैं कितने, बहुत दुश्मन बना रखे हैं अपने, यार हैं कितने। आपके अंग्रेजी साहित्य कहता है द नियरर ब्लड द नियरर ब्लडी, जो आपके खून के जितना ज्यादा करीब है वो आपके खून का उतना ही प्यासा भी हो सकता है। बहुत दुश्मन बना रखे हैं अपने, यार हैं कितने, कोई ऐसा तो मेरा हम सफर हो ही नहीं सकता, कोई ऐसा तो मेरा हम सफर हो ही नहीं सकता जो पहले पूछता हो रास्ते दुश्वार हैं कितने। जो पहले पूछ ले कि भैया रास्ता कठिन नहीं है, हम चलेंगे तो लेकिन कठिन होगा तो नहीं जा पाएंगे, कहीं नहीं भैया जावा कोई आवश्यकता नहीं। मोहब्बत को खुली आजादियां कोई नहीं देता, मोहब्बत कोई नहीं चाहता, मोहब्बत सब चाहते हैं लेकिन वो हमारे घर में हो जाए तो ही बवाल हो जाए। सोच के देखिए, प्यार किया है भाई, प्यार किया है, कोई गुनाह थोड़े किया, लेकिन अगर वो घटना अपने घर में घटित हो जाए तो बवाल हो जाए। मोहब्बत से बढ़कर नहीं कोई नेमत, मगर शर्त यह है कि दुनिया न जाने, दुनिया वाले जान न पाए तो मोहब्बत से अच्छी कोई चीज नहीं है, जान गए तो फिर जान से जा सकते हैं। मोहब्बत को खुली आजादियां कोई नहीं देता, नजर तेरी तरफ उठे तो पहरेदार हैं कितने। नजर आपकी तरफ अगर उठ गई तो उंगलियां उठाने वाले तैयार खड़े हैं। अब सुनिएगा पंक्ति, मिलाने को तुम्हारी हां में हां एक भीड़ है, लेकिन हां में हां मिलाने वाले भीड़ है, मिलाने को तुम्हारी हां में हां एक भीड़ है लेकिन अरे तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं कितने। कभी सोचिएगा हां में हां मिलाने वाले लोग, अरे कोई बात नहीं हम हैं, मौका पड़ने पर कभी आजमा लीजिएगा, वहम टूट जाएगा। लगाओगे कहां तक दांव पर खुददारियां अपनी, अपना स्वाभिमान आप कहां तक दांव पर लगाएंगे, तुम्हारा एक सर है और यहां दरबार हैं कितने। एक सर है और कई सारे दरबार हैं जी। आइए आपको सुनाते हैं, बातचीत बहुत हो गई। एक गजल मुझको याद आ रही है भाई जी, हमारे साथ प्रवल मिश्रा जी हैं और सविता जी ने कहा बिल्कुल सही कहा सर आपने, सर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आशु मिश्रा जी को भाई हम सुने जमाना बीत गया, हमको बुधवार को इतना अच्छा गाती हैं और शनिवार को भी मतलब
शुभागमन नहीं हो पाता किसी कारण से, अब की बार आइएगा भाई, कोशिश कीजिएगा। प्रबल जी, हाँ जी, अपनी खुशी किसी और के हाथों में मत दो, खुद से प्यार करो और मुस्कुराते रहो। क्या बात कही आपने साहब। आइए अब आपको सुनाते हैं एक बहुत ही प्यारी गज़ल, मुझे याद आ गई, बहुत पुरानी गज़ल है, और सुनिए शायद आपके दिल को छू जाए। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो ये गज़ल आपके दिल को छुएगी, ऐसी उम्मीद हम करते हैं।

जी हाँ, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है। अगर कोई मुझसे पूछता है कि हाँ भाई, आपका व्यक्तिगत तौर पर आपको कौन सी गजल अच्छी लगती है, तो मुझे सोचना नहीं पड़ता, मैं खट से बोल देता हूँ, चिट्ठी आई है। अच्छा, और मैंने ये चीज़ देखी कि एक अनुभव किया मैंने कि इंसान किन चीज़ों को ज़्यादा पसंद करता है। जैसे कभी आप देखिए तो जो सीरियल होते हैं, जो धारावाहिक टीवी पर आते हैं, ज़्यादातर आप देखेंगे कि महिलाएं धारावाहिक पसंद करती हैं। कभी गौर कीजिएगा, आपके घर में सपोज कीजिए एक टीवी लगा है और उसी टाइम पर मम्मी का बहुत ही फेवरेट वाला सीरियल आता है जिसको वो छोड़ नहीं सकती। पिताजी को न्यूज चाहिए होती है और कल्पना कर लीजिए कि उस समय आईपीएल भी आ रहा हो और आपके पास जियो हॉट स्टार ना हो, एक ही टीवी पर तीन लोगों की फरमाइशें हों, क्या होगा? तो मम्मी को सीरियल से लगाव है क्योंकि वो महिला, जो जनरली जब आप धारावाहिक देखेंगे तो आपको महिला प्रधान मिलेगा, इसलिए महिलाओं की प्रधानता है तो महिलाएं धारावाहिक ज्यादा देखती हैं, एक रीजन समझ में आता है। जब हम बच्चे होते हैं, यूथ होते हैं, यंग होते हैं, तो हमको ऐसी फिल्में पसंद होती जिसमें मार धाड़ बहुत हो, उसके साथ लव स्टोरी चल रही हो तो और बढ़िया। पिताजी को देश की चिंता रहती है हमारे, समाचार पत्र न्यूज देखना, तो इंसान अपने इंटरेस्ट से चीजों को देखता है और वही चीज उसको पसंद आती है। हमको याद है कि हम तीन दोस्त जो है वो दिल्ली के मुखर्जी नगर में रहते थे, तो वहाँ पर गए थे पढ़ाई की तैयारी करने, लेकिन ये कुछ हादसा ऐसा हो गया कि गए थे पढ़ने और लग गए पढ़ाने, तो एसएससी की कोचिंग पढ़ाते थे। शाम को हम तीन लोग लौटते थे तो मुझको खाना वगैरह बनाना नहीं आता था, तो मेरा काम बर्तन मांजने का था, कोई अपने किसी को खाना बनाने का काम दे दिया गया। घर से दूर और उसमें तो मतलब घर पर टेलीफोन, लेकिन उसके चार्जेस पीसीओ पर बहुत कटते थे तो इतने पैसे भी नहीं होते थे, तो मतलब घर बहुत याद आता था, उस सीन मुझको याद आता है। तो जैसे बैठे थे, मैं बैठा हुआ था मैं, और अचानक ये गज़ल चिट्ठी आई है, पता नहीं क्या हुआ, टेबल बजाना बजाई और गाना शुरू कर दिया। तो जो हमारे दो मित्र और थे वो बहुत जो काम कर रहे थे, उन्होंने उस काम को छोड़ा, मेरी आंखें बंद थीं और मैं घर के ख्याल में खोया हुआ था, और ये गज़ल मुझको इत्तिफाक की पूरी याद थी। तो उन्होंने कहा, जब गज़ल समाप्त हुई तो माई आईज वर फिल्ड विथ टीयर्स, हमारी तो आंखों में आंसू थे ही, लेकिन जो मेरे दोस्त थे, जो मेरे साथ पढ़ाते थे, टीचर्स थे, उनकी भी आंखें नम हो गई। उस दिन के बाद से मुझको एक काम मिल गया कि आज से बर्तन मारने का काम आपका नहीं है, आप जब खाना बनाने का समय हम लोग का होगा तो ये गाना, ये गज़ल आपको गानी पड़ेगी, चिट्ठी आई है, आई है चिट्ठी आई है। तो वो उस दौर से लेकर के अभी तक मैं उस गज़ल को अपने दिल के बहुत करीब रखता हूँ, क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी के अहम हिस्सों में एक थी। तो हो सकता है, मतलब इंसान का अपना अपना दृष्टिकोण होता है चीज़ों को देखने का। जब हम परदेश में थे तो ये हमको बहुत अच्छी लगती थी, और चूंकि वो तब अच्छी लग गई तो आज भी अच्छी लगती है। जी हाँ, हमारे साथ प्रबल मिश्रा जी हैं, कहते हैं भाई बहुत अच्छी लगी है गज़ल, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको भाई प्रबल जी और आशु मिश्रा जी। मनीष शर्मा जी जुड़ गए हैं, जी हाँ नमस्कार आपको, शुभ संध्या। आसिफ खान जी हैं, उन्होंने कहा है गुड, बहुत अच्छा भाई, प्रबल मिश्रा जी ने बहुत सारे स्टार्स दे दिए। मुस्तफ़ा सऊदी जी हैं हमारे साथ जी, और ये गाना सुनता हूँ तो मेरी आँखें भर आती हैं। जी हाँ मनुष्य जी नमस्कार,
जी जी जी उसके पश्चात धारावाहिक जब मेरी मम्मी देखती हैं रिमोट अपने हाथ में रखती, देखिए एनालिसिस मेरा सही था, और बहारों की गजल में सर जी आपका स्वागत है। ज़िंदगी में क्या है, एक तरफ से ले लेना एक तरफ से दे देना, बिल्कुल सही बात है। तमन्ना आरज़ू हमारे साथ जुड़ गई हैं, क्या बात है भाई, बहुत अच्छा लगा। और आइए अब आपको, आप लोगों ने कॉलेज की लाइफ जी होगी, जब मुझे वो दौर याद आ गया तो उस दौर के पहले भी एक दौर था जब हम लोग पढ़ते थे विद्यालय में, मतलब कॉलेज में। उस समय एक गज़ल आई थी और वो छा गई थी, और ये भी मेरे तब के करीब थी जब मैं एक विद्यार्थी हुआ करता था। आइए आपको ले चलते हैं उस दौर में, हो सकता है आपने ये गज़ल बहुत पहले कहीं सुनी हो और इधर काफ़ी दिनों से न सुनी हो, हो सकता है। और ये गज़ल मैंने जब हम लोग का फेयरवेल का प्रोग्राम था बीए फाइनल ईयर का, तो ये गज़ल मैंने अपने कॉलेज में गाई थी, उसमें बहुत झूम कर चली थी। आप में से देखिए कितने लोगों को ये गज़ल याद है, कभी सुनी भी है नहीं, अगर नहीं सुनी है तो अपने कॉलेज की लाइफ को याद कीजिएगा और इसके बाद इस गज़ल का आनंद उठाइए, आपको निसंदेह अच्छा लगेगा। अगर आपने अपनी कॉलेज की लाइफ अच्छी तरीके से जी है तो ये प्यारी सी गज़ल आप सभी के लिए।

जी हाँ, वो लड़की याद आती है। देखते हैं भाई आप लोगों के प्यारे प्यारे क्या कमेंट्स हैं। और तमन्ना आजू ने कहा है भाई बहुत तो अच्छा, कैसा जी आप तो दिल की बात खोल कर रख देते हैं, धर्मेंद्र मोहन जी ने लिखा। और महेंद्र दीपेन जी राजस्थान से हैं, गजब सर जी, कल मेरे एक रिश्तेदार ने मुझे आशीर्वाद दिया खूब तरक्की करो, मैंने भी पूछ लिया सहन कर पाओगे आप, तुरंत नाराज़ हो गए आप, बाप बताओ सच भी बोल नहीं बोलने देते लोग। बिल्कुल पवन मिश्रा जी, बहुत सही बात कही आपने। हाँ नहीं नहीं याददाश्त नहीं चली जाती है बाप, पानी यार कैसे कुछ कहें, ठीक है। तकिया भिगोती थी शायद, बारिश का मौसम था, हो सकता है भाई। वेरी नाइस गज़ल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जब इतना नुकसान करती थी तो याद आएगी। और रात की तन्हाई में गज़लों का ये सफ़र है, आज़े की आवाज़ में आज जादू सा असर है, हर एक लफ्ज़ जैसे रूह को सुकून दे रहा है, इन चुनिंदा गज़लों में एक मीठा सा नशा है, चैट बॉक्स में बैठे मेरे यारों की क्या बात है, तुम सबके बिना अधूरी ये गज़लों की रात है, आइए इस खूबसूरत महफिल में यूं ही खो जाएं, आरजे और दोस्तों के संग ये पल यादगार बनाएं। क्या बात है भाई, क्या लिखा है आपने भाई महेंद्र जी, बहुत अच्छा लिखा आपने। और जी हाँ भाई, गुड नाइट बोलने का अधिकार हमें है। और घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि आपसे अनुमति लेने का वक्त आ चुका है। जी हाँ, शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होंठ पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। आसमान वाले ने चाहा तो कल ठीक 9:30 बजे आपसे पुनः मुलाकात होगी आप ही के कार्यक्रम बहार गज़ल में। तब तक सुनते रहिए रेडियो 9.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: हेलो एंड नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपकी आरजे उन्नति।
2: और मैं आपकी होस्ट आयुषी।
1: और ये है पर्दा। और आज हम जिस केस की बात करने जा रहे हैं वो अमेरिका के इतिहास का सबसे कुख्यात सीरियल किलर केस माना जाता है। एक ऐसा केस जिसे पूरी दुनिया ग्रीन रिवर सीरियल किलर के नाम से जानती है।
2: नाम सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि इसका कनेक्शन किसी नदी से है।
1: और सच में है, इस केस का नाम उसी नदी से पड़ा जहां पहली बार कुछ लाशें मिली थी। ग्रीन रिवर जो अमेरिका के सिएटल इलाके के पास बहती है।
2: तो क्या यहीं से पूरी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत हुई थी?
1: हाँ, लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें वापस जाना होगा 15 जुलाई 1982। सिएटल के पास बहने वाली ग्रीन रिवर के किनारे कुछ लोगों को पानी में बहती हुई कुछ लाशें दिखाई पड़ती हैं।
2: और जाहिर है कि ये किसी के लिए एक बहुत ही ज्यादा भयानक दृश्य रहा होगा।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। लोगों की निगाह जैसे ही इस मंजर पर पड़ती है वो तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। कुछ ही वक्त बाद पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। लाश को नदी से बाहर निकाला जाता है और पहचान की प्रोसेस शुरू की जाती है।
2: तो क्या उस लाश की पहचान हो पाई थी?
1: हाँ, जांच के बाद पुलिस को पता चला कि वह लाश 16 साल की लड़की जिसका नाम था वेंडीली कोफील्ड।
2: ओह, सिर्फ 16 साल? इसका मतलब अभी तो उसकी जिंदगी शुरू भी नहीं हुई थी।
1: और किसी ने उसे खत्म कर दिया। फिलहाल जब उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट सामने आती है तो मामला और भी गंभीर हो जाता है। रिपोर्ट बताती है कि लड़की के साथ पहले सेक्सुअल असॉल्ट किया गया था और उसके बाद उसका मर्डर किया गया था।
2: यानी कि ये तो साफ साफ एक बहुत ही ज्यादा ब्रूटल था।
1: हाँ, पुलिस तुरंत ही इस केस को प्रायोरिटी देती है और सस्पेक्ट की तलाश शुरू कर देती है। लेकिन कई हफ्तों की जांच के बावजूद भी पुलिस को कोई ठोस सुराग मिल ही नहीं पाता।
2: हाँ, और ऐसे मामलों में सबसे बड़ी मुश्किल यही होती है जब कोई क्लियर एविडेंस ना मिले।
1: बिल्कुल, लेकिन इस केस की असली खौफनाक बात अभी सामने आना बाकी था।
2: मतलब
1: करीब एक महीने बाद 15 अगस्त 1982 को उसी ग्रीन रिवर के इलाके में 3 और लाशें बरामद होती हैं।
2: 3 और?
1: हाँ, और ये तीनों भी महिलाओं की लाशें थी जिनकी उम्र लगभग 17 साल 23 साल और 31 साल बताई जा रही थी।
2: तो अब तो पुलिस को शक होने लगा होगा कि ये किसी सीरियल किलर का काम है।
1: बिल्कुल, लगातार मिलती इन लाशों ने पुलिस को ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि सिएटल और उसके आसपास के इलाके में कोई ऐसा इंसान जरूर घूम रहा है जो महिलाओं को ही अपना निशाना बना रहा है।
2: और यहीं से शुरू हुई वो इन्वेस्टिगेशन जो आगे चलकर अमेरिका की सबसे लंबी और खौफनाक सीरियल किलर की इन्वेस्टिगेशन बन गई।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस ने उन तीनों लाशों का भी पोस्टमार्टम करवाया और जो रिपोर्ट में सामने आया उसने सबके दिल को झकझोर के रख दिया।
2: क्या?
1: तीनों महिलाओं की हत्या का तरीका लगभग वही था जैसे 16 साल की वेंडीली का केस था।
2: यानी कि इन तीनों हत्याओं का एक ही पैटर्न था।
1: बिल्कुल, जांच में पाया गया कि इन तीनों के साथ भी पहले सेक्सुअल असॉल्ट किया गया था और उसके बाद गला दबाकर उनकी हत्या कर दी गई।
2: तो अब पुलिस के लिए ये साफ संकेत था कि शायद ये एक सीरियल ऑफेंडर का काम हो सकता है।
1: और मामला यही खत्म नहीं हुआ। जब पुलिस पहले से मिले मामलों को समझने की कोशिश कर रही थी उसी दौरान 8 अक्टूबर 1982 से 7 नवंबर 1982 के बीच उसी इलाके में नदी के आसपास 3 और महिलाओं की लाशें बरामद होती हैं।
2: मतलब अब कुल कितनी लाशें हो गई होंगी?
1: उस समय तक लगभग 7 लाशें।
2: सिर्फ कुछ महीनों में 7 हत्याएं? ये तो पूरे इलाके के लिए बहुत ही ज्यादा दहशतगर्द होगा।
1: बिल्कुल, स्पेशली महिलाओं के लिए, क्योंकि वो सीरियल किलर किसी और को नहीं फीमेल्स को टारगेट कर रहा था। सिएटल और उसके आसपास के इलाकों में डर का माहौल फैल रहा था। मीडिया में इस केस की चर्चा तेज हो गई। पुलिस पर भारी दबाव बढ़ने लगा और जल्द से जल्द हत्यारे को पकड़ने का प्रेशर बढ़ता जा रहा था।
2: और जब कोई स्पष्ट सबूत ना हो तो इन्वेस्टिगेशन और भी ज्यादा मुश्किल हो जाती है।
1: यही तो बात है, यही इस केस में भी हो रहा था। पुलिस ने हर संभव दिशा की जांच कर ली, सस्पेक्ट की पहचान की गई, लोगों से पूछताछ की गई, कई लोगों को क्वेश्चनिंग के लिए हिरासत में भी लिया गया, लेकिन कोई सबूत हाथ ही नहीं लग रहा था।
2: लेकिन क्या किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला?
1: नहीं, काफी इन्वेस्टिगेशन और जांच के बावजूद भी पुलिस को ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसके खिलाफ कोई पक्का एविडेंस हो। पर तुम्हें पता है, एक ऐसा नाम जरूर था जो बार बार घूम घूम कर आ रहा था।
2: कौन?
1: गैरी लियोन रिजवे।
2: गैरी रिजवे यानी वही आदमी जो बाद में इस केस से जुड़ा माना गया था।
1: हाँ, लेकिन उस समय पुलिस के पास उसके खिलाफ भी कोई एविडेंस नहीं था।
2: तो फिर क्या वजह थी जो पुलिस ने उसे सस्पेक्ट माना?
1: एक्चुअली हुआ क्या था, एक परिवार ने पुलिस को बताया था कि जिन लड़कियों की लाशें मिली थीं, उनमें से एक लड़की को उन्होंने ट्रक में बैठते हुए देखा था और अगले दिन उसी तरह का सेम ट्रक गैरी रिजवे के घर के सामने खड़ा था।
2: यानी शक की एक छोटी सी कड़ी गैरी तक पहुंच रही थी।
1: इसी वजह से गैरी को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था। जांच के दौरान पुलिस ने गैरी समेत कई सस्पेक्ट के सीमन सैंपल को भी लिया और उन्हें विक्टिम के शरीर से मिले सैंपल के साथ फॉरेंसिक टेस्टिंग के लिए भी भेजा था।
2: और क्या कोई मैच मिला?
1: नहीं, किसी भी सस्पेक्ट का सैंपल उन विक्टिम से मिले सैंपल से मैच ही नहीं हुआ।
2: यानी कि अभी भी पुलिस के पास गैरी के लिए कोई भी सबूत नहीं है।
1: सबूतों की कमी और फॉरेंसिक मैच ना होने की वजह से गैरी सहित सभी सस्पेक्ट को रिहा कर दिया गया।
2: और शायद उसी समय पुलिस को अंदाजा भी नहीं था कि जिस व्यक्ति को वो जाने दे रहे हैं आगे चलकर वही अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक किलर निकलेगा।
1: और यहीं से ये मामला और भी मिस्टीरियस बनता जा रहा था। और हैरानी की बात तो ये है कि उस आदमी का नाम बार बार घूम घूम कर पुलिस के सामने पहले ही आ चुका था,
2: पर फिर भी एविडेंस की कमी होने की वजह से उसे छोड़ दिया गया। पर फिर भी एविडेंस की कमी होने की वजह से उसे छोड़ दिया जा रहा था। और अब गैरी लियोन रिजवे, ये नाम भुलाना तो मेरे लिए बिल्कुल नामुमकिन सा हो गया है।
1: खैर, हाँ सही कहा, ये नाम हिस्ट्री के उन पेजेस में शामिल हो गया है जिसे कभी नहीं मिटाया जा सकता। खैर, गैरी लियोन रिजवे, जिसका जन्म 18 फरवरी 1949 को अमेरिका के उटाहा राज्य में हुआ था,
2: उसका परिवार कैसा था? लेकिन
1: गैरी के पिता ट्रक ड्राइवर थे। स्कूल खत्म होने के बाद गैरी ने अपने स्कूल गर्लफ्रेंड के साथ शादी कर ली थी।
2: तो मतलब शुरू में उसकी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल थी।
1: ऊपर से दिखने में तो सब नॉर्मल था, लेकिन अंदर कुछ और था।
2: अंदर क्या था?
1: ऊपर से जितनी नॉर्मल जिंदगी दिख रही है गैरी की, अंदर से बिल्कुल भी वैसी नहीं थी। गैरी ने यूनाइटेड स्टेट नेवी ज्वाइन कर ली थी और उसे वियतनाम वॉर में भी भेज दिया गया था।
2: वियतनाम वॉर, यानी कि उस समय के सैनिक के भी मन में इसका गहरा प्रभाव रहा होगा।
1: सही कहा, वियतनाम में रहते हुए गैरी का जो बिहेवियर है वो धीरे धीरे बदलने लगा था। बताया जाता है कि वह वहाँ अपना ज्यादातर समय अलग अलग सेक्स वर्कर्स और महिलाओं के साथ बिताता था।
2: तो फिर इसका असर तो उसकी शादी पे भी पड़ा होगा।
1: बिल्कुल सही कहा, जब वो वापस लौटा तो उसने अपनी पत्नी के साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जो कि काफी आक्रामक और गलत होता। लगातार झगड़े, खराब रिश्ते की वजह से एक साल के अंदर ही उसकी पहली शादी टूट भी जाती है।
2: और उसके बाद?
1: पहली शादी खत्म होने के कुछ साल बाद 1973 में गैरी ने दूसरी शादी कर ली।
2: दूसरी शादी? अब ये किससे?
1: उसकी दूसरी पत्नी का नाम था मार्सिया लोरेन ब्राउन।
2: तब फिर क्या ये शादी उसकी सफल रही?
1: नहीं, ये रिश्ता भी ज्यादा समय तक नहीं चला। बताया जाता है कि गैरी का जो बिहेवियर था वो वैसा ही रहा, अपनी पत्नी के साथ काफी कठोर, काफी हिंसक और काफी खराब।
2: यानी उसका गुस्सा और उसका बिहेवियर लगातार खराब होता जा रहा था।
1: बिल्कुल, और आखिरकार 1981 में उसकी दूसरी शादी भी खत्म हो जाती है। और इसी के लगभग एक साल बाद यानी कि 1982 में गैरी रिजवे ने उस रास्ते पर कदम रखा जिसे आगे चलकर उसे अमेरिका का सबसे फेमस और खतरनाक सीरियल किलर में शामिल कर दिया गया।
2: यानी वही समय जब ग्रीन रिवर के आसपास लाशें मिल रही थी।
1: बिल्कुल सही कहा, एक के बाद एक कई महिलाओं के मर्डर होने लगे और उनकी लाशें अक्सर ग्रीन रिवर के आसपास के इलाकों में मिलती रही।
2: लेकिन पुलिस गैरी तक पहुंच क्यों नहीं पा रही थी?
1: सबसे बड़ी एक ही वजह है ना, एविडेंस की कमी।
2: यानी एविडेंस की कमी से बार बार कातिल भटक रहा था और आजाद दुनिया के सामने घूम रहा था।
1: बिल्कुल, और शायद उसके बिहेवियर पे भी किसी ने अभी तक नजर ही नहीं दौड़ाई थी।
2: हालांकि तुमने अभी बताया था कि 1982 में उसे सस्पेक्ट के रूप में पकड़ा भी गया था, वो कैसे?
1: सही कहा, उस समय जब एक परिवार ने आकर बताया था तो उसे सस्पेक्ट के रूप में पकड़ा जरूर गया था, बट क्योंकि उस वक्त की फॉरेंसिक सैंपल्स में उसका नाम, उसका एविडेंस कहीं मैच ही नहीं हुआ तो उसे जाने दिया गया।
2: फिर भी वो बचा कैसे?
1: क्योंकि उस समय की डीएनए टेक्नोलॉजी आज की तरह इतनी एडवांस नहीं थी। जो सैंपल पुलिस के पास थे उनसे गैरी के खिलाफ कोई पक्का मैच ही नहीं हुआ और यही वजह थी कि गैरी खुला छूट गया। और मुझे लगता है ना, गैरी को खुला छोड़ना ये पुलिस के लिए अब सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला था।
2: जब कोई कातिल ऐसे खुलेआम घूमेगा और उसे पनिशमेंट नहीं मिलेगी तो उसे और भी ज्यादा वो मोटिवेशन मिलने लग जाएगा और हत्याएं करने के लिए। अच्छा ठीक है, लेकिन अब इसके आगे क्या होने वाला था?
1: आगे लाशें मिलती जा रही थी, तब इन्वेस्टिगेटर्स के दिमाग में एक ख्याल आया। इन्वेस्टिगेटर्स ने विक्टिम के बैकग्राउंड को ध्यान से देखना शुरू किया और वहाँ एक पैटर्न दिखाई पड़ता है।
2: पैटर्न? कैसा पैटर्न?
1: ज्यादातर पीड़ित ऐसी लड़कियां थीं जो या तो घर से भागकर आई थीं या सेक्स वर्क में शामिल थीं या फिर जिनका कोई परिवार नहीं था या परिवार से लगभग कम संपर्क बाकी था, यानी कि ना के बराबर।
2: यानी कि किलर ऐसे लोगों को निशाना बना रहा था जिनकी गुमशुदगी शायद तुरंत नोटिस में ना आए।
1: बिल्कुल, क्योंकि ऐसे लोगों की रिपोर्ट कोई नहीं लिखाता, उन्हें ढूंढने कोई नहीं आता और यही किसी भी क्रिमिनल के लिए सबसे आसान टारगेट होता है। जब इन्वेस्टिगेटर्स के दिमाग में ये ख्याल आया और उसी की वजह से उन्होंने उन इलाकों में नजर रखना शुरू की जहां पर सेक्स वर्कर्स काम करते थे, उनके ऊपर निगरानी और भी ज्यादा बढ़ा दी गई। उम्मीद ये थी कि शायद उन्हीं के बीच में कोई ऐसा सुराग मिलेगा या फिर वो व्यक्ति सामने आएगा जो इन हत्याओं के पीछे है और ये केस आसानी से सॉल्व हो जाएगा।
2: तो क्या फिर कुछ पता चला?
1: हाँ, इसी निगरानी के दौरान एक दिन पुलिस की नजर एक ऐसी घटना पर पड़ी जिसने उनका ध्यान अपनी तरफ खींचा।
2: क्या हुआ था?
1: पुलिस ने देखा था कि गैरी रिचवे एक सेक्स वर्कर के साथ बेहद ही आक्रामक तरीके से उलझा हुआ था। रिपोर्ट के अनुसार वह उसके साथ बहुत ही हिंसक व्यवहार कर रहा था और स्थिति बहुत खतरनाक होती जा रही थी।
2: तो फिर पुलिस ने तुरंत जाके इंटरफेयर तो जरूर किया होगा।
1: हाँ, पुलिस ने वहीं गैरी को गिरफ्तार कर लिया और उसे पूछताछ के लिए फिर से थाने ले गई।
2: क्या इस बार पुलिस को गैरी के खिलाफ कोई सबूत मिला या फिर इन हत्याओं के पीछे का कोई सबूत?
1: चीजों को देखते हुए एक बार फिर से गैरी को सस्पेक्ट माना गया और इस बार एक बहुत ही लंबी पूछताछ भी की गई। इसी दौरान पुलिस ने उसे पकड़ा और पॉलीग्राफी टेस्ट भी करवाया।
2: अच्छा, पॉलीग्राफी यानी कि वो टेस्ट जो लाई डिटेक्टर टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है?
1: सही कहा, इसी टेस्ट से व्यक्ति से सवाल पूछे जाते हैं और साथ साथ उसकी हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, ब्रीथिंग रेट एंड अन्य फिजिकल रिस्पॉन्सेस को रिकॉर्ड किया जाता है। माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो इनकी प्रतिक्रियाओं में बदलाव दिखाई पड़ता है।
2: तो क्या इस टेस्ट से गैरी के खिलाफ कुछ सामने आया?
1: नहीं, गैरी सोच से कई गुना ज्यादा चालाक था और उसने इन सारी चीजों को कंट्रोल कर लिया।
2: यानी कि पॉलीग्राफी टेस्ट को भी मात दे दी उसने?
1: बिल्कुल सही कहा, और इस बार फिर से पुलिस के हाथ खाली थे।
2: यानी कि पुलिस को इस बार भी उसे रोकने के कोई भी ठोस सबूत नहीं मिले।
1: बिल्कुल, इसी वजह से गैरी को फिर से छोड़ दिया गया।
2: और यही वो मोड़ आता है जहां शायद ये मामला और भी ज्यादा खतरनाक हो गया था।
1: गैरी को अब पूरी तरह से यकीन भी आई थिंक हो चला था कि उसे कोई नहीं पकड़ सकता। रिहा होने के बाद गैरी ने अपने अपराध बंद नहीं किए, बल्कि वह पहले की तरह और भी महिलाओं को निशाना बनाता रहा।
2: और हर बार वही पैटर्न दोहराता था क्या?
1: लगभग। हत्या के बाद वह अक्सर लाशों को ग्रीन रिवर के आसपास के इलाकों में फेंक देता था।
2: और पुलिस को बार बार सिर्फ एक ही चीज मिलती, वो थी लाश।
1: बिल्कुल, इसी वजह से मीडिया ने इस अननोन किलर को एक नाम देना शुरू कर दिया
2: और वही नाम आगे चलकर पूरी दुनिया में मशहूर हो गया,
0: द ग्रीन रिवर सीरियल किलर।
2: इतने सारे शक होने के बावजूद भी पुलिस गैरी तक नहीं पहुंच पा रही थी।
1: हाँ, और इसी दौरान उसकी जिंदगी जो ऊपर से एकदम सामान्य दिख रही थी, उसी के अंदर बहुत कुछ हो रहा था। 1985 के आसपास गैरी एक और महिला को डेट करना शुरू करता है जिसका नाम था जूरियत माउसन। बाद में वही उसकी तीसरी पत्नी बनती है।
2: यानी बाहर से देखने में उसकी जिंदगी बिल्कुल आम इंसान जैसी लग रही थी।
1: बिल्कुल, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल अलग थी। शादी के बाद गैरी का सेक्स वर्कर के पास जाना बंद नहीं हुआ और इसी दौरान वह लगातार महिलाओं की हत्या करता जा रहा था। हत्या का ये सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने इस केस की जांच के लिए एक विशेष टीम बनाई जिसे कहा गया ग्रीन रिवर टास्क फोर्स।
2: मतलब पूरी दुनिया की टीमें मिल के सिर्फ एक सीरियल किलर के पीछे हाथ धो के पड़ गईं,
1: जिनका अब सिर्फ एक ही टारगेट था, उस किलर तक पहुंचना जिसने इतनी महिलाओं की हत्या की है। इस टास्क फोर्स ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लोगों से पूछताछ की, इलाके की जांच की, संभावित सस्पेक्ट की एक लिस्ट बनाई गई, लेकिन फिर भी ऐसा कोई सबूत ही नहीं मिला जो सीधे हत्यारे तक पहुंच सके।
2: फिर पुलिस ने क्या किया?
1: एक बार फिर सस्पेक्ट की नई सूची तैयार की गई और इस बार फिर से इस लिस्ट में नाम था गैरी रिचवे का।
2: यानी कि अभी भी पुलिस को गैरी पे शक था?
1: हाँ, और इस बार पूछताछ के दौरान पुलिस ने गैरी के बाल और सलाइवा का सैंपल भी लिया था, लेकिन उस समय जो फॉरेंसिक टेक्निक्स उपलब्ध थीं, उससे पुलिस को कोई भी सक्सेस नहीं मिली
2: और नतीजा वही हुआ।
1: गैरी को एक बार फिर से छोड़ दिया गया
2: और यही उसकी आजादी को आगे लेके गई और लोगों के लिए ये आगे चल के बहुत ज्यादा खतरनाक भी साबित हुआ।
1: सही कहा, गैरी अपनी आजादी का पूरा फायदा उठाते हुए फिर से महिलाओं को निशाना बनाता जा रहा था। समय बीतता गया, साल बदलते गए, लेकिन पुलिस अभी तक उसकी लड़ तक नहीं पहुंच पा रही थी। फिर वक्त आता है साल 2001 का। तब तक गैरी पर शक तो था ही, लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं थे।
2: 2001 यानी तब तक लगभग कितनी लाशें मिल चुकी होंगी?
1: शायद 50 से ज्यादा।
2: 50 लाशें, वो भी एक आदमी ने मारे थे?
1: और अभी तो इसकी गिनती बाकी है।
2: अच्छा, आगे बताओ, आगे क्या हुआ?
1: दरअसल पुलिस के पास 7 अप्रैल 1987 को लिया गया एक पुराना सैंपल मौजूद था। 2001 तक डीएनए टेक्नोलॉजी भी आगे हो चुकी थी, काफी विकसित हो चुकी थी, और वहां पर ये सैंपल मैच किया गया।
2: यानी कि वही पुराना एविडेंस फिर से जांचा गया?
1: हाँ, और इस बार डीएनए टेस्ट ने गैरी रिचवे को सीधे इन हत्याओं से जोड़ दिया। इसके बाद 2001 में उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
2: फाइनली इसके खिलाफ कोई सबूत तो मिला, लेकिन क्या गैरी ने अपना जुर्म को एक्सेप्ट किया?
1: नहीं, गिरफ्तारी के बाद गैरी ने सभी आरोपों से इनकार कर दिया। पुलिस लगातार पूछताछ करती रही, कई महीने गुजर गए, लेकिन गैरी मुंह नहीं खोल रहा था।
2: लेकिन आखिरकार सच सामने आया कैसे?
1: काफी समय के बाद गैरी ने पुलिस के सामने एक शर्त रखी।
2: शर्त?
1: हाँ, उसने कहा कि वह अपने सारे क्राइम एक्सेप्ट करेगा, हर मामले की जानकारी भी देगा, लेकिन बदले में उसे मौत की सजा नहीं दी जाएगी।
2: यानी कि वो पुलिस के साथ डील करना चाहता था।
1: बिल्कुल सही कहा, और सरकार ने ये शर्त मान भी ली, क्योंकि उस समय इन मामलों का सच जानना ज्यादा जरूरी था। इसके बाद गैरी ने जो कबूल किया, उसने सबको निशब्द कर दिया।
2: अच्छा, ऐसा क्या बताया उसने?
1: उसने कहा कि उसकी पहली हत्या 1982 में थी, उसके बाद लगातार महिलाओं को निशाना बनाता रहा और अक्सर उनकी लाशों को ग्रीन रिवर के आसपास के इलाकों में फेंक देता था।
2: तो फिर अभी तक लगभग कितनी लाशें थीं, उसको याद था ये?
1: उसने कहा कि उसे संख्या तो नहीं याद है, लेकिन अगर अनुमान लगाया जाए तो 70 से 90 के बीच हो सकती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये संख्या 100 से भी ज्यादा हो सकती है।
2: Oh my God, यानी 70, 80 और 100,
1: या फिर उससे भी ज्यादा।
2: आगे क्या हुआ फिर?
1: फिलहाल के लिए जांच के दौरान पुलिस को सिर्फ 48 विक्टिम की पहचान करने में सफलता मिली।
2: और आखिरकार अदालत ने फैसला क्या दिया?
1: अदालत ने गैरी रिचवे को 48 अलग अलग हत्याओं के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जिसमें सबूत मिटाने और अपराध के लिए भी दूसरी सजा शामिल थी।
2: और उसे कभी पैरोल नहीं मिलेगा?
1: हाँ, अदालत के ऑर्डर के अकॉर्डिंग वह अपनी पूरी जिंदगी जेल में ही बिताएगा।
2: लेकिन एक सवाल अभी भी मेरे मन में रह जा रहा है, एक साधारण सा सीधा साधा दिखने वाला आदमी एक खतरनाक सीरियल किलर आखिर बना कैसे?
1: और तुम्हारे इस सवाल का जवाब शायद उसके बचपन में छिपा है।
2: बचपन में छुपा है मतलब?
1: रिपोर्टर्स के अनुसार गैरी का बचपन एक ऐसे माहौल में बीता जहां घर का वातावरण बिल्कुल भी स्थिर नहीं था। उसके पिता अक्सर ट्रक ड्राइवर के रूप में लंबे सफर पर रहते थे और परिवार में अक्सर झगड़े हुआ करते थे।
2: कहा जाता है कि घर का माहौल बच्चों पर बहुत ही ज्यादा असर डालता है।
1: सही कहा, और ऐसी परिस्थितियों ने गैरी के बिहेवियर और उसकी सोच पर गहरा प्रभाव डाला। समय के साथ उसका व्यवहार, उसकी मानसिकता दोनों बदलते गए, और वही बदलाव आगे चलकर उसे इस रास्ते पर ले गए जिसने उसे इतिहास का सबसे खतरनाक सीरियल किलर बना डाला।
2: और शायद यही वजह है कि आगे चलकर वो बच्चा इतिहास का सबसे खौफनाक सीरियल किलर में से एक था।
1: बिल्कुल, गैरी रिचवे की कहानी आज भी क्रिमिनोलॉजी और साइकोलॉजी की दुनिया में एक बड़ा अध्ययन मानी जाती है। इस खौफनाक केस पर समय समय पर कई डॉक्यूमेंट्रीज, फिल्म्स और टीवी अडैप्टेशन भी बनाई जा चुकी हैं, जो इस पूरे मामले की जांच और उसके अपराधों को समझने की कोशिश करते हैं।
2: और यही थी कहानी द ग्रीन रिवर किलर की, एक ऐसा मामला जिसने कई सालों तक पूरे अमेरिका को दहशत में रखा।
1: बिल्कुल, और इसी के साथ अब हम चाहेंगे आपसे इजाजत, फिर मुलाकात होगी लेकर के एक और सच्ची घटना। तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय, टेक केयर।
0: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास सो फूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। नमस्कार दोस्तों, आप शो सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत, जो लेके आ गई है आपकी आरजे अनोखी। और आज एक अनोखे सफर पे हम चलने वाले हैं। सफर कुछ ऐसा होने वाला है, शमा है, मौसम है, माहौल है और वक्त है रात का। और जब बात आती है रात की, तो हमें सबसे प्यारी जो होती है वो होती है हमारी नींद। और इसीलिए आज हम आपको नींद वाले गानों से रूबरू कराएंगे। हाँ, जिनमें नींद के वर्ड आते हैं, ये नहीं कि आपको सुना के हम सुला देंगे, वैसे आप सो भी सकते हैं चाहे तो। और कुछ एक ऐसी प्यारी सी कहानी की ओर लेके जाएंगे और उसी दौर में उसी स्टोरी के जरिए हम आगे बढ़ते जाएंगे और सारे गीतों के, जी हाँ, लुत्फ उठाएंगे। तो चलिए चलते हैं इस सफर पे

आज बात सिर्फ नींद पे नहीं होगी, वो नींद जो प्यार भरी होती है, यानी वो रातें जब मोहब्बत नींद चुरा लेती है, बेचैनी जगाती है और यादें हमें जगाए रखती है। आपको पता है मोहब्बत का आगाज कैसे होता है? सबसे पहले तो मोहब्बत की शुरुआत होती है और उसके बाद में उड़ती है तो क्या, नींद। हाय रे हाय, नींद ना आए जब मोहब्बत सिर चढ़ जाए तो सारी रातें चुप नहीं रहती, ख्वाब भी आंखों से कतराते हुए आती हैं। एक लड़का पहली बार किसी लड़की को देखकर खो जाता है, अब पूरी रात उसके ख्याल में करवटें बदलता है। सोचिए वो रात कैसी होती है जब दिल पहली बार धड़कनों से इजहार करने लगे और आंखों से नींद भाग जाए, तो फिर कौन सा गाना आपके जहन में आए? चलिए मैं आपको सुनाती हूँ वो वाला गाना।

अभी आपने सुना, हाय रे हाय, नींद नहीं आए, चैन नहीं आए, दिल में तू समाए। चलिए आज एक स्टोरी के जरिए इस मौसम के सफर पे ले चलते हैं आपको। अंजलि एक लड़की जिसने खिड़की खोली तो ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और चांद बादलों में छुप छुप कर खेल रहा था। दिल अजीब सा धड़क रहा था, जैसे किसी को याद करने का मौसम हो। उसे दिन भर की एक मुलाकात याद आई। कॉलेज की लाइब्रेरी में किताब लेते समय उसकी नजर अर्जुन से टकराई थी। बस कुछ ही पल थे, मगर उन पलों ने रात का सारा सुकून छीन लिया था। बिस्तर पर करवटें बदलते हुए वह बुदबुदाई। क्या बुदबुदाई, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये बताते हैं कि नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी, मगर दिल में एक अजीब सी मिठास थी। लग रहा था जैसे प्यार भरे इस मौसम में हवाएं भी उसी का नाम लेकर गुनगुना रही हूँ। और क्या कह रही हूँ, वही जो भी आपने सुना। हाँ, वही गाना, हाय रे हाय, नींद नहीं आए। ऐसा होता है ना, कई बार होता है, हमारे साथ भी होता है कि कोई एक पल होता है हमारी जिंदगी का जिसमें हम बंद से जाते हैं, और बड़ा ही प्यारा सा पल होता है, कई दफ़ा हमारी भी नींद उड़ती है। अब आपको वो वाला गीत सुनाएंगे जिसके बोल हैं, बला का हुस्न गजब का शबाब नींद में है।

वाकई नींद से ज़्यादा खूबसूरती कहाँ। आप जब थक के बिस्तर पे आते हैं तो सबसे प्यारी आपको नींद ही होती है। कितनी भी ज़रूरी, कितनी भी प्यारी चीज़ क्यों ना हो, लेकिन उसको नींद के आगे आप छोड़ दिया करते हैं। लेकिन ये गाना सुनना बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि बहुत ही प्यारा नगमा है। आइए मिलकर इसका आनंद लेते हैं।

0: अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और उस सफर की ओर चलते हैं जहां पे होते हैं मुलाकात के वादे। अर्जुन और अंजलि की वो पहली मुलाकात एक चिंगारी बन चुकी थी। अगले दिन कॉलेज कैंपस के पुरानी बरगद के पेड़ के नीचे दोनों मिलने का वादा कर चुके थे। रात आई तो अंजलि फिर करवटें बदलने लगी। खिड़की के पास खड़े होकर वो आसमान की तरफ देख रही थी। कल की हसीन मुलाकात के लिए आज रात की कुर्बानी करनी ही होगी। मोबाइल पर अर्जुन का मैसेज आता है, सो जाओ वरना कल की मुलाकात में नींद से भरी आंखें तुम्हारी मुस्कान छुपा लेंगी। अंजलि ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अच्छा अच्छा ओके चलो सो जाते हैं। दोनों ने अपने अपने तकिए को गले लगाया और सोचते सोचते सो गए। ख्वाबों में वही बरगद का पेड़ था, वही मुलाकात, और था इंतजार कल की सुबह का। और उस सुबह से पहले एक गाना हो जाए जिसके बोल हैं उसी सफर से जुड़े हुए जो आज हम तय कर रहे हैं अंजलि और अर्जुन के साथ। कल की हसीन मुलाकात के लिए, बाकी इस गाने के माध्यम से।
1: गुड नाइट।
2: हाँ गुड नाइट।
1: हाँ गुड नाइट।
2: अच्छा गुड नाइट।

अब जब ये प्यार का सिलसिला शुरू हो चुका था तो एक और दौर आता है जिसमें हाँ जी शिकायतें भी तो शुरू हो जाती हैं। हाँ ये बस तुम्हारी वजह से हुआ है, नहीं तुम इसके कारण हो ऐसे करते हुए। जी हाँ, तो ये दौर है तेरे कारण। हाँ, इस बात को बिल्कुल दरकिनार नहीं किया जा सकता। और होती है सुबह, अगली सुबह, सुबह की हल्की धूप खिड़की से अंदर आई, अंजलि नींद से जागी तो उसकी आंखें अब भी अधूरी नींद की शिकायत कर रही थी, लेकिन होठों पर मुस्कान थी क्योंकि अर्जुन आज उससे मिलने वाला था। तैयार होकर जब वो कॉलेज पहुंची तो दूर से ही अर्जुन को बरगद के पेड़ के पास इंतजार करते पाया। उसकी आंखों में बेचैनी थी और होठों पर वही मासूमियत। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, क्यों कल रात नींद बिल्कुल नहीं आई? अंजलि ने शर्माते हुए जवाब दिया, मेरे जो भी हाल थे वो सब बस और बस तुम्हारे कारण थे। दोनों हंस पड़े। उस पल अंजलि के दिल ने पहली बार माना, तेरे कारण ही ये बेचैनी है, तेरे कारण ही ये नींद गायब है और तेरे कारण ही ये मुस्कान भी है। बरगद के नीचे बैठकर उनकी बातें देर तक चलती रही। अब हर करवट, हर नींद, हर मुस्कान सबका कारण वही था। जी हाँ, जो ये गाना बताने वाला है। चलिए फिर इस एक और बेहतरीन सॉन्ग का आनंद लेते हैं और इस सफर को महसूस करते हुए आगे बढ़ते हैं। गाना वही, तेरे कारण मेरे साजन तेरे कारण।

दोस्तों, प्यार में तो जागने और सोने का सिलसिला चलता ही रहता है। एक बार किसी की याद आ जाए तो आपकी नींद उड़ जाती है, और अगर आप बहुत उदास हो और उसकी याद आ जाए तो आप मुस्कुराने लगते हो, और बहुत ज़्यादा नाराज़गी हो किसी से, अगर वो एक बार बस कॉल करके आपसे कह दे तो भी आप अपनी सारी नाराज़गी भूल जाते हो। कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन इस बार कुछ अनोखा होता है। इस बार जो अनोखा होता है वो ये होता है कि होती है नींद की शिकायत कि मेरी नींद तुम्हारी वजह से उड़ी है। हाँ जी, तो ये शिकायत किस तरह से करती है अंजलि अर्जुन से, आइए जानते हैं। बरगद के नीचे हुई उस प्यारी सी मुलाकात ने अंजलि और अर्जुन के दिल में कुछ ऐसा बो दिया था कि अब दिन छोटा और रातें लंबी होने लगी थी। शाम को जब अंजलि अपने कमरे में आई तो किताब खुली थी मगर पन्ने ठहरे हुए थे। नजरें बस खिड़की से बाहर चांद को एक टक ताके जा रही थी। फोन पर अर्जुन की आवाज आई। क्या कर रही हो? अंजलि ने आह भरते हुए कहा। क्या बताऊं, नींद नहीं आती, चैन नहीं मिलता, हर जगह बस तुम्हारा चेहरा दिखाई देता है। अर्जुन हंसा, फिर हल्के से बोला, तो क्या करूं, तुम्हारी नींद भी ले आया हूँ अपने पास। अंजलि की आंखें भर आई। उसने धीमी आवाज में कहा, हाँ, मेरी नींद, मेरा चैन सब तुम्हारे पास ही तो है। हाँ, मेरी नींद, मेरा चैन सब तुम्हारे पास ही तो है। उस रात दोनों करवटों में बातें करते करते और नींद को ना जाने अपने पास कब बुला लेते हैं। वो तो कहीं दूर सितारों के बीच छुपकर मुस्कुरा रही थी, पर शायद उनकी ओर बढ़ती हुई आ रही थी। हाँ, ज़्यादा मत सोचिए नींद। तो चलिए फिर एक और प्यारे से गीत का आनंद उठाते हैं, जो कि 90 के दशक में से जाना जाता है। बहुत ही उम्दा, बहुत ही आला। आइए मिलकर इसका आनंद लेते हैं।

आप शो सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत अपनी आरजे अनोखी के साथ। और आज हम जिस सफर पे निकले हैं वो है प्यार और नींद का सफर। जब प्यार में कोई इंसान होता है उसकी नींद उड़ती है या रह जाती है या कहीं से आती है। कुछ ऐसे सफर पे हम चल चुके हैं गीतों के माध्यम से और कहानी के माध्यम से। आज का जो हमारा नायक है वो है अर्जुन और नायिका अंजलि, जिनके प्यार की कहानी हम गुनगुना रहे हैं और आपको गीतों के सफर पर भी लेके जा रहे हैं। आपको कहानी के अंत की ओर ले चलेंगे, लेकिन उससे पहले 90s का एक और हिट सॉन्ग, जी हाँ, इश्क मूवी से ये सॉन्ग, जो कि फिल्माया गया है जूही चावला, काजोल, अजय देवगन और आमिर खान जी पर। सॉन्ग आप खुद ही सुनिए जनाब।

चलिए एक बार फिर से रुख करते हैं अंजलि और अर्जुन की कहानी की ओर। अंजलि और अर्जुन की बातें रात भर चलती रहीं, दोनों एक दूसरे के साथ खोए रहे और नींद को भूल ही गए। लेकिन जब सुबह हुई तो अर्जुन को अपने परिवार के साथ शहर छोड़ना पड़ा। अंजलि को अर्जुन की याद सताने लगी। वो अपने कमरे में बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी और अर्जुन की यादों में खोई हुई थी। फोन पर अर्जुन की आवाज आई। याद सताए, तेरी नींद चुराए, मैं कैसे रहूं तुम्हारे बिना। अंजलि की आंखें भर आई। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम्हारी यादें मुझे सताएंगी और मेरी नींद चुराएंगी। अर्जुन ने कहा, मैं जल्दी वापस आऊंगा और हम साथ में रहेंगे, तब तक तुम्हें मेरी यादों में जीना होगा। अंजलि ने आह भरी और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी यादों में जीऊंगी, लेकिन तुम्हें जल्दी वापस आना होगा। और उसके बाद उसने लगाया अपने फोन में ये वाला गाना। चलिए आप भी सुनिए। हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं।

आप शो सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत अपनी आरजे अनोखी के साथ। आपने ट्यून कर रखा है अपना वाला एफएम, जिसका नाम है रेडियो ज्ञानस्त्री 89.6 एफएम, जहां आज मैं आपको लेके आई हूँ एक प्यार भरी कहानी की ओर। जी हाँ, ऐसे सफर पे जहां प्यार और नींद की बातें हो रही हैं, साथ ही साथ ढेर सारी जज्बातों की बातें हो रही हैं। इस कहानी के अंत की ओर बढ़ेंगे, उससे पहले एक और सॉन्ग आपके लिए।

श्रोताओं, अब आपको लेके चलते हैं इस कहानी के अंत की ओर। बारिश की रात थी और अर्जुन, अंजलि एक दूसरे के साथ बैठे थे। बारिश की बूंदें खिड़की पर गिर रही थी, टिप टिप टिप, और उनके दिलों में प्यार की बारिश भी वैसे ही हो रही थी, धीरे धीरे, टिप टिप टिप। हाँ, एकदम सुकून से भरी हुई प्यार की बारिश।

0: अंजलि ने आंसू भरी आंखों से अर्जुन को देखा और कहा, हाँ, हमारी मोहब्बत ने हमें रोने पर मजबूर कर दिया है, लेकिन ये आंसू खुशी के हैं क्योंकि हम एक दूसरे के साथ हैं। अर्जुन ने अंजलि के आंसू पोंछे और कहा, मैं तुम्हारे साथ हर पल बिताना चाहता हूँ, तुम्हारी मोहब्बत ने मेरी जीवन को बदल दिया है। अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हर पल बिताना चाहती हूँ, हमारी मोहब्बत सच्ची है और हमें कभी अलग नहीं होना चाहिए। बारिश की रात में अर्जुन और अंजलि एक दूसरे के साथ खो गए। उनकी मोहब्बत ने उन्हें एक दूसरे के बीच ला दिया था और अब वे कभी अलग नहीं होना चाहते थे। अर्जुन और अंजलि की मोहब्बत सच्ची थी और उन्होंने एक दूसरे के साथ जीवन बिताने का फैसला किया। वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहे और उनकी मोहब्बत ने उन्हें खुशी और संतुष्टि दी। दोस्तों, आप शो सुन रहे थे भूले बिसरे गीत, जो लेके आई थी आपकी आरजे अनोखी। अब मैं आपसे लूंगी इजाजत और आऊंगी अगले एपिसोड में, आपको ले चलूंगी किसी और सफर पर, किसी और कहानी की ओर, किसी और प्यारी से नोकझोंक की ओर, किसी और जीवन से रूबरू कराते हुए ढेर सारे गीतों की ओर। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
3: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
2: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
3: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 72-34-020-202।
2: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं। त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
4: जहाँ लेडीज के लिए मिलती